दुनिया के सबसे बड़े मंच से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा, जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज हुआ। बीजेपी का आरोप, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का पलटवार, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं। एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। और पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। बिहार, यूपी और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। यूएन महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चलाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे ही जारी रहेगी। तो दुनिया के सामने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की कलई खोलकर रखी है विदेश मंत्री ने। और आपको यह भी बता दें कि यह भी साफ कर दिया गया है एस जयशंकर की तरफ से कि भारत की जो आतंकवाद पर नीति है जीरो टॉलरेंस की, वो इसी तरह से जारी रहने वाली है।
1: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो वहीं लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज है।
2: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
3: प्रजा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंतगढ़ में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंतगढ़ में। और जसवंतगढ़ में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही है और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
2: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
4: पाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
2: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
5: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
2: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
6: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
7: क्या नहीं बोलना है,
6: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
2: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किशनगंज से अब एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने एक बार फिर से बिहार में घमासान मचा दिया है।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए कि बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो।
5: और उधर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। TMC नेता कुणाल घोष पर हमले की तस्वीरें सामने आई, जिसे लेकर BJP और TMC अब आमने सामने है।
6: पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर हमले की ये नई तस्वीर है, जहां इस बार TMC प्रवक्ता कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने कुणाल घोष की गाड़ी पर अंडा और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मामले की शिकायत करने कुणाल घोष पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां जोरदार हंगामा देखने को मिला।
7: একটা হামলা হয়েছে, তখন পুলিশ ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, জঙ্গলে রাজত্ব হচ্ছে, খুনের চেষ্টা হয়েছে, পাথর ডিম শাবল এনেছে।
8: এভরি তৃণমূল ওয়ার্কার অফ আওয়ার সাইড ইজ অ্যাটাক অ্যাসল্টেড বিটেন আপ উইমেনস আর নট বি আর অলসো নট লেফট ওভার দে আর ম্যানহ্যান্ডেল মোলেস্টেড বিটেন আপ বাই দি পুলিশ অ্যালং উইথ দি BJP ওয়ার্কার্স দেয়ার ইজ নো ডেমোক্রেসি ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস কনসার্ন।
6: कुणाल घोष कोलकाता से हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, जहां ममता बनर्जी की रैली में उन्हें शामिल होना था। ममता बनर्जी ने भी कुणाल की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर स्वेंदु अधिकारी पर निशाना साधा।
9: कुणाल घोष हमारे MLA तृणमूल कांग्रेस के नेता, तार गाड़ी टोटल भंगचूर कर दिया, तार गाड़ी से पूरा कांच भर्ती का सारा बॉडी के ताके अटैक कर दिया।
6: पश्चिम बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की एक तस्वीर मिदनापुर से भी आई, जहां सड़क पर दिन दहाड़े लाठी और चाकू से हमला किया गया। CCTV फुटेज से देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बताया जा रहा है कि BJP सोशल मीडिया का कार्यकर्ता सुबह चाय पीने आया था, जहां उस पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब BJP नेता TMSC पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: मथुरा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां प्रेमानंद महाराज के आश्रम में एक शिष्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है।
6: वृंदावन के प्रसिद्ध राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे साधक ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। रसिक दुलारी के सिर और शरीर पर गंभीर चोट थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
10: फोर्थ फ्लोर की छत से जाके इनके द्वारा कूद के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक टीम को और थाने की टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और थाना वृंदावन की टीम के द्वारा पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
6: पुलिस को घटना की जानकारी काफी समय बाद हुई। साधक को आश्रम से जुड़े लोग ही अस्पताल ले गए थे। रसिक दुलारी शरण का वास्तविक नाम दीपक लोधी बताया जा रहा है और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। मौत की सूचना के बाद दीपक का परिवार मथुरा पहुंचा। परिवार का आरोप है कि उसे दीपक से मिलने नहीं दिया जाता था।
11: उन्होंने जब से गुरुदक्षिणा लिए जब से मिलने नहीं दिए।
12: किसी को नहीं मिलने देते थे परिवार वालों को?
11: नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलने दिए जब से गुरुदक्षिणा लिए।
12: क्यों नहीं मिलने देते थे?
11: वो हम लोग जाते रहे मिलने के लिए तो कुछ भी बोलते थे कि रुको एक घंटे दो घंटे रुको। हाँ। अभी आते हैं फिर बता रहे हैं, तो वैसे दिन व्यतीत कर देते रहे वो लोग।
6: बताया जा रहा है कि 25 साल का दीपक करीब 2 साल पहले वृंदावन आया था और प्रेमानंद जी से दीक्षा ली। इसके बाद अपना नाम दीपक लोधी से बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।
13: हाँ, 2 साल हो गया उसको इधर। तो बोला महाराज जी से मिल गया हमारा, महाराज जी से जो हमारा नाम दिया गया है रंगीली दास। बोले देखो तुम्हारे नाना जिंदगी बहुत लंबी है, अब तो मैं कहाँ अच्छो लग रहा हूँ कहाँ रहने हैं, तुम रोज जाओ हमें कोई टेंशन नहीं है दीपक, वो तुम्हें जहाँ भी रहने हैं जहाँ तुम्हें आनंद आए वो तो रुक सका था तुम।
6: अब सवाल ये कि आखिर दीपक ने आत्महत्या की या फिर मौत की कोई और वजह है, और अगर आत्महत्या की तो उसकी क्या वजह है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। मदन शर्मा, मथुरा आज तक।
5: और अब बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के बारे में। देश के कई राज्यों में इस बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं कई जगह। जी हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर एकदम अलग नजर आ रही है। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
6: ये अरनब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अरनब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की तीन प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
14: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गया, मान के चल दो तीन घर तो फूटी गए। अब पानी फूल पर्याप्त भर एकदम।
15: रात में लब लब। आप सब कहाँ रहे?
14: रात में यही कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
15: तो कोई प्रशासन के आदमी बनाए रही से? अभी
14: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही थी।
1: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है मला, ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
15: रात में काई स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
16: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे
15: घर में, भी पूरा सामान वगैरह डूब गए,
16: दीवार में पानी भर गए ना सब।
15: कितना नुकसान, कितना नुकसान हो गए?
16: सब संभालदार सब भीग गए, घर मन घर कुरिया सब ओदरा धस कर।
6: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
17: यहाँ तीन जगह पर एनएचजी पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
6: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है, कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
5: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं। अलग अलग हादसों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। 32 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: बिहार में फिर नदियां डराने लगी। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा गहराया। नेपाल की बारिश से बिहार में टेंशन। बैराज से भारी पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बढ़ी चिंता। कोसी गंडक उफान पर। मौसम की मार ने बिहार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। सुपौल की तस्वीरें देखिए, जहां कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के 40 गेट खोले गए हैं। ऐसे में कोसी नदी के जलस्तर पर सबकी नजर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी पर भी दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से पानी आने और बैराज से डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुपौल में प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
1: इस वक्त हम नेपाल के कोसी बैराज में हैं और कोसी बैराज में अब तक का इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और नेपाल प्रभाग में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश से ये जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही सुपौल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग और नेपाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और कोसी बराज पे लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। वही सुपौल जिला अधिकारी सावंत कुमार ने बताया कि इस साल का अधिकतम जलस्तर 2,54,000 क्यूसेक पार किया है और देर रात तक ये 3.5 लाख क्यूसेक तक जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और जल संस्थान की विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। उसी बराज से फिलहाल 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो बढ़ते क्रम में है और कोसी बराज का 56 में से 35 गेट को खोल दिया गया है और ये जो पानी उफलती धारा है ये बिहार के सुपौल सहरसा मधेपुरा होते हुए ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मिलेगी। तो ये इस तरह से नेपाल में लगातार दो दिनों की बारिश से जिस तरह से कोसी उफान पे आई है इस साल का अधिकतम जलस्तर को पार किया है तो जिला प्रशासन सहित जल संसाधन के विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
0: प्रशासन की कोशिश है कि पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते अलर्ट किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखना है। कोसी के बाद अब बात गंडक नदी की। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गंडक के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से इस साल अब तक का सबसे ज्यादा पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पानी बढ़ा तो इसका असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा। कहीं घरों तक पानी पहुंच गया तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं। बढ़ते पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, वहीं प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है।
2: बहुत पानी भइल बा डाँड़ भर।
3: आपको घर में पानी गइल बा कि नहीं?
2: डाँड़ भर पानी भइल बा।
3: चार पर पड़े पर परेशानी वरसानी होता ज्यादा?
2: वही ना, मने पानी में दिखते ना बा।
3: दिखते बा कोनो जान माल के अति नहीं के बोल ना?
2: मने लइका फैका लेके पतनी ना भाई पानी
3: कहाँ जाता नहीं। अभी घरे रहे कि एंडे उन्हें स्कूल पर जाए?
2: खाता नहीं जाला इतना तो उन्हें कोई जवा नहीं
3: जाए। कहाँ जा रहे
4: हैं?
3: घर पे क्या हुआ?
4: पानी को चल रहा
3: है। कितना?
0: इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
5: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
7: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
8: कौन भय में जी रहा है?
7: नागरिक जी रहे हैं।
8: हाँ, भारत में
7: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

से जीव को पितृपक्ष में आहार देना जरूरी है? कौन से जीव की सेवा से पितरों को मुक्ति मिलती है? क्या देवताओं की पूजा भी पितृपक्ष के श्राद्ध में की जाती है? कौन से हैं वो पांच जीव जिनकी सेवा से होंगे पितृ प्रसन्न? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। यूएन महासभा में बोले सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा। चेतावनी देते हुए कहा जारी रहेगी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज हुआ। बीजेपी का आरोप संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का पलटवार। मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की सौंपी जिम्मेदारी। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई। कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात। जेपी नड्डा से भी बात। और पहाड़ों से मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज। बिहार यूपी और झारखंड में भारी बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। यूएन महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चलाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि आतंकवाद पर भारत की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वही जारी रहेगी। तो दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है भारत की तरफ से। यूएन महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान से प्रायोजित है। पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चलाया जा रहा है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में एक बार फिर से दोहराया कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति इसी तरह से आतंकवाद पर जारी रहेगी।
1: अ परसिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। दैट दिस कुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड विथ क्रॉस बॉर्डर पर्पस मेक्स इट अ डायरेक्ट अफ्रॉन्ट टू द ग्लोबल ऑर्डर। Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं। अलग अलग हादसों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। 32 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: बिहार में फिर नदियां डराने लगी। बिहार में फिर बाढ़ का खतरा गहराया। नेपाल की बारिश से बिहार में टेंशन। बैराज से भारी पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बढ़ी चिंता। कोसी गंडक उफान पर। मौसम की मार ने बिहार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी। सुपौल की तस्वीरें देखिए, जहां कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के 40 गेट खोले गए हैं। ऐसे में कोसी नदी के जलस्तर पर सबकी नजर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी पर भी दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से पानी आने और बैराज से डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुपौल में प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
1: इस वक्त हम नेपाल के कोसी बैराज में हैं और कोसी बैराज में अब तक का इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और नेपाल प्रभाग में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश से ये जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही सुपौल जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग और नेपाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और कोसी बैराज पे लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। वहीं सुपौल जिला अधिकारी सावन कुमार ने बताया कि इस साल का अधिकतम जलस्तर 2,54,000 क्यूसेक पार किया है और देर रात तक ये 3,50,000 क्यूसेक तक जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन और जल संसाधन की विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। उसी बराबर से फिलहाल 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो बढ़ते क्रम में है और कोसी बैराज का 56 में से 35 गेट को खोल दिया गया है और ये जो पानी उफलती धारा है ये बिहार के सुपौल सहरसा मधेपुरा होते हुए ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मिलेगी। तो ये इस तरह से नेपाल में लगातार दो दिनों की बारिश से जिस तरह से कोसी उफान पे आई है, इस साल का अधिकतम जलस्तर को पार किया है, तो जिला प्रशासन सहित जल संसाधन के विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
0: प्रशासन की कोशिश है कि पानी बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते अलर्ट किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखना है। कोसी के बाद अब बात गंडक नदी की। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गंडक के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से इस साल अब तक का सबसे ज्यादा पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है। पानी बढ़ा तो इसका असर निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा। कहीं घरों तक पानी पहुंच गया तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गईं। बढ़ते पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, वहीं प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है।
2: बहुत पानी भइल बा डाँड भर।
3: आपको घर में पानी गइल बा कि नहीं?
2: हां डाँड भर पानी भइल बा।
3: डाँड पर पानी पर परेशानी वरसानी होता ज्यादा?
2: होई ना, माने पानी में दिखते न बा।
3: दिखते बा कोनो जान माल के अति नहीं के बोल ना?
2: माने लइका फैका लेके परेशानी भइल पानी।
3: कहाँ जा तनी? अभी घरे रहे कि एने उने स्कूल पे जाए?
2: देखा तनी जाला इतन के ओने पहिले वानी जाए।
4: कहाँ जा रहे?
5: घर पर।
4: घर पे क्या हुआ?
5: पानी फुसल गया।
4: कितना?
0: इसका असर बिहार तक भी दिख रहा है। ये बिहार के बगहा की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिखाई दे रहा है। लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनने लगी है। कई जगहों पर सड़कें कीचड़ और पानी से भर गई हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और जलजमाव वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है।
6: और अब बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के बारे में। देश के कई राज्यों में इस बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं कई जगह। जी हां, आमतौर पर ऐसा होता है कि सितंबर खत्म होते होते बारिश पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर एकदम अलग नजर आ रही है। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है।
0: ये अर्नब चक्रवात से असर की तस्वीरें। बेमौसम बारिश ने शहरों का नक्शा ही बदल दिया है। लगातार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। नदियां उफान पर हैं, और आसमान से आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अर्नब चक्रवात से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी इसका सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बस्तर की हैं, जहां बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। बस्तर में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी प्रभावित हुई है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखा रही है। पुराने पुल के पास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। लालबाग, डोंगा घाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग बच्चों बुजुर्गों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। रायपुर से आई ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक आपको पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राजधानी रायपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। महादेव घाट पर खारून नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुल के आसपास पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं हालात देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई है। गरियाबंद में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की 3 प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं छोटे नदी नाले उफान पर है। भगवान श्री कुलेश्वरनाथ जी का मंदिर तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
7: यहाँ से देख लो, घर पूरा तहस नहस हो गए, मान के चल 2-3 घर तो फूट ही गए। अब पानी फूल पर्याप्त भरे एकदम
8: लबालब।
7: रात में यहीं कहीं पड़ोसी घर में और कहीं स्कूल में, कोनो कोनो स्कूल में रही से।
8: तो कोई प्रशासन के आदमी मनाए रही से? अभी
7: प्रशासन मात्र पुलिस वाला बस आ रही से।
9: घर से आस पास अब बड़ परेशानी है हमारा। ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
8: रात में काई स्थिति रही से?
9: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
10: दूसरा घर पड़ोसी घर आग सूते रहे हवन, खाना पीना सब हराम हो गई हमारे।
8: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
10: में पानी भर गया ना सब।
8: कितना नुकसान हो गया?
10: सब संभालदार सब भीज गए, घर कुरिया सब ओदरा धस कर दिया।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी

0: हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
1: यहाँ तीन जगह पर एनएचटीस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नाला भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। सुकमा में रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है। कुछ गांवों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी बस्तर के लिए खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ लगातार बारिश, दूसरी तरफ बढ़ता नदी नालों का जल स्तर और तीसरी तरफ डूबती सड़कें और टूटता संपर्क। बस्तर से सुकमा तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग की यात्री सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खराब मौसम के कारण जगदलपुर हैदराबाद हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बस्तर संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुकमा, आज तक।
2: भले ही ये तूफान धीमा पड़ गया हो, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कई कई घंटों से बारिश लगातार जारी है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। देखिए कुछ और राज्यों के हालात।

0: बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात भले ही अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। यहां तक कि इस चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से फसलें भी खराब हो गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में अभी और बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा ओडिशा प्रभावित है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ के हालात हैं। ये ओडिशा के जाजपुर की तस्वीरें हैं, जहां तारपाड़ा में बैतरणी नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ के हालात हैं।
1: अभी तो इमीडिएट आज जो है दो पंचायत अभी अफेक्टेड हुआ है, तरपदा और कस्बा। उसके बाद जैसे जैसे पानी दूसरे पंचायत और विलेज में जाएंगे तो अफेक्टेड पंचायत और विलेज बढ़ने के चांसेस हैं। अभी के लिए हम ड्राई फूड और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा फ्री किचन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है पानी और बारिश भी बहुत काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक पानी रिसीव करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिख रहा है। ये दुर्गापुर है, जहाँ कई दिनों से बारिश जारी है। दुर्गापुर शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। शहर में पुलों के नीचे पानी भर गया है। कई जगह इतना पानी है कि सड़क कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। इधर दार्जिलिंग का क्या हाल, ये देख लीजिए। यहाँ दूधिया ब्रिज का एक हिस्सा ही बह गया। नॉर्थ बंगाल में मौसम बहुत खराब है। दार्जिलिंग में बालासन नदी में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पुल ही बह गया। सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा लिंक खत्म हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे दबाव का असर झारखंड तक दिख रहा है। जमशेदपुर में शुक्रवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया है। जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है

0: ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं।
1: तारिका, पानी जो ऊपर तक आ गया है, ये पानी तो कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता पानी को। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, कुछ बचा के रखा, कुछ बचा के नहीं रखा, लेकिन ये तो है। हम लोग जो प्रोविजन किया था इसमें, उसमें नहीं हो रहा। हम लोग बार बार पंप लगाया था, नहीं कर पाया।
2: सर नहीं देखे थे ऐसा, लेकिन आज पहली बार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एजेंसी है हमारा, तो हमारा गार्ड पूरा 7 फेस में फंसा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेस प्रॉब्लम में है।
3: खाना पानी कुछ नहीं,
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
3: वह रोड पर नहीं रहता, उसके कारण बहुत सारा नालियों में जाम हो चुका है।
4: ऐसा अगर पानी चालू रहेगा तो काफी परेशानी बढ़ेगी।
3: बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लोग का आवागमन बंद हो चुका है, और पूरी तरह कार वार भी डूब चुका है पानी में, काफी परेशानी हो रही है लोगों को।
0: इधर रांची में भारी बारिश की वजह से 40 बच्चों से भरी एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर गया है। रांची समेत आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को यहां एक बड़ा हादसा टल गया। सेंट जेवियर स्कूल की चलती बस पर अचानक एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे के वक्त बस में करीब 40 स्कूली बच्चे सवार थे। पेड़ गिरते ही बस के अंदर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात रही कि हादसे में किसी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां चुनाव से पहले रणनीति और मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज है।
0: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही, तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
6: गंगा में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
0: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
7: पाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता हैं हमारे लिए, तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
0: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
8: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
0: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
9: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
10: क्या नहीं बोलना है,
9: क्या बोलना है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
0: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे बिहार की, जहां महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किशनगंज से अब एक बेटी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसने एक बार फिर से बिहार में घमासान मचा दिया है।

मूसलाधार बारिश से शहर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के बेसमेंट में खड़ी कारें पानी में डूब गई।

0: बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता किशनगंज से आया ये नया वायरल वीडियो है, जहां कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो लगभग 5 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। सवाल बिहार में महिला सुरक्षा का है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर हालात बदलते नहीं दिख रहे। जमुई, समस्तीपुर, बांका और अब किशनगंज की ये तस्वीरें बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर जमुई की पीड़िता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करने के मामले में CM सम्राट चौधरी घिरे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए मीसा भारती पटना के सचिवालय थाने पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR तो लिख ली, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि CM ऑफिस के कर्मचारी पर।
1: जिस तरह से जमुई में 250 से 300 लोगों के ऊपर इस एक्ट में FIR किया गया है, उसी तरह से जिस ये कल देर रात जो हैंडल से ये फोटो तस्वीरें वायरल हुई, 10 से 15 मिनट में डिलीट किया गया, उसी तरह से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। नहीं, हमने 3 मांगे और रखी। अगर आप FIR नहीं लेते हैं तो जितने 250 से 300 हैं सब पे से FIR हटाया जाए।
0: विपक्ष इस बात से और चिढ़ गया कि जिस हैंडल से तस्वीरें पोस्ट की गई, FIR उस पर होनी चाहिए। मीसा भारती का दावा है कि जमुई का वीडियो शेयर करने वाले करीब 200 ट्विटर हैंडल पर FIR हुई है, तो फिर मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो CM पर FIR करें या फिर जितने लोगों पर मुकदमा हुआ उसे वापस लिया जाए। मांग ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की नारी शक्ति से माफी मांगे।
2: मेरा यही है कि इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, बस मुख्यमंत्री बना दिया गया है, नाम के मुख्यमंत्री है, काम के मुख्यमंत्री नहीं है।
3: जंगल राज का भय दिखाकर जिन लोगों ने वोट लेकर सत्ता हासिल की है, उनका राज कहीं ना कहीं जंगल राज से भी ज्यादा भयावह होता दिख रहा है।
0: उधर जमुई पीड़िता का परिवार प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट नजर आ रहा है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ऐसा लगा नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री एक गार्जियन के जैसा हम लोग से मिले हैं, और मेरी बेटी को बोले कि तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, और बेटी को आश्वासन दिए बेटा जब भी तुमको कुछ जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आना।
0: बहरहाल महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है और सम्राट चौधरी लगातार हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष के निशाने पर है। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कौन से जीव को पितृपक्ष में आहार देना जरूरी है? कौन से जीव की सेवा से पितरों को मुक्ति मिलती है? क्या देवताओं की पूजा भी पितृपक्ष के श्राद्ध में की जाती है? कौन से हैं वो पांच जीव जिनकी सेवा से होंगे पितृ प्रसन्न? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
2: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
3: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
4: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
1: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
5: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
6: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर
1: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। यूएन महासभा में जयशंकर बोले, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, आतंक के खिलाफ जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों आयुक्तों की बैठक, आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एफआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर घमासान तेज, राहुल गांधी बोले, मोदी और शाह ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी, बीजेपी का पलटवार, संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की लंबी मुलाकात, जेपी नड्डा से भी बात। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम का बिगड़ा मिजाज, बिहार यूपी और झारखंड में भारी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और पितृपक्ष में पांच जीवों की विशेष भूमिका मानी जाती है। वो पांच जीव कौन से हैं और उनका पितरों से क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं उन पशु पक्षियों के बारे में, उन जीवों के बारे में जिनकी सेवा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी जरा जरा सा भोजन का अंश अलग से निकाला जाता है, तभी श्राद्ध का काम पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को जो भोजन आप अर्पित करते हैं, भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं।

देवताओं के लिए। ये जो पांच अंश भोजन का निकाल करके इनको अर्पित किया जाता है, इसको श्राद्ध में पंचबलि कहा जाता है। पंचबलि का मतलब किसी पशु पक्षी को मारना नहीं है, अलग अलग पशु पक्षी की सेवा सहायता करनी है और उसके अलावा देवताओं के लिए भी भोजन का अंश निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर पांच जगह पर भोजन का जरा जरा सा अंश निकालेंगे। इसी प्रक्रिया को श्राद्ध में पंचबलि देना कहा जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किन राशियों के लिए बहुत शुभ होगा और किन राशि के लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम में विलंब होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो श्राद्ध में पितृपक्ष में पंचबलि क्या होती है ये तो आपने जान लिया। किस प्रकार से पंचबलि दी जाती है, देखिए, सबसे पहले कंडा या उपला जला करके भोजन की तीन आहुति अग्नि में दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन खिलाने के पहले या भोजन करने के पहले पांच जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकालते हैं और कौवे के लिए जमीन पर जरा सा भोजन का अंश रखा जाता है। इसके बाद प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हों, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद परिवार के ऊपर
बना रहे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनामिका ने हमें लिखा है और अनामिका हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1984, जन्म का समय दोपहर में 1:12, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ अपने पति को, 2 साल से मैं अलग रह रही हूँ, तो कब डिवोर्स देना ठीक होगा और क्या मुझे डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ये शादी वैसे भी चलने वाली नहीं है और आप अभी कोशिश कर लीजिए, अभी आपके लिए बेहतर समय है। आपसी सुलह समझौते से बड़ी आसानी से आप इस समय डिवोर्स पा जाएंगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। लेकिन आगे दूसरा विवाह होना मुश्किल है, इसलिए मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, लेकिन डिवोर्स आप ले लें आपके लिए वही बेहतर है। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, इनका ही चुनाव क्यों किया गया, भैंस क्यों नहीं, शेर क्यों नहीं, कोई और पक्षी क्यों नहीं। देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। कुत्ता जब आहार ग्रहण करता है तो जल तत्व में आहार का अंश जाता है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है,
चींटी जब अन्न लेती है तो अग्नि तत्व में जाता है, कौआ वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। यानी जो पांच तत्व आपके शरीर को बनाते हैं, ये पांच जीव उन्हीं पांच तत्वों से संबंधित हैं। तो जब आप इन पांच जीवों को आहार देते हैं तो पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, पंच तत्वों की कृपा स्वीकार करते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है कि दुनिया के तमाम पशु पक्षियों में केवल गाय में ही एक साथ पांच तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक साथ गाय के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा सबसे ज्यादा फलदायी होती है, अपने को भी लाभ होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। केवल गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। पितृपक्ष में अगर आप नियमित रूप से गौशाला जाएं, गाय की सेवा करें या गाय के लिए चारे की व्यवस्था करें, ऐसा करना महादान है, सारे दान से ऊपर दान है। और इसको करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। तो आपको बताया कि पंच जीवों की सेवा करके
आप स्वयं भी आशीर्वाद पा सकते हैं और पितरों की आत्मा को शांति भी पहुंचा सकते हैं। गाय की कैसे सेवा करें पितृ पक्ष में कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और पितरों का आशीर्वाद मिले। पितृ पक्ष में अगर आप गाय की सेवा करें, गाय की देखभाल करें, प्रार्थना करें तो पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं पितृपक्ष में तो वो किसी ब्राह्मण को भोजन करने के बराबर फल देता है। यानी अगर आप भोज नहीं करा पाते, निर्धन को या ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप गाय को हरा चारा खिलाइएगा, लाभ होगा। पितृपक्ष में अगर पंच गव्य का प्रयोग किया जाए, गाय से मिलने वाली पांच चीजें दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोमय, इसका प्रयोग किया जाए। अगर कुंडली में राहु की स्थिति निगेटिव है, पितृ दोष जैसा है, तो उससे मुक्ति मिलती है। हालांकि पितृ दोष अलग से कुछ नहीं होता, राहु की निगेटिव स्थिति ही होती है। तो अगर ऐसा है, गाय की सेवा करने से और गाय से मिलने वाली चीजों का प्रयोग करने से राहु के इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप पितृ पक्ष में गाय का दान करते हैं, वास्तव में दान करते हैं या संकल्प लेकर दान करते हैं तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्ज से, कर्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। जो लोग गाय पालते हैं उन्हें तो कुछ अलग से कहना नहीं है, वो तो गाय की सेवा करते ही होंगे। लेकिन जो लोग गाय नहीं पालते, सोसाइटी में फ्लैट वगैरह में रहते हैं, गाय पालना संभव नहीं है, ऐसे लोग पितृपक्ष में जितने दिन मौका मिले आसपास की गौशाला में जा करके गाय को चारा खिलाएं और गाय के पीठ पर हाथ फेरें और प्रार्थना करें कि मेरा कल्याण भी हो और मेरे पितरों की आत्मा को शांति भी मिले। देखिए, जब भी आप श्राद्ध करते हैं, जिस दिन आपके किसी पूर्वज का देहांत हुआ है उस दिन आप दान करते हैं या उस दिन निर्धनों को भोजन कराते हैं, तो बाकी कुछ करें या ना करें उस दिन गाय को चारा जरूर खिलाइएगा या गाय की सेवा सहायता के लिए दान करिएगा। पूर्वज के श्राद्ध वाले दिन वास्तव में या संकल्प लेकर अगर आप गोदान करते हैं या संकल्प लेकर दान करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, तो इससे वास्तविक श्राद्ध होगा और इससे आपके पितरों की आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस की समस्या दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

काफी दौड़ भाग रहेगी, हालांकि करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदने नहीं चाहिए और नए कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं या जिन विवाहिता महिलाओं के सास ससुर नहीं हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू होंगे और ऐसे लोगों को नया कपड़ा खरीदने से, पहनने से, नई चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन जिस पुरुष के माता पिता जीवित हैं या जिस विवाहिता महिला के सास ससुर जीवित हैं, वो नया वस्त्र खरीद भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, शिक्षा में सुधार होगा। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, मानसिक तनाव कम होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वर्षा ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं। वर्षा की जन्म तारीख है 3 जून 1989, रात में 9:05, ठाणे, महाराष्ट्र। वर्षा कह रही है कि मेरी नौकरी छूट गई है, 6 महीने हो गए हैं, क्या मुझे आगे व्यापार करना चाहिए या नौकरी में जाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के लिए प्रयास करिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो समय है, इस समय में आपको बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता आपकी कुंडली में नहीं है। इतना जरूर हो सकता है कि जब आप नौकरी पाएं तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन आपको करना पड़े। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें।
शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वालों के लिए चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, रविवार की प्रतिपदा ज्यादा अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें जलंधर से, जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्र के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बलात्कार खुदकुशी की कोशिश की अफवाह के बाद छात्रों का गुस्सा ऐसा भड़का कि हंगामा और तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि हंगामे की शुरुआत हुई थी एक वायरल मैसेज के बाद। करीब 2000 छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए जुट गए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और खिड़कियों के शीशे तोड़ने, ईंट पत्थरों और गमले फेंकने के भी कुछ आरोप लगे। कुछ हिस्सों में आग लगने की भी घटनाएं सामने आई हैं। छात्रों ने जलंधर फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी घेर लिया था। पुलिस ने वायरल मैसेज को अफवाह बताया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अभी तक की जो जानकारी है, अफवाह फैलने के बाद इस तरह से हंगामा छात्रों की तरफ से किया गया है। अलग अलग जगहों पर जानकारी ये है कि कई जगहों पर आग लगा दी गई थी, शीशे तोड़ दिए गए थे। जबरदस्त हंगामा छात्रों ने इकट्ठे होकर किया है। कहा यह जा रहा है कि बलात्कार और खुदकुशी की कोशिश के बाद एक वायरल मैसेज छात्रों तक पहुंचा और उसके बाद ये नाराजगी देखने को मिली है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा इन छात्रों की तरफ से किया गया। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एकजुट हो गए थे और अफवाह भरे मैसेज के बाद ये तोड़फोड़, ये आगजनी देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे और यहां पहुंचकर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो ये खबर है, अफवाह जो फैलाई गई है, बदसलूकी, बलात्कार और खुदकुशी वाली, ये कोरी अफवाह है। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे अब नॉनस्टॉप 100।

हिमाचल के किन्नौर में सीमांत इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई, चारों ही तरफ गिर गई बर्फ की सफेद चादर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड, बर्फ गिरने से पहाड़ों तक का नजारा खूबसूरत नजर आया। चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, भारत चीन सीमा पर 1 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ। चमोली में मौसम का कहर, बर्फ से चमक उठती है बद्रीनाथ की चोटियां, तो ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भारी बारिश के बाद अलर्ट और चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित की गई, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है, संवेदनशील इलाकों में प्रशासन मुस्तैद। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा आज तक के लिए रोकी गई, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया। टिहरी गढ़वाल में भी बदला मौसम का मिजाज, लगातार जोरदार बारिश जारी। पिथौरागढ़ में 24 घंटे से बारिश का कहर लगातार जारी है, बारिश के चलते मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंस गए हैं सैकड़ों यात्री। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। श्रावस्ती में बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है, राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर, संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, सड़कों पर भर गया है 3 फीट तक पानी, यूनिपोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई, बाल बाल बचे सवार। गोरखपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर, गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर है। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश कई इलाकों में भर गया है पानी। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज और रुक रुक कर बारिश से बदला है मौसम का मिजाज, बारिश के साथ तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ओडिशा के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, ग्रामीण इलाकों में घुस गया पानी, 850 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में लगातार 5 दिनों तक तेज बारिश के बाद इंद्रावती नदी सहित उसकी सहायक नदियों में उफान है, पूरा बस्तर जिला हो गया है पानी पानी। एमपी में पन्ना में 4 दिन तक बारिश का कहर, केन मिडासन समेत नदी नाले उफान पर है, उड़द तिल मूंग और धान की फसलों को भारी नुकसान। मंडला में लगातार भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बहा पानी, सभी घाट डूबे, रपटा पुल 5 फीट ऊपर से बह रहा है पानी, पुलिस अलर्ट पर। नेपाल में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, बारिश से हालात बिगड़ गए, नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर, बिहार पर बाढ़ का खतरा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक को संबोधित किया, वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर। यूएनजीए में जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, आतंकवाद पर हमला, जीरो टॉलरेंस वाली नीति हमारी जारी रहेगी, मुंहतोड़ जवाब देंगे। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए चुनौती बताया, पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, सीमा पर कोई सरकार इसमें शामिल तो उसे जिम्मेदार ठहराना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, संघर्ष और टकराव हमारी सबसे बड़ी चिंता है, समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया जाना स्वीकार नहीं। संबोधन में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन को भारत की मानवीय मदद का किया है जिक्र कहा, शांति सिर्फ जंग होने से नहीं होती, स्थिरता सुरक्षा भरोसा भी जरूरी है। सीसी ज्ञानेश कुमार और दोनों ही चुनाव आयुक्तों में असहमति की खबरों के बीच दिल्ली में एक खास बैठक, चुनाव आयोग को देकर सफाई दी गई। ज्ञानेश कुमार ने कहा, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं है, एसआईआर पर सर्वसम्मति से सारे फैसले लिए गए। चुनाव आयोग पर आयुक्त पर सियासी घमासान तेज हो चुका है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर आरोप, कहा संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी बेनकाब हो चुके, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा ईसी के रिकॉर्ड से नैरेटिव पर उठे हैं सवाल, संस्थाओं को कमजोर करना बंद करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का एसआईआर को लेकर ईसी के फैसले का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर पर ईसी के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी। समित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए का दावा किया, बोले राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग पर हमला कांग्रेस कर रही है। चिराग पासवान ने एसआईआर पर ईसी के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, बोले चुनाव आयोग की स्पष्टता से लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीईसी ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन, उदय भानु चिब ने लगाए थे गंभीर आरोप।
भारतीय युवा कांग्रेस नेता उदय भानु ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा वोट डकैती का हिसाब होना जरूरी है और ऐसे ही विरोध हमारा जारी रहेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बयान का पलटवार करते हुए पोस्ट में लिखा मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जीवी थॉमसन का हवाला देते हुए दावा किया बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया और बीजेपी थॉमसन को 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने और मंत्री पद का ऑफर दे चुकी थी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का चुनाव आयोग पर हमला एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर उठाए गए सवाल बिहार बंगाल में मताधिकार प्रभावित होने के आरोप लगाए। पवन खेड़ा का दावा एनडीए के भीतर से उठने लगी असहमति की आवाजें बोले आने वाले दिनों में बीजेपी में भी उठेंगी आवाजें। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ ममता का मोर्चा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। चुनाव आयोग के मुद्दे पर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन में बड़ी बैठक है ज्ञानेश कुमार को हटाने पर विपक्ष का जोर। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की करेंगे समीक्षा। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल समाजवादी पार्टी में मतीन सिद्दीकी को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए सोनम बगवाड़ी और आभा बुढ़ियाल को प्रभारी बनाया गया। यूपी चुनाव 2027 को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी राज्यसभा और एमएलसी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले एसपी कांग्रेस में फिर से तकरार नजर आई शिवपाल यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार इमरान मसूद बोले पूरी दुनिया जानती है उनकी अपनी पार्टी में कितनी पकड़ है। असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा निमिषा ठाकुरिया की होम स्टे में मौत हुई शुक्रवार रात प्रेमी आसिफ अली के साथ रुकी थी छात्रा। निमिषा मौत के मामले में युवक आसिफ अली पुलिस हिरासत में प्रेमी ने छात्रा की मौत को खुदकुशी बताया वहीं बीएचपी

0: 26 की लिज में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में होंगे बीजेपी के सांसद रवि किशन। इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभग्रहण की भूमिका में बिंदु तारा सिंह आएंगे नजर। अवतार में गिल मेघनाथ और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का माह को मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां अंबा के दर्शन। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पाया। गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। शॉर्ट सर्किट के कारण जताई जा रही आग लगने की आशंका। आनंद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, पूरा गोदाम और लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ग्रेटर नोएडा में खड़ी बस में अचानक से आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने काबू पाया, पूरी तरह जलकर खाक हुई बस। पटना में कर्ज को पैसों को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ, एक ने 2 लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, बुरी तरह से झुलस गई। गंगा एक्सप्रेस वे पर फॉर्च्यूनर का फट गया था टायर, स्किड करते हुए डिवाइडर से टकराई गाड़ी। बुलंदशहर के बीजेपी के विधायक समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के यवतमाल में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में धमाका हुआ, विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। छतरपुर में ट्रक बुलेरो के आमने सामने से भिड़ंत हुई, श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। सहारनपुर में भूसे से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रिस में भारी पड़ गया, अनियंत्रित खाई में पलट गई थी दोनों ही, 2 की मौत, 4 घायल। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की टक्कर हुई, 2 मेडिकल छात्रों की मौत, 2 घायल। सूरत में ट्रैफिक के बीच साइड देने वाले को लेकर खूनी विवाद, पाइप डंडों से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के महाराजगंज में पति ने पत्नी को कोर्ट परिसर में पटक डाला, बाल पकड़कर पीटा भी और बचाने आए शख्स को भी जोरदार थप्पड़ मारा। रांची में शराब की दुकान में घुस गई थी बंदरिया, बोतल से शराब पीकर वहीं पेटियों के ऊपर सो गई, घटना का वीडियो वायरल। सूरत में बच्चों को पैरासिटामोल की जगह डायबिटीज की दवा दी गई, 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य विभाग ने महिला वर्कर को निलंबित किया। जामनगर में सोडा की सीलबंद बॉटल से कीड़ा निकलने का मामला सामने आया, युवक ने खाद्य विभाग से शिकायत की। सूरत में सालों पुराना विशाल पेड़ अचानक से धराशायी हुआ, पेड़ गिरते ही लोगों में अफरा तफरी, 3 दबे, बाइक दबी, सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। बरेली में तेज हवा बारिश का कार पर भरभराकर गिर गया था विशाल पेड़, बाल बाल बची लोगों की जान। बांदा में भारी बारिश के बीच सीएनजी सिलेंडर पर लदे हुए ट्रक पर गिरा विशाल पेड़, टल गया बड़ा हादसा, लंबा जाम लगा। बांदा में बारिश बन गया काल, कच्चे मकान के गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई, सर्पदंश से 2 की जान गई, 32 से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त। यूपी के बलरामपुर में आंधी बारिश के कहर से पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत, 2 घायल हुए, 11 मकान क्षतिग्रस्त। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी रच दिया इतिहास, ईरान को हराकर जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता है, अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया नया रिकॉर्ड, 10वीं बार एशियाड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में रहा शानदार प्रदर्शन, भारत ने अब तक 4 गोल्ड 12 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता है गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हराकर अपने नाम किया मुकाबला। भारतीय एथलीट प्राची चौधरी ने एशियाई गेम्स की महिला 400 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्राची ने 53.21 सेकंड का समय निकालकर मेडल जीता। मिक्स्ड डबल स्क्वैश में भी देश को मिला है मेडल, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता। स्क्वैश में अनाज सिंह ने पक्का किया सिल्वर, विमेन सिंगल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हराया। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में भारत के तजिंदर पाल सिंह ने जीता है सिल्वर, एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: चाची है वायरल है।
3: थैंक यू।
5: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: उनादान परिंदे, बैठ
6: बैठ बैठ।
5: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: die Wahl. Ich bin sorry. Fuck!
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
3: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स. बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स.
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स.
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है.
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायफ्री जूस.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
8: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
9: कौन भय में जी रहा है?
8: नागरिक जी रहे हैं।
9: हाँ, भारत में
8: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: क्या चीज है वायरल है?
2: थैंक यू।
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
5: बैठ जा, बैठ जा।
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: I like this only. तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों आयुक्तों की बैठक, चुनाव आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। चुनाव आयोग की सफाई के बाद ज्ञानेश कुमार पर घमासान तेज हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर संस्थाओं को बदनाम करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी बोले, अंपायर बनकर चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी। गोरखपुर में जलभराव पर बीजेपी सांसद रवि किशन और पार्षद में फोन पर तकरार का वीडियो वायरल हुआ। रवि किशन बोले, का हो सपा ज्वाइन कई लेवा, पार्षद का पलटवार, आप बसपा में चले गए हो क्या। और पंजाब के जलंधर में रेप सुसाइड के वायरल मैसेज के बाद एलपीयू में छात्रों का देर रात बवाल, आगजनी तोड़फोड़, 2000 छात्र सड़कों पर उतर आए। आगजनी के बीच जलंधर फगवाड़ा हाईवे जाम, पुलिस बोली शिकायत नहीं मिली, वायरल मैसेज अफवाह।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 8 बजे की 8 बड़ी और अहम खबरों के साथ। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी ने नजारा बदल दिया है। तो यूपी में बारिश और तूफान का कहर लगातार जारी है, मुश्किलों को बढ़ा चुका है लोगों की। बारिश के बीच सड़क पर हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज पूरी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से एक एक्सीडेंट कैद हुआ है। वहीं विदेश नीति के मोर्चे पर एस जयशंकर की दो टूक भी दिखाएंगे, किस मुद्दे पर दिया है कड़ा संदेश आगे आपको बताएंगे। उधर चुनाव आयोग के फैसले पर सियासत गर्म हो चुकी है, फैसले को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच लगातार घमासान बढ़ा हुआ है। हुतियों ने फिर से कहां बरसाए हैं बॉम्ब, इस खबर को भी हम जानेंगे। वहीं आज एशियन गेम्स में पीवी सिंधु का मुकाबला है किसके साथ, ये मैच भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी इसकी देंगे। गुवाहाटी में युवती की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा है, मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और पुलिस का एक्शन भी इसी बीच जारी है, ये खबर भी होगी। तो बड़ी और अहम खबर है जलंधर से, जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बदसलूकी और बलात्कार, खुदकुशी का मामला सामने आया, अफवाह फैली, उसके बाद छात्रों का गुस्सा ऐसा भड़का कि हंगामा और जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। हंगामा शुरू हुआ था वायरल मैसेज के बाद। करीब 2000 छात्र सड़कों पर उतर आए थे, प्रदर्शन में जुट गए थे। और आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़, खिड़कियों के शीशे तोड़ने, ईंट पत्थर फेंकने, गमले फेंकने, कुछ हिस्सों में आग लगाने के भी आरोप हैं। छात्रों ने जलंधर फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी घेर लिया था। पुलिस ने वायरल मैसेज को अफवाह बताया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा छात्रों की तरफ से किया गया है। और उसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि कोई भी कंप्लेन, कोई भी शिकायत इस तरह की नहीं मिली है, ये अफवाह है। और आपको बता दें कि बलात्कार और खुदकुशी की अफवाह के बाद यह हंगामा शुरू हुआ था। 2000 से ज्यादा छात्र सड़कों पर उतर आए थे, कई जगहों पर आग भी लगा दी गई थी। और देखिए किस तरीके से खिड़कियों को तोड़ा गया है, नाराजगी और आक्रोश जाहिर किया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे को भी जाम कर दिया गया था और किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर इस पूरे के पूरे मामले को शांत कराया है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि इस मामले में, यानी बलात्कार की और खुदकुशी की जो खबर फैली थी, अफवाह जो लगातार, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़का है, उस खबर के बारे में कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं आई है, वो कोरी अफवाह बताई गई है।
1: बिल्कुल ऐसे ना र्यूमर्स हमें आके यहाँ के ही पता चला कि यहाँ र्यूमर्स चल रहे थे, तो वो र्यूमर्स के फैलने ही से ही काफी जो स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस को कभी भी इस तरह की कोई भी इतला नहीं मिली थी, तो इसलिए हमें भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो स्टूडेंट बॉडी से हमारी बात हो गई है, जो भी मसला है उसकी बिल्कुल हम गहराई तक जाएंगे।
2: तो एक्चुअल में है क्या था फिर, पूरा मामला क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या स्टूडेंट का कहना था?
1: स्टूडेंट का यही कहना है कि हम जब कंप्लेन करते हैं तो हमारी बात को प्रॉपरली रिट्रेस नहीं किया जा रहा, इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, विल इंश्योर कि उसको हम ठीक करें।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कमल जी जुड़ गई। कमल जी, फिलहाल जानकारी क्या है और जिस तरह से अफवाह की बात कही जा रही है, इसके बारे में क्या जानकारी है? इस तरह की अफवाह कि इतने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ जाए और यहां तक आगजनी हो जाए और कोई घटना घटी ना हो, किसकी शरारत फिर?
3: देखिए, जलंधर फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक पुरानी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कई हजारों की तादाद में छात्र हैं, लेकिन जब ये अफवाह फैली जहां पे छात्र हैं वो उसे सच मान रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद स्टूडेंट्स इकट्ठा होने शुरू हुए, उसके बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी को नुकसान भी पहुंचा है, जिसके बाद फोर्स है चाहे वो प्राइवेट हो, उसके बाद ही पुलिस आई। आपको बता दें कि जलंधर फगवाड़ा हाईवे उसको जाम कर दिया छात्रों ने देर रात को और सुबह फिर एक बार फिर इकट्ठा होने लगे। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच पंजाब पुलिस कर रही है, लेकिन जहां तक बात आती है एसएसपी फगवाड़ा की, उन्होंने कहा है कि यह पूरा अफवाह का मामला लग रहा है क्योंकि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं आई है। मामला ये था कि स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया या उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है, रेप हो सकता है, इस तरह की कई बातें हैं और सोशल मीडिया में इसको काफी तूल दिया गया और काफी देर रात तक ये पूरा मामला जो है वो गरमाता नजर आया, जिसके बाद हजारों की तादाद में ये छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में उतर पड़े, उन्होंने तोड़फोड़ की, चाहे हम अंदर की मॉल की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की बात करें, और उसके बाद ये छात्र हैं वो नेशनल हाईवे पे आ गए कंट्रोल में लाने की कोशिश। और जैसे SSP कह रहे हैं कि उन्होंने स्टूडेंट बॉडीज को अप्रोच किया है, उसी बीच लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हमने उनका वर्जन मांगा है कि मामला आखिरकार क्या है, उनका रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कमलजीत, आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम रुक करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से अफवाह फैलने के बाद भारी मात्रा में छात्र यहां इकट्ठा हुए हैं, नाराजगी जाहिर की गई है, तोड़फोड़ कर डाली है, कई जगहों पर आग लगा दी है, और आपको ये भी बता दें कि हाईवे को भी जाम कर दिया गया था इन छात्रों की तरफ से। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि रेप और सुसाइड की जो बात कही जा रही है, जिसके बाद ये हंगामा देखने को मिला है, उसके बारे में उनके पास कोई शिकायत नहीं है, ये कोरी अफवाह है जिसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे और ये बात गुवाहाटी में 22 साल की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत के बाद हंगामे की है। निमिषा की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 को जाम कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार आसिफ अली ने दावा यह किया कि निमिषा ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस ने उसके दावों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया। हर एंगल से जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आपको ये भी बता दें कि जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी स्टूडेंट की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है और कथित बॉयफ्रेंड के साथ ये स्टूडेंट रुकी हुई थी। बॉयफ्रेंड का कहना यह है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।
4: गुवाहाटी में 22 साल की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत के बाद तनाव बढ़ गया। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया। निमिषा को शनिवार सुबह अझारा इलाके के एक होमस्टे में बेहोशी की हालत में पाया गया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामले में हिरासत में लिए गए आसिफ अली ने दावा किया है कि निमिषा ने फांसी लगाकर जान दी, लेकिन पुलिस उसके इस दावे को फिलहाल सच मानकर नहीं चल रही। हर पहलू की जांच की जा रही है और केस में लव जिहाद वाले एंगल की जांच की जा रही है। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। होमस्टे से जुड़े दूसरे लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। उधर निमिषा की मौत के बाद धारापुर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग NH-17 पर जुटे और सड़क जाम कर निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और साफ होगी। निमिषा समाजशास्त्र की छात्रा थी और धारापुर की रहने वाली थी। फिलहाल उनकी मौत की वजह और घटनाक्रम को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पूर्ण विकास बोरा, गुवाहाटी, आज तक ब्यूरो।
0: और यह खबर है गोरखपुर से, जहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जबरदस्त जलभराव देखा गया। बीजेपी सांसद रवि किशन घिर गए हैं उस पर। गोरखपुर को स्पेन बनाने का दावा करने वाले रवि किशन से लोग सोशल मीडिया पर अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही है स्पेन। इसी बीच गोरखपुर से बीजेपी के पार्षद ने भी अपने सांसद से पूछा तो नोकझोंक हो गई। फोन पर बातचीत के दौरान रवि किशन ने अपनी ही पार्टी के पार्षद को सपाई कह डाला। उनसे पूछ लिया कि आप सपा ज्वाइन कर लिए हैं। इस पर पार्षद ने भी पलटवार करके सवाल पूछ लिया। उन्होंने रामगढ़ ताल की स्थिति का वीडियो भी दिखाया। हालांकि रवि किशन नगर आयुक्त और मेयर के साथ शहर में जलभराव का जायजा लेते नजर आए।
5: आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
6: हेलो, चालू सब सामने खड़े हमारे।
5: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम होना चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है। आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी रखने के लिए नहीं बना है सांसद जी?
6: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
5: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? अगर रेगुलेटर सही टाइम पे ऑपरेट नहीं होगा तो पानी भर भर करेगा?
6: सब चालू है, सब केकरा के सुनावा ताड़ा हो।
5: सांसद जी, सांसद जी आपको सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आपको
6: पूरा चालू बा।
5: हेलो
6: ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता।
5: अरे सांसद जी, यहाँ ब्राह्मण उसकी बात नहीं है महाराज, पूरा शहर डूब रहा है, आपको ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता दिख रहा है।
6: सपा ज्वाइन कर लिया? सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
5: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
6: हेलो पार्षद जी,
5: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? आपको सपा ज्वाइन कर लिए हैं?
6: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
5: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
6: सब चालू है, दरगुलानी चालू बा।
0: तो सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए हैं। वैसे रवि किशन खुद ग्राउंड पर हैं, प्रभावित इलाकों में भी वो गए हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
7: तैयारी तो अब तो पानी उतर रहा है, जैसे बरसात एक दो घंटा तीन घंटा नहीं रहेगी तो पहले जो पानी था वो डेफिनेटली सारे वे आउट है, सारे नाले बने हुए वो चले जाएंगे अपनी जगह पे। उसकी बरसात की जो फोर्स था वो 15 से 19 साल में कभी किसी ने ऐसी बरसात ऐसी बारिश नहीं देखी। बादल फटा, क्या हुआ कुछ नहीं, और पूरे शहर में काफी पानी भर गया। अब पानी काफी जगह से उतर रहा है, अब दो तीन घंटे में नहीं होगा तो और पानी नीचे उतर आएगा। तैयारी प्रशासन की हमेशा रहती है, महाराज जी ने दो दिन पहले भी नगर आयुक्त जी को, मेयर साहब को बताया था कि उनको भी सूचना थी 25-26 को बरसात होगी, उन्होंने बताया भी था और उसकी पूरी तैयारी। ऐसा नहीं प्रशासन ने हर जगह पे अपनी उसको पुल आउट मशीन हर जगह पे लगी हुई थी और तैयारी हम इतने बड़े जिले में सीएम सिटी में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता।
0: तो भारी बारिश की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे का उन्नाव एग्जिट डूब चुका है, एग्जिट पॉइंट पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेसवे पानी से भरा हुआ हो। उन्नाव में इसी पॉइंट पर कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बारिश के पानी से लबालब नजर आ रहा है ये एक्सप्रेसवे, गंगा यमुना या किसी नदी की तरह पूरी तरह से उफान पर नजर आ रहा है।
8: मौसम विभाग के अलर्ट के चलते दो दिन से लगातार हो रही छुटपुट बारिश के बाद एक बार फिर से गंगा एक्सप्रेसवे की पोल खोल के रख दी है। आपको बता दें मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। हालांकि आगे जाएंगे तो 5 फीट तक का पानी है और साइड सर्विस रोड पर देखेंगे तो एक ट्रक है जो ट्राला है वो खराब हो गया है पानी की वजह से, क्योंकि वहां पर गड्ढा था या किसी वजह से इंजन इसका बंद हो गया जो कि वहां पर खराब होकर के खड़ा हो गया है। जो चालक है वो उतर करके चले गए और पीछे देखिए जो कार्यदायी संस्था है गंगा एक्सप्रेसवे की वो कहीं ना कहीं पानी निकालने की एक बार फिर से जद्दोजहद पर लगी हुई है। ये जो सर्विस रोड है और गंगा एक्सप्रेसवे की रोड है दोनों समतल बराबर है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए इधर, आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है। हालांकि यहाँ पर टोल पर अभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। टोल केबिन के अंदर देखेंगे, कैमरा मैन से कहेंगे कि जूम करके आपको दिखाएं कि टोल केबिन के अंदर तक पानी भर चुका है। लेकिन दो दिन से लगातार हो रही छुटपुट बारिश ने एक बार फिर से 594 किलोमीटर का बना गंगा एक्सप्रेसवे की पोल खोल के रख दी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये सोनिक कानपुर लखनऊ स्थित सोनिक क्षेत्र में जो ये एग्जिट पोल है जो मेरठ से उन्नाव की ओर उतरता है उस एग्जिट पोल पर टोल प्लाजा पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश और तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, तो कहीं तेज हवाओं और पेड़ों के गिरने से रास्ते और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कई जिलों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की है। घंटों की बारिश ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, जहां करीब 36 घंटे की लगातार बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए। पानी और कीचड़ के बीच एक ट्रक ट्रेलर भी फंसा नजर आया। प्रयागराज में लगातार 3 दिनों की बारिश का असर संगम पर भी साफ दिखाई दिया। संगम में उठती तेज लहरें और चारों तरफ फैला पानी मानो यहां गंगा का रूप समुद्र जैसा हो गया हो। श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। पेड़ गिरने से कच्चे मकान धराशायी हुए और खेतों में खड़ी फसलें बारिश की मार से बर्बाद होती नजर आईं। गोरखपुर की सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। इसी बीच सांसद रवि किशन ने भी जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बरेली में बारिश और तेज हवाओं के बीच एक पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बलरामपुर में तूफान और बारिश के बीच पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मौसम का ये कहर सिर्फ जलभराव और फसलों के नुकसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जान माल पर भी भारी पड़ा है। उधर पीलीभीत में बारिश और बाढ़ को लेकर पुलिस ने अलर्ट अभियान चलाया है। लोगों से सावधानी बरतने और जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो उत्तर प्रदेश में बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे की ही हम बात कर लें तो बारिश से जुड़े हादसों में 10 लोगों की जान जा चुकी है। 17 लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं। राज्य के 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। तेज बारिश और हवाओं की वजह से 117 मकानों और खड़ी फसलों को नुकसान की खबर है। गोरखपुर में पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लखनऊ में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में कई हिस्सों में पानी से भारी नुकसान का अलर्ट भी जारी कर दिया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते सीमावर्ती जिलों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को राहत बचाव के लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो बारिश और तेज हवाओं ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बांदा में मौसम की मार के बीच एक विशाल पेड़ अचानक से भरभरा कर गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। बरेली में भी पेड़ गिरने की घटना से सनसनी फैल गई। कैमरे में लाइव पेड़ गिरने की घटना कैद हो गई। वहीं सूरत में भी सालों पुराना एक विशाल पेड़ धराशायी हुआ है। पेड़ गिरने की ये भी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गनीमत ये रही है कि दोनों ही जगहों पर बड़े हादसे की स्थिति टल गई, लेकिन तेज हवाओं और बारिश के बीच पेड़ों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। डर का माहौल है। नंदा और सूरत से आई इन घटनाओं की तस्वीरें भी आप देखिए। अब सवाल यह है कि इस महीने में ज्यादातर बारिश जा चुकी होती है। लगातार इतनी तेज बारिश और इतनी मूसलाधार बारिश हो क्यों रही है ये हम आपको बता दें। अचानक इतनी बारिश क्यों हुई है, बंगाल की खाड़ी के पास निम्न दाब क्षेत्र बना और ये दबाव ओडिशा छत्तीसगढ़ के ऊपर था, जिसके बाद कई अलग अलग जगहों पर राज्यों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। मजबूत होकर ये डिप्रेशन में गया, समुद्र से ये सिस्टम बहुत ज्यादा नमी लेकर आया था और ओडिशा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बारिश शुरू हुई थी तेज हवाओं के साथ और उसके बाद बिहार, झारखंड और यूपी की ओर यह बढ़ा। और आपको बता दें कि डिप्रेशन जिधर से गुजरा वहां वहां जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है और यह मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है तेज बारिश की वजह यह रही है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
5: असली शहद, असली स्वाद।
7: आगे आगे, करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
10: आप पे वो TMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। TMT बार से जो बना है,
12: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत TMT से बना है।
10: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
14: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
15: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
10: आई लाइक दिस ओनली।
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
8: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
11: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
12: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
13: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
14: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
15: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूरत है
10: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर।
16: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
17: कौन भय में जी रहा है?
16: नागरिक जी रहे हैं।
17: हाँ भारत में
16: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
18: I assure my Kashmiri brothers and sisters with fullest authority at my command that we shall continue to extend our full diplomatic, political and moral support to them till they are granted their inalienable right to self-determination. Kashmir has and always will be Pakistan's jugular vein.
19: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill. We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का जबरदस्त हंगामा, एक छात्र से यौन उत्पीड़न के अफवाह के बाद हंगामा मचा। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुटे और मामले में कार्रवाई की मांग की गई, हालांकि अभी तक पुलिस या यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, प्रदर्शन में करीब 2000 से ज्यादा छात्र शामिल थे, हाईवे को भी जाम किया गया। गोरखपुर में जलभराव को लेकर सांसद रवि किशन और पार्षद आमने सामने, पार्षद ने शहर की बदहाली बताई तो रवि किशन ने पूछा सपा ज्वाइन कर लिए हो क्या। गोरखपुर में भारी बारिश के बाद जलभराव का जायजा लेने सड़कों पर उतर आए थे सांसद रवि किशन, मेयर और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। हिमाचल के किन्नौर में सीमांत इलाकों में ताजा बर्फबारी फिर से शुरू, चारों ही तरफ बर्फ की सफेद चादर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ढक गया है सब कुछ, पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत। चमोली में लगातार भारी बर्फबारी का दौर जारी है, भारत चीन सीमा पर 1 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ बिछी। चमोली में मौसम का कहर, बर्फ से चमक उठी है बद्रीनाथ की चोटियां, ठंड के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन मुस्तैद है। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा आज तक के लिए रोकी गई, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है फैसला। टिहरी गढ़वाल में भी बदला मौसम का मिजाज, लगातार जोरदार बारिश जारी। पिथौरागढ़ में 24 घंटे से बारिश का कहर जारी, लगातार बारिश के चलते मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंस गए सैकड़ों यात्री। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। श्रावस्ती में मौसम और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है, राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर, संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, सड़कों पर भर गया 3 फीट पानी, यूनिपोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई, बाल बाल बचे सवार। गोरखपुर में लगातार बारिश से तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी ही पानी, आवाजाही प्रभावित। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर, गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश और रुक रुक कर हो रही बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश के साथ ही कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट। उड़ीसा के गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, ग्रामीण इलाकों में घुसा पानी, 850 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार कई दिनों से तेज बारिश के बाद इंद्रावती नदी और सहायक नदियां उफान पर हैं, पूरा बस्तर जिला हो गया है पानी पानी। एमपी के पन्ना में 4 दिनों से लगातार बारिश का कहर, के निदासन समेत नदी नाले उफान पर हैं, उड़द तिल मूंग और धान की फसल को नुकसान। मंडला में लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बहा पानी, सभी घाट डूबे, सप्ता पुल पर भी 5 फीट ऊपर से बह रहा है पानी, पुलिस अलर्ट पर। नेपाल में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े, नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर, बिहार पर बाढ़ का खतरा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक को संबोधित किया, वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर। वेनेजुएला में जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा आतंकवाद पर हमला जीरो टॉलरेंस नीति, देंगे मुंहतोड़ जवाब। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए चुनौती बताया, पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा सीमा पार कोई सरकार इसमें शामिल तो उसे जिम्मेदार ठहराना होगा। विदेश मंत्री ने कहा संघर्ष और टकराव हमारी सबसे बड़ी चिंता, समुद्र में जहाजों को निशाना बनाना भी स्वीकार्य नहीं। संबोधन में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन को भारत की मानवीय मदद का भी जिक्र किया, कहा शांति सिर्फ जंग खत्म होने से नहीं होती, स्थिरता सुरक्षा और भरोसा भी जरूरी। सीजी ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में सहमति की खबरों के बीच दिल्ली में एक खास बैठक हुई, चुनाव आयोग को लेकर सफाई दी गई। ज्ञानेश कुमार ने कहा कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी नीतिगत फैसलों के हिस्सा नहीं है, एसआईएफ पर सर्वसम्मति से फैसले लिए गए। चुनाव आयोग पर सियासी घमासान तेज हुआ, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर आरोप, कहा संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल बेनकाब हो चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ईसी के रिकॉर्ड से नैरेटिव पर उठे सवाल, संस्थाओं को कमजोर करना बंद करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का एसआईआर को लेकर ईसी के फैसले का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर साधा गया निशाना, कहा राहुल गांधी लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर पर ईसी के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी। समित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, बोले राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग पर हमला कांग्रेस कर रही है। चिराग पासवान ने एसआईआर पर ईसी के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, बोले चुनाव आयोग की स्पष्टता से लोकतंत्र में जनता का भरोसा मजबूत हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन, उदय भानु चिब ने लगाए गंभीर आरोप। भारतीय युवा कांग्रेस नेता उदय भानु ने चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वोट डकैती का हिसाब जब तक नहीं हो जाता विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के बयान का पलटवार करते हुए पोस्ट में लिखा, मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी। राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन का हवाला देते हुए दावा किया, बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया, जीजी थॉमसन को 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने और मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का चुनाव आयोग पर हमला, ऐसा और फॉर्म 6 को लेकर उठाए सवाल, बिहार बंगाल में मताधिकार प्रभावित करने के भी आरोप लगाए। पवन खेड़ा का दावा है, एनडीए के भीतर से उठने लगी असहमति की आवाजें, बोले आने वाले दिनों में बीजेपी से भी उठेंगी आवाजें। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ ममता का मोर्चा, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। चुनाव आयोग के मुद्दे पर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन में बड़ी बैठक, ज्ञानेश कुमार को हटाने पर विपक्ष का जोर। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन की समीक्षा बैठक होगी। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल, समाजवादी पार्टी ने मतीन सिद्दीकी को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए सोनम बगवाड़ी और आभा बटवाल को बनाया गया प्रभारी। यूपी चुनाव से पहले एसपी और कांग्रेस में फिर से तकरार नजर आई, शिवपाल यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान मसूद बोले पूरी दुनिया जानती है उनकी अपनी पार्टी में कितनी पकड़ है। असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में 22 वर्षीय छात्रा निमिषा ठाकुरिया की होमस्टे में मौत हुई, शुक्रवार रात प्रेमी आसिफ अली के साथ रुकी थी। निमिषा की मौत के मामले में युवक आसिफ अली पुलिस हिरासत में, प्रेमी ने छात्रा की मौत को खुदकुशी बताया, वहीं बीएचपी ने मामले में लव जिहाद को एंगल बताया। निमिषा की मौत के बाद इलाके में तनाव, जांच और इंसाफ की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को जाम किया गया। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के जिया लिज मैजो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में होंगे बीजेपी के सांसद रवि किशन, इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य होगा अयोध्या की रामलीला का आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु तारा सिंह नजर आएंगे अवतार सिंह, अवतार गिल, मेघनाथ और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका में होंगे। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूर्ण महा मेले में आस्था का महाकुंभ, मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूर्ण महा मेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राजस्थान के भिवाड़ी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में भयंकर आग, दूर दूर तक धुएं का काला गुबार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आनंद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, पूरा गोदाम जलकर खाक हुआ, हादसे में कोई जनहानि नहीं। ग्रेटर नोएडा में खड़ी हुई बस में अचानक से आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आधे घंटे में काबू पाया, जल गई थी पूरी बस। पटना में कर्ज के पैसों को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ, एक ने लोगों पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाने की कोशिश की, बुरी तरह से 2 लोग झुलस गए। गंगा एक्सप्रेस वे पर फॉर्च्यूनर का फटाटा, स्किड करते हुए डिवाइडर से टकरा गई गाड़ी, बुलंदशहर के बीजेपी के विधायक समेत 2 के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के यवतमाल में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में बड़ा ब्लास्ट हुआ, 4 की मौत, 3 घायल। छतरपुर में ट्रक बोलेरो को आमने सामने से भिड़ंत हुई, श्राद्ध कार्यक्रम से जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सहारनपुर में भूसे से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रेस करना भारी पड़ गया, अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, 2 की मौत, 4 घायल। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, 2 मेडिकल छात्रों की मौत, 2 घायल। सूरत में ट्रैफिक के बीच साइड देने को लेकर खूनी विवाद हुआ, पाइप डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। महाराजगंज में पति ने पत्नी को कोर्ट में ही पीट डाला, बाल पकड़कर घसीटा भी, बचाने आए शख्स को भी जोरदार थप्पड़ मारा। रांची में शराब की दुकान में घुस गई थी बंदरिया, बॉटल से शराब पीकर वहीं सो गई, घटना का वीडियो वायरल। सूरत में बच्चों को पैरासिटामोल की जगह डायबिटीज की दवा दे दी गई, 5 बच्चों की तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य विभाग ने महिला वर्कर को निलंबित किया। जामनगर में सोडा में सीलबंद बॉटल में कीड़ा निकलने के बाद युवक ने खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। सूरत में सालों पुराना विशाल पेड़ अचानक से धराशायी हुआ, पेड़ गिरते ही लोगों में अफरा तफरी, 3 बाइक समेत कई और सामान दबे, खौफनाक मंजर नजर आया। बरेली में तेज हवाएं और बारिश का कहर, कार पर भरभराकर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बची लोगों की जान, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा। बांदा में भारी बारिश के बीच सीएनजी सिलेंडर से लदे हुए ट्रक पर गिरा था विशाल पेड़, टला बड़ा हादसा, हाईवे पर लंबा जाम। बांदा में बारिश बन गई थी काल, कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई, सर्पदंश से 2 की जान गई, 32 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। यूपी के बलरामपुर में आंधी और बारिश का कहर, पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए, 11 मकान क्षतिग्रस्त हुए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी इतिहास रच दिया है, ईरान को हराकर जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता है, अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया एक और रिकॉर्ड, 10वीं बार एशियाड मेडल अपने नाम किया है। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन, भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता था गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हराया और मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय एथलीट प्राची चौधरी ने एशियाई गेम्स की महिला 400 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्राची ने 53.21 सेकेंड का समय निकाला और मेडल जीता। मिक्स डबल स्क्वैश में देश को मिला है मेडल, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता। स्क्वैश में अनाहत सिंह ने पक्का किया सिल्वर, वुमेन सिंगल्स सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हराया, फाइनल में जगह बनाई। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है सिल्वर, एशियन गेम्स में 2 बार जीत चुके हैं गोल्ड। रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण हमला, राजधानी कीव और ज़ापोरोज़िया में बरसाए गए बम, दो ही हमलों में 2 महिलाओं की मौत, 6 घायल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य प्रमुखों की रियाद में अहम बैठक हुई।

यमन में सऊदी अरब का फिर से हवाई हमला, अल दलील जगह पूरी तरह से तबाह हुई। हूती हमले के बाद सऊदी अरब हूतियों के ठिकाने पर लगातार कर रहे हैं कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 7 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव दिया। हॉर्मुज खोलने और परमाणु वार्ता के बदले नाकेबंदी हटाने की भी मांग रखी गई। थाईलैंड में भीषण बाढ़ से तबाही, राजधानी बैंकॉक में बारिश से 50 जिले डूबे हैं, सड़कें समंदर बनी, घरों में घुस गया पानी, बैंकॉक को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया। बांग्लादेश में खसरे से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, 34 लाख बच्चों को लगाए जाएंगे टीके, अक्टूबर के अंत तक चलेगा अभियान। टिकटॉक ने अमेरिका के अलबामा राज्य के साथ किया समझौता, समझौते के तहत टिकटॉक को चुकाने होंगे कम से कम $10 करोड़। कर्मचारी की मौत के बाद बंद रोम का ऐतिहासिक कोलोसियम पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया, नाइट शिफ्ट के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई थी। अमेरिका ने ईस्ट कोस्ट पर नॉर्थ ईस्ट तूफान का कहर, 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और पितृपक्ष में पांच जीवों की विशेष भूमिका मानी जाती है। वो पांच जीव कौन से हैं और उनका पितरों से क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं उन पशु पक्षियों के बारे में, उन जीवों के बारे में जिनकी सेवा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके

सा भोजन का अंश अलग से निकाला जाता है तभी श्राद्ध का काम पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को जो भोजन आप अर्पित करते हैं भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं।

देवताओं के लिए। ये जो पांच अंश भोजन का निकाल करके इनको अर्पित किया जाता है, इसको श्राद्ध में पंचबलि कहा जाता है। पंचबलि का मतलब किसी पशु पक्षी को मारना नहीं है, अलग अलग पशु पक्षी की सेवा सहायता करनी है और उसके अलावा देवताओं के लिए भी भोजन का अंश निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर पांच जगह पर भोजन का जरा जरा सा अंश निकालेंगे। इसी प्रक्रिया को श्राद्ध में पंचबलि देना कहा जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किन राशियों के लिए बहुत शुभ होगा और किन राशि के लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम में विलंब होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो श्राद्ध में पितृपक्ष में पंचबलि क्या होती है ये तो आपने जान लिया। किस प्रकार से पंचबलि दी जाती है, देखिए, सबसे पहले कंडा या उपला जला करके भोजन की तीन आहुति अग्नि में दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन खिलाने के पहले या भोजन करने के पहले पांच जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकालते हैं और कौवे के लिए जमीन पर जरा सा भोजन का अंश रखा जाता है। इसके बाद प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हों, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद परिवार के ऊपर
बना रहे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनामिका ने हमें लिखा है और अनामिका हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1984, जन्म का समय दोपहर में 1:12, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ अपने पति को, 2 साल से मैं अलग रह रही हूँ, तो कब डिवोर्स देना ठीक होगा और क्या मुझे डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ये शादी वैसे भी चलने वाली नहीं है और आप अभी कोशिश कर लीजिए, अभी आपके लिए बेहतर समय है। आपसी सुलह समझौते से बड़ी आसानी से आप इस समय डिवोर्स पा जाएंगी, ये संभावना कुंडली में बन रही है। लेकिन आगे दूसरा विवाह होना मुश्किल है, इसलिए मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, लेकिन डिवोर्स आप ले लें आपके लिए वही बेहतर है। सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, इनका ही चुनाव क्यों किया गया, भैंस क्यों नहीं, शेर क्यों नहीं, कोई और पक्षी क्यों नहीं। देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। कुत्ता जब आहार ग्रहण करता है तो जल तत्व में आहार का अंश जाता है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है,
चींटी जब अन्न लेती है तो अग्नि तत्व में जाता है, कौआ वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। यानी जो पांच तत्व आपके शरीर को बनाते हैं, ये पांच जीव उन्हीं पांच तत्वों से संबंधित हैं। तो जब आप इन पांच जीवों को आहार देते हैं तो पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, पंच तत्वों की कृपा स्वीकार करते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात है कि दुनिया के तमाम पशु पक्षियों में केवल गाय में ही एक साथ पांच तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक साथ गाय के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष में गाय की सेवा सबसे ज्यादा फलदायी होती है, अपने को भी लाभ होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। केवल गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। पितृ पक्ष में अगर आप नियमित रूप से गौशाला जाएं, गाय की सेवा करें या गाय के लिए चारे की व्यवस्था करें, ऐसा करना महादान है, सारे दान से ऊपर दान है और इसको करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। तो आपको बताया कि पंच जीवों की सेवा करके
आप स्वयं भी आशीर्वाद पा सकते हैं और पितरों की आत्मा को शांति भी पहुंचा सकते हैं। गाय की कैसे सेवा करें पितृपक्ष में कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और पितरों का आशीर्वाद मिले। पितृपक्ष में अगर आप गाय की सेवा करें, गाय की देखभाल करें, प्रार्थना करें तो पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं पितृपक्ष में तो वो किसी ब्राह्मण को भोजन करने के बराबर फल देता है। यानी अगर आप भोज नहीं करा पाते, निर्धन को या ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गाय को हरा चारा खिलाइएगा, लाभ होगा। पितृपक्ष में अगर पंच गव्य का प्रयोग किया जाए, गाय से मिलने वाली पांच चीजें दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोमय, इसका प्रयोग किया जाए। अगर कुंडली में राहु की स्थिति निगेटिव है, पितृ दोष जैसा है, तो उससे मुक्ति मिलती है। हालांकि पितृ दोष अलग से कुछ नहीं होता, राहु की निगेटिव स्थिति ही होती है। तो अगर ऐसा है, गाय की सेवा करने से और गाय से मिलने वाली चीजों का प्रयोग करने से राहु के इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप पितृपक्ष में गाय का दान करते हैं, वास्तव में दान करते हैं या संकल्प लेकर दान करते हैं, तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्ज से, कर्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। जो लोग गाय पालते हैं उन्हें तो कुछ अलग से कहना नहीं है, वो तो गाय की सेवा करते ही होंगे। लेकिन जो लोग गाय नहीं पालते, सोसाइटी में फ्लैट वगैरह में रहते हैं, गाय पालना संभव नहीं है, ऐसे लोग पितृपक्ष में जितने दिन मौका मिले आसपास की गौशाला में जा करके गाय को चारा खिलाएं और गाय के पीठ पर हाथ फेरें और प्रार्थना करें कि मेरा कल्याण भी हो और मेरे पितरों की आत्मा को शांति भी मिले। देखिए, जब भी आप श्राद्ध करते हैं, जिस दिन आपके किसी पूर्वज का देहांत हुआ है उस दिन आप दान करते हैं या उस दिन निर्धनों को भोजन कराते हैं, तो बाकी कुछ करें या ना करें, उस दिन गाय को चारा जरूर खिलाइएगा या गाय की सेवा सहायता के लिए दान करिएगा। पूर्वज के श्राद्ध वाले दिन वास्तव में या संकल्प लेकर अगर आप गोदान करते हैं या संकल्प लेकर दान करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, तो इससे वास्तविक श्राद्ध होगा और इससे आपके पितरों की आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस की समस्या दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

काफी दौड़ भाग रहेगी, हालांकि करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदने नहीं चाहिए और नए कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं या जिन विवाहिता महिलाओं के सास ससुर नहीं हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू होंगे और ऐसे लोगों को नया कपड़ा खरीदने से, पहनने से, नई चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन जिस पुरुष के माता पिता जीवित हैं या जिस विवाहिता महिला के सास ससुर जीवित हैं, वो नया वस्त्र खरीद भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, शिक्षा में सुधार होगा। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, मानसिक तनाव कम होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वर्षा ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं। वर्षा की जन्म तारीख है 3 जून 1989, रात में 9:05, ठाणे, महाराष्ट्र। वर्षा कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, 6 महीने हो गए हैं, क्या मुझे आगे व्यापार करना चाहिए या नौकरी में जाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के लिए प्रयास करिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो समय है, इस समय में आपको बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता आपकी कुंडली में नहीं है। इतना जरूर हो सकता है कि जब आप नौकरी पाएं तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन आपको करना पड़े। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें।
शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि

राशि वालों के लिए चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि वालों को चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, रविवार की प्रतिपदा ज्यादा अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पंजाब के जलंधर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बदसलूकी के बाद बलात्कार और खुदकुशी की खबर सामने आई और इस अफवाह के बाद जबरदस्त तरीके का हंगामा देखने को मिला है। तोड़फोड़ और आगजनी छात्रों की तरफ से की गई थी यूनिवर्सिटी के भीतर। हंगामे की शुरुआत हुई थी एक वायरल मैसेज के साथ, क्योंकि करीब 2000 छात्र इस वायरल मैसेज के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए जुट आए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, ईंट पत्थर बरसाए गए, गमले फेंकने और कुछ हिस्सों में आग लगाने की भी खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई। छात्रों ने जलंधर फगवाड़ा नेशनल हाईवे को भी घेर लिया था। पुलिस ने वायरल मैसेज को अफवाह बताया है, क्योंकि लिखित में किसी भी तरह की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन या पुलिस को नहीं दी गई है। लेकिन तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस अफवाह वाले मैसेज के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। तो छात्रा के साथ बदसलूकी, यौन शोषण और खुदकुशी जैसा एक वायरल मैसेज इन छात्रों तक पहुंचा और उसके बाद छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बड़ी संख्या में छात्र यहां इकट्ठा हुए, जबरदस्त हंगामा किया गया, आगजनी की गई, हालांकि हालात अभी काबू में हैं। ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कमल जी संधू जुड़ गई। कमल जी, क्या साफ हो पाया है अभी तक कि आखिर ये मैसेज कहां से आया था, किस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही थी और किसने इसे वायरल किया, अगर ये पूरी तरह से कथित अफवाह है तो?
4: देखिए, 40,000 स्टूडेंट तकरीबन पढ़ते हैं एलपीयू में, जहां पे ये घटना घटी है। और आपको बताते हैं, अनवेरिफाइड मैसेज है ऐसा मानना है पुलिस और एलपीयू का, कि फेक रूमर उनको स्प्रेड की गई, जिसके बाद ये आगजनी और आर्सन और राइटिंग की गई। और तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आप विजुअल देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आक्रोश है जो शुरू हुआ एलपीयू हॉस्टल से, और उनका कहना था कि घटना घटी है जहाँ पे एक महिला स्टूडेंट है उसके साथ रेप हुआ है और कथित तौर पे रेप हुआ है। और उसके बाद जो गुस्साए स्टूडेंट है उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया और वहीं से वायलेंस हुआ। लेकिन यहाँ तक पुलिस का कहना है, उनका कहना है एक पुराना मामला है 4-5 दिन का, जहाँ पे एक महिला स्टूडेंट ने सुसाइड जरूर किया था, लेकिन उस पर पूछताछ चल रही है और पोस्टमार्टम की डिटेल्स अवेटेड है। एलपीयू का कहना है कि ये दोनों मामले जुड़े हुए नहीं है और ये पूरा मामला ही फेक है। तो यहाँ पे क्लेम और काउंटर क्लेम है, लेकिन गुस्साए स्टूडेंट सुन नहीं रहे थे और उसी वजह से वो आगजनी भी हुई है। और उसके बाद उन्होंने जो फगवाड़ा नेशनल हाईवे है उसे ही रोक दिया। और अभी भी कह रहे हैं कि तकरीबन ज्यादा स्टूडेंट्स अंदर जा चुके हैं, लेकिन 150 से 200 स्टूडेंट्स हैं जो प्रशासन के साथ लगातार बातचीत में है। उनका मानना है कि आप एफआईआर तो कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी चुनौती मिली है और इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उनका है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को नेम ना किया जाए फिलहाल।
3: कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल स्थिति काबू में है और इस मैसेज के बारे में पुलिस पता कर रही है कि आखिर किसने इसे वायरल किया था। बड़ी और अहम खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव का घर भी बुलडोजर की जद में आ रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का काम जारी है। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का पैतृक मकान भी इसकी जद में आ गया है। आपको बता दें कि अब्दालपुरा में खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक सड़क चौड़ी होनी है। इसके लिए सीएम के पैतृक मकान का करीब 2.90 मीटर हिस्सा तोड़ा जाएगा। तो कुंभ के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। सबसे जो पहले जरूरी काम है वो है इंफ्रा को मजबूत करना, सड़कों को चौड़ी करने का काम लगातार जारी है। इसी में जानकारी ये है कि जो पैतृक घर है मुख्यमंत्री का वो भी इसकी जद में है।
5: उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए आज अब्दालपुरा इलाके में कई मकानों पे हथौड़ा चलना है और इस बीच में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आने वाली है जो इससे पहले शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिली होगी। दरअसल जिस सड़क का चौड़ीकरण होना है वहां पर मकानों को चिन्हित किया गया है टूटने के लिए, और उनमें से एक मकान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पैतृक मकान भी है जिसपे आज हथौड़ा चलने वाला है। ये वो मकान है जिसपे अगर आप देखें तो ये लाल निशान भी लगा हुआ है सामने 2.90 मीटर का। ये मकान का इतना हिस्सा जो है इस चौड़ीकरण की राह में आ रहा है और इसे आज हथौड़े के जरिए गिराया जाएगा। ये पुराना मकान है, यहीं पे डॉक्टर मोहन यादव जो कि अब मुख्यमंत्री हैं उनका बचपन भी बीता है। बताया जाता है कि करीब साल 1974 में इस मकान को बनाया गया था और मुख्यमंत्री मोहन यादव के जो दादा हैं रामचंद्र यादव, उन्होंने इस मकान को बनवाया था और सभी भाई बहन का बचपन जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके तमाम जो बाकी भाई बहन है उनका बचपन इसी मकान में बीता है। ये जो सामने आप पूरी गली देख रहे हैं, सामने खजूर वाली मस्जिद है, वहां से ये सड़क जो है ये चौड़ी होना शुरू होगी। ये जितने मकान आपको दिख रहे हैं उनका किसी का 4 मीटर, किसी का 3 मीटर, किसी का 2 मीटर, ऐसे तमाम हिस्से जो हैं वो इस चौड़ीकरण की राह में हो उसे टूटे जाएंगे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने मनकानेश्वर महादेव मंदिर, इसका भी कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उस हिस्से को भी यहाँ पे हटाया जाएगा।
3: आज तक से बातचीत में पड़ोसी लक्ष्मी नारायण सोलंकी ने बताया कि मोहन यादव का परिवार बेहद सामान्य परिस्थितियों में यहीं रहा और कॉलेज में पहली बार छात्र संघ चुनाव जीतकर जब मोहन यादव इस मकान में आए थे तब उनका स्वागत भी यही हुआ था।
1: ये यादें क्या है, ये जब पढ़ता था वहाँ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो उस समय इसने पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के जीत के आया तो ढोल से सब लेके आए थे और यहीं बताया था घर पे, इसी घर पे यहीं बताया था, मैं यहीं खड़ा था मेरे सामने, मतलब जो है वो बताया था उसको।
6: अरे बचपन में क्या बहुत शैतानी करते थे, दौड़ा करते या पढ़ाई में ज्यादा रहते थे या बात कम करते थे?
1: अपने हिसाब से जीवन जो चलता था साधारण जीवन चलता है वैसा जीवन चलता था, ऐसा कोई नहीं है उन्होंने ऐसा कोई उल्टा सीधा काम या गलत ऐसा कुछ नहीं किया शुरू से। परिवार में मिल के सबके साथ में अच्छे से रहना।
3: तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको बता दें कि यही वो पैतृक मकान है जिसको सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा जाना है। और आपको ये भी बता दें कि सिंहस्थ कुंभ की तमाम तैयारियां चल रही हैं इंफ्रा के लिए, खासतौर से सड़कों का, सीवरेज का, नालियों का काम लगातार जारी है। जहां जहां रोड्स बहुत ज्यादा नैरो हैं वहां पर चौड़ी करने का काम उन्हें लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर को स्पेन बनाने का दावा आपको याद होगा, रवि किशन ने कई बार दावा किया था, वहीं बीजेपी पार्षद भी अब उनसे सवाल पूछने लगे हैं अपनी ही पार्टी के लोग। फोन पर बातचीत के दौरान रवि किशन ने अपनी ही पार्टी के पार्षद को सपाई कह दिया था, उनसे पूछ लिया क्या आप सपा ज्वाइन कर लिए। इस पर पार्षद ने भी पलटकर सवाल कर दिया, उन्होंने रामगढ़ ताल की स्थिति का भी वीडियो दिखाया। हालांकि रवि किशन नगर आयुक्त और मेयर के साथ साथ शहर में जल भराव का जायजा लेने के लिए निकले थे।
7: आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी रखने के लिए नहीं बना है सांसद जी? अगर रेगुलेटर सही टाइम पे ऑपरेट रही होगा तो पानी भर भर करेगा। सांसद जी आपको सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं आपको
8: पूरा चालू बा।
7: हेलो
8: ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता।
7: अरे सांसद जी यहाँ ब्राह्मण उसकी बात नहीं है महाराज, पूरा शहर डूब रहा है आपको ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता दिख रहा है।
8: सपा ज्वाइन कर लिए क्या? सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
7: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे सपा ज्वाइन के लिए, पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
8: हेलो पार्षद जी,
7: जी आप नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
8: कहा हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
7: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
8: सब चालू है तरकुलानी चालू बा, ज्वाइन कर लिए क्या? सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
7: अरे मतलब आप तो
3: सांसद और पार्षद आपस में भिड़ गए। वैसे रवि किशन खुद ग्राउंड पर हैं, प्रभावित इलाकों में भी वो गए थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
9: तैयारी तो अब तो पानी उतर रहा है, जैसे बरसात एक दो घंटा तीन घंटा नहीं रहेगी तो पहले जो पानी था वो डेफिनेटली सारे वे आउट है, सारे नाले बने हुए वो चले जाएंगे अपनी जगह पे। उसकी बरसात की जो फोर्स था वो 15 से 19 साल में कभी किसी ने ऐसी बरसात ऐसी बारिश नहीं देखी। बादल फटा, क्या हुआ, कुछ नहीं, और पूरा शहर में काफी पानी भर गया। अब पानी काफी जगह से उतर रहा है, अब दो तीन घंटे में नहीं होगा तो और पानी नीचे उतर आएगा। तैयारी प्रशासन की हमेशा रहती है। महाराज जी ने दो दिन पहले भी नगर आयुक्त जी को, मेयर साहब को बताया था कि उनको भी सूचना थी 25-26 को बरसात होगी, उन्होंने बताया भी था और उसकी पूरी तैयारी। ऐसा नहीं प्रशासन ने हर जगह पे अपनी उसको पुल आउट मशीन हर जगह पे लगी हुई थी और तैयारी इतने बड़े जिले में सीएम सिटी में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता।
3: आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
2: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जो आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा की खुदकुशी और वायरल संदेश के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़, जलंधर फगवाड़ा हाईवे जैम। दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। यूएन महासभा में जयशंकर बोले, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति, मिलेगा माकूल जवाब। वादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से किए गए फैसले। चुनाव आयोग की सफाई के बाद ज्ञानेश कुमार पर घमासान तेज हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर संस्थाओं को बदनाम करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी बोले, अंपायर बनाकर चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी। और गोरखपुर में जलभराव पर बीजेपी सांसद रवि किशन और पार्षद में फोन पर तकरार का वीडियो वायरल हुआ। रवि किशन बोले, समाजवादी पार्टी में चले गए थे क्या? पार्षद का पलटवार, आप बीएसपी में चले गए क्या?
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। एक छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोपों के अफवाहों के बाद हंगामा। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुटे और मामले की कार्रवाई की मांग की। हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को यूनिवर्सिटी ने खारिज कर दिया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शन में करीब 2000 से ज्यादा छात्र शामिल थे। हाईवे को भी जैम किया गया। गोरखपुर में जलभराव को लेकर सांसद रवि किशन और पार्षद आमने सामने आए। पार्षद ने शहर की बदहाली बताई तो रवि किशन ने पूछा, सपा ज्वाइन कर लिए हो क्या? गोरखपुर में भारी बारिश और जलभराव से जायजा लेने पहुंचे सड़कों पर रवि किशन। मेयर और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल के किन्नौर में सीमांत इलाकों में ताजा बर्फबारी फिर से शुरू हुई। चारों ही तरफ सफेद चादर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बढ़ गई ठंड। बर्फ गिरने से पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत। चमोली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। भारत चीन सीमा पर 1 फीट से ज्यादा बिछी बर्फ। चमोली के मौसम का कहर, बर्फ से चमक उठी बद्रीनाथ की पहाड़ियां। ठंड के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब। भारी बारिश से अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन मुस्तैद है। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री आज तक के लिए रोकी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है फैसला। टिहरी गढ़वाल में भी बदला है मौसम का मिजाज, लगातार जोरदार भारी बारिश। पिथौरागढ़ में 24 घंटे में बारिश का कहर, लगातार बारिश के चलते मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंसे सैकड़ों यात्री। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। श्रावस्ती में बारिश ने तेज हवाओं के जनजीवन अस्त व्यस्त कर डाला है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर। संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, सड़कों पर भर गया 3 फीट पानी। यूनिपोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त हुई, बाल बाल बचे सवार। गोरखपुर में लगातार बारिश और कई इलाकों में पानी ही पानी, सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी। पीलीभीत में 48 घंटे में बारिश और नदियों में बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए गांव गांव पुलिस ने अलर्ट जारी किया। शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश, कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों तक तेज और रुक रुक कर हो रही है बारिश। बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चल रही है तेज हवाएं। ओडिशा के गांवों में बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण इलाकों में घुस गया पानी। 850 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में लगातार 5 दिनों से हो रही तमाम बारिश के बाद चारों ही तरफ पानी भरा। इंद्रावती नदी सहित उसकी सहायक नदियों में भी बाढ़ के हालात, पूरा बस्तर जिला पानी पानी। एमपी के पन्ना में 4 दिनों से बारिश का कहर जारी है। किन मिरासन समेत नदी नाले उफान पर हैं। उड़द, तिल और मूंग की और धान की फसलों को भारी नुकसान। मंडला में लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सभी घाट डूबे। नेपाल में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, हालात बिगड़े। नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पाया। गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में लगी थी भयंकर आग। दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। शॉर्ट सर्किट के कारण जताई जा रही आग लगने की आशंका। आनंद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, पूरा गोदाम और लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा में खड़ी हुई बस में अचानक से आग लगी थी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आधे घंटे में काबू पाया। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार थार ने ई रिक्शे को टक्कर मारी, चालक की मौत हुई, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गंगा एक्सप्रेस वे पर फॉर्च्यूनर का फटा टायर, स्किड करते हुए डिवाइडर से टकरा गई कार, बुलंदशहर के बीजेपी के विधायक समेत 2 के घायल होने की खबर। महाराष्ट्र के यवतमाल में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ, 4 की मौत हुई, 3 घायल हुए। छतरपुर में ट्रक बोलेरो के आमने सामने से भिड़ंत हुई, श्राद्ध कार्यक्रम में जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 घायल। सहारनपुर में भूसे से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रेस भारी पड़ गई, अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, 2 की मौत, 4 घायल। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की टक्कर में 2 मेडिकल छात्रों की मौत, 2 घायल। सूरत में ट्रैफिक के बीच साइड देने को लेकर खूनी विवाद हुआ, पाइप डंडों से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में पति ने पत्नी को कोर्ट परिसर में पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, बचाने आए शख्स को भी जोरदार थप्पड़ मारा। रांची में शराब की दुकान में घुसी बंदरिया, बॉटल से शराब पीकर वहीं सो गई, घटना का वीडियो वायरल। सूरत में बच्चों को पैरासिटामोल की जगह दे दी गई थी डायबिटीज की दवा, 5 बच्चों की तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य विभाग ने महिला वर्कर को निलंबित किया। जामनगर में सोडा की सीलबंद बॉटल से कीड़ा निकलने के बाद युवक ने खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। सूरत में सालों पुराना विशाल पेड़ अचानक से हुआ धराशायी, पेड़ गिरते ही लोगों में मच गई थी अफरा तफरी, 3 बाइक दबी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मंजर। बरेली में तेज हवाई बारिश का कहर, भर भराकर गिरा विशालकाय पेड़, बाल बाल बची लोगों की जान, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा। बांदा में भारी बारिश के बीच सीएनजी सिलेंडर से लदे हुए ट्रक पर गिरा विशाल पेड़, टला बड़ा हादसा, हाईवे पर लगा लंबा जाम। बांदा में बारिश बनी है काल, कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई, सर्पदंश से 2 की गई जान, 32 से ज्यादा लोग घर क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर की एलआईसी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा, 3 घंटे तक धधकती रही आग। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक को संबोधित किया, वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, आतंकवाद पर हमला जारी, जीरो टॉलरेंस नीति, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए चुनौती बताया, पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, सीमा पार कोई सरकार इसमें शामिल उसे जिम्मेदार ठहराना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, संघर्ष और टकराव हमारी सबसे बड़ी चिंता, समुद्र में जहाजों को निशाना बनाना भी स्वीकार्य नहीं। संबोधन में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन को भारत की मानवीय मदद का भी जिक्र किया, कहा शांति सिर्फ जंग खत्म करने से नहीं होगी, स्थिरता सुरक्षा भरोसा भी जरूरी। डीसी ज्ञानेश कुमार और दोनों ही चुनाव आयुक्त में असहमति की खबरों के बीच दिल्ली में एक खास बैठक हुई, चुनाव आयोग ने सफाई दी। ज्ञानेश कुमार ने कहा, कैबिनेट सचिव को लिखी गई चिट्ठी नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं है, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। मुख्य चुनाव आयुक्त पर सियासी घमासान तेज हुआ, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर आरोप, कहा संस्थाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड सीएम धामी ने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा इसी के रिकॉर्ड से नैरेटिव पर उठे हैं सवाल, संस्थाओं को कमजोर करना बंद करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का एसआईआर को लेकर इसी के फैसले का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर साधा गया निशाना, कहा राहुल गांधी लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर पर इसी की स्पष्टीकरण का किया स्वागत, बोले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी। समित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला बड़ा दावा, बोले राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग पर हमले कर रही है कांग्रेस। चिराग पासवान ने एसआईआर पर ईसी के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, बोले चुनाव आयोग की स्पष्टता से लोकतंत्र में जनता का भरोसा बढ़ा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन, उदय भानु चिब ने लगाए गंभीर आरोप। भारतीय युवा कांग्रेस नेता उदय भानु ने चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा वोट डकैती के हिसाब से जब तक इस पर काम नहीं होता विरोध हमारा जारी रहेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के बयान का पलटवार करते हुए पोस्ट में लिखा मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी। राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन का हवाला देते हुए कहा उन्हें बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया और जीजी थॉमसन को 2019 में लोकसभा चुनाव और मंत्री पद का ऑफर दिया था। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का चुनाव आयोग पर हमला, एसआईआर और फॉर्म 6 को लेकर उठाए सवाल, बिहार बंगाल में मताधिकार प्रभावित होने के आरोप लगाए। पवन खेड़ा का दावा एनडीए के भीतर उठने लगी असहमति की आवाजें, आने वाले दिनों में बीजेपी में भी आवाजें उठेंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ ममता का मोर्चा, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। चुनाव आयोग के मुद्दे पर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन में बड़ी बैठक है, ज्ञानेश कुमार को हटाने पर विपक्ष का जोर। आज से दो दिवसीय बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन की समीक्षा की जाएगी। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल, समाजवादी पार्टी ने मतीन सिद्दीकी को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए सोनम बगवाड़ी और आभा बटथ्वाल को प्रभारी बनाया गया। सिंहस 2028 को लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है, सीएम मोहन यादव का पैतृक मकान भी आया, घर का कुछ हिस्सा टूटेगा। चुनाव आयोग से पहले एसपी कांग्रेस में फिर से दिखी है तकरार, शिवपाल यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान मसूद बोले पूरी दुनिया जानती है उनकी अपनी पार्टी में कितनी पकड़ है। असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में 22 वर्षीय छात्रा निमिषा ठाकुरिया की होमस्टे में हुई मौत के बाद शुक्रवार रात प्रेमी आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया। निमिषा मौत के मामले में आसिफ अली पुलिस हिरासत में है, प्रेमी ने छात्रा की मौत को खुदकुशी बताया था, वहीं बीएचपी ने मामले में लव जिहाद जोड़ा। निमिषा की मौत के बाद इलाके में तनाव, जांच और इंसाफ की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को जाम किया गया। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने घर से पकड़ा, किन आरोपों में हुई गिरफ्तारी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जमीनी क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प, सल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग का कॉन्क्लेव, चेतन शर्मा शामिल। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु तारा सिंह नजर आएंगे, अवतार गिल बनेंगे मेघनाथ और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका में। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का महाकुंभ, मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सबकी नजरें। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष कबड्डी टीम भी रच रही है इतिहास, ईरान को हराकर जीता गोल्ड। भारत ने मुकाबला 40-34 के अंतर से जीता, अंतिम समय तक चला कड़ा संघर्ष। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जीत के साथ बनाया एक और नया रिकॉर्ड, 10वीं बार एशियाड मेडल्स अपने नाम किया है। भारतीय टीम का एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन, भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी जीता था गोल्ड मेडल, भारत की बेटियों ने ईरान को 37-34 से हराकर अपने नाम किया था मुकाबला। भारतीय एथलीट प्राची चौधरी ने एशियाई गेम्स की महिला 400 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, प्राची ने 53.21 सेकंड का समय निकालकर इस मेडल को जीता। मिक्स डबल स्क्वैश में भी देश को मिला है खिताब, चिनप्पा सेंथिल की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता। स्क्वैश में अनार सिंह का सिल्वर मेडल पक्का, विमेन सिंगल्स सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी को 3-2 से हराया, फाइनल में जगह बनाई। पुरुष शॉटपुट फाइनल मैच में भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है सिल्वर, एशियन गेम्स में 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं। रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण हमला, राजधानी कीव और ज़ापोरोजिया में बरसाए गए बम, 2 महिलाओं की मौत, 6 घायल हुए। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य प्रमुखों की रियाद में अहम बैठक हुई, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति। अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील के बाद परमाणु बम बना सकता है सऊदी अरब, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। यमन में सऊदी अरब को फिर से हवाई हमला, विप्रांत में अल दलील पुल बुरी तरह से तबाह हुआ है, हूती हमले के बाद सऊदी अरब हूती के ठिकाने पर लगातार कर रहा है हवाई हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का 7 दिन का युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया, हॉर्मुज खोलने और परमाणु वार्ता के बदले नाकेबंदी हटाने की मांग रखी गई थी। थाईलैंड में भीषण बाढ़ से तबाही हुई राजधानी बैंकॉक में 50 से ज्यादा जिले डूबे, सड़कें बन गई समंदर, घरों में घुस गया बाढ़ का पानी, बैंकॉक को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया। बांग्लादेश के खसरे से निपटने के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू, 34 लाख बच्चों को लगाए जाएंगे टीके, अक्टूबर के अंत तक चलेगा अभियान। टिकटॉक ने अमेरिका के अलबामा राज्य के साथ किया समझौता।

0: कर्मचारी की मौत के बाद बंद रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है। नाइट शिफ्ट के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई थी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर नॉर्थ ईस्टर तूफान का कहर देखा गया। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अंधेरे में डूबे कई शहर न्यूयॉर्क जर्सी न्यू जर्सी में इमरजेंसी सेवाएं घोषित। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बारिश से जुड़े हादसों में 10 लोगों की जान जा चुकी है, 17 लोग घायल हो गए। राज्य के 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां फ्लैश फ्लड का खतरा अभी भी बना हुआ है। तेज बारिश और हवाओं से 117 मकानों और खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। गोरखपुर में पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, 14 अन्य घायल हो गए। लखनऊ में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों के घायल होने की खबर आई। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते सीमावर्ती जिलों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को राहत बचाव के लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो मैदानी इलाकों की हालत आपने देखी, अब पहाड़ों पर भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक से करवट ली है। कहीं आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ियों को पूरी तरह से सफेद चादर में ढक दिया है, तो कहीं बारिश के बीच ठंड ने दस्तक दे दी है। हेमकुंड साहिब से लेकर बद्रीनाथ और संतोपत तक बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर सिक्किम और दार्जिलिंग तक मौसम का यही बदला हुआ अंदाज नजर आ रहा है, यानी पहाड़ों पर सर्दियों की आहट अब महसूस होने लगी है।
1: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फी बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी है। रुख करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंथ मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसिलोड़ी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक दो टूटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
12: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
13: मेरे पास एक आइडिया है।
11: क्या?
13: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
14: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: ओ नादान परिंदे, बैठ जा। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
17: तो कौन सी बनानी है?
18: एकदम सॉलिड।
19: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
2: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
12: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
7: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
8: कौन भय में जी रहा है?
7: नागरिक जी रहे हैं।
8: हाँ, भारत में
7: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो थमका लगाने बस बाई गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
7: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: Actually, sir, आपकी बेस्ट थी।
2: I like this only.
9: This is a regime of the army, by the army, and for the army.
10: Water must never be weaponized.
11: UN में पाकिस्तान के झूठ की उड़ी धज्जियां। भारत ने शहबाज शरीफ को दिया करारा जवाब। लादेन से लेकर आतंकवाद तक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ। आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली करार दिया।
9: This is a regime of the army, by the army, and for the army. Their puppets may come and go, but let us have no illusion who calls the shots.
11: यूएन के मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापते हुए कश्मीर को जुगलर वैन यानी जीवन रेखा बताया था।
10: कश्मीर हैज एंड ऑलवेज विल बी पाकिस्तान्स जुगलर वैन।
11: शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।
9: दिस is an integral and inalienable part of my country and will always remain so. But if we must talk about Kashmir, let us turn our attention to the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Ask the people of Rawalkot about the wanton killings, the brutal violence, and the denial of basic rights that they have long experienced.
11: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिंधु के पानी को तरसते आतंकी देश पाकिस्तान के पीएम ने यूएन के मंच से भारत को गीदड़ भभकी देते हुए जंग की बात कही।
10: वाटर मस्ट नेवर बी वेपनाइज्ड। रिवर्स शुड नरिश नेशंस नॉट डिवाइड देम। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप इम्पीड और डाइवर्ट पाकिस्तान्स शेयर ऑफ द वाटर्स विल बी ट्रीटेड As an act of war.
11: जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जंग की गीदड़ भभकी देता दिखा वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए न भागने की जगह होगी न छिपने की।
9: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised and continued terrorism by Pakistan will have consequences.
11: यही नहीं भारत ने दुनिया को यह बताया कि कैसे पाकिस्तान ने 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। साथ ही यूएन के सामने भारत ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। आज तक ब्यूरो।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्र की खुदकुशी और वायरल मैसेज के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कैंपेन में कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़ जलंधर फगवाड़ा हाईवे जैम। दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। यूएन महासभा में जयशंकर बोले, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए खतरा, जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति, मिलेगा माकूल जवाब। विवादों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों आयुक्तों की बैठक। आयोग की सफाई, कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, नीतिगत फैसले का हिस्सा नहीं, एसआईआर पर सर्वसम्मति से लिए गए सारे फैसले। चुनाव आयोग की सफाई के बाद ज्ञानेश कुमार पर घमासान तेज हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर संस्थाओं को बदनाम करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी बोले, अंपायर बनकर चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी। गोरखपुर में जलभराव पर बीजेपी सांसद रवि किशन और पार्षद में फोन पर तकरार का वीडियो वायरल हुआ। रवि किशन बोले, समाजवादी पार्टी में चले गए हैं क्या? पार्षद का पलटवार, आप बीएसपी में चले गए हैं क्या?

हेलीकॉप्टर को एक बेस पर या ज़मीन पर लैंड करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करना, ये थोड़ा सा एक अलग चैलेंज होता है।

0: जब जहाज जाता है समंदर में वो हिलता रहता है तीनों एक्सिस पे।
1: एक छोटा सा डेक जो हिल रहा होता है पानी में, यू हैव टू लैंड ऑन दैट।
2: फाइटर प्लेन को एक बहुत ही शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और उसी सिमिलर रनवे में आके लैंड कराना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज।
3: प्रथम दायित्व लहरों पर निभाते हैं, पर देश की पुकार हो तो शौर्य के परों पर सवार होकर भी आते हैं।
4: हिंद महासागर में आपको जाना है, यू हैव टू सर्च 200-300 नॉटिकल माइल का एरिया।
5: यहाँ से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है सिविल पॉपुलेशन को।
6: कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू।
3: ये नौसैनिक हैं, पर जल से लेकर वायु तक छा जाते हैं। सीने पर विंग्स ऑफ वैलर लगाए ये प्रतीक्षा नहीं करते, ये लड़ाई को दुश्मन के घर में ले जाते हैं।
1: नेवी इज अ थ्री डायमेंशनल फोर्स, जल थल वायु। इसमें तीनों फोर्सेस के एलिमेंट्स मौजूद हैं।
7: नेवल एविएशन पर्टिकुलरली इज अ डिफरेंट चैलेंज।
6: भारतीय नौसेना में जो नेवल एविएशन आर्म है उसमें विभिन्न जहाज हम ऑपरेट करते हैं।
0: ट्रेन इसको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि जो उसके साथ वर्स्ट कंडीशन हो सकती है उस कंडीशन से उसको कैसे बाहर निकालना है।
8: इंडियन नेवी का सबसे पहला स्क्वाड्रन है ये, इसीलिए हमारा नाम भी अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है।
4: रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं।

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय नौसेना के समुद्री रोल के बारे में आप जानते होंगे, किस तरीके से समुद्र की लहरों के ऊपर और उसके नीचे ये देश की रक्षा करते हैं, हमारी जल सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन आज हम आपको उस भूमिका के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल नहीं बल्कि वायु से जुड़ी हुई है। जल थल वायु के सर्वशक्तिमान भारतीय नौसैनिकों की कहानी आज वंदे मातरम।

0: नौसेना के इन वीरों की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पहली बार नेवी में वायु शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई।
1: दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सर्वेलेंस और सिक्योरिटी ऑफ दैट रीजन, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू, INS गरुड़ा दक्षिण नेवल कमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले 70 सालों से INS गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है।
0: उस स्वर्णिम इतिहास से गौरवशाली वर्तमान का सफर एक ऐसे आत्मबल की दास्तान है जो हमारी सेनाओं की विशिष्ट पहचान। भारतीय नौसेना के पास 9 नेवल एयर स्टेशन है और हम पहुंचे इनमें से सबसे पहले स्थापित INS गरुड़ा।
2: हम क्रेडल ऑफ नेवल एविएशन है, तो हम यहाँ ज्यादातर लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो आगे जाके फील्ड में और शिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय हो सकें और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसे हम यूज़ में ला सकें।
0: INS गरुड़ा में हम सबसे पहले उस स्क्वाड्रन में गए जो सबसे पहले कमीशन हुआ था।
3: INS 550 इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन जो 1959 में कमीशन हुआ था, और जैसे कि आप अभी तक देख चुके हैं कि 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैव बीन फ्लोन बाय दिस स्क्वाड्रन, जिसमें कि आप फाइटर्स, चॉपर्स, सी प्लेन्स एज वेल एज MR एयरक्राफ्ट, हर तरह के एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया है स्क्वाड्रन ने।
4: एंड राइट नाउ अभी हमारा फिलहाल वी आर ऑपरेटिंग द डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट।
3: डॉनियर एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट फील्ड लैंडिंग कर सकता है, पैरा जंप्स करा सकता है, इट इज़ यूज फॉर मैरिटाइम सर्वेलेंस, तो हमारे वाटर्स को सेफ गार्ड करने के लिए हम सर्वेलेंस सॉटीज भी उड़ते हैं इसमें, इट कैन बी यूज फॉर कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, तो अगर आप जो चीज़ सोच सकते हो वो सारी चीज़ें ये एयरक्राफ्ट कर सकता है।
5: वॉट इज स्पेसिफिकली मोर चैलेंजिंग फॉर अ नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर इज दैट इन द वास्ट इंडियन ओशन रीजन, आपके हिंद महासागर में आपको जाना है, यू हैव टू सर्च 200-300 नॉटिकल माइल का एरिया वो एक वेसल ढूंढने के लिए विच माइट बी सस्पिशियस, विच माइट कॉज अ थ्रेट। रोज एक नई चुनौती को हम फेस करते हैं, हर रोज एक नया मिशन हम फ्लाई करते हैं इन सब चीज़ों को इनकम्पास करते हुए।
3: सी पे फ्लाइंग इटसेल्फ इज बहुत चैलेंजिंग, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काइंड ऑफ फ्लाइंग ओवर लैंड, तो वो चैलेंजेस देख के हमने भी सोचा कि हम ज्वाइन करते हैं नेवल एविएशन।
0: INS गरुड़ा में मौजूद हर स्क्वाड्रन की अलग खासियत और अलग कहानी है, जैसे 336 जिसे फ्लेमिंग एरो कहते हैं। भारतीय नौसेना के सी किंग एयरक्राफ्ट्स हैं, इनका जो किरदार है, इनकी जो भूमिका है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि समुन्दर की सतहों के नीचे दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती हैं वो किसी तरह का खतरा हमारे जहाजों पर न रहे, उन्हें ढूंढकर नष्ट कैसे करना है उसमें पारंगत हैं। इन सी किंग्स का इस्तेमाल अब प्रशिक्षण के रोल में किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
2: सी किंग 42 ब्रावो, ये जहाज एक फ्रिगेट जितना काम कर सकता है। इसमें अपना रडार है, इसका अपना सोनार है जिससे पनडुब्बी ढूंढ सकता है, ये पनडुब्बी ढूंढ भी सकता है और उसके अगेंस्ट मार भी कर सकता है अपने टॉर्पिडो और डेप्थ चार्जेस के साथ। एंटी शिप मिसाइल इस जहाज पे लग सकते हैं और वो उन पे भी मार कर सकता है। एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है ये INS विक्रांत का इंटीग्रल पार्ट था। INS विक्रांत के डीकमिशनिंग के बाद इस जहाज स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का दर्जा दिया गया। एंड आपको जान के खुशी होगी कि जब फर्स्ट नए विक्रांत पे लैंडिंग हुई थी तो हमारे स्क्वाड्रन के जहाज ने वो फर्स्ट लैंडिंग किया था।
6: नेवल एविएटर्स की तीन आयामी भूमिका है। टोही यानी मैरिटाइम रिकॉनिसेंस, पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और युद्ध पोत से आक्रमण।
0: ये जो लैब है इसमें चाहे दीवारों का रंग हो या फिर लाइट्स का जो रंग है उसे देखकर मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा जैसे समुद्र के नीचे, लेकिन शायद वही कोशिश भी है कि समुद्र के नीचे वो शिप भी सबमरीन भी और उसके बीचों बीच वो पढ़ाई जो सबको कराई जा रही है।
7: ये जो दीवारें आप रंगीन देख रहे हो इन पे अंडर वाटर प्रोफाइल और ASW से रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स को दर्शाया गया है जिसके माध्यम से हम उनको काफ़ी सरलता के साथ ASW ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं।
0: ASW यानी एंटी सबमरीन।
7: यस मैम, ASW इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो ऑपरेशंस हैं उनके रिलेटेड हम उनको ट्रेन करते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल्स जो आप इधर देख रहे हो सोना विंग एंड सोनो बॉयज के, इनके स्ट्रिप डाउन मॉडल्स के माध्यम से ट्रेनीज को ASW के सेंसर्स के बारे में अवगत कराया जाता है। पानी के अंदर जो साउंड है उसका जो माध्यम है वो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से चेंज होता है, तो इसके माध्यम से हम पता करते हैं कि किस डेप्थ के ऊपर एक लेयर है, सो सबमरीन कहाँ छुप सकता है पानी के अंदर, उसी के हिसाब से हम अपने ASW सेंसर्स को उस एरिया के अंदर डिप्लॉय करते हैं। हम संभावना देखते हैं कि सबमरीन कहाँ छुपा है, एक बार जब हमने सबमरीन पकड़ लिया उसकी रेंज और उसके हिसाब से हम ASW वेपन्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं लाइक सीकिंग के अंदर हमारे पास टॉर्पीडो एंड डेप्थ चार्ज हैं, हम उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको निस्तेनाबूद करते हैं।
6: प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसका व्यावहारिक होना और इसी क्रम में आता है स्क्रैम्बल, जो कहने के लिए हर पायलट और तकनीकी क्रू की रोज की कार्रवाई है ताकि वो आपात स्थिति के लिए तैयार रहे।
0: इस तरह के मिशंस के लिए जो हमारे पायलट्स निकलते हैं नेवी के, निर्धारित समय में कैसे आपको पहुंचना है जब मदद की गुहार लगाई जाती है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक फ्लाइट पूरी करके वापस लौटे हैं,
8: सायरन सबको सुनाई देता है। इमीडिएटली एट द इमीडिएट मोमेंट द पायलट्स SAR पायलट एंड को पायलट दे गो देयर एंड दे मैन द एयरक्राफ्ट एंड दे गिव अ कॉल दैट वी आर स्टैंड बाय टू स्टार्ट, मतलब हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड जैसे ही हमें ATC से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमें इंडिकेशन मिलता है वी स्टार्ट अप एंड देन वी आर लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट।
0: वो ब्रीफ कितनी देर में आप लोगों को मिल पाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कहाँ भेजा जा रहा है?
9: मैम वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे स्क्रैम्बल हमें मारा जाएगा कि हमें क्या करना है, जिसे पायलट अपना खुद मैन करेंगे, ड्राइवर अपने जो ड्राइवर रहेगा फ्री ड्राइवर रहेगा वो अपना खुद प्रिपेयर रहेगा कि क्या करना है, सब पायलट इन्फॉर्म करते हैं और हम सीधा एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं।
6: ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हर वायुवीर सक्षम होता है, उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक है।
0: भारतीय नेवी का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ALH, वायुसेना भी हमने देखा है, लेकिन जो नौसेना द्वारा इस्तेमाल होता है उसमें एक मैरिटाइम रेडार फिट होता है जिसके कारण यह अलग बनता है और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। ये जो ALH है मल्टी रोल है इसका और मल्टी मिशन यानी अलग अलग तरह के मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्वाड्रन 322 जिसे नेवी में गार्डियंस कहते हैं, ये ALH फ्लाई करते हैं। जो ALH आर्मी यूज करती है या जो एयरफोर्स यूज करता है उससे नेवी का कितना डिफरेंट है?
10: मैम नेवी में और एयरफोर्स में रोल्स अलग हैं। नेवी में हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है शिप्स के साथ ऑपरेट करना और शिप्स के ऊपर लैंड करना, चलता हुआ शिप में लैंड करना एक अलग अपना चैलेंज है। इट्स मूविंग कंटिन्यूसली सो स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए एंड हमको व्हील्स चाहिए होते हैं जिस वजह से जो कि ज़्यादा लोड ले सकती हैं लैंडिंग का, लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट वेट को थोड़ा सा ऐड करता है।
0: मेक इन इंडिया का कितना फ़ायदा आपको लगता है?
10: मैम बहुत फ़ायदा है, इन द सेंस ALH हेलीकॉप्टर इज द फर्स्ट वन, 2003 में आया था ये हमारे पास भारतीय नौसेना में और तब से लेकर अब तक 20 साल हो गए हैं। बहुत वर्सटाइल हेलीकॉप्टर है, बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है एडवांटेज हमारा ये है कि जब भी हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है, HAL हमारा ऐसा लगता है कि हमारा अपना कंपनी है, सीधा उनके पास फोन करो, उनसे पूछो कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और तुरंत हमें सॉल्यूशन मिलता है।
11: जो स्क्वाड्रन का नाम भी हम देख रहे हैं और जो उसका एक तरह से हम कहें कि आदर्श वाक्य, जो उसका मोटो जो है वो, और आपकी जो भूमिका है स्क्वाड्रन की, वो किस तरीके से मेल खाती है?
10: स्क्वाड्रन का नाम है INS 322, हमें नेवी में गार्डियंस के नाम से जानते हैं। हमारा स्क्वाड्रन का मोटो, जैसे आपने कहा है, सर्च फियरलेसली और रेस्क्यू वैलियंटली। हमारा प्राइमरी रोल हेलीकॉप्टर का, चाहे वो ज़मीन पे हो चाहे समंदर में हो, जब भी कोई भी कष्ट होता है, इफ़ एनीबडी नीड्स टू बी रेस्क्यूड, दैट इज़ आर जॉब बोथ बाय डे एंड बाय नाइट।
6: कमोवेश वैसी ही जिम्मेदारी भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन 321 की भी है, जिन्हें गॉड्स ओन एंजल्स कहा जाता है। हम इस स्क्वाड्रन की भी खासियत समझने पहुंचे।
11: चेतक हेलीकॉप्टर्स जो है वो एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, आर्मी भी और नेवी भी। नेवी के लिए स्पेसिफिकली क्या अलग है?
12: आर्मी के जो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है, दे आर फ्लाइंग इन द माउंटेन्स, एंड जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, वी आर फ्लाइंग ओवर द सी। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन करते हैं एट सी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट वी आर फ्लाइंग फ्रॉम द शिप। तो शिप एक मूविंग प्लेटफॉर्म होता है, एंड उस पर लैंड करने के लिए जो स्पेस है, बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है जिसमें हमें हेलीकॉप्टर को लैंड करना होता है। इसके लिए काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग, एंड इट्सेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लैंड ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो वी कैरी आउट सम स्मॉल स्टोर एंड मेल ट्रांसफर, जो हमारे फ्लीट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है।
6: अब हम आपको वो कार्रवाई भी दिखाते हैं जिसकी यहाँ बात की जा रही है। खुला समुंदर, विपरीत धारा, और उस पर प्रशिक्षण का ये पहलू।

ये जो कार्रवाई आपको दिख रही है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि समुद्र के बीचों बीच था, उसे किस तरीके से रेस्क्यू करके निकाला जाता है, ये इनके प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। पूरे इलाके में जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आम लोगों को, आम नागरिकों को बचाने के लिए, उन्हें समुद्र की इन लहरों से सुरक्षित निकाल लाने के लिए ये प्रशिक्षण अहम है। आप देखेंगे भी कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने पहले अपना हाथ हिलाया था और उसके बाद उसे वो रस्सी नीचे फेंकी गई, जिसे पकड़कर उसके सहारे फिर उसे रेस्क्यू किया गया है। समुद्र या नदी से रेस्क्यू की चुनौतियां बड़ी होती है। लगातार बहाव के कारण ठीक उसी जगह पर पहुंच पाने की चुनौती, बचाव के दौरान लहरों से लड़ने की चुनौती, हवाओं से मुकाबला, लेकिन हर आपदा में हमारे नौसेना के वीर देवदूत बनकर आते हैं।

0: पिछले सालों 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी उसमें हमारे सभी जहाज़ों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो लोग दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर अटके हुए थे, और इवन पेड़ों के ऊपर जो लोग वर वेटिंग फॉर रेस्क्यू, देवर प्रोवाइडेड रिलीफ, एंड उनको हमने यहाँ से इवैक्यूएट, वहाँ से इवैक्यूएट करा के हम यहाँ पे लेके आए थे. पिछले चार महीनों में हमने 3 कैजुअल्टी इवैक्यूएशन अगाती से किए हैं. रात में ब्रह्मपुरम फायर हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, और उसके दौरान भी हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट किया था, और उस फायर प्लांट के ऊपर जो द वाटर ऑलमोस्ट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर वाज ड्रॉप्ड ओवर द फायर साइट, दस कवरिंग द मेकिंग अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी.
1: पर केवल राहत और बचाव नहीं, बल्कि दुश्मन या किसी भी जल क्षेत्र में तेजी से सैनिकों को पहुंचाना भी चुनौतियों से भरा होता है.
2: जब डाइवर्स को पानी में ड्रॉप करना होता है, उसका बेहद तेज तरीका होता है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आए और डाइवर्स को पानी में छोड़ते जाएं. इसे एक टेंट एंड जंप कहा जाता है, क्योंकि ये ALH है जो बहुत नीची उड़ान भर रहा है, धीमी रफ्तार से आगे जा रहा है. चेतक हेलीकॉप्टर को जब हम इस लेवल पर उड़ान भरते हुए देखते हैं तो पानी में उतनी ज्यादा लहरें नहीं उठती हैं, देखिए जो आपको नजर आ रहा है. यहाँ पर एक बेहद नीची उड़ान उड़ाते हुए और इन डाइवर्स को ड्रॉप करते हुए, जो कि आगे अपने ऑपरेशंस को, अपने मिशन को अंजाम देंगे. ये कठिन है, जटिल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के जरिए ये सफल होता है, और प्रशिक्षण के जरिए भी.
1: नौसेना के एविएटर्स की पेचीदा भूमिका, समुद्री पानी और वातावरण में उनके उपकरणों का रहना मेंटेनेंस के काम को भी काफी चुनौतीपूर्ण बनाता है.
2: यहाँ पर जो मेंटेनेंस का स्टाफ भी होता है, उसका जो नाम है वो वायु से जोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें सेलर ही कहा जाता है. खारा पानी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है उपकरणों को अंदर.
3: मैम, जो इसमें समुद्र में जब फ्लाइंग करते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे जब लैंडिंग के टाइम पे शिप जब मूव कर रहा होता है तो वेव्स जो है पानी का, वो इसके एयरक्राफ्ट की बॉडी पे पड़ता है, हाँ, जिससे क्या है आपका एयरक्राफ्ट का जो बॉडी है वो कोरोसिव होने का चांसेस रहता है. वो मॉइस्चर प्रोन इक्विपमेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो उनका हमें बाद में डीमॉइस्चराइजेशन करना पड़ता है, हॉट एयर गन से उसको सुखाना पड़ता है, एंड बॉडी का जो एयरक्राफ्ट का जो फ्रेम है उसका हम इसे फ्रेश वाटर से वॉशिंग करते हैं एवरी टाइम.
2: कोची जैसी जगह पे, इन सारी जगहों पर, या फिर रेस्क्यू के लिए जिन इलाकों में जाते हैं, उसका तो सीधा मतलब है कि आप लोग पानी में ही फ्लाई कर रहे हैं सर.
3: मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि कोची में जो मानसून है वो 8 महीने तक लगभग रहता है, 8 महीने तक बारिश का ही रहता है, तो यहाँ पे हम बारिश में फ्लाइंग अवॉइड नहीं कर सकते.
2: ये जो पूरा एयरक्राफ्ट हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट खुला हुआ है, अंदर का हिस्सा हम देख सकते हैं, क्या ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा है?
4: ये नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है. एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जहाज को लाते हैं, जो इंस्पेक्शन हम फ्रंटलाइन यूनिट्स में नहीं कर पाते, जिसके लिए डाउन टाइम ज्यादा होता है, उसके लिए जहाज को यहाँ पर लाया जाता है. जहाज को हम बारीकी से इंस्पेक्शन करते हैं, और जिन कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है इनको रिप्लेस किया जाता है. जहाज में स्ट्रक्चरल रिपेयर किया जाता है, केबल ऑडिट किया जाता है, केबल रिप्लेसमेंट किया जाता है. ये सब कार्य हम OEM के सपोर्ट के बिना अपनी इन हाउस एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, जो कि हमारा एक प्रयास है आत्मनिर्भर भारत की ओर.
5: नेवल एविएशन में जो टेक्निकल पार्ट है वो हम उसके रूट्स हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं.
6: इंडियन नेवी में बहुत पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं और अभी के 4.5 जनरेशन वाले जहाज भी हैं. सो इस गैप को कवर करने के लिए हमारे टेक्निकल सेलर्स एंड ऑफिसर्स दोनों को तत्पर रहना पड़ता है.
1: छोटे से ब्रेक के लिए हमारी ये खास पेशकश जारी है वंदे मातरम.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: आगे आगे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
14: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ।
1: पिछले 70 सालों से INS गरुड़ा इसी काम में जुटा हुआ है।
2: हर तरह के ऑपरेशंस जितने भी इंडियन नेवी ने किए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया है।

ये सैनिक अनूठे हैं। इनमें समुद्र सी गहराई है, साहिल सा ठहराव है, लहरों सा आवेग है, वायु सी प्रवृत्ति है। जल थल वायु यह सर्वत्र सक्षम।

0: भारतीय नौसेना के वीरों की कहानी में अब आगे वो अभूतपूर्व प्रशिक्षण जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र की लहरें ऐसे ही उठती हैं, ऐसे ही आता है तूफान, और इसीलिए यहाँ पर एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के जरिए ये सभी गुजर रहे हैं। उसी परिस्थिति को यहाँ पर बनाया जाता है जो परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो एक नेवल एविएटर होता है वो समुद्र के ऊपर ही फ्लाई कर रहा होता है, वहीं से रेस्क्यू करना है, वहीं पर हो सकता है उन्हें पैराड्रॉप होना हो, तो इन लहरों से न तो उन्हें घबराना है, किस तरीके से अगर क्रैश हो जाए, अगर उसके जरिए उसके साथ वो इस पानी में गिर जाए तो किस तरह से वहां से खुद को बचाकर निकलना है, बाकी सामान को निकालना है, इन सारी चीजों की यहां पर ये ट्रेनिंग। ये हिलोरे मारता पानी, तेज हवाएं, कड़कती बिजली, समुद्र में इन परिस्थितियों की गुंजाइश असली है, इसीलिए इन सैनिकों को ये बेहद जटिल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और कौन अंडरगो करता है ये ट्रेनिंग?
1: 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका एनालिसिस में हमने ये कोशिश की थी क्यों एयरक्रू सब बाहर नहीं आया तो कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके तरह से हमने एक ट्रेनिंग मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफिकेशन ऐसे है, एयरक्राफ्ट से बाहर सिर्फ निकलना नहीं है, पूरा इक्विपमेंट के साथ निकलना है और मैक्सिमम टाइम सर्वाइव करना है, उसके लिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू की थी। 2003 में हमने ये शुरू किए थे प्रोजेक्ट का, ये कम्प्लीट हुआ 2013 में, कमीशन हुआ 2015 में, हमने ट्रेनिंग शुरू की।
0: ये
1: ट्रेनिंग हम मैक्सिमम 3 डेज का ट्रेनिंग होता है, बिकॉज हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा, क्योंकि उसका इंजन है MGB है, इसलिए हेलीकॉप्टर टॉपल हो जाएगा और फिक्स विंग में टॉपल नहीं होगा। सो हमने इनिशियली उसको ब्रीथिंग का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग को 45 सेकेंड तक लंग्स में हवा रह सकता है। सो हम इनिशियल ट्रेनिंग हम शैलो वाटर में करते हैं मैक्सिमम एयर होल्डिंग के लिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं विथ नो वेदर कंडीशन के, मिनिमम डिफिकल्टी के साथ।

0: देख के ही ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक लगती है, पर पहली बार पानी के नीचे वैसे जाने में वाकई खतरनाक वाली फीलिंग आती है जितने भी ट्रेनिंग जाते हैं नीचे।
1: इनिशियल स्टेज में तो ये फीलिंग आती है, उसे डर लगता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसे हम पहले शैलो वाटर में उसको कंफर्टेबल करवाते हैं, फैमिलराइज कराते हैं कि जैसे कि अंडर वाटर में उसकी चीज़ें कैसे लगेंगी। जैसे ही वो शैलो वाटर में कंफर्टेबल हो जाता है देन हम उसे डीप जोन में लेके जाते हैं।
0: गगनयान की ट्रेनिंग में भी आप लोगों का योगदान रहा?
2: या नेवी इज अ लीड सर्विस है गगनयान का रिकवरी मॉड्यूल प्रोग्राम में, सो सभी रिकवरी टीम का ट्रेनिंग इधर ही होगा। एस्ट्रोनॉट्स का भी सी सर्वाइवल ट्रेनिंग हम इधर ही करेंगे और सभी क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल का कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्टिंग यही फैसिलिटी में करेंगे। इधर प्रूव होने के बाद उसके एक्चुअल सी में हम टेस्ट करेंगे। सो पूरा गगनयान मिशन में WSTF एक पार्ट है और नेवी लीड सर्विस है रिकवरी में।
3: ऐसी भयंकर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना एक पहलू है, नेवी में फ्लाइंग की एक और कठिन चुनौती है और वो है नाइट फ्लाइंग।
0: नेवल एविएशन की अपनी चुनौतियां हैं लेकिन जो प्रशिक्षण है वो उन सारी चीजों के लिए तैयार भी कराता है। अब ये एक बेहद अंधेरा सा कमरा आप देख रहे होंगे और इसका एक खास मकसद भी है, वो है रात के समय में फ्लाइंग। किन चीजों पर खास करके ध्यान दे रहे हैं?
4: जब हम नाइट फ्लाइंग की बात करते हैं, व्हेन द पायलट गेट्स सम गुड अबाउट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग ही प्रोग्रेसेस इनटू नाइट फ्लाइंग गॉगल्स और नाइट फ्लाइंग विजन फ्लाइंग, जिसमें जब फुल डार्क नाइट कंडीशन होता है उस कंडीशन में विद दिस नाइट फ्लाइंग गॉगल्स इट आर्ग्यूमेंट्स द पायलट, जो उसका विजन है उसको एनहांस करता है, ताकि अगर पूरे जब मून का फेस बहुत ही कम है, एम्बियंट लाइट बहुत ही कम है, ही विल बी एबल टू सी थ्रू द नाइट फ्लाइंग गॉगल्स एंड डू हिज बेसिक नाइट फ्लाइंग, एंड उसको पता नहीं चलेगा, वो इतना ब्राइट रहता है जैसे फ्लाई करता है, इट गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे उसको पूरा दिखेगा लाइक अ डे।
0: इसमें एक चीज बहुत अहम है देखना, वो ये कि एक तरफ आप सामने देख रहे हैं लेकिन उसके साथ ही आप जब अपने इस पैनल को देखते हैं तो डिस्टेंस विजन का बदल जाता है।
4: करेक्ट। सो द जो गॉगल्स होता है पायलट फोकस टू द इन्फिनिटी, बहुत दूर के लिए फोकस करता है ताकि उसको दूर के चीज को अच्छे से दिखे। नाउ द पायलट ऑल्सो हैज टू लुक इनसाइड फॉर हिज पैरामीटर्स, की जो उसका वैल्यूज जो स्पीड है बाकी जो पैरामीटर्स है सही आ रहा है कि नहीं। फॉर दैट द पायलट कीप्स हिज एनवीजी इन अ सर्टेन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हिज आईज, सो दैट वो अपने गैप से आपको उसको इंस्ट्रूमेंट भी दिखे, एट द सेम टाइम जब वो थ्रू देखेगा उसको बाहर उसका मिशन भी वो कर पाएगा।
0: रात के समय उड़ान भरने के साथ कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं?

0: फ्लाइंग की क्या चुनौतियां होती हैं?
1: नाइट फ्लाइंग अगर आप इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नॉर्मल पायलट्स जो बाकी लैंड के ऊपर फ्लाई करते हैं, उनके पास बहुत सारे विजुअल क्यूज रहते हैं, लाइट रहती है पूरे ज़मीन के ऊपर, बट जब हम समुंदर के ऊपर फ्लाई करते हैं वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहती है। एंड इन केस ऑफ अ लिट अनलिट नाइट आपको समुंदर और आसमान में अंतर नहीं पता चलेगा। क्षितिज जिसे होराइजन बोलते हैं वो दिन में हमें क्लियरली दिखाई देता है, रात को सी मर्जेज इनटू द स्काई, तो उसमें डिसओरिएंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एज नेवल पायलट्स हमें रात को लो फ्लाइंग भी करनी पड़ती है, 200 फीट, 500 फीट, सो उसमें चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
0: बहरहाल रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, जो एक टीम दिन रात इनका साथ देती है, इनके साथ डटी रहती है, वो है एटीसी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे व्यस्त विभाग है जहां पर हम हैं। जितने भी विमान यहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, किसी भी मिशन के लिए निकल रहे हैं, एटीसी है जो सबको जानता है। लेकिन ये एक नेवल बेस होने के बावजूद यहां पर एक एयरफोर्स ऑफिसर हम देख रहे हैं सर, क्या इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज?
2: इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन मैम। आई एम अंडरस्टैंडिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप, माफी रनवे रिसर्फेसिंग, एंड माय एक्सपीरियंस आई एम इक्वली शेयरिंग विद नेवी। So I'm very good working over INS Garuda. I'm finding it very comfortable. So probably you'll find more integration between the forces in the future.
0: क्या क्या करते हैं यहाँ पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी टीम की?
3: मैं यहाँ पे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टार कंट्रोलर है और एक यहाँ पे अप्रोच कंट्रोलर है। देर इज अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग फॉर VVIP एंड VIP मूवमेंट्स ऑल्सो, विच आर नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेंडली फॉरन नेशंस।
0: बहुत जिम्मेदारी का काम है, मतलब हर एक उड़ान के लिए आप लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। एक तो ये कि उस जिम्मेदारी का एहसास कितना है, और दूसरा उसके लिए माइंड कितना आप लोगों को स्ट्रांग रखना होता है।
3: जैसे ही वो हेडसेट मैं पहनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं बाकी सब भूल जाऊँ और सिर्फ मेरा यही नेतृत्व है कि मैं जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ के जा रहा है, किसी भी असिस्टेंस के लिए जा रहा है, उसको मैं घर वापस सही और सुरक्षा हालत में लेके आऊँ।
0: तो यहाँ की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर क्या है?
4: ये एक रेडार कंट्रोल रूम है। यहाँ से जनरली जो एयरक्राफ्ट एंड एयर होते हैं उनको हम रेडार से कंट्रोल करते हैं। कुछ मेजर चीज़ें जो हमने यहाँ देखी हैं, 2018 में फ्लड्स हुए थे, वॉज ए मेजर इशू, एंड रिसेंटली देर वॉज ब्रह्मपुरम फायर। इन दैट वी रिक्वायर्ड, हमने जो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कैपेबल हैं इन चीज़ों के लिए, हमने उनको भेजा, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो सिचुएशन अलग ही होती है। जहाँ आपको उस मिशन भी कंप्लीट करना है, उनके बीच में उनको सेफ भी रखना है, और एरिया इतना होता नहीं है कि जहाँ हम सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाए, सो वो अपने आप में एक डिफरेंट फील एट दैट टाइम।
0: चूंकि हम नेवल एविएशन के हर किरदार को समझते परखते आगे बढ़ रहे थे, इस कार्रवाई ने भी हमारा ध्यान खींचा। आप एक बेफिक्र उड़ान तभी भर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि आपके पीछे एक पूरी की पूरी टीम है जो आपके लिए तैनात है, और ये जो टीमें हैं इनकी किरदार, इनकी भूमिकाओं को बहुत सोच समझकर और पूरी तत्परता से जिस तरह से तैयार किया जाता है, हम इस क्रैश टीम कहें सर, इसके बारे में अगर हम समझें कि क्या इनकी भूमिका है, 24 घंटे तैयार रहते हैं सर।
5: कि मैम अगर किस कोई फ्लाइंग होनी है, बीट सिविल फ्लाइंग और मिलिट्री फ्लाइंग, सो अगर CFTs हमारे पास नहीं है, अगर क्रैश क्रू नहीं है, तो फ्लाइंग नहीं हो सकती, वो भले कहीं भी हो वो। सो जब भी फ्लाइंग चलती है, ये क्रैश क्रू है, दीज आर क्रैश फायर टेंडर्स, जो रेड कलर ट्रक्स है, सो दे मैन दिस फायर ट्रक्स क्रैश फायर टेंडर्स थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग। दे मैन इट एंड दे आर ऑलवेज रेडी। द मोमेंट सम साइरन इज साउंडेड, द मोमेंट ATC से पता लगता है कि देयर सम इमरजेंसी व्हिच हैज हैपेंड, एयरक्राफ्ट इज कमिंग विद इमरजेंसी, द सेम टाइम दे विल मूव आउट, सब वहां से निकलेंगे एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट इमरजेंसी। यहाँ पे ये लोग AFPS सूट है, विच इज अ वेरी हैवी सूट, वो पहन के अंदर सब बैठे रहते हैं, एंड वेन दे गो टू द सीन ऑफ, अगर कोई क्रैश हो जाता है, इफ देयर इज अ फायर, देन दीज पीपल दे लिटरली गो इन टू द फायर आग के अंदर जाके वो लोग बचा के लाते हैं, जो भी क्रू है पैसेंजर है उनको वो लोग बचा के लाते हैं, देन दे कैरी आउट द फायर फाइटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। एंड अनलाइक ए नॉर्मल फायर, एयरक्राफ्ट फायर में देयर इज एविएशन फ्यूल इन्वॉल्व्ड, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फायर इज ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। सो दे दीज पीपल दे फाइट दैट फायर।
0: तो आप सबके मोटिवेशन का लेवल समझ सकते हैं, वो स्तर समझ सकते हैं कि किस हद तक वो मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए तैयार रहते हैं इतनी मुश्किलों के भीतर से जाकर भी बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए।

0: टैक्टिक्स और एयर नेविगेशन के लिए जो ये सिम्युलेटर है यहाँ पर 2020 में शुरुआत इसकी हुई और हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इससे किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं और सरल होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे हम समझ लेते हैं सर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया जा रहा है।
1: जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग VR ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कर रहा है, ये इन हाउस डिजाइन किया गया है डॉनियर एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल्स एवं एंटीना लेआउट के बारे में सीखने के लिए। ये एक ट्रेनी स्टेशन है, इस पे ट्रेनी रूट नेविगेशन बाय डे कर रहे हैं। ये फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनीज को इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जैक्ट डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट लेआउट है, इसके सारे इक्विपमेंट और स्विचेस एज पर एयरक्राफ्ट इसमें फिटेड हैं। सो सारे ट्रेनीज एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने से पहले इस FTD डिवाइस पे एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स और उनके रिस्पेक्टिव स्विच के पोजीशंस, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत वाइटल होते हैं, उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं।
0: सिम्युलेटर क्या आसान कर देता है, समय कम लगता है, व्हाई अ सिम्युलेटर और असली उसमें क्यों?
1: इसका फायदा ये है कि सिम्युलेटर 24 घंटे चलाया जा सकता है, जो वीक ट्रेनीज हैं दे कैन लर्न एज मच एज दे वांट एंड इट सेव्स गवर्नमेंट द वैल्यूएबल मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंड ऑन फ्यूल।

0: और अब बात करेंगे चुनाव आयोग को लेकर मचे सियासी घमासान के बारे में, क्योंकि सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारत में चुनाव प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। हम कांग्रेस और विपक्षी दलों की हरकतों की निंदा करते हैं तो जनता को गुमराह करने की कोशिश है। और ये तमाम आरोप लगाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त पर इस तरह से सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है।
1: 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी एसआईआर के कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। उस सब के बावजूद इस बार की एसआईआर की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हायतोबा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दलों ने मचाई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन किया, वो लगातार वह इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। हर व्यक्ति जानता है, यानी इलेक्शन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या अन्य ये विपक्षी दल, इलेक्शन जीत जाए तो इनका पुरुषार्थ, इनकी भ्रष्टाचार, इनका आर्थिक कदाचार, इनकी कुनीति, इनके राजकत्वपूर्ण कार्रवाई के कारण अगर जनता जनार्दन इन्हें खारिज करती है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को या ईवीएम को दोषी ठहराना कितना जायज है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
0: और इतना ही नहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश में है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है जनता को गुमराह करना और ध्यान भटका देना। आज वो चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गिरफ्तारियों की मांग करते हैं और आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या उनकी सरकारों के कार्यकाल में चुनाव आयोग के कामकाज में ऐसी पारदर्शिता संभव थी? पहले चुनाव आयोग पूरी तरह से उनके निर्देशों पर काम करता था, लेकिन आज आयोग जिस तरह से काम करता है उसमें 3 आयुक्त सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ जनता के सामने तथ्य रखे हैं, पुष्टि की है, हर फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है और निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। मेरा मानना है राहुल गांधी की गतिविधियां या किसी भी विपक्षी नेता के बयान देशद्रोह से कम नहीं है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम

0: करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे, पर आज जो इलेक्शन कमीशन है जिस तरीके से काम कर रहा है, तीन हमारे कमिश्नर्स हैं उसमें, सर्वसम्मति से सभी निर्णयों को लिया जा रहा है। पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है शानदार काम कर रहा है, पूर्ण निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, देश के हित में, देश की जनता के हित में उनके उनके वोट बनवाने के लिए काम किए जा रहे हैं, ना कि किसी के वोट कटवाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियाँ माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
1: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
15: क्या चीज है?
14: वायरल है? थैंक यू।
16: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
15: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
14: क्या?
15: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
17: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
16: ओ नादान परिंदे, बैठ
15: बैठ जा, बैठ जा।
16: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
5: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
6: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
8: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
10: कौन भय में जी रहा है?
9: नागरिक जी रहे हैं।
10: हाँ, भारत में
9: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

त्योहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर की सजावट से लेकर कपड़ों, गिफ्ट, ज्वेलरी और नई गाड़ियों तक हर तरफ खरीदारी का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े बूस्टर में से एक माना जाता है। इस बार भी कारोबारियों को त्योहारों से बड़ी उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स यानी CAIT के मुताबिक दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक के 29 दिनों के दौरान बाजारों में रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा से दिवाली तक 29 दिनों में 6.20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और दिवाली इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा कारोबारी मौका बन सकती है। दरअसल त्योहारों का असर केवल एक शहर या एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहता। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार बाजार को रफ्तार देते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और कई राज्यों में गणेश उत्सव के दौरान भी कारोबार में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा के दौरान करीब 65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि होंगी। वहीं गणेश उत्सव के दौरान भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार का अनुमान लगाया गया है। खरीदारी का ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते धनतेरस और दिवाली तक पहुंचता है। यही वो दौर होता है जब बाजार में सबसे ज्यादा पैसा आता है और कारोबार अपने पीक पर पहुंच जाता है। त्योहारों में होने वाली खरीदारी का फायदा छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक को मिलता है। कपड़े, किराना, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स में मांग बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में कपड़े और गिफ्ट आइटम्स की मांग बढ़ेगी। वहीं किराना और FMCG सेक्टर में खरीदारी में तेजी आ सकती है, जबकि ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। धनतेरस और दिवाली पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा आज भी बरकरार है। वहीं नई कार, टीवी, फ्रिज और दूसरे घरेलू सामान खरीदने को भी लोग शुभ मानते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को कारोबारियों के लिए साल का सबसे अहम दौर माना जाता है। कुल मिलाकर त्योहार सिर्फ खुशियां ही नहीं लाते, बाजार में भी नई जान भी फूंकते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन की खरीदारी को देश की खपत और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा संकेत माना जाता है। आदित्य राणा, आज तक।

चुनाव आयोग की सफाई के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। सीएम योगी बोले विपक्ष के बयानबाजी को गैर जिम्मेदार बताया। रेखा गुप्ता ने कहा राहुल गांधी का बयान देशद्रोह जैसा। शुभेंदु ने कांग्रेस को घेरा केरल में एसआईआर, मीठा बंगाल में खट्टा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट के समर्थन में आया रूस। विदेश मंत्री लावरो बोले एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का बढ़े प्रतिनिधित्व। ब्राजील का भी सपोर्ट, जर्मनी जापान का विरोध। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा की खुदकुशी। वायरल मैसेज के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़। जलंधर फगवाड़ा हाईवे तक प्रदर्शन, पुलिस की जांच जारी। गोरखपुर में जलभराव पर बीजेपी सांसद और पार्षद में फोन पर तकरार का वीडियो वायरल। रवि किशन बोले समाजवादी पार्टी चले गए हैं क्या? पार्षद का पलटवार, आप बीएसपी में चले गए क्या?

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है SE.census.gov
www.pakistanmeinatanki.in इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हों, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था।
लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं
देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है।
भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पॉटिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल
कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप
अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाए। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में तमाम बातों का जिक्र करते हुए, तमाम लोगों का मोराल बूस्ट करते हुए कि किस तरीके से लोकल चीजें इंटरनेशनल फोरम पर पहुंच रही हैं और हम सबको वहां से इंस्पायर होने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे सबसे पहले अब हेडलाइंस।

के बयानबाजी को जिम्मेदार बताया। रेखा गुप्ता ने कहा राहुल गांधी का बयान देशद्रोह जैसा है। शुभेंदु ने कांग्रेस को घेरा, बोले केरल में एसआईआर मीठा, बंगाल में खट्टा। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पार कर आतंकवाद के खिलाफ की थी कार्रवाई, दुनिया थी हैरान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट के समर्थन में आया रूस। विदेश मंत्री लावरो बोले एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका का बड़े प्रतिनिधित्व, ब्राजील का भी सपोर्ट, जर्मनी जापान का विरोध।

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्र की खुदकुशी और वायरल मैसेज के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मिशन उज्जैन महाकुंभ के लिए अपने पुश्तैनी घर पर ही चलाया हथौड़ा। सड़क चौड़ीकरण अभियान में करीब 3 मीटर तक टूटेगा घर।

0: और अब खबर, चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों को लेकर जारी घमासान की। एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आयोग ने एक दिन पहले तमाम आरोपों को लेकर सफाई दी है, साथ ही साथ कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके बाद भी विपक्ष के हमले कम नहीं हो रहे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमलों के बीच बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने आज एक साथ विपक्ष पर पलटवार किया है। तो सबसे पहले खबर यूपी के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, जिन्होंने विपक्ष के चुनाव आयोग के हमलों पर आज जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये तमाम आरोप विपक्ष पर लगाए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल हाय तौबा मचा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए लोकतंत्र पर सवाल उठाने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
1: आश्चर्यजनक है, देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। एसआईआर को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है, इस बार की एसआईआर की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हाय तोबा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और अन्य दलों ने मचाई है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन किया, वो लगातार वह इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। लगातार इनके द्वारा भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता है। इलेक्शन कमीशन पे लगातार हमलावर है।
0: और उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश में है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है जनता को गुमराह करना और उनका ध्यान भटकाना। आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे, पर आज जो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरीके से काम कर रहा है, तीन हमारे कमिश्नर्स हैं उसमें, सर्वसम्मति से सभी निर्णयों को लिया जा रहा है, पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है शानदार काम कर रहा है, पूर्ण निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, देश के हित में, देश की जनता के हित में, उनके उनके वोट बनवाने के लिए काम किए जा रहे हैं, ना कि किसी के वोट कटवाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों को लेकर ममता बनर्जी और सीपीएम पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही साथ राहुल गांधी का भी जिक्र करके उन्होंने हमला बोला। उनके मुताबिक कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर केरल में तो अच्छा है लेकिन पश्चिम बंगाल में बुरा है।
2: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर, ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है, तो पिक्चर सीधा है। इन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेट ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। सुप्रीम कोर्ट में तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एक बार नहीं 20 बार गया है ड्यूरिंग एसआईआर टाइम। डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा। एंटायर प्रोसेस को लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में जो बाद में जो कोर्ट इंटरवेंशन का बाद जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस तो जुडिशियल प्रोसेस था। वो तो चैलेंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पिलर जुडिशियरी को, जो 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में डिलीट रिजेक्ट हुआ है वो कौन किया है, जजेस किया है, वो जजेस का अपॉइंटमेंट कौन किया है, हाई कोर्ट किया है, किसका ऑर्डर से किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से किया है। आर्टिकल 142 को स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में यूज किया, जो इलेक्शन कमीशन का ईआरओ का पावर सीज कर दी। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी, पुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, संतोष हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अनुपम भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे संतोष का। संतोष, हमने मुख्यमंत्री को सुना, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के बयान सामने आए हैं।
3: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव इलेक्शन कमीशन को लेकर के और एसआईआर को लेकर के, जैसे इलेक्शन कमीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी निर्वाचन आयुक्त के बीच में गतिरोध सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जब इलेक्शन कमीशन में ही एका नहीं है और एक इलेक्शन कमिश्नर अगर संशोधन दे रहा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एसआईआर में भी गड़बड़ी हुई, जो नाम कटे हैं वो एक तरीके से गलत ढंग से कटे हैं। उसी पर आज उत्तर प्रदेश समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बात कही कि जब कांग्रेस जिस ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह रही है, जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ सीएजी जैसी संस्था पर भी, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले सीएजी पर, राफेल के मुद्दे पर सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए। न्यायपालिका पर राहुल गांधी विदेश में जाकर के सवाल खड़े करते हैं, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे हमला बोला कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए।
0: बिल्कुल संतोष, और यही आरोप अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगाए गए बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं। अनुपम, महत्वपूर्ण सवाल अभी है कि ममता बनर्जी की आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उन्होंने तो इस मुद्दे के लिए सड़क पर वो उतर गई है, बार बार आवाज उठा रही है, वो कह रही है देखिए पहले भी मैं कह रही थी मुझे सुना नहीं जा रहा था।
4: जी देखिए, ममता बनर्जी की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि दिल्ली में जाकर खास तौर पर नेशनल लेवल जो पॉलिटिक्स है उसमें सभी जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं उनको एकजुट करने की कोशिश हो रही है, और इसी सिलसिले में अपना जो आर्च राइवल रहा है सीपीएम लेफ्ट, उसके साथ भी एमएबीबी के साथ उनकी बातचीत हुई है, और वो चाह रही हैं कि लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी जितने भी धुर विरोधी हैं बीजेपी के, सब एक साथ एक मंच पर खड़े हों, और एक ये कोशिश पहले भी हुई है और फिर से दोबारा एक कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है और दिल्ली में एक मीटिंग की बात कही जा रही है और जितनी जल्दी हो सके वो ये प्लेटफॉर्म या गठबंधन तैयार किया जाए, ये कोशिश फिलहाल ममता बनर्जी की है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा है कि लेफ्ट और टीएमसी एक साथ क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस पर सवाल उठाए हैं खासतौर पर पश्चिम बंगाल में।
5: विपक्ष एकजुट होकर अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस मुद्दे को बड़ा बनाने की रणनीति बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका भी और संतोष शर्मा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के ये हमले उस वक्त में सामने आए हैं जब चुनाव आयोग ने विवादों के बीच कल अपनी पहली बैठक की थी और अहम फैसले लिए। चुनाव आयोग ने बताने की कोशिश की कि कोई मतभेद नहीं है।
6: मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। विपक्ष के सवालों के बीच ये मतभेदों को दूर करने की कवायद थी, संदेश देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
7: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश

0: आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच चार दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है, साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
1: तो राहुल गांधी जी, पहला सवाल है, आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है। तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, निर्णय हुआ है। अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच जाइए, मेहनत करिए, जीतिए।
0: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
2: जो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधू जी को और जोशी जी को, वो तो यही ना थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते। सबसे प्रमुख चीज, बुनियाद ही उस पूरी आर्ग्यूमेंट की है, उस बुनियाद पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बैठकर? आज भी एक प्रेस नोट कर दिया, ये प्रोपेगेंडा के अलावा और क्या है?
0: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
3: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
8: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
9: आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रूमटा टीएमटी से बना है।
8: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: एकदम सॉलिड।
11: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
13: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
8: आई लाइक दिस ओनली।

0: केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
0: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
0: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
0: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
0: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
6: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
7: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
10: कौन भय में जी रहा है?
9: नागरिक जी रहे हैं।
10: हाँ, भारत में
9: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आयवन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
7: तो कौन सी बनानी है?
8: रुंगटा टीएमटी बार, एकदम सॉलिड।
7: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सीएसी विवाद पर सफाई के बाद भी जारी है संग्राम। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंदु से लेकर हिमंता तक ने कांग्रेस को घेरा। तो राहुल गांधी ने की चुनाव में फिक्सिंग की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र। कहा, सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट के समर्थन में आया है रूस। विदेश मंत्री लावरोव बोले, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का बढ़े प्रतिनिधित्व, ब्राजील का भी सपोर्ट, जर्मनी, जापान का विरोध। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्र की खुदकुशी और वायरल मैसेज के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए बनाई है एसआईटी। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिशन उज्जैन महाकुंभ के लिए अपने पुश्तैनी घर पर ही चलाया हथौड़ा। सड़क चौड़ीकरण अभियान में करीब 3 मीटर तक टूटेगा घर।

0: लगाना है अगर दुनिया के चक्कर तो क्या सचमुच लगाएं बस मंदिर के 11 चक्कर?
1: नो वीआईपी दर्शन, नो, एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से।
2: इस मंदिर का बहुत महत्व है, कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
3: इधर 11 परिक्रमा करो, जो भी मांगो मिलेगा, मिलने के बाद आप आके फिर से 108 बार घूमना पड़ेगा।
0: क्या वाकई वीजा लगना हो जाएगा आसान क्योंकि वीजा अप्रूव करेंगे खुद भगवान?
4: ये मानता है कि जो भी बाहर जाना चाहता है तो हनुमान जी की परमिशन के बिना नहीं जा सकता।
5: हम लोगों ने वीजा लगाया था बाहर जाने के लिए और हमारा एक दो बार रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन आफ्टर हम यहाँ पर आए और बहुत थोड़े ही वक्त में हमारी जिंदगी में चीजों में बदलाव आया।
6: यहाँ पे सारी विश पूरी होती है।
0: आज देखिए अद्भुत आस्था की अविश्वसनीय अर्जी और अकल्पनीय विश्वास। ईश्वर की शक्ति के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक है, लेकिन क्या ईश्वर की इस शक्ति के सामने दुनिया की महाशक्तियां भी झुक जाती हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय। जब हम दुनिया की महाशक्तियों की बात करते हैं तो हम उस दस्तावेज की बात कर रहे हैं जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं वीजा की। आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे देश जाने के लिए वीजा का आवेदन दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कितनी टेढ़ी खीर है। लेकिन क्या ऐसे में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं? दरअसल हम देश के उन अनेकों वीजा मंदिरों की बात कर रहे हैं जहां पर लोग जाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि उन्हें कठिन से कठिन दिखने वाला वो वीजा मिल जाए। पर क्या ये वाकई संभव है? आज हम जानेंगे इसी बात को और आपको उन अद्भुत मंदिरों में लिए चलेंगे, उनमें से जिसका नाम सबसे प्रमुखता से चर्चा में आता है, उस चिलकोर बालाजी मंदिर में हैदराबाद में हम इस समय मौजूद हैं, जो प्रसिद्ध तो है वीजा बालाजी के नाम से, लेकिन क्या उनकी महिमा केवल वीजा तक सीमित है या उनकी शक्ति इससे कहीं अधिक अविश्वसनीय और अकल्पनीय है?

0: कहा जाता है सच्चे मन से अर्जी लगाई जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन आस्था की अर्जी लगाकर क्या कोई सात समुंदर पार विदेश भी जा सकता है?
1: इस मंदिर का बहुत महत्व है। कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
2: मैंने वीजा अप्लाई किया था तब मैं इस मंदिर में आता था एंड सरप्राइजिंगली तब बहुत काफी जल्दी हो गया था पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग।
3: वीजा वाला जी बोलते हैं,
4: वीजा वाला जी के नाम
5: अर्जी हम लिखवाते हैं तो अर्जी में लिखा उन्होंने और उनकी मनोकामना तो तभी से ये फेमस हो गए वीजा वाले हनुमान जी के नाम से।
6: तो बहुत सालों से मैं देखती हूँ भक्त हर रोज आते हैं यहाँ पे अपना वीजा लगाने।
7: यहाँ की जो ओरा है, यहाँ की जो ऊर्जा है बहुत सकारात्मक ऊर्जा है।
8: हमारे कलयुग का प्रत्यक्ष दैवम जो है बालाजी भगवान।
0: क्या चिलकुर बालाजी में भक्तों की वीजा मुराद पूरी होने की गारंटी मिलती है?
9: जो वीजा में कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन इश्यू होता है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो पक्का क्लियर होते हैं।
0: विदेश जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है और वीजा पाने के लिए वीजा ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर उसी वीजा के लिए भगवान के दरबार में लंबी लाइनें लगें तो इसे अद्भुत आस्था का अविश्वसनीय रूप ही कहा जा सकता है। एक नहीं, हनुमान जी के अनेकों मंदिर को क्यों वीजा मिलने की गारंटी माना जाने लगा? क्यों हनुमान जी कई मंदिरों में वीजा गॉड कहलाने लगे?
10: मेरा बेटा भी अभी बाहर जा रहा है तो मैं जितनी बार भी वीजा अपनी हम बिजनेस वीजा पे भी जाते रहते हैं तो जितनी बार हम यहाँ आते हैं मांगते हैं और हमारी इच्छा हमेशा पूरी हुई है, इनकी हनुमान जी की कृपा से हमेशा पूरी हुई है।
0: सवाल तो ये भी है कि हजारों साल पुराने मंदिर और मुश्किल से 100 साल पुरानी वीजा की रवायत के बीच क्या तालमेल? सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले उस मंदिर की बात जिसकी लोकप्रियता देश के कोने कोने में वीजा बालाजी के रूप में मिलती है। हैदराबाद उस्मान सागर झील के पास चिलकुर बालाजी मंदिर। यहाँ हर रोज भक्तों की भारी भीड़ लगती है, लोग दूर दूर से बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर से जुड़ी तमाम मान्यताओं के बीच एक अद्भुत मान्यता ये है कि यहाँ विदेश जाने के लिए देश भर से भक्त वीजा की अर्जी लेकर आते हैं।
11: वीजा अर्दास से अर्जी लगा देते हैं तो पूरी हो जाती है।
12: आपके किसी जानने वाले का हुआ है?
11: हुआ है, हमारे
12: बेटे का हुआ है। कहाँ जाना था उसको?
13: यूएस
12: जाना। हाँ, पढ़ाई के लिए?
13: हाँ, नहीं पढ़ाई के लिए गया
12: तो यहाँ पर
13: लगाते के हो गया, 8 दिन में ही हो गया।
1: इस मंदिर का बहुत महत्व है। कोई भी वीजा के लिए मांगता है वो वीजा पूरी हो जाता है।
12: अच्छा,
1: इस मंदिर को बोलते हैं वीजा टेम्पल, वीजा गार्ड बोलते हैं।
12: उस पर हमेशा पूरा हो जाता है यहाँ पर?
1: हाँ, बिल्कुल पूरा हो जाता है।
0: अद्भुत है वीजा को लेकर ये मान्यता, जिसके कारण बालाजी महाराज को लोगों ने वीजा बालाजी के रूप में ही देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मंदिर की यही पहचान बन गई। हालांकि मंदिर की कई और अनूठी परंपराएं हैं जो इसे अद्भुत और अविश्वसनीय बनाती हैं। मंदिर में किसी तरह का दान पुण्य नहीं लिया जाता, इसीलिए यहाँ कोई दान पात्र ही नहीं है। मंदिर में फूल, नारियल या प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता। मंदिर में सीसीटीवी नहीं है। मंदिर में किसी तरह से वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाते, मंदिर के अंदर सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात नहीं है, मंदिर में कोई माइक या लाउडस्पीकर उपयोग नहीं किया जाता। मंदिर में इन अद्भुत प्रचलन की पूरी कहानी आपको आगे सुनाएंगे। पहले वीजा मिलने के विश्वास से जुड़ी अविश्वसनीय भक्ति के बारे में बताते हैं।
14: ये जो पर्ची है जिसमें आप लेकर 1 से 108 तक के नंबर देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पर्ची नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी लोग यहाँ प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सबके हाथों में ये पर्ची है। कोई यहाँ पर जो मन्नत मन में लेकर आया है उसके लिए उसे 11 प्रदक्षिणाएं करनी है, और जिसकी मन्नत पूरी हो गई है, जिसकी इच्छा, जिसकी जो पूजा थी ईश्वर के सामने वो पूर्ण हो गई है, वो 108 परिक्रमाएं यहाँ पर करता है। हाथ में एक कलम और ये पर्ची लिए हुए टिक मारते हुए कि एक प्रदक्षिणा पूरी हुई और अभी और कितने बाकी हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आप सबको यहाँ पर देखेंगे। मंदिर में परिक्रमाओं की अद्भुत परंपरा है। मनोकामना लेकर जो भक्त आते हैं वो 11 परिक्रमा करके अपनी कामना भगवान तक पहुंचाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए फिर 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। अब 108 परिक्रमा याद रखना कोई आसान काम तो है नहीं, सो उसके लिए पर्ची पर हर परिक्रमा के बाद एक नंबर काट दिया जाता है।
1: मांग के फर्स्ट 11 प्रदक्षिण करके फिर बाद में 108 प्रदक्षिण करते, जो भी 108 प्रदक्षिण कर रहे
14: 108।
1: हाँ, पहले 11 का 11 प्रदक्षिण करके वीजा के लिए मांगना चाहिए। वीजा पूरी हो गया, मन्नत पूरी हो गया, 108 जो भी 108 डाल रहे वो सब उनका वो मन्नत पूरी हो गई। सो
0: यानी अगर कोई मन्नत लेकर आया है तो वो 11 परिक्रमा लगाएगा और मनोकामना पूर्ण होने के बाद लौटकर मंदिर में 108 परिक्रमा लगाएगा। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसे कोई दान दक्षिणा नहीं देना, बस प्रदक्षिणा करनी है, यानी 108 परिक्रमा।
15: मेरे फादर मदर ने वीजा लिया था,
14: हाँ।
15: तो उस टाइम पे हमने 108 परिक्रमा किया था।
14: अच्छा,
15: हाँ।
14: 108 उस टाइम करना होता,
15: हाँ,
14: है।
15: उस टाइम
14: कहाँ का वीजा मिला था?
15: यूएसए का।
14: यूएस का, अच्छा।
8: ये जो परिक्रमा की पद्धति है, हमारे एक स्वामी जी है, पुजारी महाराज, हमारा बड़ा पिताजी है, ये लोग बोर खोद रहे थे तो पानी नहीं निकल रही थी, तो उधर खड़े होने के बदले में इधर आके घूमने शुरू करे, तो 11 परिक्रमा किए, वो जो बोर में से पानी आना शुरू किया।
14: अच्छा।
8: जो 11 परिक्रमा में नहीं रोके वो लोग, पूरा घूमते घूमते गए, 108 हुआ। 108 होते ही वो बोर का जो रिग है वो स्टॉप हो गया, तो वो लोग आके बोले, जब रिग तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट रिपेयर इट इमीडिएटली, तो वो लोग आके बोले, बोलते ही इनो जाने तक फिर से रिग शुरू हो गया वो ऑपरेट करने का। तो मतलब भगवान परिक्रमा बस से करके बोल रहे हैं, जो भी भगवान सूचित किए हैं हम लोग भक्तों को बोलने शुरू किए, इधर 11 परिक्रमा करो, जो भी मांगो मिलेगा, मिलने के बाद आप आके फिर से 108 बार घूमना पड़ेगा।
0: जब कोई मनोकामना लेकर आता है और 11 परिक्रमाएं लगाता है तो ये 11 परिक्रमाएं प्रतीक हैं मानव शरीर की 11 इंद्रियों की। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से बाहरी संसार की जानकारियां दिमाग तक पहुंचती हैं। 5 है कर्मेंद्रियां, जिनके माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, और 1 है उभयेंद्री, मन, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच सेतु यानी पुल का काम करता है। इस तरह इन 11 परिक्रमाओं का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब श्रद्धालु 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। इसके पीछे भी अद्भुत आध्यात्मिक कारण है। ये 108 परिक्रमाएं भगवान विष्णु के 108 नामों के स्मरण का प्रतीक है। भक्त मनोकामना पूरी होने के धन्यवाद स्वरूप भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। परिक्रमा करते समय पत्थर के फर्श पर नंगे पांव चलना होता है और गोविंदा गोविंदा या बालाजी का जाप मन में करते रहना होता है।
16: वीजा
17: बालाजी भी कहते हैं।
16: हाँ,
18: इसको ही बोलते हैं। लोगों को जो कामना करते हैं वीजा की तो मिलता है उनको।
14: देर सवेरे जानने वालों में भी लगा है।
18: बिल्कुल लगा है।
14: अच्छा
18: जी जी हाँ।
14: तो पासपोर्ट लाके यहाँ पे देते हैं।
18: हाँ, पासपोर्ट लाके यहाँ पे चढ़वाते हैं भगवान पे, बालाजी पे।
14: अच्छा,
16: टाइम लाइक इतना डिले नहीं होता है, एज सून एज जितना होता है जल्दी हो जाता है।
14: अच्छा,
16: फेथ के ऊपर है, आप कितना फेथ से यहाँ आए उतना फेथ से आपका काम हो जाता है, लेकिन हो जाता है।
14: कहते हैं वीजा बालाजी, कहते हैं
19: वीजा बालाजी 2001 में यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ जो पहले चोरी हो गई थी वो, उसके बाद हमारे पिताजी वहाँ से लेके आए तिरुपति से, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करवाए। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से जैसा तिरुपति हो गया, छोटा तिरुपति बन गया ये।
14: अच्छा,
19: तो जैसा तिरुपति में सेवा होती है वैसी सेवा करते हैं।
14: तो उसके बाद से मिलता है।
19: हाँ, 2001 के बाद से।
14: आपने सुना है किसी का? यार
20: सुना है, हुआ है, हुआ है,
14: आपके घर में भी हुआ है?
19: हमारे तो फैमिली से कनेक्टेड है।
0: लेकिन मंदिर में वीजा की अर्जी लगाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और मंदिर की महिमा क्या है?
14: हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि वीजा को लेकर ऐसी मान्यता सिर्फ चिलकुर बालाजी मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में कई और ऐसे धर्म स्थल हैं जहां भक्त इसी तरह मनोकामना लेकर और पासपोर्ट लेकर आते हैं और अद्भुत रूप में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और अधिकांश मंदिर हनुमान जी के मंदिर हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे हनुमान मंदिर में जहां श्रद्धालु कई बरसों से जल्दी वीजा मिल जाने की आस लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि वो एक सिद्ध मंदिर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौट।

0: दक्षिण दिल्ली के नेब सराय में हनुमान जी का ये मंदिर वीजा हनुमान मंदिर के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है जो लोग वीजा एप्लीकेशन रिजेक्शन के कारण परेशान हो जाते हैं वो यहाँ आते हैं और हनुमान जी के सामने माथा टेकने के बाद फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं।
1: मेरे फादर इन लॉ हैं जो उन्होंने लगाया था वीजा के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे उन्होंने अर्जी भी लगाई थी तो उनका तो हो गया है और वीजा आ गया उनका तो।
2: हाँ जी, हमारी बेटी जा रही थी तो हम किसी ने हमें बताया कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है।
3: हमारी बेटी, हमारी तमन्ना था कि उनका उनका वीजा हो जाए। हम यहाँ आए थे एक साल पहले और करीब एक दो महीने में हो गया।

0: मंदिर की मान्यता के अनुसार यहाँ भक्त आते हैं और अपनी इच्छा पर्ची के माध्यम से भगवान तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें जो नियम पालन करने होते हैं उनके बारे में भी सुनिए।
1: एक पेपर दिया जाता है उनको और एक लाल पेन और उसके अंदर श्री गणेशाय नमः और ओम हनुमते नमः लिखवा करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपने लिखनी है और नीचे लिखना है कि आपका दास जो भी आपका नाम है, जो लिखा हुआ है कागज़ वो हनुमान जी के सामने दिखाया जाता है। ऐसा फील किया जाता है कि जैसे वो पढ़ रहे और सच में वो पढ़ रहे होते हैं, ये मेरा विश्वास है। और फिर उसके बाद में उनको एक कागज़ दिया जाता है जिसके अंदर दो दोहे हैं, किष्कंधा कांड के और सुंदर कांड के। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ए तात तुम पाई, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। ठीक है, तो ये दो दोहे 11 बार पढ़ने हैं। 11 बार पढ़ने के बाद में एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करके आँखें बंद करके और फील करना है कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपने फील करना है कि आप बाहर चले गए हैं और यू आर सो हैप्पी। तो ऐसी फीलिंग के साथ में जब हम करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। 41 डेज आपने रेगुलर ये करना होता है।

0: मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि वीजा के अलावा भी यहाँ जो कोई जिस कामना के साथ आता है वो पूरी हो जाती है, लेकिन नियम वही रहते हैं, यानी पर्ची पर लिखकर अपनी मनोकामना भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना।
1: 2007 से है मैं, इसमें मनोकामना पूरी होती हैं, जैसे बीजा हो गया, गृहस्थ मनोकामना हो गई, कुछ नियम होते हैं मंदिर के, वो दिया जाता है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब बाबा का श्रृंगार होता है, फिर आकर के वो श्रृंगार लोग करवाते हैं।
0: नेबसराय हनुमान मंदिर की ही तरह दिल्ली के कोनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी यही प्रथा है। मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर वीजा ऑफिस है। वीजा ऑफिस आने वाले लोग वहां से निकलकर हनुमान जी की शरण में आते हैं।
2: कोविड के दौरान 2020 में जब पूरी दुनिया में एकदम लॉकडाउन था और शटडाउन था, उस टाइम पे मैंने और मेरे भाई ने हम लोगों ने वीज़ा लगाया था बाहर जाने के लिए, और ड्यू टू मतलब जो उस टाइम पे कंडीशंस थी और बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे थे क्योंकि एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे इकोनॉमी क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, तो हमारा एक दो बार रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन आफ्टर हम यहाँ पर आए और बहुत बार आए और मान्यता भी है, तब हमें इतना पता नहीं था, हम बस आ जाते थे जब घर वाले लेकर आते थे कि चलते हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर आए और बहुत थोड़े ही वक्त में हमारी ज़िंदगी में चीज़ों में बदलाव आया, तो हमें लगा कि एक वो भावना जो थी वो और आई थिंक स्ट्रांग होती चली गई तब से, और तब से हम जब भी इंडिया आने का हमारा होता है हम हमेशा आते हैं।
0: अक्सर वीजा ऑफिस से मंदिर के बीच श्रद्धालुओं को आते जाते देखा जाता है, जो या तो पहले मंदिर में अपनी पूजा करने आ रहे होते हैं या फिर वीजा आवेदन के बाद उसकी स्वीकृति के लिए मंदिर जा रहे होते हैं।
3: जब मैंने वीजा अप्लाई किया था तो मैं इस मंदिर में आता था, एंड सरप्राइजिंगली तब काफी जल्दी हो गया था पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग।
4: यहाँ पे सारी विश पूरी होती है, कुछ भी वीजा वीजा के भी नहीं, नौकरी की, शादी की, कुछ भी। डेफिनेटली लगता है।
5: यहाँ पे ऑफिस में आते हैं तो कई लोग आते हैं अपना बुकलेट साथ में लेके आता है, पासपोर्ट वगैरह भगवान के चरणों में लगाओ, उसके बाद में उनकी मानी जाती है, सुनी जाती है।
0: अब एक और हनुमान मंदिर में ऐसी ही मान्यता देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में भी एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसे वीजा हनुमान मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लोग विदेश यात्रा के लिए वीजा संबंधित मनोकामनाएं लेकर आते हैं और पासपोर्ट रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
6: आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आखिर हनुमान जी से ही लोग अपनी यात्राओं को लेकर प्रार्थना क्यों करते हैं। दरअसल हनुमान जी से वीजा की प्रार्थना करने के पीछे एक बहुत अद्भुत कारण है।
0: श्रद्धावान कहते हैं सबसे पहले त्रेता युग में हनुमान जी माता सीता का पता लगाने विदेश यानी श्रीलंका गए थे।
7: हनुमान जी ही गए थे तो सब ये मानता है कि जो भी बाहर जाना चाहता है तो हनुमान जी की परमिशन के बिना नहीं जा सकता, और साथ में उसकी डेस्टिनी के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका फेथ काम करता है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर अगर हमारा विश्वास होता है तो हमारा हरेक काम पूर्ण होता है। ऐसा ही नहीं है बाहर जाने का ही है कि हमें बाहर जाना है, अगर आपकी शादी संबंधित है या फिर आपकी जॉब संबंधित है या रिलेशन संबंधित है तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। और पवन पुत्र हैं और साथ में यहाँ पर वो प्लेन चढ़ा करके जाते हैं, हेलीकॉप्टर चढ़ा करके जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये हम चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।
0: इसके अलावा बचपन में हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए कई योजन की दूरी पार करके गए थे। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने लंका से कई हजार किलोमीटर दूरी पार करके द्रोणगिरी पर्वत पर यानी आज के उत्तराखंड आए थे। तो हनुमान जी को इतिहास का सबसे बड़ा यात्रिक माना जाता है, और यही कारण है कि श्रद्धालु हनुमान जी के मंदिर में विदेश यात्रा की मनोकामना लेकर सबसे अधिक उमड़ते हैं।

0: लेकिन हम आपको अब कुछ और मंदिरों की कहानी सुनाते हैं, जहां हनुमान जी ही नहीं बल्कि गणेश जी और माता के मंदिर में भी लोग विदेश यात्रा की सफलता के लिए पहुंचते हैं, और उन मंदिरों की प्रसिद्धि वीजा गॉड के रूप में हो चुकी है। तमिलनाडु के चेन्नई में भगवान गणेश का एक अद्भुत मंदिर ऐसा है, जहां विदेश जाने के इच्छुक लोग वीजा लगने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आते हैं। इसी कारण से इस मंदिर का नाम पड़ गया है लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी रुकावटों को दूर करने वाला भगवान माना जाता है, तो लोगों को जब किसी तरह की समस्या खास तौर पर वीजा से जुड़ी हुई आती है तो वो इस मंदिर में पासपोर्ट सहित अन्य दूसरे कागजात लेकर आ जाते हैं और मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
1: There is a temple in Chennai that grants.
2: चेन्नई में एक मंदिर है जो वीजा दिलाता है। मैं चेन्नई के पर्वन टिंगल में मौजूद लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर के पास मौजूद हूँ।
1: Temple was built in the year 1985 and from the
2: यह मंदिर 1985 में बना था, और साल 2000 के बाद से जो भी भक्त यहाँ वीजा या विदेश यात्रा में मदद के लिए आते थे उनमें से ज्यादातर की इच्छाएं पूरी हुई।
1: Majority of their wishes have been fulfilled and therefore
2: इसीलिए अब इस मंदिर का नाम बदलकर लक्ष्मी वीजा गणपति मंदिर रख दिया गया है। यह मंदिर इसी बात के लिए मशहूर है, यहाँ भगवान की मूर्ति बहुत छोटी है, लेकिन लोगों के मन पर इस मंदिर का असर बहुत गहरा और लगभग फिल्मी जैसा रहा है। बहुत से लोग यहाँ वीजा, H-1B वीजा और विदेश में नौकरी के मौकों के लिए प्रार्थना करने आते हैं, और उन सभी को वो मिला है जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी।
0: मंदिर के पास ही अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास, ये भी एक कारण है कि जो लोग अमेरिका का वीजा चाहते हैं वो मंदिर भी आते हैं, और वीजा में कोई दिक्कत न आए इसके लिए भगवान गणेश से प्रार्थना भी करते हैं।

0: पंजाब के जालंधर शहर से कुछ किलोमीटर दूर तलहन गांव में गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब जी है। शहीद बाबा निहाल सिंह की पुण्य स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हैं। यहां भी दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहां की मान्यता भी यही बताई जाती है कि भक्त विदेश यात्रा की अरदास लेकर आते हैं, यात्रा से पहले पासपोर्ट वीजा आदि की समस्याएं न आए उसके लिए यहां आकर माथा टेकते हैं। गुरुद्वारे में श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर खिलौने का हवाई जहाज चढ़ाते हैं। ये हवाई जहाज विदेश की हवाई यात्रा की शुक्राने के तौर पर होता है। कई लोग अपनी अरदास पूरी होने पर लौट कर आते हैं और खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं।
1: और मेरे ब्रदर ने बाहर जाना सीगा, ओदे लई मंगया सीगा ते ओदे बस ओदे विच चढ़ाउण लगे हैं। पिछले मंथ गए आ, ओ 6 तरीक नूं, 5-6 तरीक नूं।
2: अपनी मनोकामना है महाराज अपने पूरे करने। मैं अपनी मदर ना आया फर्स्ट टाइम, मदर भी मेरे आस्ट्रेलिया है, ठीक है। ते मैं हुण बेटे ना आया, अपनी वाइफ ना आया वा। ते जे महाराज ने चाहे तो फिर अगे साडा भी कुछ ना कुछ वीजा आस्ट्रेलिया लगाया ते आपा भी मन्नत ही मंगना है।
0: कई लोग अपनी या अपनों की विदेश यात्रा की अड़चनों को दूर करने की कामनाएं लेकर आते हैं।
3: वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में पंजाब पुलिस में हूँ, वैसे मन्नत मांगी है भी कोई हुंदा ही चाह भी बाहर जाने का ते किना ले दा। मैं कहा वैसे घूमन करदा ही नाल के मन्नत मांगी है, इत्थे हर एक दी मन्नत पूरी हुंदी है। आकर यहां पर काफी काफी लोगों की हुई है मन्नत पूरी, काफी वधिया नेचुरल इनकी नेचर है, इत्थे लोगों का भी वधिया। इत्थे लोग जिन्ने भी है ना लाग के जाके सारे लाहौल बाहर ही आ, क्योंकि बाबा जी की बहुत कृपा है, बहुत वधिया। तदे तो लोग आते जो मन्नत मांगते पूरी होंगी, तदे लोगों च नाले गुरु साहब जी की नाले लोगों ने लोग उम्मीद नहीं, तुम्हें पता ही है गुरु साहब के तो बहर बहर लोग जाते तदे आते, इतने जो लोग बहर जाते इतने मन्नत पूरी होंगी है।
0: आम तौर पर बहुत से लोग अद्भुत मान्यता और विश्वास के कारण गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब को हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा भी कहते हैं।
4: बाहर बैठे भी सुखोंगे ना, जो तकलीफा आ दुख दूर होंगे मन्नत वाला है जी गुरुद्वारा। मेनू खुद नूं बत्ती दित्ती साल हो गया जी आउंदे नूं, एवं आपां कहीए मन्नतां पूरी होंदियां, कोई नहीं दिखावा ग्रंथ साहिब आ उहनां दे बस।
0: अरदास पूरी होने पर चढ़ाया गया खिलौना जहाज बच्चों में बांट दिया जाता है। हालांकि इस चलन को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक कमेटी समय समय पर प्रयास करती रहती है। गुरुद्वारे को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा इतनी है कि ये देश विदेश में चर्चित रहता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रोज पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास लगाते हैं। विश्वास अनुभव से प्रबल होता जाता है और भक्तों का जमावड़ा बढ़ता जाता है। पर जरा सोचिए, इन धार्मिक स्थलों का इतिहास कितना पुराना है और वीजा का इतिहास क्या है? वीजा की जरूरत इन मंदिरों के इतिहास की तुलना में बिल्कुल नई है। इसीलिए जब मंदिर में पुजारी कहते हैं कि सिर्फ वीजा से ईश्वर की महिमा को मत जोड़िए, तो वो गलत नहीं कहते। प्राचीन काल में आज की तरह राष्ट्रीय सीमाएं नहीं थी, लेकिन राजा महाराजा अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। इतिहास में सुरक्षित यात्रा के दस्तावेज का पहला जिक्र मिलता है हिब्रू बाइबल के नहेमिया अध्याय में, जो लगभग 450 ईसा पूर्व की बात है, जब फारस के राजा के एक अधिकारी ने दूसरे प्रांत में जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने उन्हें एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था कि यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाए। ये पत्र इतिहास का पहला सुरक्षित यात्रा पत्र माना जाता है। सदियां बीती, मध्यकाल में व्यापार बढ़ा। सिल्क रूट पर चलने वाले व्यापारियों के लिए अलग अलग साम्राज्यों से गुजरने के लिए ऐसे ही शाही फरमानों की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन तब भी वीजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। वीजा शब्द का जन्म लैटिन भाषा के शब्द चार्टा वीजा से हुआ, जिसका अर्थ होता है देखा गया दस्तावेज। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक आते आते यूरोप में रेलवे नेटवर्क फैल चुका था। लाखों लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। उस दौर में लगभग बिना किसी रोक टोक के यात्रा होती थी। लेकिन फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही देशों को डर सताने लगा कि विदेशी नागरिक जासूस या दुश्मन हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए सरकारों ने अपनी सीमाओं को सील करना शुरू किया। युद्ध के दौरान पहली बार पासपोर्ट और प्रवेश अनुमति यानी वीजा को पूरी तरह अनिवार्य किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस की ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार दुनिया भर में पासपोर्ट और वीजा के मानक नियम तय किए गए और यहीं से आधुनिक वीजा व्यवस्था का जन्म हुआ।
5: तो जब चिलकूर बालाजी मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और वीजा प्रणाली लगभग 1920 के दशक से शुरू हुई थी, फिर कैसे बालाजी का मंदिर वीजा अर्जी की परंपरा से जुड़ा?

0: चिलकुर बालाजी का मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जिस जगह आज मंदिर है वहां 500 साल पहले भगवान वेंकटेश बालाजी के अनन्य भक्त रहा करते थे। भक्त आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश बालाजी के दर्शनों को जाया करते थे। एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब होने के कारण वो दर्शन के लिए नहीं जा सके और बहुत दुखी थे।
1: वो भक्त उतना दूर नहीं जा सका तो भगवान स्वयं उसके स्वप्न में आए, आप इतने दूर आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको आपके गांव में ही विराजमान हो गया हूँ, आप आके दर्शन कर सकते करके एक सांप के बिल के ऊपर खड़े होके बताए। तो अपना जो ग्रामवासियों को लेके जाके भक्त वो सांप के बिल को खोदने शुरू करे, जो जसब्बल बोलते हैं क्रोबार, वो अंदर जो भगवान की मूर्ति है उसको लगने के बाद एकदम सा रक्त आना शुरू करा, खून। तो जो खोद रहा था उसके ऊपर जो भगवान का आवेश होके, आप लोग मुझे घायल कर चुके हो, दूध का अभिषेक करो मैं अपने आप आऊँगा करके बोले। सो दूध लेकर आके डाले, वो शाम के बिल के ऊपर जो मिट्टी थी वो पूरा निकल गई, स्वामी के मूर्ति मिली, प्रकट हुई, इधर प्रतिष्ठा किए।
0: कहा जाता है कि भक्त की पुकार पर तब भगवान बालाजी वहां स्वयं चले आए और वहीं उसी स्थान पर उनका मंदिर स्थापित किया गया। भक्त के वंशज ही आज मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं। कहा जाता है कि 1980 के दशक में एक बुजुर्ग की सलाह पर कुछ छात्र यहां अमेरिका के वीजा की अर्जी लेकर आए। उनका आवेदन स्वीकार हो गया तो वो वापस यहां लौटे और 108 परिक्रमा की। धीरे धीरे इस कहानी का प्रचार होता गया, बड़ी संख्या में लोग वीजा की अर्जी लेकर आने।
1: 90s में जो है 95-96 में,
2: उस समय विदेश जाने का बहुत क्रेज था। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि वे यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर एमएस करें। वे यहां आते थे और प्रदर्शना करते थे, फिर उन्हें वीजा स्टैंपिंग मिलती थी और फिर वीजा के लिए चिलकुर बालाजी मंदिर जाने की परंपरा जैसी बनने लगी और चिलकुर बालाजी बन गए वीजा बालाजी।
0: मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो मंदिर की आस्था के मूल स्वरूप को ही प्रचलित रहने देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है और उसे एक रूप में बांधना यानी कि केवल वीजा बालाजी कहना उचित नहीं होगा, इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन भी करना चाहते हैं।
1: तो हम लोग उसका नामेनक्लेचर को अभी बदल रहे हैं। आज ही अब मैं बात देखे ना, अब मैं बता रहा था, एक्चुअली इफ यू हैड कम इन द मॉर्निंग वाज केवी क्राउड, बट स्टिल वी आर जस्ट चेंजिंग द नामेनक्लेचर, व्हिच इज आई हैव नॉट रिवील्ड इट टू एनीवन थ्रू मीडिया। वी आर कॉलिंग इट वीसा ओनली, बट विश्वरूप साक्षात्कारी बालाजी।
3: अच्छा,
1: वी फॉर विश्वरूप, सा मीन्स साक्षात्कारी।
0: वैसे इस मंदिर की जो सबसे अद्भुत बात हमें लगी वो ये कि यहाँ किसी भी तरह के दान दक्षिणा का चलन ही नहीं है।
4: हमारे पास भी एक छोटा डोनेशन बॉक्स हुआ करता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें धार्मिक संस्थानों पर सरकार के कंट्रोल से दिक्कत है। मेरे पिता डॉक्टर एमबी सौंदर्य राजन, जिनका 6 महीने पहले निधन हो गया, हम सबके लिए प्रेरणा थे। उनका कहना था कि अगर कोई मंदिर है एंडोमेंट एक्ट के मुताबिक, अगर उसकी सालाना कमाई 50,000 रुपए से ज्यादा है, सोचिए अगर किसी मंदिर की सालाना कमाई 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस मंदिर को कम्युनिटी नहीं चला सकती। सरकार जबरदस्ती एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर देगी, वही उस संस्थान को चलाएगा। इसलिए मेरे पिता ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसकी कमाई जीरो हो। हम कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखेंगे, हम भगवान के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं करेंगे। जो भी सेवा हो रही है वह वहाँ बेची जाने वाली किताबों के जरिए हो रही है। वही किताब मंदिर के अंदर की सभी गतिविधियों के लिए कमाई का जरिया है।
0: ईश्वर जब मन की मुराद पूरी करते हैं तो भक्त दक्षिणा नहीं बल्कि प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा के लिए यहाँ आते हैं। और वीजा तो केवल एक पहलू है। भक्त अनेकों इच्छाएं और प्रार्थना लिए चिलकुर बालाजी के समक्ष आते हैं।
3: नो वीआईपी दर्शन, नो एक ही लाइन है, एक ही तरफ से आप आएंगे, एक ही तरफ से। नो चढ़ावा की मनी दे देंगे, एक्स्ट्रा दर्शन या कुछ प्रसाद वगैरह नहीं। जो भी है
5: कभी नहीं,
3: ये जब से मान्यता शुरू हुई है तब से सब बंद है। या ना एंडोमेंट का कोई राज है कि आगे एंडोमेंट का भी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जो है
6: पिछले 100 साल से सेवा कर रही है
5: जी।
6: बहुत चमत्कार है, बहुत प्रभाव है। जो भी मन्नत करते हैं वो पूरी हो जाती है।
5: अच्छा।
7: जो मान्यता मांगते हैं
6: किसी
7: भी का पूरी होती है।
6: किसी को मान्यता करना वो कर सकता है।
5: कोई भी
8: हर कोई हर चीज
6: जो भी
8: हर मन्नत पूरी हो जाती
5: है,
8: हर मन्नत।
0: चिलकुर बालाजी को लेकर भक्तों के बीच कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर है भगवान के प्रति भक्तों की गहरी आस्था, जो उन्हें बार बार मंदिर की ओर खींच लाती है।
9: सच्चे विश्वास और अटूट आस्था के समक्ष किसी किंतु परंतु का कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। भक्तों को विश्वास है अपने आराध्य पर, और यही कारण है कि परंपराएं निरंतर जारी हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कशिश श्रीवास्तव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
3: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर उधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
13: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
14: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
15: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
16: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
17: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
13: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
18: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
19: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
13: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
5: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है, या इससे बहुत ज्यादा होता है?
9: कौन भय में जी रहा है?
5: नागरिक जी रहे हैं।
9: हाँ, भारत में
5: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा यहाँ देखने को मिला है। और आपको ये भी बता दें कि जलंधर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अफवाह के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। आगजनी जबरदस्त हुई है, हजारों हजार छात्रियां इकट्ठा हो गए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह की अफवाह फैली थी उस पर लगातार जांच जारी है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए भारी बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल और हंगामा देखने को मिला है। दरअसल अफवाह ये फैली थी कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की है, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन छात्रा से रेप के दावों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अब यहां तनाव बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि बड़ी संख्या में यहां तमाम छात्र पहुंच गए थे, हाईवे को जाम कर दिया गया था, जगह जगह तोड़फोड़ की गई है, कई जगहों पर आग लगा दी गई थी, तमाम जो खिड़कियां हैं शीशे हैं वो तोड़ डाले गए थे, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। भारी संख्या में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा बवाल किया है। छात्रों का कहना यह है कि जिस तरीके से यहां लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे पहले जो मैसेज था उसके बारे में कहा गया था कि यौन शोषण बलात्कार के बाद इस छात्रा ने खुदकुशी की है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बयानों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कपूरथला के जो एसएसपी हैं गौरव तुरा, उन्होंने बताया कि जो सुसाइड वाली वीडियो वायरल हो रही है वो पुरानी है, 11 तारीख को सुसाइड हुआ था और इस मामले की जांच जारी है। केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी

0: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे, और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
1: लड़की का पता चला अभी?
0: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है, और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे।
2: ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कमल जी जुड़ गए। कमल जी, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, क्या जानकारी मिल पाई? और कहा जा रहा है कि जो वायरल हुआ है, जिसके बाद ये तांडव देखने को मिला है मैसेज के, वो मैसेज बहुत पुराना है।
3: देखिए, हंगामा जरूर बरपा है और रोड अभी भी जाम है। पीछे अगर आपको नजारा दिखाएं तो छात्र अभी भी बैठे हुए हैं, और उसके पीछे जो आपको ट्रक नजर आए वो सुबह 6:30-7 बजे से खड़े हुए हैं और रास्ता खुला नहीं है। अब स्टूडेंट्स का अपना मानना है कि जो LPU बता रही है कि वो अफवाह है, फेक न्यूज है, वो एक्चुअली में हकीकत है। अब हमारे साथ स्टूडेंट्स विंग के डीन हैं, उन्हीं से सीधा बात करें। सौरभ लखनपाल सर, देर रात से हंगामा चल रहा है, आप लोग कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? SIT का भी गठन हो गया है, इसके बावजूद स्टूडेंट्स सड़कों पर बैठे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका मानना है?
4: देखिए, हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी तरह से वो इंक्वायरी चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। पुलिस के साथ हमने कहा है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएं और वो साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं। इन्वेस्टिगेशन में वो रूम नंबर में जाना चाहते हैं, रूममेट से मिलना चाहते हैं, हम ओपन है हर चीज को, CCTV कैमरा देखना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग दे वांट टू डू। देखिए, ये तो साइबर कोई हमें पता करके देना चाहिए कि पहले तो इस तरह के न्यूज़ के ऊपर किसी तरह का कोई लगाम क्यों नहीं है, सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है, इन सारे र्यूमर्स को कंट्रोल करने का एक ऑर्गेनाइज तरीका क्या है, वो एक अलग प्रोब का विषय है,
3: एक अलग प्रोब का विषय है। लेकिन भारी नुकसान हुआ आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, SP मेजर सिंह हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये पहली बार होगा कि अननोन विक्टिम है और अननोन पर्पेट्रेटर है, यानी जो जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन है वो भी अननोन है और विक्टिम भी अननोन है।
5: देखो, जो उन्होंने स्टेटमेंट पाई है, यही बात तो हम इनको बोल रहे हैं, इसमें विक्टिम कौन है, रेप किसने किया है, ये तो क्लियर होनी चाहिए ना। जो स्टूडेंट देखते हैं पे कल जब परसों इधर ऐसे हुआ था, हमने कहा पे अपना स्टेटमेंट खाओ, हमारे पास तो कोई इंटीमेशन नहीं थी। जो भी इंटीमेशन हुआ हम फौरन तौर देते उस पर एक्ट करके वो कार्रवाई कानून अनुसार करते हैं।
3: सर, लेकिन सड़कें अभी भी जाम हैं, अब उसका कैसे आप रास्ता खोलेंगे, क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स तो हैं यहाँ।
5: देखो, 400-500 स्टूडेंट है, इनका लीडर कोई नहीं है, लीडर इनके वक्रे वक्रे हैं, जब 10 से बात करते हैं 10 चेंज हो जाते हैं, 10 नए में आ जाते हैं। हम तो 2 बजे के तड़के के लगे हुए इनके पास, इसका टेबल टॉप के अगर कोई भी एजिटेशन होती है, कोई भी होता है, उसका टेबल टॉप के जरिए हल होता है ना, ऐसा तो हल नहीं होगा, उसके लिए ये राजी नहीं है। कब जो इनकी जो कंसर्न लवली के साथ इनकी डिमांड है, वो इनको बोले मैनेजमेंट मीटिंग करने के साथ बैठे हुए हैं जसपाल जी, और भी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है, वो भी राजी नहीं है। तो जो इन्होंने कहा कि अभी उनका कि जस्टिस किस चीज का दे, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन तो करने दे, FIR दर्ज कर दी हमने रेलवे रूट के तार कर दिए, उसको इन्वेस्टिगेशन करके कौन विक्टिम था, किसने किया, किस हॉस्टल में रहता था, उसका एडमिशन नंबर था, कहाँ का रहने वाला था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना।
3: लेकिन अंदर आगजनी भी हुई है, काफी वायलेंस है, आर्सन हुआ है, उस पे क्या आप लोग सेपरेट केस रजिस्टर कर रहे हैं? काफी ऐसा लग रहा है
5: वो काफी नुकसान है, आपने सभी सब देखा हुआ, उसके अकॉर्डिंगली भी कार्रवाई होगा, ठीक नहीं। जो जो रेलेवेंट हैगा, जिस जिसका कसूर है उसके वो उसके मुताबिक
2: जी
3: आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में
2: बहुत शुक्रिया कमल जी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुक करेंगे, इस खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
9: क्या चीज है वायरल है?
8: थैंक यू।
10: आप पे वो TMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
12: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन
9: एक रॉकस्टार

0: अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है,
1: पर स्टेज नहीं हिलता।
0: नो सर,
2: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठ
4: बैठ जा, बैठ जा।
3: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?

0: बार एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: कैची है वायरल है।
0: थैंक यू।
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ
1: बैठ बैठ।
2: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
1: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम
1: सॉलिड। वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। सीसी विवाद पर सफाई के बाद भी जारी है संग्राम, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। सीएम रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु से लेकर हेमंता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल गांधी ने की चुनाव में फिक्सिंग की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट के समर्थन में आया रूस, विदेश मंत्री लावरोव बोले एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का बड़े प्रतिनिधित्व, ब्राजील का भी सपोर्ट, जर्मनी जापान विरोध में। और वेस्टइंडीज के खिलाफ आज से वनडे सीरीज का आगाज, गुवाहाटी में दोपहर 2 बजे पहला मुकाबला। वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा पर रहेंगी सबकी नजरें।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने करीब 4 दशक तक दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति को करीब से देखा और समझा है। चीन से लेकर अमेरिका तक एक राजनयिक के तौर पर भारत की बात दुनिया के सामने रखी है। अलग अलग देशों के साथ बदलते रिश्तों को करीब से जाना और फिर 2019 में एक ऐसा मोड़ आया जब एक अधिकारी सीधे देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आज कहानी दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की आवाज रखने वाले एस जयशंकर की।
1: इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा।
2: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism. The predicament of the global south, it faces a 4F crisis of the security of food, fuel, fertilizer and finance. We view AI as a transformational driver for human empowerment, economic prosperity and population scale problem solving. India supports ongoing initiatives to bring peace. Even as this is underway, there is an urgent need to address the security of seafarers and supply of food grains and energy.
0: संयुक्त राष्ट्र का बड़ा मंच, दुनिया के बड़े देशों की मौजूदगी और यहाँ भारत की बात रखने वाले एस जयशंकर का अंदाज लगातार चर्चा में है। शांत चेहरा, सधी हुई भाषा और मौका आने पर बिल्कुल साफ जवाब, यही उनकी पहचान बन चुका है। विदेश मंत्री के तौर पर कई मुश्किल सवालों का सामना करते हुए उन्होंने हर बार अपना अलग अंदाज दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने वाले इस चेहरे की कहानी बेहद दिलचस्प है।
3: संयुक्त राष्ट्र का मंच, दुनिया की निगाहें, और यहाँ जब भारत की आवाज गूंजती है तो एक चेहरा खास तौर पर सामने आता है।
4: नमस्कार फ्रॉम 1.4 बिलियन पीपल ऑफ भारत।
3: एक ऐसी शख्सियत जिसने दुनिया के सामने भारत की कूटनीति का अंदाज बदला। नाम है एस जयशंकर।
5: द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द जीसीसी is rooted in a rich tapestry of history.
6: We have very good relations with the V4.
3: S. Jayashankar, जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, जो सवाल से बचते नहीं, सवाल पूछने वालों को उलझाते हैं। लेकिन जयशंकर की कहानी को सिर्फ उनके बयानों से समझना शायद पूरी तस्वीर देखना नहीं होगा। ये उस राजनयिक की कहानी है जिसने दशकों तक दुनिया को करीब से देखा।

0: अमेरिका को समझा, चीन को समझा, रूस को समझा, यूरोप की राजनीति और बदलते वैश्विक समीकरणों को करीब से जाना, और फिर जब भारत की तरफ से दुनिया के सामने बोलने का मौका आया तो सिर्फ विदेश नीति नहीं बताई, भारत का नजरिया सामने रखा।
1: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
0: एस जयशंकर के व्यक्तित्व की सबसे खास बात है उनका आत्मविश्वास, उनकी भाषा में ठहराव है, चेहरे पर गंभीरता है, और जवाब देते वक्त ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के सवाल से ज्यादा उन्हें अपने जवाब की दिशा पता हो। यही वजह है कि जब दुनिया भारत से सवाल पूछती है तो एस जयशंकर सिर्फ जवाब नहीं देते, कई बार सवाल पूछने वालों को भी आईना दिखा देते हैं।
2: Energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it.
0: रूस यूक्रेन युद्ध हो, रूसी तेल का मुद्दा हो, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते हो, चीन के साथ सीमा विवाद हो, आतंकवाद का सवाल हो, या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से भारत की नीतियों पर उठाए गए सवाल, जयशंकर का अंदाज लगभग एक जैसा रहता है, पहले भारत का हित, फिर दुनिया के सवाल।
3: हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना, पर अगर वो करें, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये ग्लोबलाइज दुनिया, इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा, और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा, और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा, तो ये वन वे नहीं होगा।
0: लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत की ये मुखर विदेश नीति सिर्फ जयशंकर के व्यक्तित्व की कहानी नहीं है, इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और विदेश नीति को जमीन पर दुनिया के सामने रखने वाला एस जयशंकर जैसा अनुभवी राजनयिक। दोनों की भूमिकाएं अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही दिखाई देता है, दुनिया में भारत के हितों और प्रभाव को मजबूती से स्थापित करना। मोदी की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता और जयशंकर का लंबा कूटनीतिक अनुभव, इन दोनों के तालमेल ने भारत की विदेश नीति को एक ऐसा चेहरा दिया है जिसमें संवाद भी है, रणनीति भी है, और अपने हितों पर स्पष्टता भी।
3: प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और कहा कि हम जो हैं हम उस दिशा में जा रहे हैं, और आप अपने फौज को कहिए कि वहाँ फायरिंग न करें। तो वहाँ फायरिंग जो है
4: वो रूस के साइड से हो रहा था और उन्होंने उस समय फायरिंग रोक दिया. हमारे बच्चे जो हैं वहाँ गए, वहाँ से पिकअप हुए, वहाँ से बस में बिठा के वो उनको बाहर ले आए.
0: जयशंकर मानते हैं कूटनीति सिर्फ मुस्कुराकर हाथ मिलाने का नाम नहीं. कूटनीति कभी बातचीत है, कभी बातचीत के बीच खामोशी है और कभी बहुत नपे तुले शब्दों में एक बेहद सख्त संदेश.
5: जिस हिसाब से कई बार ये बेधड़क विट जिसे कहें और शार्प वन लाइन रिबटल्स वगैरह देते हैं, ये पर्सनल हैबिट इनकी ट्यूनअप हुई एज अ डिप्लोमैट. ओके, दसियों साल से डिफेंडिंग इंडियाज पोजीशन, तो वो एक बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड दिखाता है. बट इनके बातचीत में लहजे में वो भी दर्शाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक डॉक्ट्रिन का शिफ्ट हुआ है, जो कि पहले हम नॉन अलाइंड या स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युटी कह ले जाए, पर अब हम क्लियरली मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इस मल्टी अलाइनमेंट के लिए किसी से अपोलोजाइज नहीं करते. कभी इनका जो स्टाइल है कॉन्फिडेंट है, कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है, लेक्चर सुनने के आदि नहीं है. ये तो पब्लिक फेस है एक देश का, भारत का, जो कि अपने को नेचुरल राइट में अब हम इस ग्लोबल स्टेज पे आ गए हैं.
0: विदेश मंत्री बनने के बाद जयशंकर की पहचान सिर्फ भारत सरकार के एक मंत्री की नहीं रही, वो भारत की बदलती विदेश नीति का सार्वजनिक चेहरा बन गए.
2: We have very good relations with the V4 countries and we know that these are countries with a very strong, very distinctive capability. These are industrial economies. Economies with great innovation and technology talent, and I think how the V4 come together is for them to decide, but we certainly welcome the opportunity to work with the V4 together.
0: आज की कहानी में जानेंगे एक अधिकारी आखिर देश का विदेश मंत्री कैसे बन गया, एक ढावे पर हुई बातचीत ने उसकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल दी, दुनिया के अलग अलग देशों में राजनयिक रहते हुए उन्होंने क्या सीखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जिंदगी में क्या बदला और आखिर वो कौन सा फोन था जिसने एक राजनयिक को सीधे राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया.
3: मिशन स्क्वायर गार्डन में जो कार्यक्रम जो हुआ, मुझे अभी भी याद है कि उनके उनके ये इंस्ट्रक्शन थे. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिस जो वाशिंगटन तक पूरे दुनिया में सुनाई दे कि हम एक किस्म से दुनिया को मैसेज कर रहे थे, भले वो इवेंट न्यूयॉर्क में. तो इसकी जो तैयारी जो थी, इसको कैसे करना था, तो मैं कहूँगा कि हमारा कंफर्ट लेवल जो है उस विजिट के बाद ज़्यादा बढ़ा.
0: ये जयशंकर की कूटनीति का कमाल है कि आज भारत अमेरिका से भी बात करता है, रूस से भी रिश्ते रखता है, चीन के सामने भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से रखता है, क्वाड में भी सक्रिय है, ब्रिक्स में भी मौजूद है और विकासशील देशों की आवाज को भी दुनिया के बड़े मंच तक पहुंचाने की कोशिश करता है.
2: At stake here are very real issues, not just words and expressions. The future of peace and international security, of climate action and climate justice. Of emerging technologies and development finance, of countering terrorism and strengthening supply chains, and of ensuring disaster resilience and preparing for pandemics, all depend on a will to cooperate.
0: सवाल कोई भी हो, मंच कोई भी हो, सामने वाला देश कोई भी हो, जयशंकर अक्सर जवाब को सिर्फ आज की घटना तक सीमित नहीं रखते, वो इतिहास का संदर्भ लाते हैं, पुराने आंकड़ों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हैं और फिर उसी संदर्भ में भारत का पक्ष रखते हैं.
4: अगर मैं खुद अपने विदेश नीति का पिछले 70-80 साल के ऑडिट करूं, तो मुझे अगर कहीं कमी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है कि हम लोग जो हैं अपने हित को सामने नहीं करते, कि कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा कि इतने रोज़ी हैं कि भाई पहले चीन को, पहले आप पहले सिक्योरिटी काउंसिल में घुस जाइए, उसके बाद मैं आऊँगा. आपको कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होता, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना ना।
0: जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को सिर्फ फाइलों, बैठकों और बंद कमरों की बातचीत तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे दुनिया के सामने एक सार्वजनिक संवाद का हिस्सा बनाया। एक तरफ मोदी की राजनीतिक दृष्टि और नेतृत्व, दूसरी तरफ जयशंकर का कूटनीतिक अनुभव और संवाद का अंदाज, इन दोनों के तालमेल में भारत की विदेश नीति की वो तस्वीर दिखाई देती है जिसमें भारत दुनिया से संबंध भी चाहता है, साझेदारी भी चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर। विदेश मंत्री के भाषणों में कूटनीति है, उनके जवाबों में रणनीति है, उनके शब्दों में भारत के हितों की प्राथमिकता है और उनके अंदाज में एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो दुनिया के साथ चलना चाहता है लेकिन अपनी पहचान और अपने हितों के साथ।
6: सर, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे देश हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं? हालांकि बहुत कड़ा रुख भारत की तरफ से रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला आया तो अदालत में होने के बावजूद जर्मन दूतावास से बयान आ गया, आपका अमेरिका की तरफ से बयान आया।
4: नहीं, देखिए ऐसा है, ये दूसरों के अंदरूनी विषय पर टिप्पणी करनी जो है ये कोई नई बात नहीं, ये लोगों की पुरानी आदत है, बुरी आदत। खाली फर्क ये है, एक ज़माना था लोग कहते थे और हम झेलते थे, अब वो ज़माना बंद हो गया, ज़माना बदल गया।
0: एस जयशंकर की कहानी सिर्फ एक राजनयिक की कहानी नहीं है, ये उस शख्सियत की कहानी है जिसने भारत की विदेश नीति को दुनिया के सामने एक नई आवाज दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ उस आवाज को दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई।
7: आज जिस शख्सियत की कहानी हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो कहानी सिर्फ एक विदेश मंत्री की नहीं है, ये कहानी उस अफसर की है जिसने करीब 4 दशक तक दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति को करीब से देखा, चीन को करीब से समझा, अमेरिका के साथ रिश्तों को संभाला, रूस के साथ भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया और फिर 2019 में एक राजनयिक सीधे देश की राजनीति के फ्रंट फुट पर आ गया।

0: चलने का अंदाज, हाथ मिलाने का अंदाज, बात करने का अंदाज और सवालों के जवाब देने का अंदाज, एस जयशंकर की हर अदा में एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देता है। दुनिया के बड़े नेताओं के बीच कभी मुस्कुराते हुए, कभी गंभीरता से सुनते हुए और कभी बिल्कुल सीधे शब्दों में भारत की बात रखते हुए। करीब चार दशक तक दुनिया को करीब से देखने वाला ये राजनयिक आज भारत की विदेश नीति का एक जाना पहचाना चेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलती भारतीय विदेश नीति को दुनिया के सामने रखने में एस जयशंकर की भूमिका भी अहम रही है। लेकिन ये अंदाज बना कैसे? एक शांत और सधे हुए राजनयिक की ये पहचान आखिर किन पड़ावों से होकर यहाँ तक पहुँची? एक वक्त था जब विदेश नीति की बातें आम हिंदुस्तानियों की रोजमर्रा की चर्चा का हिस्सा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जयशंकर के भाषणों और जवाबों ने विदेश नीति को आम बातचीत का हिस्सा बना दिया।
1: देखिए, मोदी जी और जयशंकर जी की जो जुगलबंदी है फॉरेन पॉलिसी में, ये एक तरह का टू ट्रैक मॉडल बन गया है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मोदी जी प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज लीडर टू लीडर केमिस्ट्री और बड़े जेस्टर्स और विजन, पर्सनल डिप्लोमेसी, राइट, बिग पिक्चर में लेके लीडर टू लीडर, वहां मोदी जी एक ट्रैक वो चलता है। उसके पैनल में जो ट्रैक चलता है वो मिनिस्टर जयशंकर का, जिसमें क्लियर कट भारत की जो ठोस हमारे इंटरेस्ट है उनको डिस्कस किया जाता है दूसरे देश के साथ, जिसके साथ भी हम एंगेज कर रहे हो, और हम अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करते हैं बड़े क्लिनिकल मैनर में मिनिस्टर जयशंकर। तो ये दो ट्रैक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं इस पॉलिसी में।
0: यही वो अंदाज है जिसने एस जयशंकर की सार्वजनिक छवि को बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि यह अंदाज आया कहाँ से? इसका जवाब उनकी जिंदगी के उन पड़ावों में छिपा है जहाँ पढ़ाई से लेकर विदेश सेवा तक हर कदम ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया है।

0: 9 जनवरी को नई दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, सुब्रमण्यम जयशंकर। पिता थे के सुब्रमण्यम, देश के जाने माने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व नौकरशाह। जयशंकर ने जिस घर में आंखें खोली, वहां देश की सुरक्षा, दुनिया की राजनीति और भारत के राष्ट्रीय हित जैसे मुद्दों पर चर्चा होना असामान्य बात नहीं थी। यही पारिवारिक माहौल आगे चलकर उनके सोचने के तरीके का हिस्सा बना। लेकिन जयशंकर के सफर में एक दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। रसायन विज्ञान में पढ़ाई के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में केमिस्ट्री में मास्टर्स के लिए दाखिला लिया। यानी रास्ता पूरी तरह विज्ञान का था, लेकिन मन दुनिया की राजनीति में ज्यादा लग रहा था। साल था 1973। IIT दिल्ली में पढ़ाई के दौरान एक दिन एस जयशंकर कैंपस के ढाबे पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के फॉर्म अभी भी मिल रहे हैं। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। जयशंकर ने JNU का फॉर्म लिया और दाखिले के लिए आवेदन कर दिया। जयशंकर ने अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया था। JNU में दाखिला हुआ और IIT की केमिस्ट्री से निकलकर जयशंकर पहुंच गए JNU की दुनिया में। यहां उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। दुनिया की राजनीति, सोवियत संघ, चीन, भारत और दुनिया के रिश्ते, इन सब को समझने की उनकी दिलचस्पी अब पढ़ाई का हिस्सा बन चुकी थी। यही वो दौर था जब रसायन विज्ञान पढ़ने वाला एक छात्र धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने लगा। साल 2000 में जयशंकर को चेक गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया। ये उस लंबे सफर का एक और अहम पड़ाव था। इसके बाद 2007 से 2009 तक सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे और फिर आया उनके करियर का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, साल 2009। जयशंकर चीन में भारत के राजदूत बने। करीब 4 साल उन्होंने बीजिंग में भारत की तरफ से काम किया। ये वो दौर था जब भारत चीन के रिश्तों में व्यापार भी था, साझेदारी की संभावनाएं भी थी और सीमा को लेकर चिंता भी। चीन को करीब से देखने और समझने का ये अनुभव आगे चलकर उनकी विदेश नीति की सोच में बेहद महत्वपूर्ण रहा।
1: आप बताइए मुझे कितनी सच्चाई थी इसमें। ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे चीन में, लगभग 4.5 साल आपने बिताए थे। उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हुई थी। उस स्टिपल्ड वीजा का विवाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था। वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए?
2: देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा।
1: जवाब मिल गया है सबको।
0: और इसी चीन प्रवास के दौरान 2011 में जयशंकर की मुलाकात तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी चीन के दौरे पर थे और जयशंकर वहां भारत के राजदूत। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद यही राजनयिक मोदी सरकार में देश के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा।
3: मैं पहली बार उनसे 2012 में मिला। उस समय मैं चीन में राजदूत था और पहले में कुछ देखिए, कभी कभी होता है कि आप और मैं पहले मिलते हैं तो कहीं वो केमिस्ट्री बैठती कि लगता है कि कहीं कनेक्ट होता है।
0: साल 2013 में जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। अब सामने था दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के साथ भारत का रिश्ता और अगले ही साल भारत की राजनीति में भी बड़ा बदलाव होने वाला था।
4: वक्त एक ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जयशंकर की पीएम मोदी से पहली मुलाकात की कहानी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा नाम सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
7: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
10: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: और वही कहां गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट
15: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
16: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
18: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
20: इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आयवन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
8: तो कौन सी बनानी है?
9: टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
10: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रहे हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
8: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
9: कौन भय में जी रहा है?
8: नागरिक जी रहे हैं।
9: हाँ, भारत में
8: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर जयशंकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की अमेरिका यात्रा और उसके बाद 2015 में बराक ओबामा की भारत यात्रा इस दौर की बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में शामिल है। 2018 में एस जयशंकर का विदेश सचिव के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ और मई 2018 में जयशंकर टाटा सन से जुड़े। ऐसा लग रहा था कि करीब 4 दशक का राजनयिक सफर अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन अगला साल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था।

0: 2013 में देश में लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे थे और ठीक उसी वक्त एस जयशंकर की पोस्टिंग हो रही थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले देश अमेरिका में। सितंबर 2013 में जयशंकर को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दिसंबर 2013 में उन्होंने वॉशिंगटन में जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनके सामने आसान माहौल नहीं था। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई संवेदनशील मुद्दे थे और इसी दौर में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े का मामला भी सामने आया।
1: मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा मेरे ही मंत्रालय से, जो भी होगा। और ये कोई मैं कोई ये कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि मेरे अगेंस्ट कोई चल रहा है विजिल। मैं तो सिर्फ मीडिया में बोल रही हूँ कि जो मीडिया में आया ये सारा, और मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह से मतलब ऐसे होगा कि मुझे न्याय नहीं मिले। लेकिन जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं जहां पे भी अपील कर सकती हूँ मैं वहां करूंगी अपील, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों चुप रहूं।
0: जयशंकर को भारत अमेरिका रिश्तों की इस मुश्किल स्थिति को संभालना था।
2: दिल्ली पुलिस में उन्होंने तो कंप्लेंट की है, वो जो कानून से जो करना होगा वो कर देंगे।
0: इस तनाव के बीच मार्च 2014 में एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भारत के राजदूत के तौर पर अपना परिचय पत्र पेश किया। अब जयशंकर सिर्फ अमेरिका में भारत के प्रतिनिधि नहीं थे, उन्हें एक ऐसे रिश्ते को संभालना था जो आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। फिर आया साल 2014, भारत में लोकसभा चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
3: नरेंद्र दामोदर मोदी।
0: इधर भारत में पीएम नरेंद्र मोदी बन गए और उधर अमेरिका में बैठे भारत के राजदूत एस जयशंकर के सामने एक नई जिम्मेदारी आ गई, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली यात्रा की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं और जयशंकर इस पूरी यात्रा की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत, भारतीय मूल के लोगों से जुड़ा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की यात्रा का पूरा कूटनीतिक माहौल। एस जयशंकर को समझना था अमेरिकी सत्ता के गलियारों को भी और भारत की नई सरकार की प्राथमिकताओं को भी।
4: तब हुई जब वो अमेरिका जाने वाले थे, वो जो आपको याद होगा वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला विजिट, तो उस समय जो है वो बहुत बड़ी विजिट थी और उसकी बहुत तैयारी भी करनी थी। तो और एक नई किस्म की विजिट थी, क्योंकि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कार्यक्रम जो हुआ, अभी तक ऐसा तब तक ऐसा कभी कार्यक्रम हुआ नहीं। पब्लिक डिप्लोमेसी को, कम्युनिटी डिप्लोमेसी को आप एक तो बड़े स्केल में कर रहे हैं, पर मुझे अभी भी याद है कि उनके उनके ये इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जिस जो वाशिंगटन तक पूरे दुनिया में सुनाई दे कि हम एक किस्म से दुनिया को मैसेज कर रहे थे, भले वो इवेंट न्यूयॉर्क में हो। तो इसकी जो तैयारी जो थी, इसको कैसे करना था, तो मैं कहूँगा कि हमारा कम्फर्ट लेवल जो है उस विजिट के बाद ज़्यादा बढ़ा।
0: इसके कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2015 में बराक ओबामा भारत आए। ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। भारत अमेरिका रिश्तों के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण दौर था, लेकिन जयशंकर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ओबामा के भारत से लौटने के बाद उनकी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। बराक ओबामा की भारत यात्रा खत्म हुए सिर्फ दो दिन हुए थे, दिल्ली में विदेश मंत्रालय के गलियारों में एक बड़ा फैसला होने जा रहा था। उस वक्त विदेश सचिव थीं सुजाता सिंह, उन्हें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यालय से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। मुलाकात हुई और उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते हैं। यानी जो अधिकारी कुछ महीने पहले तक अमेरिका में भारत का राजदूत था, अब उस देश के विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने जा रही थी।
5: इनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंप्रेस हुए होते रहे हैं। पहली इनकी मुलाकात शायद 2011 में आई थी, मोदी जी चाइना गए थे, वहां हुई थी। तो वहां पर इस समय चाइना में पोस्टेड थे, तो इन्होंने मोदी की विजिट को एक अच्छी खासी सक्सेसफुल विजिट मदद करके कंडक्ट करवाया था। दौरा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहली बार अमेरिका का, भी बहुत सक्सेसफुली जयशंकर ने कंडक्ट करवाया था। तो वो आई थिंक मोदी जी को इंप्रेस करा इनकी सारी एबिलिटीज को देखते हुए। ये कहेंगे कि मेरिट पर इंडिया की पोजीशन को रखना, आगे ले जाना, मोदी जी की जो विजन है उसको कन्वर्ट करना, इंडिया की विजन दुनिया के पटल पे रखना, इन सब पर अच्छे खरे उतर रहे हैं मिनिस्टर जयशंकर।
0: और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प बात है, जयशंकर उस वक्त सिर्फ एक वरिष्ठ राजनयिक नहीं थे, वो चीन में भारत के राजदूत रह चुके थे, अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात 2011 में चीन में हो चुकी थी। मोदी सरकार के पास एक ऐसा अधिकारी था जिसके पास चीन का अनुभव भी था, अमेरिका का अनुभव भी और करीब 4 दशक की विदेश सेवा का अनुभव भी। 29 जनवरी 2015 को जयशंकर की विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति हुई।
4: डिप्लोमेसी, जब आप रिलेशनशिप रिश्तों की बात करते हैं, व्हाट इज इट? इट इज दैट आपका मेरा हित कहीं मिला हुआ है या एक ही दिशा में जा रहा है। तो अब चीन जैसा देश, अब चीन, आज का चीन कैसे बढ़ा, इस लेवल तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उस समय अमेरिका का हित था कि चीन के साथ काम करें, क्योंकि उनकी जो उस समय जो मेन कॉम्पिटिटर जो थे वो सोवियत संघ था। तो दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में यही होता है कि देश जो है किसी के साथ कभी जुड़ते हैं, कभी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कभी नहीं करते। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और यह स्वार्थ नहीं, ये किस्म से मैं कहूँगा कॉमन सेंस।
0: इसके बाद करीब 3 साल विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों और बातचीत के केंद्र में जयशंकर रहे। भारत अमेरिका रिश्ते, भारत चीन संबंध, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और दुनिया के बदलते समीकरण। विदेश सचिव के तौर पर उनकी भूमिका सिर्फ मंत्रालय चलाने तक सीमित नहीं थी, उन्हें सरकार की विदेश नीति को दूसरे देशों तक पहुँचाना था और दूसरे देशों की सोच को भारत तक लाना था। लेकिन 2018 में उनका विदेश सचिव का कार्यकाल खत्म हुआ और मई 2028 में जयशंकर टाटा सन्स से जुड़ गए। करीब 4 दशक की सरकारी सेवा के बाद अब वो सरकारी नौकरी से बाहर थे। ऐसा लग रहा था कि उनका राजनयिक सफर एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही साल एक ऐसा फैसला आने वाला था जिसने जयशंकर को भारत की राजनीति के केंद्र में ला दिया।
6: एक दौर था जब भारत की कूटनीति को अक्सर बहुत नपे तुले, बहुत सधे हुए और बेहद औपचारिक शब्दों में सुना जाता था। आज भारत वही कूटनीति कहीं ज्यादा मुखर अंदाज में करता दिखाई देता है। सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है, दबाव आता है तो भारत अपना पक्ष रखता है। दो देशों के बीच रिश्ते हों या दो युद्धरत पक्षों के बीच बदलते समीकरण, भारत अपने लिए हमेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश करता दिखाई देता है। इस पूरी कहानी के बीच एक चेहरा बार बार सामने आता है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का।
7: देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया, दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित कर।
0: साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जीत गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने जा रही थी।
7: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबको हैरान कर दिया था, एस जयशंकर।
8: हाय सुब्रमण्यम जयशंकर।
0: ना उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ना वो किसी राजनीतिक दल के सक्रिय नेता थे, फिर भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और 30 मई 2019 को उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर शपथ ली।
4: नहीं, मुझे पहले से कुछ बिल्कुल पता नहीं था और जो जब मुझे बताया गया, फ्रैंकली आई वुड से टू से इट वाज अनएक्सपेक्टेड, माने शॉक नॉर्मली यूज इन अ नेगेटिव वे, बट इट वाज रियल सरप्राइज आई वुड से। तो मैं तो हैरान था, मैं हैरान था क्योंकि मेरे मन में ये कभी, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, मेरे खुद जो डिप्लोमेसी में होते हैं वो राजनीति को एनालाइज करते, वो खुद राजनीति में भाग नहीं लेते।
0: एक करियर डिप्लोमेट जो दशकों तक दूसरे देशों के साथ भारत की बातचीत करता रहा, अब खुद भारत सरकार का हिस्सा बन चुका था। जुलाई 2019 में राज्यसभा के सदस्य बन गए और अब उनके सामने सिर्फ राजनयिक जिम्मेदारी नहीं थी, अब संसद थी, राजनीतिक जवाबदेही थी और देश के लोगों के सामने विदेश नीति को समझाने की जिम्मेदारी भी।
4: विषय है आतंकवाद का, आतंकवाद की इंडस्ट्री बन चुकी है कि रिक्रूट करते हैं, खुलेआम रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, वहां से लोग आते हैं वापस जाते हैं। इसकी रणनीति क्या है कि आतंकवाद के दबाव में भारत जो है माने कॉन्फ्रेंस टेबल, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। तो आप, मैं तो उल्टा आपसे पूछूंगा कि हमने इतने साल ये बर्दाश्त क्यों किया और हमें करना चाहिए था।

0: There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem?
1: On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the, under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.
2: Har mudde par Jaishankar ka ek khas andaaz dikhai diya. सीधा सवाल, सीधा जवाब, कभी इतिहास का संदर्भ, कभी पुराने आंकड़े और कभी भारत के राष्ट्रीय हितों की बात।
3: We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to.
2: लेकिन विदेश मंत्री की भूमिका सिर्फ दुनिया के मंचों पर बोलने तक सीमित नहीं रही। काबुल का संकट हो, यूक्रेन में फंसे भारतीय हो, सूडान से निकासी हो, या किसी दूसरे संकट में फंसे भारतीय नागरिक। विदेश मंत्रालय के सामने एक जिम्मेदारी हमेशा रही, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना, यानी एक चेहरा दुनिया के बड़े मंचों पर और दूसरा चेहरा संकट के समय भारतीय नागरिकों के साथ। ...2024 में लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी और जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। अब तक एक राजदूत, विदेश सचिव और विदेश मंत्री के रूप में उनका अनुभव कई दशकों में फैल चुका था। और फिर साल 2026, दुनिया तेजी से बदल रही है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और ग्लोबल साउथ, भारत को एक साथ कई देशों के साथ रिश्ते संभालने हैं और विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर लगातार इस कूटनीतिक संवाद का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री के साथ जब मैं विदेश सचिव था तब भी मैं जाता था, अभी भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो ऐसे उसकी ऐसे बात करते हैं कि भाई आपके लीडर, और कभी कभी प्रधानमंत्री को सीधा कहते हैं, फॉरेन लीडर्स जो है, कि उनके लिए तो ये बहुत माने सचमुच कुछ अलग ही बात है। और मुझे लगता है कि इसका ग्लोबल मैसेजिंग है कि भारत की ताकत, भारत की टैलेंट, भारत की एक किस्म से भारत की फुटप्रिंट जो है अब ग्लोबल हो चुकी है।
2: 2026 में भी विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड में अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, ग्लोबल साउथ और दूसरे अहम क्षेत्रों से जुड़े उनके लगातार दौरे और संवाद दर्ज हैं। लेकिन जयशंकर की कहानी को सिर्फ तारीखों में समेटना मुश्किल है। 1955 में नई दिल्ली में जन्म, 1977 में विदेश सेवा और फिर 2019 में विदेश मंत्री, एक ऐसा सफर जिसमें हर पड़ाव अगले पड़ाव की तैयारी करता दिखाई देता है। और इस कहानी में एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, तो दूसरी तरफ दशकों की कूटनीतिक समझ रखने वाले एस जयशंकर।
4: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
3: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। टीसी विवाद पर सफाई के बाद भी जारी है संग्राम, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंदु से लेकर हेमंता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल गांधी की चुनाव में फिक्सिंग की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का भी जिक्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट सीट के समर्थन में आया रूस, विदेश मंत्री लावरोव बोले एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का बढ़े प्रतिनिधित्व, ब्राजील का भी सपोर्ट, जर्मनी, जापान का विरोध। और इजरायली स्ट्राइक में 7 अक्टूबर के हमले का आरोपी साहिद साकर ढेर, नोआ आर्गमानी और अविनातन के अपहरण में शामिल था, गजा के नुसीरात में इजरायली ऑपरेशन में काम तमाम।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं, बुलेटिन में 4 बड़ी और अहम खबरों की हम बात करेंगे। पहली जो खबर है वो पंजाब के जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है, जहां एक छात्रा की खुदकुशी के बाद रेप की अफवाह पर भारी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में भी, जहां 2 छात्राओं के लापता होने की अफवाह के बाद भारी हंगामा हुआ है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में सियासी खबरों का भी जिक्र करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उधर चुनाव आयोग की सफाई के बाद भी एसआईआर पर सियासी संग्राम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जबरदस्त जो हंगामा हुआ है उसके बारे में। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल मचा था। दरअसल आरोप ये लगाया गया कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की है। उसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। हंगामे के बीच अज्ञात लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है जिसमें रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से किस तरह हंगामा हुआ ये हमने आपको दिखाया। हजारों हजार छात्र सड़कों पर उतर आए थे, तमाम शीशों को तोड़ दिया गया, खिड़की से लेकर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आगजनी की तस्वीरें नजर आई। कहा यह गया कि हजारों छात्र एकजुट हुए थे इस अफवाह के बाद। हालांकि बाद में कहा यह गया कि अफवाह सही नहीं है, पुलिस के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस बल ने पूरा का पूरा मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराया है। अभी भी यहां तनाव बरकरार है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जलंधर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के भीतर किस तरह भारी बवाल हुआ है, चारों तरफ आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
1: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
2: लड़की का पता चला अभी?
1: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
3: एक अफवाह जिसने छात्रों के गुस्से की आग को भड़का दिया। एक अफवाह जो यूनिवर्सिटी में बड़े हंगामे की वजह बन गया। देर रात जबरदस्त बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी। भारी बवाल की ये तस्वीरें जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हैं, जहां शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
4: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, LPU ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
3: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा।
5: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
3: स्थिति बेकाबू हुई तो भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर पुलिस या यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों के इन दावों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा की खुदकुशी की वजहों की जांच की जा रही है।
2: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हैं।
3: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
6: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
7: अंदर एक सिटी बना के रखे हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं।
8: गार्ड के नाम पे गुंडे पाल रखे सर, गार्ड परेशान करते सब कुछ, लड़कियों को इसलिए धमकी देते, यूएमसी का आपका स्कॉलरशिप गायब कर देंगे, सब कुछ गायब कर देंगे सर।
6: छोटी-छोटी बातों में यूएमसी लगा देते हैं। अब कहां की सारी अथॉरिटीज हमारे राइट्स के लिए, अब कहां है वो, आए ना इधर हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए लड़े।
3: अफवाह के बाद ये प्रदर्शन गर्ल्स हॉस्टल के बाहर शुरू हुआ और फिर करीब करीब पूरे कैंपस को अपनी जद में ले लिया। इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन और बवाल हुआ। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी कमलजीत जुड़ गई। कमलजीत, अभी ताजा जानकारी क्या है, स्थिति क्या पूरी तरह से काबू में है और जो छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया है, निकलकर क्या सामने आया है, कहां से वायरल मैसेज स्प्रेड हुआ, कैसे ये छात्र एकजुट हुए और किस नाराजगी की, किस रेप की वो बात कर रहे हैं?
9: पिछले 12 घंटे से रोष प्रदर्शन जारी है। आपको एक नजर दिखाएंगे, एक एरियल व्यू का हम डिस्टेंस आपको दिखा रहे हैं। वहां पे छात्र भी जमावड़ा लगा के बैठे हुए हैं और साथ में आपको जो दोनों तरफ से ट्रक और बसेस नजर आ रहे हैं, तो आवाजाही इस नेशनल हाईवे की बंद कर दी गई है। अब आपको सैकड़ों पुलिस वाले नजर आएंगे, आपको सिक्योरिटी वाले नजर आएंगे, लेकिन कई बार पुलिस ने इनको अप्रोच किया क्योंकि पहली बात थी कि एफआईआर की जाए, एफआईआर होगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी की गठित होना, एसआईटी भी गठित कर दी गई और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लीडर्स हैं उनको उस एसआईटी में शामिल करा दिया जाएगा। लेकिन अब मांग की जा रही है कि जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं अशोक मित्तल या उनकी धर्मपत्नी यहां पर आए और स्टूडेंट से बात करें, तो जो गोल पोस्ट है वो लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन आरोप है वो बहुत संगीन है क्योंकि इनका आरोप है कि ये जो पूरी अफवाह है वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ये असलियत है जिसकी वजह से ही एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटना हुई है जहां पे सुसाइड हुआ है या फिर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं जहां पे सेक्सुअल एलिगेशन या हैरेसमेंट के एलिगेशन लगे हैं। अब पुलिस का कहना है कि इसमें कथित तौर पे ना तो कोई कंप्लेनेंट सामने आया, हालांकि आपको बता दें कि ये सब बोलने के बाद एक कंप्लेनेंट है वो सामने जरूर आए और उसके बाद उसी बेसिस पे एफआईआर को तकरीबन सुबह 10:15 रजिस्टर कर दिया गया था। लेकिन आप एक बार देखिए, आपको शोर और हंगामा यहीं से सुनाई दे जाएगा। तो लगातार उनका मांगना है कि भाई इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो और एक फेयर सिस्टम से किया जाए। वो कह रहे हैं कि जो भी जांच पड़ताल की जाएगी उससे वो सैटिस्फाइड नहीं है और एक मैसिव कवर अप करने की कोशिश की जा रही है जिससे वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि पूरा मामला जो है वो बिल्कुल फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर जबरदस्त जो हंगामा हुआ है उसकी करेंगे। छात्रा निमिषा की मौत के बाद हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आरोप अभी है कि लव जिहाद के साजिश के तहत निमिषा को फंसा दिया गया था जो उसकी मौत की वजह बन गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जांच जारी है, इसे लेकर तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस ने आरोपी आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ अली के साथ ही ये निमिषा यानी ये छात्रा जो है वो रुकी हुई थी और सुबह मौत के बाद आसिफ अली की तरफ से बताया गया कि उसने खुदकुशी की है, जबकि लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस लड़की को मार डाला गया और लव जिहाद का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? क्या निमिषा ने वाकई खुदकुशी की या उसकी मौत के पीछे का राज कुछ और ही है? निमिषा की मौत के बाद कई सवाल हैं। इस बीच बवाल गुवाहाटी की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि निमिषा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया को फंसाया गया। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH 17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
1: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: दरअसल निमिषा शनिवार सुबह गुवाहाटी के अजारा इलाके के एक होमस्टे में बेहोशी की हालत में मिली थी, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी आसिफ अली ने दावा किया है कि निमिषा ने फांसी लगाकर जान दी, लेकिन पुलिस उसके इस दावे को फिलहाल सच मानकर नहीं चल रही। हर पहलू की जांच की जा रही है और केस में लव जिहाद वाले एंगल की जांच भी की जा रही है। पुलिस होमस्टे से जुड़े दूसरे लोगों से भी जानकारी ले रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पड़ताल जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
2: मर्डर मैं एक ना जानो, एक गम ना कने की केवल मैं डेड बडी तो पाई निश्चय विचार मोर छी जने कष्ट पाए मरी से तेनेकवा शास्ति दी लगे এইখিনি মই সরকারের ওসর অনুরোধ করছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসর অনুরোধ করছো, শাস্তি তো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূর্ণ শাস্তি, সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাব লাগে। যে মানে কষ্ট পাই আছো, মোর 22 বছরীয় ছোৱালীক মারি পেলাইছে, তেনেকুৱাকে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে।
0: निमिषा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की छात्रा थी और धारापुर की रहने वाली थी। फिलहाल उसकी मौत की वजह और घटनाक्रम को लेकर कई सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। पूर्ण विकास बोरा, गुवाहाटी, आज तक।
3: और अब बात करेंगे सियासी खबरों के बारे में। SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैला रही है और लोगों को गुमराह कर रही है।
4: प्रक्रिया खत्म हो गया।
3: तो यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष के चुनाव आयोग के हमलों पर आज जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि विपक्ष देश में ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश में है जिसका असलियत से कोई लेना देना है ही नहीं। उनका एकमात्र मकसद है जनता को गुमराह कर देना और ध्यान भटका देना। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में SIR की प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों को लेकर ममता बनर्जी और CPM पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही साथ राहुल गांधी का जिक्र भी किया और बोला कि उनके मुताबिक कांग्रेस कह रही है कि SIR केरल में तो अच्छा है लेकिन पश्चिम बंगाल में बुरा है।
5: इस बार की SIR की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हाय तोबा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और अन्य दलों ने मचाई है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन किया, वो लगातार वह इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। लगातार इनके द्वारा भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता है। इलेक्शन कमीशन पे लगातार ये हमलावर है।
6: पूरे एसआईआर के दौरान एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या को पूरा विपक्ष बिहार में नहीं खड़ा कर पाया कि ये व्यक्ति बिहार के मतदाता हैं और इनका मतदाता सूची में नाम नहीं। पूरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया, लेकिन रोज प्रश्न उठ रहे। वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का पार्टी है। आपने देखा कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता विरोधी दल के का हैसियत नहीं था, लोकसभा में तो नहीं बनाया। जैसे ही उसमें भी सत्ता का लाभ मिलने वाला था तो राहुल गांधी तुरंत नेता विरोधी दल बन गए। ये लाभ लेने वाले लोग हैं।
7: कल जो 26 सितंबर को जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दोनों ही चुनाव आयुक्तों के द्वारा जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई है, एक पार्टी के नेता जी के द्वारा और उनके अन्य नेताओं के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
3: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनके डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे, पर आज जो इलेक्शन कमीशन है जिस तरीके से काम कर रहा है, तीन हमारे कमिश्नर्स हैं उसमें, सर्वसम्मति से सभी निर्णयों को लिया जा रहा है। पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है शानदार काम कर रहा है, पूर्ण निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, देश के हित में, देश की जनता के हित में, उनके उनके वोट बनवाने के लिए काम किए जा रहे हैं, ना कि किसी के वोट कटवाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
8: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर। ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है, तो पिक्चर सीधा है। इन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया, वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
3: आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इसराइल की, जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल एक आरोपी को 3 साल के बाद मार गिराया है। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमला करके इसराइल की महिला नागरिक नोआ आगामनी और अविनेतन को अपहरण कर लिया गया था, और इस हमले में साहे निदाल साक्र भी शामिल था। मोटरसाइकिल वो चला रहा था जिसको गजा के नुसीरात में ऑपरेशन करके मार गिराया गया है। IDF ने बयान जारी करके कहा है कि ये ग्लोबल जिहादी संगठनों से जुड़ा था और 7 अक्टूबर 2023 को उसने इसराइल में घुसपैठ की थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि कई महिलाओं को इसी तरह सात अक्टूबर की घटना है 2023 में अपहरण किया गया था उस म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान। इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: आगे आगे,
12: अरे उधर
11: उधर गया,
12: करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
8: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
10: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर। बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
10: अब पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
16: तो कौन सी बनानी है?
17: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
18: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
19: आई लाइक दिस ओनली।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
21: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
22: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
23: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
24: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
21: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
25: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
26: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
21: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
27: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है, या इससे बहुत ज्यादा होता है?
28: कौन भय में जी रहा है?
27: नागरिक जी रहे हैं।
28: कहाँ? भारत में।
27: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल और आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए बनाई एसआईटी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। सीएसी के विवाद पर सफाई के बाद भी जारी है संग्राम, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंदु से लेकर ममता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल गांधी ने की चुनाव में फिक्सिंग की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पर जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र। यूपी में 60 घंटे की बारिश ने मचाई है तबाही, 56 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर जिलों में सबसे ज्यादा असर। और इजरायली स्ट्राइक में 7 अक्टूबर के हमले का आरोपी साहिर साकर ढेर हुआ, नोआ और अविनेतन को अपहरण में वो शामिल था, गजा के नुसीरात में इजरायली ऑपरेशन में काम तमाम।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास बुलेटिन में। इस हिस्से में बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं सितंबर में जो सैलाब आया है उसके बारे में। देश के राज्यों में सितंबर का मॉनसून का सितम लगातार बरस रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक हर जगह मॉनसून का आखिरी दौर है और बेहद ही डरावना भी। सबसे बुरे हालात हैं छत्तीसगढ़ में। और आपको ये भी बता दें कि एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यूपी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही रवि किशन के स्पेन की भी तस्वीर और सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सितंबर में अचानक इतनी बारिश हुई क्यों है, क्या ये सामान्य मानसूनी बरसात है या फिर कुछ और ही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां भारी बारिश के बाद इंद्रावती नदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है।

0: ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है, जहाँ इंद्रावती नदी उफान पर है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। अकेले जगदलपुर में सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इंद्रावती नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते खेत खलिहान रुक गए। रात भर राहत बचाव टीमें रिहायशी इलाकों में घूमती रही ताकि मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। अब जरा इस घर को देखिए, जो पूरी तरह से इंद्रावती नदी में समा गया है। ग्राउंड फ्लोर डूब गया है, आसपास भी कुछ नहीं बचा है जहां इंद्रावती का जल ना पहुंचा हो। थोड़ा और आगे बढ़िए, रोड के आसपास भी पानी भरा है। इंद्रावती के घाटों पर जहां लोग टहलने घूमने आते थे, वो सब पानी में डूबा है। इंद्रावती नदी में पानी इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ओडिशा के कातिगुड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सितंबर की बरसात का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ है, जहां 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जगदलपुर के नगरनार इलाके में नदी किनारे बसे गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। लोगों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। जगदलपुर शहर में नदी किनारे बसे कालीपुर, प्रवीण वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, विजय वार्ड, माँ दंतेश्वरी वार्ड, आमागुड़ा, पतरगुड़ा, आसना, छपरागुड़ा, गोंडाघाट और धोबीगुड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुस गया। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। खारून नदी पर बना महादेव घाट पानी में डूब गया है। घाट के आसपास प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। सड़कों तक पानी भरा है। तो वहीं रायपुर के ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है। ये रायपुर के ग्रामीण अंचल की तस्वीर है। दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर बार डूबे हुए हैं। खारून नदी का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। खेतों के साथ साथ लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भरा है। दुर्ग की तस्वीर है ये, जहां खारून नदी उफान पर है। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश के कारण खारून नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। सड़कें पानी में डूबी हैं। घर की दहलीज पर नदी का पानी दस्तक दे रहा है। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अब जरा गरियाबंद की तस्वीरें भी देखिए। जिले की तीनों प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। गरियाबंद के त्रिवेणी संगम पर बना भगवान कुलेश्वर नाथ का मंदिर भी डूब गया।
1: पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हो रही लगातार बारिश के चलते गरियाबंद जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद जिले के राजिम में और इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं त्रिवेणी का यह संगम है, पैरी, सौंदर और महानदी का यह संगम है, जहाँ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित प्राचीन मंदिर है शिव जी का, कुलेश्वरनाथ मंदिर है, जो पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है।
0: गरियाबंद में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से छोटे छोटे नाले भी उफान पर आए। राजीव नगर पालिका परिषद के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गरियाबंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 130 सी पर भी 4 फीट तक पानी भर गया।
2: हमारे घर से आसपास अब बड़ परेशानी है। हमारा ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
3: रात में काई स्थिति रही से?
2: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
4: खाना पीना सब आराम हो गया।
3: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
4: घर में पानी भर गया ना सब।
3: कितना नुकसान हो गया?
4: सब समझदार सब भीग गए।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
5: सुकमा में लगातार 2 दिनों से बारिश है, जिसका देख सकते हैं कि सबरी जो है काफी उफान पर है। ये NHT से पूरी यहाँ 3 जगह पर NHT पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं सबरी उफान के कारण चिंदगढ़, कोंटा मुख्यालय से 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नारा भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ सितंबर में त्राही त्राही कर रहा है। लोगों के आशियाने डूबे हुए हैं। हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिए गए। आज तक ब्यूरो।
6: और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा दें जगदलपुर की, जहां इंद्रावती नदी का कहर बरपा हुआ है। इंद्रावती की चपेट में कई घर आ चुके हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये जगदलपुर के डोंगा घाट की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया और अब करीब 20 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जगदलपुर शहर में 12 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश थमने से राहत थोड़ी जरूर मिल गई है, लेकिन इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आसपास के जितने भी निचले इलाके हैं हर जगह खतरा अभी भी बना हुआ है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके तमाम लोगों को पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर जो बनाए गए हैं कैंप्स, वहां पहुंचाया जा रहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि 60 घंटे में 56 लोगों की जान चली गई। यूपी में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पानी ही पानी है और परेशानी बढ़ी हुई है। तो वहीं उन्नाव में बरसात का पानी गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट पर जमा हो गया, जबकि बांदा में सरकारी अस्पताल में पानी भरा हुआ है। देखिए जरा अस्पताल के भीतर के हालात किस तरह के हैं। यूपी में पिछले 60 घंटे के भीतर 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। जबरदस्त बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर बुरे हालात हैं। 117 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के बाद गोरखपुर समेत अलग अलग जगहों पर जलभराव की खबरें हैं।

0: उत्तर प्रदेश में मानसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का यह दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से अधिक प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेसवे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
1: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेसवे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिश करने लगी। एक्सप्रेसवे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
1: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
2: प्रशांत सिंह।
1: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
2: प्रयागराज।
1: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
2: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने
1: भरा। पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
2: अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
1: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेसवे पर जल भराव हुआ है। 1.5 महीने पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें भी देखिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। यह तर्रा का सामुदायिक अस्पताल है। यहाँ इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
3: इस प्रकार से यहाँ देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहाँ पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का भी हाल देखिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे ना जाएं।
4: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहाँ पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। प्राप्ति इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर भारी बारिश पड़ी और फसलों के नुकसान होने की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे गोरखपुर के बारे में भी, क्योंकि गोरखपुर को स्पेन बनाने का दावा करने वाले रविकिशन शुक्ला से बीजेपी पार्षद सवाल पूछने लगे हैं, अपने ही बीजेपी पार्षद उनके। ये कैसा स्पेन है जहां आम जनता की तो छोड़ ही दीजिए, सांसद के घर में भी पानी भर गया है।
6: गोरखपुर से हम गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, काहे कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का स्पेन है, किसी को नहीं दिख रहा तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला को यह शहर स्पेन से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मन से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
6: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, मॉनसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जलभराव हो गया।
7: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे, और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है, और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
8: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
7: उपेंद्र जी ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
8: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
7: स्पेन है
8: हाँ, और डूब रहे हैं, खुद डूब रहे हैं सांसद जी।
7: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
8: हाँ एकदम वायरल है।
7: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर, और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं, और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के कई मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो

0: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
1: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो,
2: पता है कैसा मैं सब सामने खड़े हमारे।
1: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है, पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी?
3: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सफाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति ना होती।
1: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
0: हेलो पार्षद जी,
1: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, आपको सपा ज्वाइन कर लिए हैं?
0: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
1: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
0: सब चालू है, तरकुलानी चालू हुआ।
3: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए, खुद सांसद जी के घर के बाहर भी जलभराव हुआ। रवि किशन खुद अपने स्पेन में ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव ही दिखा।
4: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
3: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है। जो मुश्तैदी अब दिख रही है यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता और न ही स्पेन और स्मार्ट सिटी का गुब्बारा फूटता। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
5: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
9: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: और अब बात करेंगे एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की. एशियन गेम्स में भारत को दो और सिल्वर मेडल मिले हैं. स्क्वैश में अभय सिंह और अनहा सिंह ने अपने अपने मैच में एक एक सिल्वर मेडल जीता है, तो वहीं बॉक्सिंग में भी दो और मेडल पक्के हो गए हैं. अंकुश पंघाल ने मेंस बॉक्सिंग के 80 किलोग्राम में तजाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हरा दिया. भारत की परवीन ने महिलाओं के 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की नवभोर को 5-0 से हराया है. दोनों ने अपनी अपनी वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बनाई और मेडल पक्के कर डाले. मेडल टैली में भारत के मेडल की संख्या हो गई है 32. इनमें 4 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज शामिल हैं. इंडिया 12वें स्थान पर आ गया है.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

त्योहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर की सजावट से लेकर कपड़ों, गिफ्ट, ज्वेलरी और नई गाड़ियों तक हर तरफ खरीदारी का माहौल बन जाता है। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े बूस्टर में से एक माना जाता है। इस बार भी कारोबारियों को त्योहारों से बड़ी उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स यानी CAIT के मुताबिक दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक के 29 दिनों के दौरान बाजारों में रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा से दिवाली तक 29 दिनों में 6.20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और दिवाली इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा कारोबारी मौका बन सकती है। दरअसल त्योहारों का असर केवल एक शहर या एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहता। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार बाजार को रफ्तार देते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और कई राज्यों में गणेश उत्सव के दौरान भी कारोबार में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अनुमान है कि दुर्गा पूजा के दौरान करीब 65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि होंगी। वहीं गणेश उत्सव के दौरान भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार का अनुमान लगाया गया है। खरीदारी का ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते धनतेरस और दिवाली तक पहुंचता है। यही वो दौर होता है जब बाजार में सबसे ज्यादा पैसा आता है और कारोबार अपने पीक पर पहुंच जाता है। त्योहारों में होने वाली खरीदारी का फायदा छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक को मिलता है। कपड़े, किराना, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स में मांग बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में कपड़े और गिफ्ट आइटम्स की मांग बढ़ेगी। वहीं किराना और FMCG सेक्टर में खरीदारी में तेजी आ सकती है, जबकि ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। धनतेरस और दिवाली पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा आज भी बरकरार है। वहीं नई कार, टीवी, फ्रिज और दूसरे घरेलू सामान खरीदने को भी लोग शुभ मानते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन को कारोबारियों के लिए साल का सबसे अहम दौर माना जाता है। कुल मिलाकर त्योहार सिर्फ खुशियां ही नहीं लाते, बाजार में भी नई जान भी फूंकते हैं। यही वजह है कि फेस्टिव सीजन की खरीदारी को देश की खपत और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा संकेत माना जाता है। आदित्य के राणा आज तक।

0: पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। सीसी विवाद पर सफाई के बाद भी संग्राम जारी, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंदु से लेकर हिमंता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल ने चुनाव में फिक्सिंग की कही बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने का किया सर्जिकल स्ट्राइकर्स में जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र। यूपी में 60 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, 56 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर जिलों में सबसे ज्यादा असर। और इसराइली स्ट्राइक में 7 अक्टूबर हमले का आरोपी साहिर साकरढेर, नोवा अर्गमानी और अविनातन की ओर अपहरण में शामिल था, गजा की नुस्सी रात में इसराइली ऑपरेशन में काम तमाम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का जबरदस्त बवाल, एक छात्रा से यौन उत्पीड़न की अफवाह के बाद मचा हंगामा, जांच के लिए एसआईटी का गठन। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुटे, कार्रवाई की मांग की, हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को यूनिवर्सिटी ने किया खारिज। कपूरतला में एसएसपी ने कहा कि बयानों के आधार पर अज्ञात लोगों ने पर दर्ज किया गया है मामला और जांच जारी है, गवाही के आधार पर एफआईआर में रेप की धारा। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, प्रदर्शन में लगभग 2000 से ज्यादा छात्र शामिल थे, हाईवे को भी जाम किया गया। कोयम्बटूर पुलिस का बहादुरी वाला कार्रवाई, लगभग 300 किलोग्राम गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों से भरी हुई कार का लगभग 40 किलोमीटर तक पीछा करके उसे पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान तस्करों ने सब इंस्पेक्टर को धक्का देकर भागने की कोशिश की, पुलिसकर्मी लगभग 40 किलोमीटर तक कार की छत पर लटका रहा, फिर पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। बिहार के भागलपुर में पुलिस को धमका देकर अपराधी नदी में कूदकर फरार, आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। जालौर में दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत, खेलने के दौरान अचानक सड़क पर आने से बच्चा गाड़ी की चपेट में आया, हादसे के बाद चालक मौके से फरार। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे पर थार से लगी बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक चालक और पीछे बैठा शख्स घायल, वीडियो वायरल। इसराइली रक्षा बलों द्वारा सेंट्रल गाजा पट्टी के नुसैरात इलाके में हवाई हमलों में 7 अक्टूबर के हमले का आरोपी मारा गया। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी का आश्रम की छत से कूदकर सुसाइड किए जाने का वीडियो भी आया सामने। मामला तूल पकड़े जाने के बाद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। सोनीपत के रामपाल के सतलोक आश्रम में बच्चे के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पीड़ित बच्चे के पिता ने दर्ज करवाई शिकायत। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग के बाद मामले का खुलासा हुआ, एफआईआर के बाद सेवादार को गिरफ्तार किया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग की जांच के बाद पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर सेवादार पर एफआईआर, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। छत्तीसगढ़ में लगातार बाढ़ के बाद स्थिति बिगड़ी और चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश के बाद बस्तर में बिगड़े हालात। बस्तर में लगातार बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने का काम जारी, 4000 से ज्यादा लोगों को शरण में रखा गया। रायपुर में बाढ़ से हालात बिगड़े, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन भी प्रभावित। दुर्ग में खारून नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे बसे इलाकों में भरा पानी, एसडीआरएफ की टीम ने एक परिवार की बचाई जान। यूपी के गोंडा में भी बाढ़ बारिश ने बिगाड़े हालात, प्राकृतिक आपदा के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही बारिश, कई इलाकों में आईएमडी का रेड अलर्ट भी है, अर्नब चक्रवात के बाद बदला है मौसम। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में लगातार 48 घंटों से बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के चलते जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चल रही है हवा। बाराबंकी में भारी बारिश का कहर, पेड़ दीवार गिरने से 3 की मौत, 700 से ज्यादा गांव में बिजली गुल। फरुखाबाद में रेल ट्रैक पर जलभराव से ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार, सड़कों पर भरा 3 फीट तक पानी और यूनिपोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे कार सवार। गोरखपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में मुश्किलें। पीलीभीत में 48 घंटों से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर अब गांव-गांव पर, पुलिस ने अलर्ट किया जा रहा। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन की नजर। उन्नाव में लगातार 36 घंटों से रिमझिम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज और रुक रुक कर हो रही है बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट। हिमाचल के किन्नौर में सीमांत इलाकों में ताजा बर्फबारी फिर से शुरू हुई और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, बढ़ी ठंड और बर्फबारी होने से नजारा खूबसूरत हुआ। चमोली में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर, भारत चीन सीमा पर 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी। चमोली में मौसम का कहर, बर्फ से चमक उठी है बद्रीनाथ की चोटियां, ठंड के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब। भारी बारिश के अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा फिलहाल स्थगित, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है, संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन मुस्तैद। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर, तापमान में गिरावट। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा आज तक के लिए रोकी गई है और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। टिहरी गढ़वाल में मौसम का मिजाज बदला, लगातार जोरदार बारिश हुई। पिथौरागढ़ में 24 घंटों से लगातार बारिश के चलते मलबा पत्थर गिरने से कई सड़कें बाधित, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंसे सैकड़ों यात्री। श्रावस्ती में बारिश के चलते परेशानी, तेज हवाओं ने भी जनजीवन को प्रभावित किया, राप्ती नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर इस समय ऊपर बह रही है। बैंकॉक में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़क पर नाव चलाते दिखे लोग। बैंकॉक में 48 घंटों में लगभग 300 mm बारिश। थाईलैंड में भीषण बाढ़ से तबाही, राजधानी बैंकॉक में बारिश के चलते 50 जिले डूबे हैं, सड़कें समंदर बन गए हैं और घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ से राहत के लिए 233 अस्थायी शेल्टर्स तैयार, लगभग 4,200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर नॉर्थ ईस्टर तूफान का बड़ा कहर, 400 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल, अंधेरे में डूबे हैं शहर, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इमरजेंसी का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग, 17 लोगों की मौत की खबर, 15 लोग घायल। मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर वाटर लॉगिंग, जलभराव का वीडियो आया सामने। गोरखपुर में जलभराव को लेकर सांसद रवि किशन और पार्षद भी आमने सामने, पार्षद ने शहर की बदहाली बताई तो रवि किशन ने पूछा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया क्या। गोरखपुर में भारी बारिश से जलभराव का जायजा लेने सड़कों पर उतरे सांसद रवि किशन, मेयर और अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रोहतास में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। रोहतास में शेरशाह सूरी के मकबरे के पास रखरखाव के अभाव में दूषित हुआ तालाब, तस्वीर भी आई सामने। सिंधु के आदित्यनाथ ने एसआईआर पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि एसआईआर पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में पहले भी एसआईआर हुए हैं, हार पर चुनाव आयोग को दोष देते हैं और जीतने पर कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों पर कांग्रेस को भरोसा ही नहीं, कांग्रेस ने देश के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर वोट चोरी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर बोला हमला, कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सिमरेखा गुप्ता ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें बड़ी संख्या में वोट काटे जाने की बात की, कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को ही वोट चोरी बताकर पेश करना गलत है। सिमरेखा ने विपक्ष के वोट चोरी जैसे आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ उठाए गए सवालों का जवाब जनता के सामने रखा। सीएम शिवेंदु अधिकारी ने भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और विपक्ष को घेरा, कहा कि एसआईआर केरल में तो अच्छा लगता है लेकिन पश्चिम बंगाल में बुरा। सीपीएम और ममता के गठबंधन पर वार करते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि जिस सीपीएम और वामपंथी के शासन के अत्याचारों के खिलाफ लड़कर सत्ता में वो आई थी, अब उनकी दोस्त बन गई है। एसआईआर विवाद को लेकर असम के सीएम हेमंता ने भी विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए भारत की जनता से माफी मांगने का समय आया। हेमंता ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका एकमात्र मकसद भारत के लोकतंत्र को नष्ट करना है। चुनाव हारने के बाद ड्रामा शुरू कर देते हैं। सितंबर को होने वाली गठबंधन इंडिया की बैठक पर हेमंता का तंज। कहा कि गठबंधन इंडिया हारे हुए निराश लोगों का गठबंधन है और इस बैठक का जनता पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं। इसमें सुप्रीमो मायावती ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर्स में बदला, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के लिए रामजी गौतम और राजा राम को प्रभारी बनाया गया। बाढ़ प्रभावित राज्यों में ईशान आनंद को भेजने का प्लान है, पार्टी के लोगों को प्रभावित जनता की मदद करने का भी निर्देश। डीएमके ने आरटीआई में छूट को लेकर टीवी के सरकार की आलोचना की। कहा कि बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम तमिलनाडु में हुए अपराधों की संख्या के बारे में पूछ ना सके। विरोध के बाद तमिलनाडु सरकार का यूटर्न, लॉ एंड ऑर्डर विभाग को आरटीआई से छूट देने वाला आदेश रद्द। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से देश के लोगों को संदेश दिया। 138वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एलओसी के उस पार जाकर हमने हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की उसे देख दुनिया हैरान थी। मन की बात कार्यक्रम में आतंकवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहा है और उसके नतीजे भी स्पष्ट हैं। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस जनता पार्टी के मिलन कार्यक्रम में पहुंचे आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके साथ 10 से ज्यादा समर्थकों को भी पकड़ा गया। सीजेपी ने अज्ञात स्थान पर ले जाने की बात कहते हुए दावा किया कि उनके समर्थकों को शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बावजूद हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक को संबोधित किया। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर। यूएनजी में जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और मुंहतोड़ जवाब तो देते रहेंगे। जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन कहा सीमा पर कोई सरकार इसमें शामिल हो तो उसे जिम्मेदार ठहराना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष और टकराव हमारी सबसे बड़ी चिंता, समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया जाना स्वीकार नहीं। संबोधन में जयशंकर ने फिलिस्तीन को भारत की मानवीय मदद का जिक्र किया। कहा कि शांति सिर्फ जंग खत्म करने से नहीं, स्थिरता, सुरक्षा और भरोसा भी जरूरी। आचार्य पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज का 52वां जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। सिंह से 2028 को लेकर सड़क चौड़ीकरण की जद में मुख्यमंत्री मोहन यादव का पैतृक मकान आया और घर का लगभग 2.5 मीटर से ज्यादा का हिस्सा टूटा भी। ऐसे में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22वीं वर्षीय छात्रा निमिषा ठाकुरिया की होम स्टे में मौत। शुक्रवार रात प्रेमी आसिफ अली के साथ रुकी थी। निमिषा की मौत मामले में युवक आसिफ हिरासत में लिया गया। प्रेमी ने छात्रा की मौत को खुदकुशी बताया। वहीं बीएचपी ने मामले को लफजेहाद। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। किन आरोपों में गिरफ्तारी हुई इसका खुलासा नहीं। दिल्ली के अलीगांव में 2000 घरों को तोड़ने का नोटिस, इलाके में लोग अब धरने पर बैठ गए। ओडिशा में खोरधा में डीजे की तेज आवाज के बीच में पीएनबी भवन की छत गिर गई, इसमें एक की मौत, 10 से ज्यादा का। बोकारो में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर गिरा खिलाड़ी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मौत की पुष्टि कर दी। मुंगेर में ट्रक चोरी के बाद शराब मामले में फंसी बिहार पुलिस, एसपी के दो सब इंस्पेक्टर को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। पटना में गैरेज संचालक को अपराधियों ने मारी गोलियां, हालत नाजुक है। राजस्थान के भिवाड़ी की के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग 2 घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई। गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। आणंद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम और लाखों का सामान जलकर राख। ग्रेटर नोएडा में खड़ी बस में अचानक लगी आग, दमकल के 3 गाड़ियों ने लगभग आधे घंटे के बाद आग बुझाई। मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, जोरदार टक्कर का वीडियो भी सामने आया। सूरत में सालों पुराना विशाल पेड़ अचानक हुआ धराशायी। पेड़ गिरते ही लोगों में मची अफरा तफरी। 3 बाइक इसमें दबी। मामला सीसीटीवी में कैद। बरेली में तेज हवा बारिश का कहर। कार पर भर भरा कर गिरा विशाल पेड़। बाल बल बचे लोगों की जान। बांदा में भारी बारिश के बीच सीएनजी सिलेंडर लदे हुए ट्रक पर गिरा एक बड़ा पेड़ और बड़ा हादसा टला। बांदा में बारिश काल बनी है और कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत और सर्पदंश से 2 लोगों की जान चले गई। 32 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में LIC बिल्डिंग में भीषण आग से मचा हड़कंप। 3 घंटों तक धधकती रही आग। एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो के नागोया पहुंची और IR की कप्तानी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन से किया सफर। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर का उठाया लुत्फ और सफर के दौरान बेहद रिलैक्स्ड मस्ती के मूड में दिखाई दे। बुलेट ट्रेन में टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें आए समय BCCI ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर की शेयर। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारतीय टीम का अपना पहला मुकाबला। 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है।

0: और हम बात करते हैं पंजाब के जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए भारी बवाल की। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। दरअसल आरोप यह लगा कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, यह आरोप लगा, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। हंगामे के बीच पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं और साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे दें कि अब रेप की धारा जोड़ दी गई है। जबरदस्त हंगामा हुआ, प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, संस्थान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। दरअसल जो छात्र थे वो बेकाबू हो गए। उन्होंने आरोप लगाया यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर, उनकी तरफ से आरोप था। ऐसा उनका गुस्सा भड़का कि पुलिस को नियंत्रित करते करते समय लग गया और बाद में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और इसमें रेप की धाराएं जोड़ दी गई हैं। आगजनी भी उन्होंने की।
1: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्परेट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
2: लड़की का पता चला अभी?
1: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई।
3: एक अफवाह जिसने छात्रों के गुस्से की आग को भड़का दिया। एक अफवाह जो यूनिवर्सिटी में बड़े हंगामे की वजह बन गया। देर रात जबरदस्त बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी। भारी बवाल की ये तस्वीरें जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हैं, जहां शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
4: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, LPU ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
3: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहां हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा।
5: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
3: स्थिति बेकाबू हुई तो भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर पुलिस या यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों के इन दावों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा की खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
6: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया। पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है, वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हैं।
3: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
2: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
7: अंदर एक सिटी बना के रखे हैं, बात बाहर नहीं निकलने देते हैं।
8: गार्ड के नाम पे गुंडे पाल रखे सर, ये गार्ड परेशान करते हैं सबको, लड़कियों को इसलिए धमकी देते हैं, यूएमसी का आपका स्कॉलरशिप गायब कर देंगे, सब कुछ गायब कर देंगे सर।
3: अफवाह के बाद ये प्रदर्शन गर्ल्स हॉस्टल के बाहर शुरू हुआ और फिर करीब करीब पूरे कैंपस को अपनी जद में ले लिया। इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन और बवाल हुआ। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जिस गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहां पर जाकर छात्राओं से हमारे सहयोगी कमलजीत संधू ने बातचीत की है, दिखाया है, आपको दिखाते हैं।
9: एलपीयू में हंगामा बरपा है और बात आ रही है रूम नंबर 504 में, जहां पे ये कथित घटना घटी है। हम गर्ल्स हॉस्टल नंबर 3 में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जो रूममेट्स हैं वो एक साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये जो बात चल रही है कि रेप हुआ है और आप ही के रूम में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
10: हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी रूम्स का हमें कोई आइडिया नहीं है।
9: आपका क्या कहना है? आपके पेरेंट्स ने फोन किया, वर दे नर्वस, कुछ बोला उन लोगों ने? कुछ
10: नहीं।
9: क्या हुआ था? कुछ लोग क्या आए थे पूछने के लिए?
10: जी, सुबह सुबह पुलिस वाले आए थे हमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, आपने कुछ सुना है क्या ये सब? हमने बोला कि हमें नहीं पता। क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कोई आइडिया है ऐसा कुछ हुआ है? हमने बोला नहीं, हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है। बट सारा प्रोटेस्ट हमें रात को पता चला है, हमने खुद जाके देखा है। और ऑब्वियसली अभी वार्डन हमें कुछ नहीं बता रही हैं, कुछ भी नहीं बता रही हैं केस से रिलेटेड, कि हुआ है नहीं हुआ है किसी सवाल।
9: कितनी लड़कियां उस रूम में?
10: हम 3 हैं
9: बस। और आप बोल रहे हो कि आपके रूम में इस तरह से कुछ नहीं हुआ?
10: हमारे रूम का नाम फालतू में आ रहा है बस।
9: तो ये कह रही है कि जो कथित घटना है वो बोल रहे हैं कि हमारे रूम में तो नहीं हुआ है, लेकिन हंगामा जो है जो एलपीयू में लगातार चल रहा है, जहां पे छात्र विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, याद करिएगा कि इस पे एफआईआर हो चुकी है। और खास तौर पे अगर हम बात करें, एक एसआईटी गठित कर दी गई है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन छात्र हैं वो मान नहीं रहे हैं और सड़कों पे विरोध प्रदर्शन जारी है।
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रहे हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: कहाँ? भारत में।
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। पुलिस ने जांच के लिए बनाई SIT, अज्ञात के खिलाफ केस। CEC विवाद पर सफाई के बाद भी संग्राम जारी, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। CM रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री योगी, शुभेंदु अधिकारी से लेकर हिमंता तक ने कांग्रेस को घेरा। तो राहुल की चुनाव में फिक्सिंग के बाद मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूपी में 60 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, 56 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान। सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर जिलों में सबसे ज्यादा असर। और इसराइली स्ट्राइक में 7 अक्टूबर हमले का आरोपी साहिर साकर ढेर, नोआ अर्गामानी और अविनातन अपहरण में था शामिल। गजा के नुसी रात में इसराइली ऑपरेशन में काम तमाम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अब सियासी खबरों की। SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के चुनाव आयोग के हमलों पर जबरदस्त पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदाराना है। CM योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर जो जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी कहा कि विपक्ष देश में ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका एकमात्र मकसद जनता को गुमराह करना है, ध्यान भटकाना है। साथ ही पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला और उन्होंने बंगाल में SIR प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों को लेकर ममता और CPM पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही राहुल गांधी का जिक्र भी कर उन्होंने हमला बोला। उनके मुताबिक कांग्रेस कह रही है कि SIR केरल में तो अच्छा है लेकिन पश्चिम बंगाल में बुरा है।
1: इस बार की SIR की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हाय तोबा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और अन्य दलों ने मचाई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन किया, वो लगातार वह इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। लगातार इनके द्वारा भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता है। इलेक्शन कमीशन पे लगातार ये हमलावर हैं।
2: पूरे SIR के दौरान एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या को पूरा विपक्ष बिहार में नहीं खड़ा कर पाया कि ये व्यक्ति बिहार के मतदाता है और इनका मतदाता सूची में नाम नहीं। पूरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया लेकिन रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का पार्टी है। आपने देखा कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता विरोधी दल के का हैसियत नहीं था लोकसभा में तो नहीं बनाया, जैसे ही उसमें भी सत्ता का लाभ मिलने वाला था तो राहुल गांधी तुरंत नेता विरोधी दल बन गए। ये लाभ लेने वाले लोग हैं।
3: कल जो 26 सितंबर को जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दोनों ही चुनाव आयुक्तों के द्वारा जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई है, एक पार्टी के नेता जी के द्वारा और उनके अन्य नेताओं के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
4: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनके डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे, पर आज जो इलेक्शन कमीशन है जिस तरीके से काम कर रहा है, तीन हमारे कमिश्नर्स हैं उसमें, सर्वसम्मति से सभी निर्णयों को लिया जा रहा है, पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है शानदार काम कर रहा है, पूर्ण निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, देश के हित में, देश की जनता के हित में, उनके उनके वोट बनवाने के लिए काम किए जा रहे हैं, ना कि किसी के वोट कटवाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियाँ माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
5: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर, ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है तो पिक्चर सीधा है। इन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेड ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया, वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी, पुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: चुनाव आयोग ने विवादों के बीच कल अपनी पहली बैठक की है, अहम फैसले लिए हैं। चुनाव आयोग ने बताने की कोशिश की है कि हमारे बीच तो कोई मतभेद ही नहीं है। चुनाव आयोग की सफाई के बाद अब एक बार फिर सियासत तेज है।
6: मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। विपक्ष के सवालों के बीच ये मतभेदों को दूर करने की कवायद थी, संदेश देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
7: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
6: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है, असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है, साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
8: राहुल गांधी जी, पहला सवाल है, आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है। तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए थे, निर्णय हुआ है। अपोजिशन पार्टीज को मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के बीच जाइए, मेहनत करिए, जीतिए।
6: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
9: तो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधु जी को और जोशी जी को, वो तो यही ना थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते। सबसे प्रमुख चीज, बुनियाद ही उस पूरी आर्ग्यूमेंट की है, उस बुनियाद पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बैठकर? आज भी एक प्रेस नोट कर दिया, ये प्रोपेगेंडा के अलावा और क्या है?
6: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: विवादों के बाद चुनाव आयोग ने पहली बैठक को लेकर एक बार फिर से इसके बाद सियासत तेज दिखाई दी और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे और बयानबाजी हुई।
10: मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो पीसी नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो पीसी नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव यह सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके मुख्य चुनाव आयोग के उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को, मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
11: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है, वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है। मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह रहा है, वह अपरिपक्व है, एब्सोल्यूटली इमैच्योर है, क्योंकि इस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है।
0: आगे बढ़कर बात करेंगे सितंबर में आए सैलाब के। देश के कई राज्यों में सितंबर का मॉनसून का जो सितम है वो बरसा है, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक। हर तरफ मॉनसून का आखिरी दौर बेहद डरावना साबित हो रहा है। सबसे बुरे हालात तो छत्तीसगढ़ में दिखे हैं और एक एक करके तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम पहले बात यूपी की करते हैं, जहां पर रवि किशन ने स्पेन की भी सच्ची जो सच्चाई है वो आपको दिखाएंगे, जो स्पेन के दावे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि सितंबर में अचानक कितनी बारिश हुई, क्यों है, क्या ये सामान्य मानसूनी बरसात है या फिर कुछ और। लेकिन छत्तीसगढ़ की आप तस्वीर सबसे पहले देखिए, भारी बारिश के इंद्रावती नदी उफान पर है। बारिश के बाद छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, हजारों लोग प्रभावित हुए। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों तो वहां तो पानी पानी ही दिखाई दे रहा है।

0: ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है, जहाँ इंद्रावती नदी उफान पर है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। अकेले जगदलपुर में सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इंद्रावती नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते खेत खलिहान रुक गए। रात भर राहत बचाव टीमें रिहायशी इलाकों में घूमती रही ताकि मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। अब जरा इस घर को देखिए, जो पूरी तरह से इंद्रावती नदी में समा गया है। ग्राउंड फ्लोर डूब गया है, आसपास भी कुछ नहीं बचा है जहां इंद्रावती का जल ना पहुंचा हो। थोड़ा और आगे बढ़िए, रोड के आसपास भी पानी भरा है। इंद्रावती के घाटों पर जहां लोग टहलने घूमने आते थे, वो सब पानी में डूबा है। इंद्रावती नदी में पानी इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ओडिशा के कातिगुड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सितंबर की बरसात का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ है, जहां 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जगदलपुर के नगरनार इलाके में नदी किनारे बसे गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए, लोगों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। जगदलपुर शहर में नदी किनारे बसे कालीपुर, प्रवीण वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, विजय वार्ड, माँ दंतेश्वरी वार्ड, आमागुड़ा, पतरगुड़ा, आसना, छपरागुड़ा, गोंडाघाट और धोबीगुड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुस गया। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। खारून नदी पर बना महादेव घाट पानी में डूब गया है। घाट के आसपास प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। सड़कों तक पानी भरा है। तो वहीं रायपुर के ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है। ये रायपुर के ग्रामीण अंचल की तस्वीर है। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर बार डूबे हुए हैं। खारून नदी का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। खेतों के साथ साथ लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भरा है। दुर्ग की तस्वीर है ये, जहां खारून नदी उफान पर है। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश के कारण खारून नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। सड़कें पानी में डूबी है। घर की दहलीज पर नदी का पानी दस्तक दे रहा है। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अब जरा गरियाबंद की तस्वीरें भी देखिए। जिले की तीनों प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। गरियाबंद के त्रिवेणी संगम पर बना भगवान कुलेश्वर नाथ का मंदिर भी डूब गया।
1: पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हो रही लगातार बारिश के चलते गरियाबंद जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद जिले के राजिम में, और इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं त्रिवेणी का यह संगम है, पैरी, सौंदर और महानदी का यह संगम है, जहाँ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित प्राचीन मंदिर है, शिव जी का कुलेश्वरनाथ मंदिर है, जो पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है।
0: गरियाबंद में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से छोटे छोटे नाले भी उफान पर आए। राजीव नगर पालिका परिषद के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गरियाबंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 130C पर भी 4 फीट तक पानी भर गया।

0: में का स्थिति रही से?
1: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
2: खाना पीना सब आराम हो गई हमारी,
3: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
2: घर में पानी भर गया ना सब।
3: कितना नुकसान हो गया?
2: सब समझदार सब खींच गए।
4: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देखिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोंटा इलाके में शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। झापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
5: सुकमा में लगातार दो दिनों से बारिश है, जिसका देख सकते हैं कि सबरी जो है काफी उफान पर है। ये NH30 से पूरी यहाँ तीन जगह पर NH30 पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं सबरी उफान के कारण चिंदगढ़ कोंटा मुख्यालय से 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है।
4: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलमपल्ली नारा भी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ सितंबर में त्राही त्राही कर रहा है, लोगों के आशियाने डूबे हुए हैं, हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिए गए। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि 60 घंटे में 56 लोगों की जान चली गई। यूपी में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पानी से परेशानी बढ़ी है। उन्नाव में बरसात का पानी गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट पर जमा हो गया, जबकि बांदा में सरकारी अस्पताल में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां अस्पताल में आपको जहां मरीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सब पानी ही पानी दिखाई देगा। सड़कों पर आप गोरखपुर में तस्वीरें देखिए, ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां सांसद भी रात को गलियों गलियों और सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। भारी बरसात के चलते ये मुश्किलें देखने को मिली हैं। खबरों का सिलसिला जारी, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
10: क्या चीज है वायरल है?
9: थैंक यू।
11: आप पे वो DMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
13: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
12: आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: उनादान परिंदे
13: बैठ जा।
11: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: This is a regime of the army, by the army, and for the army.
3: Mortar must never be weaponized.
4: Tell us when you stop supporting terrorism.
5: UN mein Pakistan ke jhoot ki udi dhajjiyan.
2: Question.
5: भारत ने शहबाज शरीफ को दिया करारा जवाब. लादेन से लेकर आतंकवाद तक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई. दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ. आतंकी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली करार दिया.
2: Is a regime of the army, by the army, and for the army. Their puppets may come and go, but let us have no illusion who calls the shots.
5: UN ke manch ka istemal karte hue Pakistan ke PM Shahbaz Sharif ne Kashmir ka raag alapte hue Kashmir ko jugular vein yani jeevan rekha bataya tha.
3: Kashmir has and always will be Pakistan's jugular vein.
5: शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा.
2: दिस इज एन इंटेग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ माई कंट्री एंड विल ऑलवेज रिमेन सो. बट इफ वी मस्ट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. आस्क द पीपल ऑफ रावलकोट अबाउट द वॉन्टन किलिंग्स, the brutal violence and the denial of basic rights that they have long experienced.
5: Operation Sindoor ke baad se Sindhu ke pani ko taraste aatanki desh Pakistan ke PM ne UN ke manch se Bharat ko gidad bhapki dete hue jang ki baat kahi.
3: Water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war.
5: जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जंग की गीदड़ भपकी देता दिखा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और आतंकियों के लिए न भागने की जगह होगी न छिपने की.
2: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised and continued terrorism by Pakistan will have consequences.
5: Yahi nahi, Bharat ne duniya ko ye bataya ki kaise Pakistan ne 9/11 aatanki hamle ke mastermind Osama bin Laden ko panah di thi. Saath hi UN ke samne Bharat ne Pakistan mein dharmik asahishruta aur alpsankhakon ki sthiti ka mudda bhi uthaya. Aaj tak bureau.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीईसी विवाद पर सफाई के बाद जारी संग्राम, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंद्र अधिकारी से लेकर हेमंता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल ने भी चुनाव में फिक्सिंग की बात कही। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने पर किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया भी थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र भी किया। उत्तर प्रदेश में 60 घंटों की बारिश ने मचाई तबाही, 56 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घरों को हुआ नुकसान, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा असर। इजराइल स्ट्राइक में 7 अक्टूबर हमले का आरोपी साहिर, साका, ढेर, नोवा, अगमानी और अविनातम और के अपहरण में था शामिल, गाजा के नुसीरत में इजरायली ऑपरेशन में काम तमाम।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मिडिल ईस्ट की जंग अब बढ़ते बढ़ते हिंद महासागर और यूरोप तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ अपने मिड टर्म चुनावों को लेकर चिंता में है, लेकिन पूरी दुनिया इस समय एक विनाश के गेटवे पर खड़ी है। बस एक और बड़ी गलती, एक और बड़ी चूक और फिर से एक नए विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। आज रणभूमि में बात करेंगे इन्हीं चिंतित करने वाली खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके लिए क्या है आज रणभूमि में खास। सबसे पहले हम रणभूमि स्पेशल में आज युद्ध के साथ साथ भविष्य में नए जंग की आशंकाओं को लेकर भी खबरों का जिक्र करेंगे और कुदरत के क्रोध के सामने लाचारी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर, आपको बताएंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका ने फिर से महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने को लेकर तेहरान के 7 दिन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज में 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और बताने की कोशिश की है कि इलाका अब भी उनके नियंत्रण में है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण वार पलटवार अब भी जारी है, जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें भी मिल रही है। आशंका यह भी है कि अब यूरोपीय संघ भी और यूरोप के कई देश भी इस जंग में कूद सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में चौथी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर के संबोधन की वो गूंज, जिसने दुनिया के बड़े बड़े मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद पर जबरदस्त लताड़ लगाई। रणभूमि स्पेशल की आखिरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे मौसम की एक ऐसी मार जिसके सामने महाशक्ति अमेरिका भी लाचार बेबस नजर आ रहा। रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ विश्लेषण और इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर भी होंगे, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी एशिया की खबरों को लेकर। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच शांति की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2-2 कह दिया है कि उन्होंने ईरान के पीस प्लान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कहने को तो बेशक ईरान को अभी भी आधिकारिक जवाब का इंतजार है, लेकिन सच तो यही है कि महायुद्ध की शुरुआत और शुरू होने की कगार पर एक बार फिर से पहुंच चुका है। ट्रंप शायद नवंबर तक का इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले या उसके तुरंत बाद वो बड़ा अटैक करने वाले हैं। कुल मिलाकर हॉर्मुज का पेच अब भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट तो कर ही चुका और लगातार पूरी दुनिया पर एक और नए विश्व युद्ध की सुरपुकाहट और खलबली लेकर भी तैयार खड़ा हुआ है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: ट्रंप को नामंजूर पीस प्लान, बोले हार रहा है ईरान, शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं, अड़ गया ईरान, नवंबर में फिर होगी बमबारी, अमेरिका करेगा तबाही भारी, डील सील होने की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हो गई हैं। ईरान के पीस प्लान और 7 दिन में हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव तार तार हो गया है। ट्रंप ने तो न सिर्फ ईरान के ऑफर को ठुकरा दिया है, बल्कि जिस अंदाज में ठुकराया है वो साफ संकेत कर रहा है कि आने वाले महीनों में हालात फिर से हाहाकारी होने वाले हैं।
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But...
0: ईरान के हालात के बारे में ट्रंप ने एक बार फिर वही बात दोहराई है जो वो पिछले कुछ महीनों में कई बार कह चुके हैं कि ईरान बर्बादी की कगार पर है और किसी भी सूरत में डील करना चाहता है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव खारिज करने के सवाल पर वो अभी कतर के जरिए आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका रुख साफ है कि वो अपनी शर्तों में कोई फेरबदल करने के मूड में नहीं है। सीजफायर में अपनी तैयारियों को सैन्य मोर्चे पर दुरुस्त करने के बाद कूटनीति के मोर्चे पर भी ईरान और आक्रामक दिखा है। मंच बेशक संयुक्त राष्ट्र का ही था, लेकिन अमेरिका को उसके घर में ही खरी खोटी सुनाने का ईरान ने कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका को घेरा, फिर विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने दुनिया के सामने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया।
2: The United States choose the opposite path. Aggression, threats, assassination, economic warfare, and a blatant disregard for international law and the UN Charter. During the US-Israeli aggression against Iran, more than 5,000 people have been killed, including hundreds of women and children. They committed a grave crime and a flagrant violation of international law by assassinating Iran's supreme leader, along with other senior political and military officials. Residential areas, schools, hospitals, energy facilities, sports facilities, cultural sites, transport infrastructure and other civilian objects have been struck.
0: ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को 7 दिन का रोड मैप भेजा था। इसमें लड़ाई रोकने और शर्तें पूरी होने पर हॉर्मुज खोलने की बात कही गई थी। ट्रंप की मनाही के बाद अब डील होने की उम्मीदें फिलहाल टूट चुकी हैं। जाहिर है हॉर्मुज में हाहाकार बढ़ेगा और जहाजों की आवाजाही न होने से पहले से बर्बाद व्यापार पर और बुरा असर होगा। वैसे भी अमेरिकी मीडिया ये खुलासा कर चुका है कि नवंबर में मिड टर्म चुनाव के बाद ट्रंप ईरान पर हमलों की बौछार कर सकते हैं। इसका अंदेशा ईरान को भी है और वो भी इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर अमेरिका ईरानी अर्थव्यवस्था पर लगातार चोट पहुंचा रहा है। एक तरफ उसकी नाकेबंदी ने तेल के निर्यात को ठप कर रखा है, तो अब उसकी मुहिम पर तुर्कीये, ओमान और यूएई जैसे कई देशों ने ईरानी एयरलाइंस की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ईरान की कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, और जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कुछ चल रहा है, प्रस्तावों को लेकर, बातचीत को लेकर, इसलिए आपने समझा। लेकिन अमेरिका की तरफ से जैसे ही ये खबर सामने आई कि उसने ईरान का प्रस्ताव ठुकराना शुरू कर दिया है, उसे खारिज कर दिया है, उसी वक्त ईरान की तरफ से भी एक और बड़ी धमकी आई है जो पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, जिसमें ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। उसने साफ साफ कहा है कि दुश्मन मुल्कों के जहाज हिंद महासागर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, यानी ये जंग का दायरा अब गल्फ ऑफ ओमान के साथ साथ अब हिंद महासागर में भी बढ़ता जा रहा है। आरजीसी नेवी के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ने कहा है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम बिना किसी हिचक के उन जहाजों को भी नष्ट कर सकते हैं जो हिंद महासागर में आवाजाही करेंगे। अगर युद्ध छिड़ता है और ईरान हिंद महासागर तक हमला करता है तो इसके दायरे में कई नए देश आ सकते हैं। अब तक पूरी दुनिया पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा के वक्त से परेशान है, लेकिन अगर ये जंग हिंद महासागर तक पहुंची तो फिर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। और देखिए ईरान की तरफ से इस खबरों को लेकर, इस बड़े ऐलान को लेकर कहा भी गया, और उसी वक्त कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो ईरान के एक्शंस को दिखा रही है। ईरान की मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ घंटों में ईरान के दक्षिणी हिस्सों में 10 से ज्यादा ईरानी क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन से जहाजों की आवाजाही और जहाजों पर उसको टारगेट किया गया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से से नियमों का उल्लंघन करते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ईरान की मीडिया का दावा है कि जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल अब तक नहीं की गई है, लेकिन ईरान का यह संकेत है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण अब भी बरकरार है और ये सारे अटैक दरअसल साउथ ऑफ हॉर्मुज में किए गए हैं। साउथ ऑफ हॉर्मुज यानी ओमान के पास का इलाका है जिसको ईरान गलत या फिर अधिकृत इलीगल पैसेज मानता है और अक्सर उस इलाके में ही गुजरने वाले टैंकर्स पर और शिप्स पर अटैक करता है। और देखिए अमेरिका के लिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने कह दिया कि वो अब हिंद महासागर में अटैक करेगा, लगातार वो कई टैंकर्स पर अटैक भी कर रहा है, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच ईरान के साथ युद्ध के दौरान घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ईरान के साथ जंग में हताहत हुए लोगों की एक सूची में 37 लोगों के नाम चुपचाप जोड़ दिए जिसमें घायल सैनिकों की कुल संख्या अब बढ़कर 861 हो गई है। पेंटागन के डेटाबेस के मुताबिक नए आंकड़ों में नौसेना के 29 नाविक और 8 मरीन्स शामिल हैं। यह आंकड़ा टकराव के शुरुआती महीनों की तुलना में अमेरिका की सैनिक हताहत होने की संख्या से कई बार बढ़ोतरी को दिखाता है। यह डाटा यह भी बताता है कि पेंटागन की ने अपने सैन्य कर्मियों के हताहत होने की जुड़ी जानकारी अपडेट करने में देरी की और इसी को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर, उनके काम करने के तरीकों को लेकर और डेटा को छुपाने के लिए को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय कुलकर्णी सर भी जुड़ गए। संजय कुलकर्णी सर, एक बात बताइए, अगर ये हिंद महासागर में जंग फैल जाती है, क्योंकि देखिए ईरान भी जो कहता है वो उसे करके दिखाता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावों को खारिज कर दिया, 7 दिन के रोडमैप को खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इतने ज्यादा बड़ी धमकियां, क्या आपको लगता है कि ईरान अगर ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ साथ हिंद महासागर के साथ साथ ये जंग अब यूरोप तक पहुंच जाएगी?
4: बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से जो लड़ाई का दायरा है बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में ईरान के पास मिसाइल जो ड्रोन की कोई कमी नहीं है और तकरीबन जब उनका रेंज देखते हैं हम 2500 किलोमीटर तक, यानी कि हिंद महासागर उसके बिल्कुल निशाने पे है, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार से घेरा बंदी कर रखी है अमेरिका ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना तेल, अधिकतर तेल कहा जाता है चीन, भारत और जापान, कोरिया इस तरफ, और जो बबल मंदीप है वहां से तेल गुजरता है और बाकी कंटेनर गुजरते हैं अपना स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप की ओर, यानी कि वहां से तकरीबन 15% का विश्व का व्यापार बबल मंदीप की तरफ यानी स्वेज के तरफ से, और यहां से 20% तेल और गैस का व्यापार जो पूरे विश्व में गुजरता है। ऐसी हालात में आप समझ सकते हैं कि अगर $110 प्रति बैरल तेल की कीमत हो रही है तो तेल की कीमतों जबरदस्त उछाल आएगा उसके बावजूद, और जिस प्रकार से येमेन ने आप देखे रेड सी के ऊपर जिस प्रकार से पकड़ जमा रखी है, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से
3: सर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत करने का जो एक ब्लफ खेल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म चुनावों तक लेकर ही है ताकि उनकी ये समस्या दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को तो एक ऐसे गेटवे पर खड़ा कर दिया जहां पर कभी भी एक और बड़े महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है?
4: बिल्कुल, देखिएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिर्फ 2.5% के तेल की जरूरत है, सिर्फ 2.5%, वो ना भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यूएस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की कोई जरूरत नहीं है, जीरो, क्योंकि सबसे ज्यादा आज तेल उसका उत्पादन कौन करता है तो अमेरिका करता है, तो अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। इसको जरूरत है सबसे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, यानी कि एशिया को जरूरत है स्टेट ऑफ होमो से। ट्रंप के जो व्यवहार है, जिस प्रकार से आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं, उससे नुकसान हम लोगों को हो रहा है, एशिया को हो रहा है, यूरोप को अब बबल मंदेप के द्वारा हो रहा है, यानी कि ईरान ने बबल मंदेप येमेनी पुलिस के द्वारा पकड़ और इधर अपने आप जिस प्रकार से होमो के ऊपर पकड़, यूएस को तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। तेल की कीमतें बढ़ रही है।
3: सर आपने तेल की कीमतों का जिक्र किया, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपसे और भी खबरों पर जिक्र करना, आपसे बातचीत करने। लेकिन एक और तेल की खबर एक और देश से आ रही है, एक और युद्ध से आ रही है जहां से लगातार ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। दरअसल रूस ने एक बार फिर से कीव पर हमले किए हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है। ताजा हमले रिहायशी इलाकों सर्विस स्टेशन पर किए गए हैं जिसमें इमारत और वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर ओडिशा में भी रूस के हमले जारी हैं। ड्रोन के जरिए किए गए इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में यूक्रेन ने भी क्रास्नोदार रीजन के अंदर एयर स्ट्राइक्स की है। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति की कोशिश की जगह घमासान और तेज करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि रूस अगले साल के लिए खुफिया प्लान तैयार कर रहा है ताकि वो तबाही मचा सके। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस के जिस तरीके से ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए हैं उससे पूरी दुनिया में इस मोर्चे पर भी तेल का संकट या ऑयल रिफाइनरीज पर हुए अटैक ने पूरी दुनिया में एक बड़ा ईंधन का संकट पैदा करना शुरू कर दिया है। और देखिए इधर रूस और यूक्रेन की जंग भीषण होती जा रही है लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने का लगातार बहाना तलाश कर रहे हैं।
5: कम से कम अभी तो रूस अपनी जंग रोकने की तैयारी नहीं कर रहा है। पुतिन हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेते हैं, न मिलने का, न त्रिपक्षीय बैठक करने का, न बातचीत करने का, न इसे खत्म करने का, न ही हत्याएं रोकने का। बरसों से उनके साथ ऐसा ही हो रहा है और हमारे सभी सहयोगी भी यही महसूस करते हैं। वे जंग जारी रखने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। उनकी बातें हमेशा एक जैसी ही लगती हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमारी हालिया बैठक में भी यही बात सामने आई। अमेरिका भी हालात को इसी नजरिए से देखता है। रूस को मौत पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर पैसा खर्च करने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। उन्हें इस जंग को खत्म करने की इच्छा जगानी चाहिए।
3: और देखिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जहां पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूरोप पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपियन देश रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुट गए हैं जबकि रूस ने कभी भी यूरोपियन देशों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत नहीं की है। लावरोव ने जर्मनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भूल गए। अगस्त में जर्मनी के एयरपोर्ट पर रूसी ड्रोन गिरने के बाद रूस और जर्मनी के रिश्ते बेहद ज्यादा तल्ख हो गए थे। लावरोव ने यह भी कहा कि यूरोप के देश लगातार रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुट गए हैं और यह खतरा लगातार रूस को भी अब सताने लग गया है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलकर्णी सर, ये बार बार हम ये बात कहते आए हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो चाहे उनके विदेश मंत्री हो, वो ये बात कहते आए हैं कि अगली जंग जो हमारी होगी वो नाटो देशों के साथ होगी, वो यूरोप के साथ होगी और इसके लिए रशिया को तैयार रहना है। क्या आपको सच में लगता है कि वो तैयारी 2030 की रखी गई है? लेकिन अभी के ताजा हालात जो जर्मनी के हैं, पोलैंड के हैं, वो तो ये दिखा रहे हैं कि ये जंग थोड़े दिनों में दोबारा से शुरू हो जाएगी।
4: सुमित, अगर आप देखें कि शुरुआत अभी भी रूस जो है 32 देशों से लड़ रहा है, यूक्रेन में आज की तारीख में इतनी काबिलियत तो है नहीं क्योंकि उनका जितना भी सामान था वो तो ध्वस्त हो गया है। 20% यूक्रेन का पूरा भाग रूस ने पकड़ के रखा हुआ है। ऐसी हालत में जिस प्रकार से यूक्रेन को उकसाया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं, जर्मनी हुए, यूके हुए, फ्रांस हुआ, सबके सब यूक्रेन को उकसा रहे हैं और जिस प्रकार से रूस हमला कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, जो मित्तल का स्टील प्लांट उधर है, आर्सेनल मित्तल का, जो विश्व में 15% वहां से स्टील एक्सपोर्ट करता था, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया और वो बंद हो गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन लगातार तकरीबन 22 रिफाइनरीज में से 18 रिफाइनरीज रूस के रूसों से मारी है, जिस कारण से लगातार लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई है, रूस के पेट्रोल पंप डीजल की किल्लत हो गई है। तो ऐसे इसमें एक दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, विश्व में तेल की किल्लत की कमी हो रही है और कहीं ना कहीं आता है इस सर्दी से पहले अगर ये लड़ाई के ऊपर थोड़ा हानि हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के तकरीबन 25,000 से 30,000 सैनिक मारे जा रहे हैं हर महीने, वही हालत रूस की भी है।
3: और शायद सर मैं अगर गलत नहीं हूं तो अक्सर विंटर से पहले, सर्दियों से पहले बफर जोन क्रिएट करना, अपने अपने मोर्चों को कंसोलिडेट करना, ये हर सैनिकों की, हर सेना की ये आदत होती है और खासतौर पे रूस ये करता भी आया, रूस का ये स्ट्रेटजी काम भी किया, तभी उसने बहुत हद तक काफी बड़ा इलाका इस समय यूक्रेन का अपने हाथ में ले लिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर है न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएन महासभा में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
6: अ पर्सिस्टेंट थ्रेट टू पीस हैज बीन द स्कर्ज ऑफ टेररिज्म। That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
3: आपको रण क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से मार की, उसके नुकसान की खबरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब खबर दिखाते हैं कुदरत के उस क्रोध की जिसके सामने अमेरिका भी लाचार नजर आ रहा है और थाईलैंड भी। आप दो तस्वीरों में हालात देख सकते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में बारिश से जल जमाव हो गया, कितना ज्यादा पानी आप देख सकते हैं। ये न्यू जर्सी का इलाका है और उसके बाद बैंकॉक में भी पानी कैसे भरा है ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। ये कुदरत का वो कहर है जिसके सामने आदमी बेबस है, इंसान बेबस है, और लगातार ये कुदरत का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है।

0: और चले युद्ध क्षेत्र की खबरें बताई हमने आपको कुदरत की मार की, लेकिन इस समय राजनीतिक गलियारों से भी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वो भी आपको बताते। दरअसल जहां पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी ने तिलक नगर में युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। आपने सोशल मीडिया पर थप्पड़ मारने का एक वीडियो पोस्ट किया है। आपका आरोप है कि युवक ने भ्रष्टाचार पर जब सवाल पूछा तो परवेश वर्मा ने इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें भी दिखाई गई है, सार्वजनिक की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा कैसे एक शख्स को थप्पड़ मार रहे हैं। और देखिए हाथापाई दूसरी तरफ से भी आपने देखा कि परवेश वर्मा ने जब हाथ छोड़ा तो दूसरे शख्स ने, सामने खड़े शख्स ने भी उनको धक्का देने की कोशिश की। और इस समय वो पीड़ित या फिर जिस शख्स के साथ ये हाथापाई हुई वो उसका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं।
1: हम यहाँ पर आए थे इनकी पीडब्ल्यूडी के दबाव से, फोन आया था मिनिस्टर जी का ही सर को, तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे, दिखाने आए थे रोड की क्या हालत है। उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है, सर ने दिखाया तो उनसे वो चीज झेली नहीं गई, उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। उनके जो साथी थे उन्होंने धमकी दी है मुझे जान से मारने की, तीन से चार जब लोग थे उन्होंने मारा भी, हाथ भी उठाया, उसमें पुलिस भी यहाँ पर थी, उनके सामने ये सब हुआ। वो लिखित रूप में माफी मांगे और उनपे जो बनती कार्रवाई है वो सस्पेंड करना बनता है, भाजपा इस पे एक्शन ले, अगर वो सच के साथ है तो एक्शन ले, क्योंकि इसपे तो वीडियोज आई है, हम कुछ अपनी तरफ से बोल नहीं रहे, सब चीज की वीडियो है, एक्शन हो।
0: और चलिए तमाम खबरें हमने आपको दिखाई रणभूमि स्पेशल में, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पर सबसे धमाकेदार शो पावर प्ले का, जिसमें बताएंगे ट्रंप और शी जिनपिंग का प्लान G2 के बारे में तमाम जानकारी, मिलाएंगे दुनिया के चार पावर प्लेयर से भी। आप देखते रहिए आज तक
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ, कपीवा डायबिटीज जूस।
12: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
5: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
6: कौन भय में जी रहा है?
5: नागरिक जी रहे हैं।
6: हाँ, भारत में
5: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुप।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक दो तीन झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
9: आप पे वो PMT बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
14: एकदम सॉलिड।
13: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
15: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
9: आई लाइक दिस ओनली।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
16: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
17: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
18: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
19: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
20: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कर।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
21: आई अश्योर माई कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद फुलेस्ट अथॉरिटी एट माई कमांड डेट वी शैल कॉन्टिन्यू टू एक्सटेंड आर फुल डिप्लोमैटिक पोलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट टू देम टिल दे आर ग्रांटेड देयर inalienable right to self-determination. Kashmir has and always will be Pakistan's jugular vein.
22: Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences. It will understandably call into question what were premised on friendship and goodwill. We are confident that this assembly will recognize Pakistan and its policies for what they really are, not what its representative mendaciously projects it to be. Reiterating falsehoods year after year does not make them true. Pakistan's terrorism, deceit, and duplicity will neither benefit it nor the world. I thank you, Mr. President.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा पर लगा आरोप, सवाल पूछने पर युवक को मारा थप्पड़, स्थानीय विधायक का पीए है पीड़ित युवक। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोपों के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीईसी विवाद पर सफाई के बाद भी जारी है संग्राम, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सीएम योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंद्र अधिकारी से लेकर हेमंता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल गांधी की चुनाव में फिक्सिंग की बात दोहराई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: दुनिया में शक्ति के संतुलन का पुराना सिद्धांत है, ताकत ताकत को पहचानती है और ताकत का ही सम्मान करती है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता और दुनिया को अपने तरह से चलाने को लेकर महाशक्तियों की रस्साकशी के बीच भी जब उनके नेता बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठते हैं तो तनाव भी नजर आता है और तारीफें भी की जाती हैं। वॉशिंगटन में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो इस मुलाकात ने अमेरिका और चीन के रिश्तों को कोई स्थायी समाधान का फॉर्मूला तो नहीं दिया, लेकिन फौरी समझौते का एक ताना बाना जरूर बनाने की कोशिश की गई। पावर प्ले में पहली स्टोरी यानी पावर स्टोरी में आज बात करेंगे रस्साकशी वाले इसी रिश्ते की और मैप रूम में आपको दिखाएंगे कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ड्राइंग बोर्ड दुनिया के अंदर कौन सी पुरानी तस्वीरों को बदलने की कोशिश कर रहा है और वो भी एक साथ जहां उनकी नीतियों में बहुत सारा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको मिलवाएंगे ताकत के कई फैसलों की दिशा तय करने वाले उन किरदारों से भी जो हैं इस हफ्ते के पावर प्लेयर्स। साथ ही इंडिया इंपैक्ट में आपको बताएंगे कि कैसे भारत के व्यापार समझौते अमेरिका के टैरिफ की काट तैयार करने में जुटे हुए हैं। आखिर में आपको अंतरिक्ष के वो सारे सिग्नल भी दिखाएंगे जो स्टार वॉर्स के नए दौर की वानगी देते हैं, जहां लेजर हथियारों की दौड़ में भारत कहां खड़ा है ये भी आपको नजर आएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और आप देख रहे हैं पावर प्ले। अमेरिका और चीन के नेताओं की जिस मुलाकात को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 4 महीने में दूसरी बार वॉशिंगटन के अंदर मुलाकात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की। पहले दोनों की मुलाकात बीजिंग में हुई और उसके बाद व्हाइट हाउस में दोनों नेता आमने सामने बैठे। आखिर 24 सितंबर को वॉशिंगटन के अंदर जो मुलाकात हुई उसने अमेरिका और चीन के रिश्तों की एक नई इबारत को तय किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने थे। टेबल पर व्यापार, रेयर अर्थ मिनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और ताइवान समेत कई मुद्दे थे, यानी इन 4 मुद्दों पर टिका था कि आखिर एक साल की वैश्विक सप्लाई की चेन आखिर किस दिशा में आगे बढ़े। दुनिया में 2 महाशक्तियों की रस्साकशी का नतीजा ग्लोबल टेबल का वो पावर प्ले है जिस पर बहुत सारा खेल टिका है। मगर सवाल तो ये है कि जो मेज पर आया, जो बातें हुई, जो समझौते हुए, वो आखिर कितने असली हैं और जो एजेंडा से बाहर रहकर भी छाए रहे आखिर वो खतरे कितने बड़े हैं। इन्हीं सवालों के जवाब खंगालती हमारी ये पहली रिपोर्ट देखिए।

0: दुनिया में सत्ता की बिसात पर जब घमासान चल रहा हो, ताकत की जोर आजमाइश का दौर चल रहा हो, तो ऐसे में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की 5 महीने में दूसरी मुलाकात के मायने छोटे नहीं। वॉशिंगटन की जमीन पर जिनपिंग की अगवानी के लिए ट्रंप लाल कालीन बिछाएं तो मान लें कि कुछ बड़ा हो रहा है। चौबीस सितंबर को वॉशिंगटन में ट्रंप जिनपिंग समिट में दुनिया के दुर्लभ खनिज कारोबार पर 80% नियंत्रण रखने वाले चीन के सर्वशक्तिमान नेता ने रियायत दिखाई और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में अपने सख्त कंट्रोल नियमों को कम से कम 1 साल के लिए टाल दिया है। फेंटानिल संबंधी चीनी सामान पर अमेरिकी टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। सोयाबीन तेल और अलास्का की प्राकृतिक गैस की खरीद फिर शुरू करने पर चीन सहमत हो गया है। वहीं बदले में चीन ने अमेरिका से हो रहे अपने $300 अरब से अधिक के निर्यात के लिए राहत हासिल कर ली। ये जरूरत भी है, मौका परस्ती भी है और व्यवहारिक कूटनीति भी। तभी तो ईरान की मदद के लिए चीन को धमकी देने और तकनीक चोरी से लेकर जासूसी और फेंटानिल को लेकर चीन को जमकर कोसने वाले ट्रंप तुरंत पैंतरा बदलते भी नजर आ जाते हैं।
1: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others. We will be working closely to mitigate any harm and we're taking swift action to ensure that sensitive voter data is better protected so we can never be bought, we can never be hacked, and we can never watch a stolen election again. From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
0: जाहिर है अपने राजनीतिक और चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को तौलने वाले ट्रंप उन मुद्दों को टालने से नहीं झिझकते जो फायदे की थैली में छेद कर सकते हैं। इसीलिए जब राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप से जब पूछा गया कि ताइवान पर क्या बात हुई, तो जवाब आया, ये मुद्दा उठा ही नहीं। जाहिर है ताइवान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि मई 2026 में जिनपिंग से बात के बाद ट्रंप ने $14 अरब के ताइवान हथियार सौदे पर रुख नरम किया था और 24 सितंबर के समिट में ताइवान का जिक्र तक ट्रंप ने नहीं किया। यानी ताइवान के लिए सबसे बड़ा खतरा इस बात को लेकर है कि उसका सबसे बड़ा सुरक्षा गारंटर भविष्य में चीन की तरफ से होने वाली किसी कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध ले। हालांकि असली जंग का मोर्चा तो तकनीक और उसके दबदबे की लड़ाई है। अमेरिका की ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के मुखिया एआई से मानवता को खतरे की बात करते हुए उसके विकास की रफ्तार धीमी करने की वकालत कर रहे हैं, तो चीन एआई की रफ्तार घटाने का विरोध करता है। वहीं ट्रंप ने भी साफ कहा कि एनवीडिया की सबसे एडवांस्ड ब्लैकवेल चिप्स किसी भी सूरत में चीन को नहीं मिलेंगे। ऐसे में साफ है कि ट्रंप और शी की मुलाकात ने फौरी तौर पर कुछ राहत भले दी हो, दोनों नेताओं को कुछ राजनीतिक फायदे बटोरने की वजह दी हो, लेकिन ये महाशक्तियों के बीच स्थायी सुलह का फार्मूला नहीं है, बस किसी अगले मोर्चे पर टकराव तक मिली एक मोहलत है। प्रणय उपाध्याय, आज तक।
2: पावर स्टोरी के बाद अब रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी मैप रूम का। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका नया और पुराना नीतियों का खेल आखिर क्या है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मैप रूम में। और मैप रूम में हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैप रूम में सबसे पहले तस्वीर देखते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इस नक्शे के ऊपर कौन कौन सी पुरानी तस्वीरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, साथ ही ईरान के साथ शांति समझौते की बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन आर्थिक दबाव की जो नकेल है वो भी ईरान पर वो लगातार कसे हुए हैं। इसीलिए उनकी इस पॉलिसी कंफ्यूजन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही। साथ ही हूती के हमले से पश्चिम एशिया के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, साथ ही पश्चिम एशिया के सहयोगियों के साथ भी वो बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं। लेकिन खासतौर पर चर्चा इसकी जरूर करते हैं क्योंकि रूस से तेल खरीदारों के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेन को यानी उनकी कलम को अब अधिकार मिल गया है कि वो 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं और उसके निशाने पर भारत भी है, चीन भी है और इसीलिए ये मामला उलझा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप पुतिन किसे तेल खरीदने वालों पर तो टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उन्होंने G20 की बैठक जो कि दिसंबर 2026 में होनी है उसके लिए इन्विटेशन भी भेज दिया है। साथ ही यूरोपीय संघ को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। यूरोप, जिसे माना जाता है कि वो अमेरिका का सबसे करीबी, सबसे पुराना और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बना है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे करीबी सहयोगी था। नेटो के अंदर भी अधिकतर यूरोप के देश हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। साथ ही कनाडा को सहयोगी सदस्य बनाने के उस प्रस्ताव से भी नाराजगी अपनी जता चुके हैं। इस नक्शे को भी देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और डेनमार्क की भलाई इसी में है कि वो डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दे। उसके बाद बहुत दिनों तक बयान नहीं आया, लेकिन उसके बाद 22 सितंबर को घोषणा होती है कि ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने इस बात पर रजामंदी जता दी है, क्योंकि डेनमार्क के क्षेत्राधिकार के अंदर ग्रीनलैंड आता है, कि वहां अमेरिका अब अपने पिटुफिक स्पेस बेस के अलावा अपने दो और नए बेस बना सकता है, यानी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ग्रीनलैंड के अंदर बढ़ जाएगी। साथ ही आर्कटिक के वर्चस्व की भी लड़ाई है, क्योंकि हम कई बार आपको पावर प्ले के पिछले शोज में बता चुके हैं कि किस तरीके से ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, यानी ऊपर जब बर्फ पिघल रही है तो आर्कटिक के क्षेत्र के अंदर जो नया रास्ता बन रहा है, जो शॉर्ट रूट हो सकता है, शॉर्टकट हो सकता है, उस पर ताकत की लड़ाई चल रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। इस कार्यकाल के अंदर, यानी दूसरे टर्म के अंदर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो भारत को कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के साथ गलबैयां करते नजर आते हैं, वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को दावत देते हुए नजर आते हैं, साथ ही वो भारत को भी अपना खास साझेदार, अपना दोस्त बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें भी करते हैं, लेकिन इन तारीफों के साथ साथ वो टैरिफ का वार भी लगा देते हैं। और साथ ही ये जो सारी चर्चाएं हो रही हैं उनके बीच में अभी जो ताजा बयान आया है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को यूरोप से जोड़ने वाला ये जो रास्ता है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का दावा है और वो कहते हैं कि इसीलिए ये बहुत जरूरी है। हालांकि दुनिया जानती है कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये उसका काउंटर कार्ड हो सकता है, और इसीलिए दुनिया के इस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, दुनिया के इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कलम जिस तरीके से चल रही है उससे पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। और अब वक्त है पावर प्ले में उस सेगमेंट का जहां हम आपको मिलवाते हैं पावर प्लेयर से, यानी वो किरदार जिनके कारनामों से, जिनके फैसलों से दुनिया के अंदर जो ताकत की इबारत है वो काफी हद तक प्रभावित होती है। और पावर प्लेयर्स में जरा देखिए इस बार के चेहरे कौन कौन से हैं और वो चेहरे आखिर क्यों अहमियत रखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपको जो पहला चेहरा नजर आ रहा है वो है अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को लेकर अमेरिका का ऐलान करने वाले टॉय मैंक का, जो कि वायुसेना सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, यानी पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और इनका जो फैसला आया उसने पूरी दुनिया को एक नए तरीके से चौंकाया है। वो चौंकाया इसलिए है कि अमेरिका स्पेस में हथियारों की रेस का विरोध एक समय तक करता रहा, लेकिन अब अमेरिका ही अंतरिक्ष के अंदर हथियारों की तैनाती का ऐलान कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो स्पेस कंट्रोल ऑर्बिट वेपन होते हैं, यानी जो अंतरिक्ष की कक्षाएं होती हैं वहां पर स्पेस कंट्रोल वेपन तैयार और तैनात कर दिए हैं। जो बयान है इनका टॉय मैंक का वो अहमियत भी रखता है और साथ ही ये भी अहमियत रखता है कि आखिर हथियारों की संख्या किस तरीके की है, इसको लेकर अमेरिका अभी तक एक चुप्पी रखे हुए है। साथ ही आपको मिलवाते हैं एक और चेहरे से, क्योंकि जेफ लैंड्री जो हैं, क्योंकि हम अमेरिका के ऐलानों की बात करते हैं तो जेफ लैंड्री का ये चेहरा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है जेफ लैंड्री का ये चेहरा क्योंकि ये ग्रीनलैंड के अमेरिका के नए राजदूत हैं और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो इनकी नियुक्ति थी वही गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इसी ने ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका को ज्यादा अधिकार दिलवा दिए हैं। लुइसियाना के गवर्नर रहे जेफ लैंड्री, जो कि ट्रंप के करीबी भी हैं, उनको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। सबसे पहले चर्चा करते हैं जेसन हुआंग के चेहरे की भी, क्योंकि जेसन हुआंग वो चेहरा है जिन्हें एनवीडिया का प्रमुख कहा जाता है। एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मेकर कंपनी है, और दुनिया में एआई को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही चर्चा एनवीडिया के फैसलों की भी होती है। और हाल ही में इनके चेहरे की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इन्होंने एआई की तबाही को लेकर जो चर्चाएं सैम ऑल्टमैन या जो डारियो अमोदाई जैसे लोग कर रहे हैं उनका विरोध या खंडन किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2030 तक इंसानी सभ्यता खत्म होने की जो संभावना या आशंकाएं जताई जा रही हैं वो केवल कोरा भय है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अब आते हैं उस चेहरे को लेकर जिसकी अमेरिका के अंदर बहुत चर्चा हो रही है और वो चर्चा है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का, क्योंकि जो बातें उन्होंने यूएन के मंच से कही वो खासी अहमियत रखती हैं, खासतौर पर जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का दावा भारत करता है उसके लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर दिया गया जयशंकर का भाषण भारत की विचारधारा के साथ साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी को लेकर जो भारत का नजरिया है न केवल वो साफ रखता है बल्कि ये भी बताता है कि ये वक्त है, यही वक्त है, सही वक्त है कि यूएन जैसी संस्था के अंदर सुधार किए जाएं, बदलाव किए जाएं। और भारत का ये बयान न केवल पूरी दुनिया के अंदर सुना गया बल्कि इसकी चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश ये मानते हैं कि अभी वक्त है कि यूएन जैसी संस्था को बनाया, बचाया और साथ ही उसको सुधारा जाए। पावर प्ले में अभी हमने चर्चा की कि आखिर किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ का वार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है। जरा आपको इंडिया इंपैक्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत ने अमेरिका से रिश्तों को खराब किए बिना एक नया स्ट्रैटेजिक वेपन तैयार किया है, क्योंकि यहां पर जो आपको नजर आएगा वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया हथियार, यानी उनको 100% तक टैरिफ लगाने का हक मिल चुका है, अधिकार मिल चुका है। लेकिन आखिर क्या है ये हथियार और भारत इसके खिलाफ क्या और क्या किस तरीके से बना रहा है, क्योंकि भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात तो कई बार हो चुकी है लेकिन भारत ने इसके खिलाफ ढाल तैयार किया है अपने FTAs के ताने बाने के साथ, क्योंकि अमेरिका से लगने वाला टैरिफ सीधे सीधे इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करता है भारत के निर्यात को, और भारत को अपना निर्यात बचाना है यानी भारत को विदेशी मुद्रा कमाना है तो उसको दूसरे साझेदार खरीदने होंगे, दूसरे साझेदार खड़े करने होंगे और वो जो दूसरे साझेदार हैं उनके सहारे इसको काउंटर बैलेंस करना होगा। और रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगातार जो टैरिफ की बात की जा रही है उसके खिलाफ फिलहाल जो टैरिफ है वो कम है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अधिकार है। लेकिन बीते 6 सालों के अंदर भारत ने 9 देशों के साथ में एक पूरा ताना बनाया है और खासतौर पर बीते 1.5 साल के दौरान, चाहे यूरोपीय संघ के साथ भारत का FTA हो, चाहे UAE के साथ में भारत का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, चाहे वो सिंगापुर के साथ में भारत का आर्थिक समझौता हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का एक्टा समझौता हो या न्यूजीलैंड के साथ में भारत का एक जो है व्यापार समझौता हो, ये कई देश हैं जिनके साथ भारत ने अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है। ब्रिटेन के साथ में भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि अप्रैल 2026 में न्यूजीलैंड के साथ में जो भारत का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर जो क्रिस्टोफर हैं प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि कोई भरोसा नहीं करता था कि ये समझौता हो सकता है लेकिन इसे न्यूजीलैंड की संसद ने मंजूरी दे दी है और अब ये जल्द ही लागू होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया के कई देश जो भारत के साथ में व्यापार समझौता करने को बेताब हैं, भारत ने न केवल अपनी बाहें खोल के उनका स्वागत किया है बल्कि भारत ने अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले वार का एक काउंटर बैलेंस भी तैयार किया है और उसका असर बीते 6 महीनों के अंदर नजर आने लगा है, क्योंकि भारत के निर्यात के आंकड़े के अंदर करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है और ये भारत के लिए उत्साह का सबूत है। साथ ही वो सारे देशों की फहरिस्त जो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो देश हैं जिनके साथ भारत लगातार व्यापार समझौते पर न केवल आगे बढ़ा है बल्कि इस समय चर्चा तो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड जो कि बार बार बदलता रहता है, आखिर उनके साथ वो डील की कैसे जाए, क्योंकि आंकड़ा ही तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस डील किस नंबर के ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। और इसीलिए भारत ने यह पूरा ताना बाना तैयार किया है कि अगर अमेरिका के साथ कारोबार या व्यापार का समझौता प्रभावित भी होता है तो उसके बदले में भारत की जेब में आने वाले जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा है उसका आंकड़ा कम से कम प्रभावित ना हो। और पावर प्ले में अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां हम उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो दुनिया भर से आ रहे जो ताकत के फैसले हैं वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं ये सिग्नल्स न केवल दुनिया को प्रभावित करते हैं, भारत को प्रभावित करते हैं, बल्कि दुनिया में जो इंसानियत है उसके भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम इन सिग्नल्स को और ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये सिग्नल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि स्टार वॉर्स की दौड़ की चर्चा इससे पहले हम पावर प्ले में कर चुके हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका के वायुसेना सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अब स्पेस में अमेरिका हथियारों की तैनाती कर चुका है, यानी एक नई होड़ शुरू हो चुकी है। इस होड़ के अंदर आखिर भारत कहां खड़ा है, भारत की तैयारी कहां खड़ी है, ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहां पर यूएस ने अंतरिक्ष में स्पेस वेपन की बात तो कबूल ली है, लेकिन साथ साथ हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन यानी लेजर हथियारों की तैनाती भी की जा रही है, और इसको लेकर एक नए विध्वंसक हथियार की चर्चा हो रही है कि अगर अंतरिक्ष के अंदर इस तरीके के हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स की तैनाती की जाती है जो कि धरती के ऊपर चीजों को तबाह कर देंगे, तो फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी अब हम मिसाइलों और ड्रोन से ज्यादा एक नए और बड़े खतरे की चर्चा कर रहे हैं जो कि अंतरिक्ष से आ सकता है, जो नई और बड़ी तबाही ला सकता है। और चीन के पास एयरक्राफ्ट लेजर वेपन ट्रैकिंग और एमिंग सिस्टम आ गया है, इसकी बात चीन की तरफ से की जा रही है। साथ ही रूस ने भी जो इग्निस नाम का नया लेजर हथियार बनाया है, जिसको लेकर जो वेपन मार्केट है उसमें काफी चर्चा हो रही है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर लेजर वेपन है यानी लेजर हथियार है, वो रूस तैयार कर चुका है और वो लंबी दूरी तक वार कर सकता है। और साथ ही उसके जरिए जो सैटेलाइट तैनात हैं, यानी सैटेलाइट जो ऑर्बिट्स में हैं, उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, उनको भी रूस तबाह कर सकता है। ये ताकत उसके पास है। टारगेट को पिघलाने की जो क्षमता है वो उसके अंदर 1 किलोवाट की जो रूसी वेपन की ताकत है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और हम इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत भी इस दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहता है। अगर हम हाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों की बात करें तो उसमें भारत भी तेजी से इस पर काम कर रहा है कि किस तरीके से इस पर आगे बढ़ा जाए। भारत इसके टेस्ट भी कर रहा है। भारत की जो डीआर

0: मिसाइलों ने एसेट कैपेबिलिटीज यानी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं उनको नष्ट करने की मिसाइल क्षमता हासिल पहले ही कर ली थी। हालांकि भारत स्पेस यानी अंतरिक्ष के अंदर हथियारों के इस्तेमाल का न केवल विरोधी रहा है बल्कि भारत ने हमेशा से शांति की बात की, लेकिन डायलॉग डिप्लोमेसी शांति की इस तमाम चर्चा के साथ ही राष्ट्रपति जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कोट है, पुराना कोट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ताकत एक ही भाषा जानती है, एक ही चीज पहचानती है और वो है शक्ति की भाषा। और इसीलिए दुनिया के अंदर कमजोरों की कोई जगह नहीं है, कमजोरों की बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास शक्ति होनी चाहिए और दुनिया शक्ति की भाषा समझती है। पावर प्ले में आज केवल इतना ही, बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एकदम दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
6: के नियम को बदले बगैर आप फॉर्म 6 लाए जिसकी वजह से बिहार और बंगाल में कई लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए उनका वोट छीन लिया गया तो वो गैर कानूनी तरीके से छीना गया। अगर वोट ही आपका गैर कानूनी तरीके से छीना गया बिहार और बंगाल में क्या वो इलेक्शन कानूनी है? क्या वो इलेक्शन संवैधानिक है? क्या वो मैंडेट संवैधानिक है? बुनियादी सवाल है ये। इसका जवाब ना आपको नथुने फुला के रविशंकर प्रसाद भी नहीं देंगे कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे साहब जवाब दीजिए। तीसरा आपने ईसीआई नेट की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा आईआईटी ट्रिपल आईटी आईआईएम के लोग होंगे तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी ईसीआई नेट की जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ईआरओ के अधिकार इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया वो दिल्ली में ईसीआई नेट करती है। एक कमेटी उसकी बनी हुई है प्रोजेक्ट स्क्रूटनी कमेटी।
7: एक अखबार के मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपोजिशन पार्टीज विशेष रूप से कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी जिस तरह का बेबुनियाद शर्मनाक आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए एफआईआर होना चाहिए।

0: चुनाव पर जारी सियासत के बीच चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई। आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह SIR या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं SIR पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है। गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। SIR में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी यह घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जनरल सिंह से जुड़ा हुआ है पीड़ित। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के बाद छात्रा की खुदकुशी के आरोप के बाद भड़का गुस्सा, कैंपस में बवाल, लाख जनी तोड़फोड़, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज।

0: योगी, रेखा गुप्ता, शुभेंदु से लेकर हिमांता तक ने कांग्रेस को घेरा, तो राहुल ने की चुनावों में फिक्सिंग की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पूरे होने का पर सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र। यूपी में 60 घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, 56 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर जिलों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। कल चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा, कहा एसआईआर का फैसला सर्वसम्मत था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है उनमें से कितनों का जवाब चुनाव आयोग ने वास्तव में दिया है, यानी कि भारत के लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर दो दावे आमने सामने हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि व्यवस्था में दरार नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि सवालों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। चुनाव आयोग किसी सरकार का नहीं, किसी विपक्ष का नहीं, किसी दल का नहीं। चुनाव आयोग उस मतदाता का है जो 5 साल में एक बार अपनी उंगली पर स्याही लगाकर सत्ता तय करता है, और इसलिए सवाल जितने राजनीतिक हैं उतने ही संस्थागत भी, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं लेकिन संस्थाओं पर भरोसा टूट जाए तो फिर उसे वापस बनाने में बहुत समय लगता है, और आज उसी भरोसे पर बड़ी बहस भी होगी। जानेंगे आज कि क्या भरोसा वाकई टूट रहा है या जानबूझकर सियासी पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहस से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।

0: सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
1: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी। ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
2: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
0: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
3: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
4: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
0: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
5: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
6: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
7: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
8: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
9: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
10: और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अब कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे ओपोजिशन को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अलग अलग प्रदेशों में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा निशाना साधा विपक्ष पर, उन्होंने हमला बोला है। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी शासित राज्यों के सीएम है जो एसआईआर के इस पूरे विवाद पर इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस नोट के बाद अब ऑपोजिशन को घेर रहा है। ऑपोजिशन को लेकर कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन ने गुमराह किया, जनता को भटकाने का प्रयास किया, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो यहां तक कहा कि बल्कि ऑपोजिशन पर तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए। और अब दंगल की हम शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या सीईसी पर लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी बनाम विपक्ष की हो गई है? सवाल नंबर 2, चुनाव आयोग की सफाई के बाद भी आखिर विपक्ष क्यों नहीं माना? और सवाल नंबर 3, क्या चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति दिखाने में देर तो नहीं करती? खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, और फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आज सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। सुरेंद्र जी, प्रेस नोट आया, आपको क्या लगता है किन किन सवालों का जवाब नहीं मिला? क्योंकि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों के बयान आपने सुन लिए होंगे, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आपने सुन लिया, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं, आप तो लोगों को बरगला रहे हैं।
11: राजीव भाई, अगर आप खुद एक बार प्रेस नोट पढ़ लें उनका, 24 घंटे पहले के प्रेस नोट पे कहते हैं वो लोग कि साहब सारे डिसीजंस जो 14 के 14 डिसीजन से यूनेमस लिए गए थे, सर्वसम्मति से लिए गए थे, और 24 घंटे के बाद का जो प्रेस नोट आता है उसमें कहते हैं कि 14 में से 9 डिसीजंस पर वो यू टर्न ले रहे हैं, 14 में से 9 डिसीजन पर यू टर्न ले रहे हैं। आप कहिए तो मैं सिलसिलेवार बता देता हूं सारे के सारे। पहले कहते थे कि नहीं साहब फॉर्म 6 पे ऐसा कुछ नहीं किया, अब कहते हैं कि फॉर्म 6 जो 1960 वाले अकॉर्ड के अनुसार होगा वही बहाल किया जाएगा। अगर इसका मतलब पहले उन्होंने दूसरा किया था आपके सामने, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर बाकी दो को दिक्कत थी कि एजेंडा नहीं शेयर किया जाता है, अब आज डिसीजन ले रहे हैं कि साहब नहीं, एजेंडा हम पहले कमिश्नर्स के साथ में शेयर करेंगे। उन्होंने कहा था, विवेक जोशी जी ने आरोप लगाया था कि भाई क्या नाम ये विदेशी दौरों से पहले अप्रूवल नहीं लिया जाता, अब लगातार कह रहे कि नहीं नहीं साहब विदेशी दौरों पर जाने से पहले अप्रूवल लिया जाएगा, कमिश्नर्स का अप्रूवल लिया जाएगा। इसके बाद ये कहा गया था कि मॉड्यूल्स जो हैं क्या नाम आईटी मॉड्यूल्स के लिए हम एक कमीशन क्या नाम बगैर कमिश्नर्स की सहमति के हम आईटी मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे इसके लिए। उसके बाद फिर कहा गया इन्होंने कि इसी नेट पर जो है इसी नेट पर जो क्या नाम पीसीएस ऑफिसर्स को ईआरओस को जो एक्सेस नहीं दी गई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम कमेटी बनाएंगे। तो इस तरीके से 14 में से जो 9 डिसीजंस हैं ऑलरेडी साहब वो सारे की इन्होंने जब वो किए हैं क्या बोलते हैं रिवर्स किए हैं तो ऑलरेडी सरेंडर्ड है, उन्होंने अपनी क्या नाम कमी और उन्होंने अपराध माना है ज्ञानेश गुप्ता ने। अब तो ये स्पष्ट है कि ज्ञानेश गुप्ता भ्रष्ट है, अब इन सारी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने चोरी नहीं इलेक्शन कमीशन में डकैती करी,
12: और पिछले 9 महीने या 1 साल लगातार उन्होंने एकाधिकार का प्रयोग किया, जबकि वो फर्स्ट अमंग द ऑल थे, उन्होंने अपने आप को इन दोनों से ऊपर रखा। ये जो इलेक्शन कमीशन का ध्यान से अगर आप वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, प्रेस नोट, ये अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर रहा है, टोटल चीजें स्पष्ट कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किस किस तरीके से गड़बड़ियां की थी और कौन कौन सी चोरी की थी। अब चोर मचाए शोर, 10 सेकंड और दे दीजिए सर, चोर मचाए शोर, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस, या तो उनको प्रेस रिलीज पढ़नी नहीं आती, और अगर प्रेस रिलीज पढ़नी आती है तो अपने मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत क्यों करा रही है। भारतीय जनता पार्टी से को चुनौती है कि सारे मुख्यमंत्रियों से इस प्रेस नोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं ना, खाली अपने बयान क्यों दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। हम पूछेंगे उनसे कि 14 में से 9 चीजें तो इलेक्शन कमीशन ने मान ली है, अब आप किस मुंह से उनका बचाव कर रहे हो।
10: ठीक है, आप टेक्निकल तरीके से टेक्निकल पॉइंट है और शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वो इस पर जवाब देंगे ही कि जब सब कुछ ठीक था तो सुधारात्मक फैसले शलभमणि त्रिपाठी जी क्यों लिए गए।
13: राजीव जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उनके प्रवक्ता हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और यहाँ पर आपके एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल पर बैठकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रयोग उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी के लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या देश का विपक्ष हो, उसकी एक प्रकार की धारणा बन चुकी है कि किस प्रकार से देश की संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दे, किस प्रकार से देश की सुप्रीम कोर्ट को, देश के इलेक्शन कमीशन को, देश की तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं को इतना ज्यादा उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप कर दो कि आम व्यक्ति का विश्वास उसमें से उठ जाए और दुनिया के भीतर आपकी व्यवस्था का मौका उड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग संविधान संविधान लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं, जरा आप मुझे बताइए राजीव भाई कि आपने इस देश में इमरजेंसी शब्द का उपयोग पहली बार कब सुना। इस देश में इमरजेंसी जैसी घटिया कार्रवाई अगर थोपी किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने थोपी, और क्यों थोपी, उसका कारण क्या था। कारण यह था कि इनकी जो नेता थी इंदिरा गांधी, वो चुनाव हार गई, बेईमानी से चुनाव जिताया गया, और बेईमानी से चुनाव जीतने के बाद जब मसला कोर्ट के भीतर पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीत कर आई है, तो इस देश में इमरजेंसी जिन्होंने थोपी आज वो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने बकायदे अपने 2 बार के एमपी थे इस्लाम साहब, 2 बार के एमपी को हाई कोर्ट का जज बनाया, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनते ही उन्होंने बिहार के भ्रष्टाचारी नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको रिहा किया, और रिहा करते उनको दोबारा से सांसद बना दिया गया तीसरी बार। वो लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज वो लोग निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, यानी कि बांकीपुर का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, अगर दतिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, केरल में इनकी सरकार बन जाए कांग्रेस पार्टी की तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो चुनाव आयोग बहुत सुंदर बहुत अच्छा। लेकिन अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन जाए, उत्तर प्रदेश में 22 में 17 में और 27 में बीजेपी की सरकार बन जाए तो चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया, बेईमान हो गया। आखिर क्या चाहते, क्या आप देश को एक नक्सलियम की तरफ क्यों धकेलना चाहते हैं। आपकी आपत्ति हो सकती है, आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन आप मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको शोभा देता है जिन लोगों ने आपको याद किया।
10: लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, शलभमणि त्रिपाठी जी, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है ऑपोजिशन का एक नैरेटिव है बदनाम करने का, लेकिन आप भी तो आंख मूंदे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आंख मूंदे क्या आप भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब आप भी ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ सुन नहीं सकते।
13: राजीव भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक व्यक्ति संवैधानिक संस्था पर प्रमुख है और उनको हम सबने मिलकर चुना है, कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना। इस देश की एक व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था दी है कि हम किस प्रकार से चयन करते हैं, हम सबने मिलकर चुना है, और उसके बाद आप इस प्रकार की शब्दावली अगर प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे एक विधायक के नाते नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के नाते तकलीफ होती है। और मैं तो सिर्फ 5 सेकंड आपका लूंगा, आप जरा सुनिए सुरेंद्र जी ने कौन कौन सी आपत्ति बताई कि भाई ये इनका ट्रांसफर नहीं होगा, फला आरओ नहीं जाएंगे। आप तय कर लीजिए कि आप फॉर्म 6 पर बहस करना चाहते हैं, आप SIR की प्रक्रिया पे बहस करना चाहते हैं, या चुनाव आयोग के भीतर कौन से मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं, कौन आरोप बनाया जा रहा है उसको लेकर बहस करना चाहते हैं। जनता इस बात को समझती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप गालियां उनको दे रहे हैं जो रेफरी हैं, जो चुनाव हारते हैं, जो मैच हारते हैं, उनके पास एक ही बस तरीका होता है कि रेफरी को गाली दे लो, अंपायर को गाली दे लो, जनता में भ्रम बना लो। लेकिन ये तय मान के चलिए कि जिनकी निष्ठा इस देश में नहीं है जिनकी निष्ठा इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं है उनके बारे में देश जानता है, क्योंकि सोनिया गांधी जी को भी वोटर बनाया गया। मैं उसका जाना नहीं चाहता, सम्मानित नेता है सोनिया गांधी जी को भी जो वोटर बनाया गया इस देश का, उसके लिए कौन सी कार्य प्रणाली का उपयोग किया गया ये देश जानता है।
10: ठीक है सुरेंद्र जी, 30 सेकंड दूंगा फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, सबका रिएक्शन ले लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड।
11: बिल्कुल बिल्कुल, शलभ भाई बड़े अच्छे इंसान है, पुराने पत्रकार पुराने मित्र भी हैं, लेकिन ये भूल गए इन्होंने 14 आपत्तियों में से जो 9 आपत्तियों पे सरेंडर और यूटर्न इलेक्शन कमीशन ने किया है उस यूटर्न को लेकर के एक शब्द नहीं कहा। अभी कह रहे हैं एसआईआर पर, अरे भाई एसआईआर पर ही तो सबसे बड़ा हमला हुआ है, उसी पर तो यूटर्न लिया है कि फार्म 6 अब पुराना लागू होगा। गोवा में वो जो 97 मतदाता हैं वो हटा लगाए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 16 लाख मतदाताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट क्यों गया सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन उनको डिलीट करने के लिए वो किया जाएगा। अभी इन्होंने कहा दतिया का इलेक्शन, अरे दतिया के इलेक्शन में अगर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी होती तो हम लोग 50,000 से जीतते, हम लोग कर्नाटक में 200 सीट जीतते, कर्नाटक में 180 सीट जीतते। मैं आपको बात बताऊं, आप कहां की बात कर रहे हैं? ये जो अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन नहीं लगा होता तो हम 80 में से 78 सीट हमारा गठबंधन जीतता। तो आप इस चीज को जान लीजिए, भ्रष्ट और बेईमान चुनाव आयोग है। ज्ञानेश कुमार या तो सरकारी अप्रूवर बने और या ज्ञानेश कुमार जाएंगे जेल।
10: ठीक है, अच्छा शलभमणि जी 10 सेकंड में ही बोलेगा कि 9 पर यूटर्न लिया गया।
13: पूरी क्रोनोलॉजी है राजीव भाई, पूरी क्रोनोलॉजी है। एक अखबार में खबर छपवाओ, उसके बाद देश के भीतर एक वातावरण फैलाओ, मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एक प्रकार की नकारात्मकता फैलाओ इस देश को, इस क्रोनोलॉजी को देश समझता है। और जहां तक आपत्तियों की बात है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आप देखिए चुनाव आयोग के भीतर ही सामान्य प्रक्रिया है, आपस में बैठते हैं, बहुत सारी चीजों पे मतभेद होता है, बहुत सारी चीजों पे सहमति होती है, लेकिन इस देश ने निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था दी है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया ने कहा कि भारत के भीतर जो निर्वाचन प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस हार रही है और लगातार इनकी युवराज 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके, राहुल गांधी के नेतृत्व को ये देश कबूल करने को तैयार नहीं है, तो सारी गालियां चुनाव आयोग पर डाल दो, सारी तोहमत चुनाव आयोग पर डाल दो, सारे अब्यूजर जितनी आपको अपशब्द कहने हैं वो चुनाव आयोग पर कर लीजिए, ये कह के आप अपने राजनीतिक जिम्मेदारी से बच
10: जाइए। आपकी बात भी आ गई सुनील जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, कि क्या संदेह समाप्त हो गया है प्रेस नोट के बाद, या संदेह बना हुआ है? और एक सवाल, एक आरोप आप पर भी लग रहा है कि आप तो मतलब ठान कर बैठे कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करेंगे, भरोसा तोड़ेंगे आम लोगों का उन पर।
14: देखिए राजीव जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। सलभ भाई को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत अच्छे शानदार पत्रकार रहे हैं, लेकिन आज उनकी पत्रकारिता मर गई है, उनकी विधायकी भी मर गई है, एक जो नेता का जज्बा होता वो भी मर गया है, केवल वो अंधभक्त बचे हैं। और एक सवाल लगातार उठा रहे हैं कि जो जिम्मेदारी के साथ या जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग हैं अगर वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो हम आवाज ही नहीं उठाएंगे। और चुनाव आयोग को लेकर के तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा, भाई हम तो ये मानते हैं इस हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण था, पूरी दुनिया में बड़ी वाहवाही होती थी, उस वाहवाही को किसने गिराया, किसने अपमानित किया? अगर चुनाव आयोग पहले अंधा हुआ, फिर बहरा हुआ, फिर गूंगा हो गया, और समाजवादी पार्टी ने तो लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व तो हमारे सारे सांसद कफन लेकर के गए, समाजवादी पार्टी ये मानती कि चुनाव आयोग मर चुका है, और इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि जब हम लोगों ने शिकायत की, समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कहा प्रमाण दीजिए, जब हम लोगों ने वीडियो और सोशल मीडिया पर और जो अखबारों में छपा जब वो दिया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामे के साथ दीजिए। 18,000 हलफनामे के साथ समाजवादी पार्टी ने इसी मरे हुए चुनाव आयोग के दफ्तर में हम लोगों ने दस्तावेज भेजे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी डीएम पर कार्रवाई नहीं, किसी एसडीएम पर कार्रवाई नहीं, किस अधिकारी पे कार्रवाई? और आप बात कर रहे हैं नैतिकता की, बीजेपी के लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भगवान राम का चंदा चोरी कर गए। हम हमारे नेता ने आवाज उठाई, हम लोगों ने आवाज उठाई, विपक्ष ने आवाज उठाई, तो कह रहे थे कि आपका तो हक ही नहीं बनता, मतलब हमारा हक, ये कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाते हैं। अच्छा मान लेते हैं हम नैरेटिव बनाते हैं, हमने कहा कि राम मंदिर में चोरी हो गई, नैरेटिव था या चोरी थी। हमने कहा कि एक्सप्रेस वे में सब भ्रष्टाचार हो रहा है, आज तो सब धसे जा रहे हैं, पानी भरा जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रही है बीजेपी सरकार, नैरेटिव था। अरे आपने छीना,
10: ठीक है,
14: आप महंगाई लेकर के आए,
10: जवाब ले लेते हैं,
14: भ्रष्टाचार
10: जवाब ले लेते हैं,
14: बोल रहा है।
10: और शर्मा जी सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दे
14: देंगे। एक सवाल
10: कंप्लीट कर
13: जी, बिल्कुल।
14: इनके प्रवक्ता पहले चुनाव आयोग को बचा रहे थे, बस राजीव जी 5 सेकंड, इनके पहले प्रवक्ता चुनाव आयोग को बचा रहे थे, फिर इनके मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को बचाने लगे। क्यों? क्योंकि इनके सारे मुख्यमंत्री जानते हैं यही चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री,
13: राजीव भाई 30 सेकंड,
14: जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री नहीं है।
13: देखिए राजीव भाई 30 सेकंड दीजिएगा, देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं अब। आज तक जैसे टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं तो इतना मक्खन लगा के बैठते हैं जैसे लगता है कि इनसे बड़ा चरित्रवान कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी 2012 में इनकी नेता डिंपल यादव कैसे चुनाव जीती जरा बता दिए राजीव भाई। निर्विरोध चुनाव इस देश में हुआ, किसी ने कल्पना की थी क्या? इनकी सरकार आई, गुंडों ने घेर लिया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको उन्होंने नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया। सोचिए लोकसभा चुनाव निर्विरोध हो रहा है, अद्भुत है भाई। मतलब ये तो बड़ी हैरतअंगेज घटना हुई। इनकी नेता डिंपल यादव को जिताना था तो आत्मा मर गई थी क्या सुनील जी आपकी? आप तो बड़े आत्मावान व्यक्ति बनते हो, आत्मा कहां चली गई थी जब मरी हुई आत्मा लेकर आप लोगों ने निर्विरोध जिता दिया, चुनाव तक नहीं होने दिया? क्योंकि आपको पता था कि 2012 में आपकी सरकार आ चुकी है और उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि गुंडों की सरकार आ चुकी है, आपकी नेता चुनाव हार जाती है। और सुन लीजिए सुन लीजिए, आप निर्विरोध कैसे जीत गए?
14: आपके पास नहीं है,
13: चुनाव
14: आप जानते हैं जनता के आशीर्वाद से नहीं, चुनाव आयोग के आशीर्वाद से आपकी सरकार
13: चुनाव कैसे जीत गए?
14: और
13: चुनाव के चुनाव कैसे जीत गए? और आप बैठ के ध्यान दे रहे हैं, आप बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं,
14: अब आप बोलना नहीं कर सकते,
13: आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बिना चुनाव के चुनाव कैसे जीत गए जरा मुझे बताइए ना। भारत 2012 के भीतर
14: चुनाव
10: एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। देखिए मैं सबको समय दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कि समय किसी को नहीं मिला, दस सेकंड में कंप्लीट कर दे, दूसरे मेहमानों के पास जाना है, ठीक है?
13: मैं शांति से सुनता रहा। देखिए झूठ बोला इन्होंने, अरे इन्होंने तो अपनी पार्टी तक हथियार ली, हम नहीं कह गए, माननीय नेताजी गए चुनाव आयोग के पास और जाके कहा कि मेरी पार्टी हथियार ली। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं कहता रहा हूँ बताइए ना 2012 में राजीव भाई क्या निर्विरोध चुनाव हो सकता है क्या? डिंपल यादव बिना किसी के चुनाव लड़े चुनाव जीत गई, आज ये बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान लोकतंत्र निष्पक्षता चुनाव आयोग जनता आपके बारे में जानती
10: है। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनसे सीधा समझते हैं कि क्या वाकई संवैधानिक संस्था को सर आप क्या समझते हैं कि कटघरे में खड़े किया जा रहा है या वाकई ऐसी चीजें हुई है जिससे संदेह हो रहा है?
15: राजीव जी मैं सभी की बातें सुन रहा था। सबसे तो पहले जो ओपनिंग रिमार्क शुरू किया भाजपा के प्रवक्ता विश्व त्रिपाठी ने और ये कहा कि अच्छाई किसने की, पहले ये मैं जानना चाहता हूँ देश के दर्शकों से, आप लोगों से, सभी से। ये कह रहे थे कभी क्या किसी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अच्छा बताया है? कभी नहीं बताया, चाहे वो हिमाचल जीते हों चाहे केरला जीते हों, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप के घेरे में रखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जबको पता है कि दुनिया जानती है सन 50 के बाद से जब 52 शुरू हुआ इलेक्शन और आज तक इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ चुनाव कराता है देश में। आप देखिए कब नहीं कराया चुनाव ईमानदारी से, आप कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, ईमानदारी से अगर चुनाव नहीं कराते इलेक्शन कमीशन तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। और उसके बाद जब वाजपेयी जी की सरकार गई तो फिर कांग्रेस के लोग आए और देश के प्राइम मिनिस्टर बने और 10 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद ईमानदार अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होता, मैं जानना चाहता हूं देश के लोगों से, पार्टी के लोगों से, सबसे मैं जानना चाहता हूं ये बताएं इस बात को कि फिर मोदी जी कैसे आ गए अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं होता। और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आज की डेट में देता हूं कि मिस्टर नवीन जो देश के सबसे बड़ी पार्टी विदेशों में गिना जाता है भाजपा का नाम, उसके प्रेसिडेंट हैं और वो अपनी असेंबली हार गए अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं
10: चयन प्रक्रिया
15: अभी देश के अंदर
10: बदली गई,
15: स्टेट के चुनाव हुए,
10: स्टेट के संदेह खड़ा गया क्योंकि चीफ जस्टिस को हटा दिया गया।
15: सुनिए एक मिनट राजीव, मुझे बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तमिलनाडु में, अभी केरला में कैसे जीत गए अगर मोदी जी ने इंटरफेरेंस किया होता? कभी कोई इंटरफेरेंस इलेक्शन कमीशन बर्दाश्त नहीं करता है। और जहां तक एक एक न्यूज़पेपर की बात की जाती है, उस न्यूज़पेपर ने क्या लिखा कि ये दो कमिश्नरों ने अलग डिसेंट नोट दिया है। भाई मैं जानना चाहता हूं कि वो नोट सही है या नहीं है, यह इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स को आगे बताना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं प्रोटोकॉल, आई वाज द चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस वक्त क्या प्रथा है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं तो अगर चीफ के नाम देते हैं तो ओरिजिनल चीफ क्या जाएगी, जेरोक्स होकर दोनों कमिश्नर क्या जाएगी, अगर किसी कमिश्नर को देते हैं उसके नाम से तो ओरिजिनल उसके पास जाएगा, तीनों के पास जेरोक्स जाएगा। यह तरीका संसद से होता था और ऐसा नहीं है। और कोई भी प्रोटोकॉल के तहत जिनको छुट्टी भी लेनी है कमिश्नर्स को, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देंगे, वो सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। विदेश जाना है विदेश के दौरे के लिए, और जहां तक ये कहा गया कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी दी गई, कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी देने का कोई मतलब नहीं उठता। अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो मैं जानता हूं वो लॉ मिनिस्टर
10: एक पॉलिटिकल सवाल जो हमारी नोडल ऑपोजिशन के आरोप है, ये ऑपोजिशन के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं फिर?
15: जी मैं जानना चाहता हूं कि अपोजिशन को कहां से मिल गया सारी बात। आज इलेक्शन कमीशन का पहला प्रश्न उठाया, उसके बाद दोबारा कल नोट आया उनका, और तीनों की फोटो आई है। मैं उस बात से सेटिस्फाइड नहीं, मैं भी नहीं हूं। उनको सामने आना चाहिए देश के सामने और अपनी बात और ईमानदारी को सामने रखना चाहिए कि नहीं, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और हम लोग एक हैं, नेक हैं और ईमानदार है इलेक्शन कमीशन, इन सबको
10: देश के सामने। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागिरी जी भी है। ज्योत्सना जी, एक एक शिकायत यह भी है कि चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया, मतलब आमतौर पर ज्ञानेश कुमार जी सामने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, मतलब उनकी शेरो शायरी तमाम दूसरी चीजें बड़ी फेमस हैं, तो बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, कुछ सवाल भी उनको ले लेने चाहिए थे।
16: राजीव जी, पहले तो आपको और पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं एक चीज तो बहुत स्ट्रांगली ये बोलना चाहती हूँ कि आज के तारीख में जो मेरे ख्याल से भारत जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड इनफैक्ट हम लोग काफी सारे देशों के लिए एक आदर्श माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नो, तस्वीर तो साफ है ना राजीव जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि SIR के जो फैसले हैं वो यूनानिमस थे, बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर सेफगार्ड्स हैं जो मजबूत किए गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ECI नेट का जो इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिव्यू होगा वो भी होगा। अब ये बताइए कि जितने भी प्रश्न उठाए गए थे, मान लीजिए जो भी प्रश्न उठाए गए थे उनका तो उन्होंने समाधान दे दिया। अब इसीलिए हमारे जो चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने तो भी यही स्पष्ट किया है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान रखना बिल्कुल हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक दैट इज द बेसिक ड्यूटी दैट वी हैव टू डू नाउ, और जनता का जो मैंडेट है ना उसको स्वीकारना भी पड़ता है राजीव जी। अब एक यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जो ECI अभी जो मेरे से पहले वक्ता ने बोला है उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, अभी जैसे मान लीजिए उन लोगों ने हरियाणा में उनका लॉस हो गया, क्या बोले राहुल जी, EVM को ब्लेम कर दिए। मानिए महाराष्ट्र में उन लोगों ने हार गए, क्या बोला, अरे नहीं नहीं वोट चोरी हो गया। परसों बिहार में हार गए, क्या बोले, SIR को बोल दिए। अरे यही लोग जो यही इलेक्शन कमीशन के अंडर थे, इन लोगों ने तेलंगाना जीता है ना, यही इलेक्शन कमीशन के अंडर में तो इन लोगों ने कर्नाटक जीता है ना, ये तो भी तो बात है, ये क्यों नहीं बात समझ रहे हैं लोग। मतलब जब आप हारे होगे तो बोलो ब्लेम इलेक्शन कमीशन पे डाल दो, और जब आप जीत जाओगे तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, ये कहां की रीति है। मैं वही बता रही हूँ, जो संवैधानिक संस्था है उनका जो सम्मान है रखना हम लोगों का फर्ज है, और दूसरा चीज है लोगों का जो प्रजा की जो मैंडेट है, जनता की जो मैंडेट है उसको स्वीकारना पड़ता है हम लोगों को। पॉलिटिकल पार्टी तो वही, आप देख लीजिए हम 2019 से 2024 में हम आंध्र प्रदेश में सरकार में नहीं थे,
10: यानी कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर 1% भी अब शक की गुंजाइश नहीं रह गए।
16: मैं ये बोल रही हूँ जितने भी प्रश्न उठाए गए जब उनपे एक क्लैरिफिकेशन आ गया, हाँ। तो खामखा इलेक्शन कमीशन ने तो ये क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब खामखा भ्रम फैलाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं उसको शायद हम सब लोग को बहुत बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए।
10: ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप जवाब दें कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा जीते
12: मैं पूरी तरीके से इस पर जवाब देता हूँ राजीव।
10: मैं मोहम्मद अमीन साहब आ रहा हूँ बात हमारी सर, आपको इनकी बात आपको समय दूंगा।
12: बहुत अच्छी, तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दे कि बहन जी हम भी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। 1952 से लेकर के 2014 तक हम लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को ही मजबूत किया, जिसकी वजह से आप हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, यहां पर सत्ता बना पाए। लेकिन 2014 के बाद ऑक्टोपस की तरीके से जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया गया, करारा हमला किया गया, उसका पहला उदाहरण था कि 5 जज सड़क पर आकर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किए थे बहन जी। उसके बाद दूसरा हमला हुआ था रात को 1:30 बजे, सीबीआई को पूरी तरीके से सीबीआई में कूप कर दिया था, रात को 1:30 बजे डायरेक्टर को हटाने की बात करी थी। इसके बाद आप आ जाइए कि जिस तरीके से क्या नाम धारा 16 के अंतर्गत जब हमारे 141 सांसद 2023 में 141 सांसदों को पहले हिंदुस्तान के इतिहास में एक साथ कभी भी संसद से सदन से बाहर नहीं किया गया, उस धारा के नाम 141 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद यह वाला कानून बनाया गया था जिसमें ज्ञानेश कुमार जैसे शख्स को 100% इम्यूनिटी मिल सके। क्यों इम्यूनिटी मिल सके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो पक्ष में काम कर सके। बहन जी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े थे और 5 महीने में 42 लाख वोटर जुड़े। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान भला करे आपका। तेलंगाना हम जीते,
16: मुझे
12: बदमाशियां नहीं होती ना बहन जी, तो आप इस चीज को जान लीजिए। 3/4 बहुमत से हम लोग जीतते। कर्नाटक हम लोग 3/4 बहुमत से जीतते। दतिया का उपचुनाव 50,000 से जीतते। और ये हमारे लिए नहीं है। आखिरी बात खाली आपको शेर कह के खत्म कर रहा हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट टारगेट टीडीपी है।
10: ज्योत्सना जी,
16: सर एक चीज, मैं शायद उनका एक ही जवाब है, मेरा फ्रस्ट्रेशन है। एक चीज है जो वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो बहुत बहुत सम्मान दे रहे। सर मैं हैदराबाद में रहती हूँ, आपकी सरकार है तेलंगाना में, आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं दिन ब दिन। एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक ही छोटा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको चाटा मारा इस चीज पे, परसों की बात है, क्योंकि आप जुडिशियरी को बुलाए इसलिए मैं बात कर रही हूँ इस पे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाथ में ये बुक लेके घूमते हैं ना आपके जो राहुल गांधी जी है, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आप लोगों ने तेलंगाना में दूसरे पार्टी के बल पे जो जीता है, दूसरे पार्टी के जो जीता है, बीआरएस पार्टी से जो जीता है, उस शख्स को आपने, जो एमएलए था उसको आपने अपने पार्टी के इससे आपने एमपी लड़वाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ये करके, परसों की बात है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के तारीख में तेलंगाना में हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। सर आप हंसिए, यहाँ पे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर किस तरीके के जुल्म हो रहे। आप जो जंतर मंतर की बात कर रहे थे ना परसों, उससे बड़ा जुल्म यहाँ तेलंगाना में हुआ, मगर आपकी जो सरकार है आज तक कुछ भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने आज तक यहाँ छात्रों की गूंज जो जहाँ वहा वहा वहा करते फिर रहे ना, एक बार तेलंगाना में आके यहाँ पे करो छात्रों की गूंज, आपको समझ में आएगा आपके सरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सर बोलना बहुत आसान है।
10: सुरेंद्र जी सिर्फ 20 सेकंड में,
16: भाई दे दो की बात करी,
10: सिर्फ 20 सेकंड में सफाई। मोहम्मद जमीन दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, ठीक
12: है। मैं टीडीपी की प्रवक्ता ज्योत्सना जी से स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर तेलंगाना में कोई भी संविधान विरोधी कार्य हो रहा है तो टीडीपी को उसका विरोध करना चाहिए। टीडीपी भारतीय जनता पार्टी की गोद में क्यों छुपी हुई है? नंबर एक। नंबर दो, छात्रों की गूंज हैदराबाद में भी होगा। नंबर तीन, अब सुनने की क्षमता रखिए बहन जी, हम तो आपसे आपको तो हम पूरे सम्मान के साथ आपको आज नहीं तो कल हमारे साथ आना है, इसलिए हम आपके साथ बिटरनेस नहीं चाहते। आपको तो भाजपा छोड़नी है, आज नहीं छोड़नी कल छोड़नी है। आपको मैं इतना बता देता हूं कि अगर वहां पर कोई गलत काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमने उसको तुरंत ठीक किया, हमने क्लेरिफाई किया, करेक्टिफाई किया। हम करेक्टिफाई करते हैं, आप लोगों की तरीके से कानून नहीं चेंज कर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये अफसर मैं रखूंगा तो कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ठीक है तो आपने वो कानून का कानून ही चेंज कर दिया संसद के हाथ में। यह भारतीय जनता पार्टी का वो है,
10: ठीक
12: तो
10: है।
12: हम लोग सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा नहीं करते हैं, इस चीज को जान लीजिए। और आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना जनता दल यूनाइटेड के बाद टीडीपी है।
10: ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जोशन आपके पास अभी आपके पास लौटूंगा, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब मैं चाहता हूं कि ठीक है
16: पहले
17: पहले आप इंडी ब्लॉक में जो जितने भी
10: ठीक है, जो जोशना जी मैं आपके पास जोशना जी प्लीज अभी आपके पास लौटूंगा, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, जो ये जो फैसले लिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, जो सुधारात्मक फैसले जिनको कहा गया, उनको एक तरीके से ऑपोजिशन यू टर्न के तौर पर देख रहा है, क्या आपको लगता है कि ये यू टर्न है, ये सुधारात्मक फैसले क्यों लिए गए? जब वो सवाल
15: उठ कर रहा हूं तो मुझे बताइए, सुन तो लीजिए राजीव जी, जनता सुनना चाहती है, जानना चाहती है एज एक्सपर्ट। आपको मैं बताऊं, अभी एसआईआर की बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया एसआईआर के बारे में, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 24 मई 26 के अंदर क्या आदेश दिए गए इलेक्शन कमीशन के लिए। आर्टिकल 324 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंडोर्स किया है कि राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि कैसे लिस्ट बनानी है, क्या करना है इसके मामले के बाद। एक और कोट किया गया, वो कोट किया गया महाराष्ट्र के लिए कि उसके अंदर लाखों वोट बीजेपी के जोड़े गए और अपोजिशन के काट दिए गए। उस बारे में बताना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में कहा था ओपनली कि ये हुआ है, उसी बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात अलग हो गई, वो गए हाईकोर्ट बॉम्बे में, वहां से फटकार लगी और वहां से उनको कहा कि समय मत
12: अमीन।
15: उसके बाद कमीशन ने सोचा कि क्या किया जा सकता है, फिर क्या किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए बनाया और बनाने के बाद
10: जो भी आपको झूठ लग रहा है सब मैं जवाब दूंगा।
15: इलेक्शन
10: उनको कंप्लीट करने दें।
15: हाँ, इलेक्शन कमीशन ने, हाँ इलेक्शन इनकी आवाज कम करिए, इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि क्या कहा जा रहा है, देखा गया, तब एसआईआर प्रक्रिया जो 2002 की थी उसको मान के और फिर लागू किया गया। सामने हमारा बिहार था जिसमें कहा गया, शोर मचाया गया, लाखों वोट कट गए, बंगाल के लोगों वोट कट गए, लेकिन नहीं, क्या था एसआईआर कोई गलत चीज नहीं है, उसमें जो लोग ज्यादा हो गए थे यानी डेथ वाले लिस्ट में चले जा रहे थे, माइग्रेट चले जा रहे थे और जो डबल वोटर थे उनको हटाया गया, प्यूरिफाई करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, किसी पार्टी का काम है क्या, मैं जानना चाहता हूँ।
10: इलेक्शन कमीशन का सुनील जी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बैठक भी हो गई, क्या अभी जो हमारे साथ एक्सपर्ट है मोहम्मद अमीन साहब, उनकी तरफ से क्लियरली सारी चीजें बताई गई, क्या कुछ नजरिया समाजवादी पार्टी का बदला है या कांग्रेस के सुर में ही सुर मिलाएंगे आप इस मामले में?
14: देखिए सवाल समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का नहीं है राजीव भाई, सवाल देश का है, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का है, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर छेड़छाड़ का है, सवाल तो देशद्रोह का है।
10: लेकिन वो कहते हैं कि आप आत्ममंथन कर रहे हैं कि हारते आप हैं, दोष आप ज्ञानेश कुमार को दे देते हैं।
14: एक चीज बताइए अगर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो हम कैसे जीत पाएंगे, आप बता दीजिए। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से
10: वो पूछने की कैसे काम कर रहा हूं, एक्सप्लेन करें, बताइए कैसे बीजेपी के लिए काम कर रहा
14: है। अजय बताइए, सवाल ये है राजीव भाई कि जब भगवान राम के मंदिर में बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों ने चोरी की और हम लोगों ने कहा कि चंदा चोरी हुई है, इससे ज्यादा तेज से सारे भाजपा के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और दिल्ली वाले सब चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं ये तो सनातन का अपमान हो गया। और जब चोरी पकड़ी गई,
10: सुनील जी जैसे आप साइड से तुरंत राम मंदिर चंदा चोरी पर शिफ्ट कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वही है।
14: सवाल ये नहीं है, हम कह रहे हैं इस देश में चंदा चोरी हो, वोट चोरी हो, पर्चा लीक पर ये लोग कैसे बचाव कर रहे थे पर्चा लीक पर,
10: ठीक है,
14: और फिर इस्तीफा देना पड़ा। मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं ये देश तब तक शांत नहीं होगा जब तक या तो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा या देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा।
10: ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी,
14: देश से
10: ऑपोजिशन की एक मांग
14: करके ये देश नहीं चल सकता है। आप कानून बदल सकते हैं, बीजेपी बचा सकती है देशद्रोहियों को, लेकिन ये देश सजा देगा, देश का कानून सजा देगा, कौन बचाएगा इनको?
10: ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी,
14: वैसे भी किसी को नहीं,
10: बिल्कुल सीधा सवाल, मैं आप ही का सवाल सुनील जी लेकर जा रहा हूं शलमणि त्रिपाठी जी के पास के, शलमणि जी अगर विपक्ष को नहीं है विश्वास ज्ञानेश कुमार पर तो उनको वो कह रहे हैं कि रिजाइन दे देना चाहिए, तो क्या आपत्ति है, रिजाइन दे दें कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल उनके सपोर्ट में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए संदेह होता है कि कहीं आपके लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, यही आरोप तो लगाते हैं वो।
13: राजीव भाई देखिए, आज तक एक बहुत बड़ा चैनल है और इनमें सुरेंद्र जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, सुनील जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमारी बहन टीडीपी का पक्ष रख रही है, लेकिन दो लोग रेफरी की भूमिका में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, राजीव ढौंडियाल जी और हमारे मोहम्मद अमीन जी। अब आप इसी डिबेट को देख लीजिए कि मोहम्मद अमीन जी एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अब आप देखिए देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। उन्होंने एक बात रखनी शुरू की और कांग्रेस ने उन्हीं को गाली देनी शुरू कर दी, उन्हीं पे और अपशब्द कहने शुरू कर दिए। दरअसल देश में ही हो रहा है कि कोई तटस्थ बात कहने की कोशिश कर रहा है, कोई निष्पक्ष बात कहने की कोशिश कर रहा है, तो कांग्रेस समेत समूचा जो विपक्ष है वो उसकी तरफ पूरी तौर पर हमलावर है। देश ऐसे थोड़ी चलेगा। हमारे सुरेंद्र भाई, हमारे सुनील भाई ने जो बात कही कि तब तक देश शांत नहीं होगा, इस देश को शांत रखेंगे, इस देश को शांत रखेंगे, इस देश के 140 करोड़ लोग, नहीं तो हल्ला तो आप उसमें ही बचाते थे। जब चुनाव आयोग ने कहा कि आइए जरा ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा बकवास करी, यहाँ नहीं देश ही नहीं दुनिया में जाके बकवास करी कि हमारे देश में ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा आओ 48 घंटे नहीं 72 घंटे का टाइम देते हैं राहुल गांधी, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट लेके आओ, आके ईवीएम हैक करके दिखा दो, ये रफू चक्कर होगा, आके और इटली निकल गए, विदेश निकल गए, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी करना चाहते हैं। और नैतिकता की बात राजीव भाई तरह सोचिए, गिरधर गवांग जी फरवरी में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फरवरी में वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गए और लोकसभा में वोट देने के लिए आए अप्रैल के भीतर, जब विश्वास मत का हो रहा था और अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट देके उन्होंने सरकार गिरा दी। ये नैतिकता है कि जो मुख्यमंत्री हो चुका था उड़ीसा का वो वापस आके केवल एक सरकार चलाने के लिए वोट देने आया? आप ऐसे लोगों से नैतिकता क्यों नहीं करते हैं? इनके लिए हमेशा मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा कूड़ा, लेकिन देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की प्रतिबद्धता इस देश के प्रति नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे गांधी परिवार, उनकी प्रतिबद्धता इस देश के पक्ष में नहीं है। ये हमेशा देश को कलंकित करने का प्रयास करेंगे, देश को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, देश की संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा घेरने की कोशिश करेंगे और इसीलिए देश इनका हर बार जवाब दे।
10: ठीक है सुरेंद्र जी, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एकजुट होने वाले हैं, इंडिया ब्लॉक एकजुट होने वाला है, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है और कुछ रिफॉर्म्स की बात भी है, तो उसके बावजूद भी आप लोग एकजुट होकर अब भी करेंगे प्रदर्शन?
11: राजीव भाई, एक बड़ा पुराना फहमीदा रियाज की छोटी सी नज्म थी, चार लाइनें हैं उसकी, कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो देश को, देश के संविधान को, नल नील
13: दलित
11: आदिवासियों के क्या नाम उसको बचाने, आईन को बचाने के लिए हम तो सब कुछ करेंगे। रही बात अमीन जी ने कहा महाराष्ट्र के इलेक्शन में 97 पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है अमीन साहब, और जिस पिटीशन पे आदेश हुआ है वो हमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है। थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया कीजिए, इतने अच्छे अधिकारी रहे आप, भारतीय जनता पार्टी की संगत में आकर के बिगड़ गए। अपनी संगत को कम से कम सही करिए, और इसके बाद आप जो बात अभी इन्होंने कही ना,
15: वो पहले देखिए जाके
11: 12 साल से होता बात काल है।
10: आप समय चूके करने में सबसे एक एक करके रिमार्क करना चाह रहा हूं।
11: राजीव जी
10: ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब आप बोलिए। मोहम्मद अमीन साहब
15: देखिए देखिए राजीव जी, मैं जो इतनी बात कह रहा हूं ऑफिशियल कहा हूं, रिकॉर्ड पे है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की कि मैंने, चाहे हाई कोर्ट महाराष्ट्र की बात की, हमारे भाई साहब खुद पढ़ लिख के आया करें कि मैं पढ़ा लिखा था तभी मैं इस जॉब में आया।
11: फिर से कहता हूं बेचारे पॉलिटिक्स करते हैं,
15: वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करते हैं बिना पढ़े लिखे। हम बिना पढ़े लिखे हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिलती, भारत सरकार में क्वालिफाई करके आते हैं।
10: ठीक है ठीक, मैं सबसे एक एक करके रिमार्क ले रहा हूँ। सुनील जी आपका भी, आपका रिमार्क आ जाए, फिर जोर्सन आपके पास और अंतिम में शलभ जी आपके पास।
14: देखिए राजीव जी, एक भी सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया और लास्ट में क्या कह रहे हैं, भारत माता की जय वंदे मातरम। अरे भारत माता की जय तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन इनका तरीका बोलने क्या है, चंदा चोरी करेंगे कहेंगे भारत माता की जय, आरक्षण चोरी कर लेंगे कहेंगे भारत माता की जय, पर्चा लीक करा देंगे कहेंगे भारत माता की जय, भ्रष्टाचार कर लेंगे कहेंगे भारत माता की जय। अब जब लोकतंत्र को बचाने की बात है तो आप देशद्रोहियों को बचा रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय।
10: ठीक है,
14: अरे भारत माता की आत्मा को तो मार रहे हैं आप।
10: डन, ठीक है, जो कैसे
14: बोल सकते हैं जय,
10: लोकतंत्र क्या वाकई खतरे में? ऑपोजिशन तो ऐसे ही कह रहा है।
16: राजीव जी मेरा तो एक ही कहना है कि मैं बार बार इस चीज को, शायद हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मेरी विनती है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका जो एक वर्किंग स्टाइल है, उनका जो एक सम्मान है, उसको लगा के रखने का एक एक फर्ज अपने ऊपर बनता है,
10: ठीक है,
16: पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग बार बार बार बार उसको ऐसा यू नो ये करेंगे, उसके ऊपर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी बाहर इसमें। वो चीज सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार अपनी नजर में भी लगाना चाहिए,
10: ठीक है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, अंतिम रिमार्क।
13: देखिए, ज्योत्सना जी ने बहुत सही बात कही, लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के सामने हमारी इज्जत से ज्यादा राहुल गांधी की इज्जत की परवाह है। अब देश के सामने कैसे बताएं कि 100 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, जहां जाते हैं जमानतें जब्त होती हैं, इनके कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि राहुल गांधी को मत भेजना, नहीं तो थोड़ा बहुत जो वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के गाली देने के लिए दो ही लोग मिलते हैं, हमारे अमीन साहब और इलेक्शन कमीशन। इन्हीं को दो को गाली दे के अपने राहुल गांधी की इज्जत बचा के रखो, राहुल गांधी की जो असफलता है उसको बचा के रखो। मैं बड़ा हैरान हूं कि आपके टीवी डिबेट पे बैठ के मोहम्मद अमीन साहब की पढ़ाई पे इन्होंने टिप्पणी की। आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था में पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हो, उनको कांग्रेस के साथी हमारे बता रहे पढ़ लिख के आया करो। आपकी पोल पट्टी उन्होंने खोल दी, जब आपकी असलियत खोल दी, जो धूर्तता करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं उसको जब उन्होंने खोल दिया तो आपकी तिलमिहाट साफ नजर आ
10: रही। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल SIR पर शुरू हुआ ये विवाद अभी थमता हुआ तो नहीं दिख रहा है। दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
3: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: अब पर वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: ओ नादान परिंदे, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
13: तो कौन सी बनानी है?
14: तेरी
15: स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
17: आई लाइक दिस ओनली।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार रोटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
9: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
10: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
12: आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
16: तो कौन सी बनानी है?
17: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
18: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
9: आई लाइक दिस ओनली।
19: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
6: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
7: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
8: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
9: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
10: कौन भय में जी रहा है?
9: नागरिक जी रहे हैं।
10: हाँ, भारत में
9: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सीई सी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी शामिल रहे, जिसमें चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एसआईआर में नोटिस पाए लोगों के घर बीएलओ दस्तावेज लेने जाएंगे। डीईओ जरूरत के अनुसार रैन बसेरों, मजदूर, गरीब, बेघर के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे। एसआईआर में फॉर्म 6 के साथ घोषणा पक्ष की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रही। ECINET की समीक्षा, वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM की विशेषज्ञ टीम करेगी। महाराष्ट्र और दिल्ली में दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई। आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो लेटर भेजा था वह SIR या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। वहीं SIR पर चुनाव आयोग अब घरों में जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करने वाला है। गोवा में जिन वोटर्स का नाम छूट गया है वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फॉर्म 6 कलेक्ट करेगा। SIR में अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या छूट गया है तो फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा किया जाता है। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 पर कोई विवाद है ही नहीं, फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उधर अब चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले जारी हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल BJP के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बहरहाल चुनाव आयोग पर जारी यह घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल के बाद अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा पर लगा आरोप, सवाल पूछने पर युवक को मारा थप्पड़, आप विधायक जनरल सिंह से जुड़ा हुआ है पीड़ित। प्रवेश वर्मा बोले, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप, छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, लागजनी तोड़फोड़। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी सम्राट रेखा गुप्ता से लेकर शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस पर हमला। मन की बात में पीएम ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान, अयोध्या गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये बहस हम एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब चुनाव आयोग पर, जिसको कहते हैं चारों तरफ से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के इर्द गिर्द जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच अब नजर सीधा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, और इसीलिए ये चर्चा आज हम कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां सक्रिय हो रही हैं। 2027 के लिए अखिलेश यादव का पीडीए रथ निकल चुका है। इस पीडीए यात्रा का मकसद है योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए रथ जिस रायबरेली से चला है उसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। रायबरेली राहुल गांधी की संसदीय सीट है, इसे गांधी परिवार की खानदानी सीट भी माना जाता है। लेकिन 2009 से समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिसका फायदा सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को मिला है लोकसभा चुनाव में। रायबरेली से अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा शुरू होने के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह कहा कि हम कन्नौज और इटावा जाएंगे। सवाल है कि क्या यह इंडिया गठबंधन में सीट समझौते को लेकर खड़ी हो रही तकरार है। वैसे अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा था कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल की कमी हो रही है, सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है। वैसे 2022 में रायबरेली की उचाहार जो सीट है वहां से एसपी को टिकट पर जीते मनोज पांडे अब योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। बीते दिनों उन्होंने शिव महापुराण कथा कराई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। सवाल है कि क्या रायबरेली से अखिलेश की पीडीए यात्रा उस पूरे क्षेत्र में अपने आधार को नए सिरे से साबित करने की कोशिश है। हल्ला बोल में आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि रायबरेली से ही क्यों चला अखिलेश का पीडीए रथ। लेकिन बहस इस बात पर भी होगी कि बीजेपी के लिए भी अब ये जेडीयू का 60 सीटों पर लड़ने का दावा, एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इधर एनडीए का क्या होता हुआ दिख रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट।
1: यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच दिल्ली से ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब एक घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और कुल अन्य नेताओं से भी मिलने पहुंचे। उधर यूपी में अखिलेश यादव की पीढ़ियां रथ यात्रा पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सवाल पर कांग्रेस ने सैफई से यात्रा करने की बात कही तो चाचा को ये बात पसंद नहीं आई।
2: में क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो मिलना नहीं, पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, पूरे जसवंत नगर है, और जसवंत नगर में अब देखना रिकॉर्ड फिर होगी और होती रही और फिर होगी, और इसलिए होगी इन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोला है।
1: अब शिवपाल यादव की ये बात कांग्रेस वालों को भी हजम नहीं हुई। कांग्रेस अब पार्टी में शिवपाल के कद पर सवाल खड़े कर रही है।
3: शिवपाल जी अपनी पार्टी के अंदर ही कितना वजन है उनका सबको पता है, बड़े नेता है हमारे लिए, तो बहुत आदरणीय सम्मानीय है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कितनी पूछ है सारी दुनिया जानती है।
1: उधर अस्तुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी कांग्रेस एसपी गठबंधन में जारी खींचतान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप और नीचा दिखाने का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डाला जाए।
1: इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की, जहां अखिलेश ने प्रवक्ताओं को सोच समझकर मीडिया में बयान देने की नसीहत दी।
5: अखिलेश यादव जी ने हम सभी प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें क्या नहीं बोलना है,
6: क्या बोलना है
5: उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये रील का दौर है, आपने क्या बोला वो कहां पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता।
1: बहरहाल यूपी के चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरदीप सिप्पल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता SPSP के, रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शादाब चौहान प्रवक्ता AIMIM के। त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। इधर JDU वाले भी तो कह रहे हैं 60 सीटों पर लड़ेंगे। बिहार की पार्टी UP में लड़ रही है, चिराग पासवान वहां पर खूब प्रचार पर प्रचार कर रहे हैं, उनके दफ्तर से बार बार जानकारी आती है कि उनकी रैली यहां पर है, आज कवर कीजिए, रैली वहां पर है। तो आप अपना देखिए ना, उनका कब तक लड़ाई देखते रहिएगा, खोजते रहिएगा।
6: जी अंजना जी, बिल्कुल लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है JDU वालों ने कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी और बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से ही सारी चीजें बैठकर बेहतर तरीके से निकाल ली जाएंगी। लेकिन अब उनका क्यों देख रहे हैं, आपने कहा तो अब बताइए क्या करें। मतलब ये रोते भी यही है, वो है ना कि दियो को खुद बुझाकर रख दिया, इल्जाम फिर हवाओं पर लगाकर रख दिया, इनसे अपने हालात संभाले नहीं जाते, हर शख्स ने शिकवा खुदा पर रख दिया। ये नाराज फूफा, इस देश में कोई भी चुनाव हो, कोई भी इस तरह का विषय हो, आपस में ही नाराजगी शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं चुनाव खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, CEC खराब है, EVM खराब है। अरे भैया, आपका आपसी तालमेल खराब है, बहुत ही गड़बड़ है। कोई एक चुनाव देखिए, चलिए थोड़ा सा शुरू से करते हैं। जब 2023 में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, कहा गया अरे ये चिरकुट नेता जो होते हैं कांग्रेस वाले, अजय राय जी को कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, इनसे समाजवादी पार्टी पर जो है कमेंट ना करवाएं। फिर उधर से कमलनाथ जी ने कह दिया क्या ये अखिलेश वखिलेश समय बर्बाद करते रहते हैं। फिर बंगाल पहुंचे, बंगाल में ममता दीदी ने कहा अरे इनके पास 0 सीट है, 2 इनको मैं दे रही हूं, नहीं लड़ना मत लड़े साथ में, अलग हो गए। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा ये तो लेफ्ट के साथ मिलकर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अभी नाराज फूफाओं की तरह चुनाव का आगाज नहीं हुआ, स्थिति देखिए कैसे। इमरान मसूद कह रहे हैं जितना लेट हो रहा है सीट बंटवारे में उतना ही नुकसान हो रहा है, हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए और इसके अलावा अखिलेश को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसके बाद इकरा हसन कहती है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। उसके बाद जो नए नए असीम वकार कांग्रेस में आए हैं, वो नए नए असीम वकार इकरा हसन को कहते हैं कि वो नई नई नेता बनी है। हालात इतने खराब हैं, सर फुटव्वल है और सारी दुनिया की परेशानी, सारी दुनिया की जो दिक्कतें हैं वो सब कुछ बताते हो दूसरों पर। तो जाहिर है जब आपकी लड़ाई इतनी सर फूटते फूटते फूटते फूटते पब्लिक डोमेन में आएगी तो बात तो होगी ही और होनी भी चाहिए।
0: चलिए अब आइए, अब सप्पल साहब आप आइए। ये तो बीजेपी वाला कोई कह नहीं रहा है, अजय राय इस बात पर नाराजगी कह रहे हैं और ये कहना कि हम इटावा और कन्नौज जाएंगे, मतलब वो सीधा निकाल रहे हैं कि भाई आपकी खानदानी सीट जो थी उस पर समाजवादी पार्टी वाले वहां पर पहुंच गए हैं, इसलिए हम आपकी खानदानी सीटों पर जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये क्या दिखा रहे हैं आप जनता को?
7: शुक्रिया। अभी मैं शिवम जी को भी सुन रहा था। आपने ये तमाम आर्ग्यूमेंट 2024 के चुनाव में भी सुने होंगे बीजेपी से, यही भाषा थी, यही पिन पॉइंटिंग पिन चुभने की बात थी। अंत में क्या रिजल्ट आया? 43 और 35। अंत में क्या रिजल्ट आया कि जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी के अलायंस से वोट शेयर में भी आगे था। देखिए, जमीन पे हकीकत बदल चुकी है। अभी भी अगर आप पुराने जुमलों से, पुराने प्रिज्म से अगर नापनी कोशिश करेंगे तो वही हश्र होगा जो 2024 को आंकने में हश्र हुआ था। 400 सोच रहे थे, 240 पे अटक गए। सच क्या है? सच यह है कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में अपना काम कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपना काम कर रही है। जब अलायंस हुआ था 24 में, स्मूथ अलायंस चला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी इशू ये नहीं है, अभी तो इशू है जो पूरा देश इस पर उद्वेलित है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हुए, हर राज्य में, हर उसके अंदर हुए कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। देखिए, चुनाव की जो सेंक्टिटी है वो इनके राज में खत्म हो रही है। ये आरोप नहीं रह गए, अब शिवम बोल रहे थे आरोप हैं। अरे आप जितना जल्दी समझेंगे उतना कम आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन है, अभी तक जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि आरोप हैं, अब तो सामने आ गया कि वो फाइलों के अंदर बंद सबूत हैं। तो इससे निपटिए, हम अपना काम करेंगे, गठबंधन काम करेगा और चुनाव का रिजल्ट आगे दिखेगा आपको, क्योंकि यूपी की जो सरकार है वो करीब करीब पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है, हर सेक्टर में कोलैप्स हो चुकी है। जो केवल और केवल जिस तरह से सेंटर में मोदी और शाह जुमलेबाजी करते हैं, स्टेट में योगी जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को जुमलों से मतलब नहीं है, वो दुखी हैं, वो जॉब चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो विकास चाह रहे हैं।
0: चलिए इसका एक जल्दी से जवाब दीजिए। और चुनाव आयुक्त को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, उसके इस्तीफे से कम पर विपक्ष नहीं मान रहा है इस पर? त्यागी जी आपको घेरा जाएगा, यूपी का चुनाव सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, इसके बाद तुरंत आरिफ फरासा।
6: थैंक यू जी, बिल्कुल बिल्कुल लिटमस टेस्ट होगा, हर चुनाव ही हमारे लिए लिटमस टेस्ट होता है। लेकिन सपल जी एक बात तो बताइए, ये कब तक अपने जीवन में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में डूबे रहोगे? मैंने नहीं कहा है, भाजपा ने नहीं कहा है, अजय राय कह रहे हैं ये खानदानी सीट। और ये सबसे पहले तो आप इस देश में 60-65 साल तक ये समझते रहते थे कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी खानदानी सीट है आपकी। जब वो चली गई और ये सवाल पूछा जाता है आपके नेता से कि वोट चोरी कैसे हुई, कहते नहीं नहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी कि वो एंटी इनकम्बेंसी तो हर किसी के लिए काम करती है, इंदिरा जी के लिए भी काम की थी, फीलिंग से देश नहीं चलता ना भाई। दूसरी बात यह है, ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, रायबरेली हमारा है, इटावा हमारा है, मैनपुरी हमारा है, किसी का नहीं है भैया, जनता का है। और जनता ने हरा दिया था कन्नौज भी, और फिर से हरा देगी जनता। और जहां तक बात 2024 का विषय है, जाहिर है हां हमारी सीटें कम हुई लेकिन जीते हम ही। अब आगे आते हैं, अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, इस देश में 2014 के बाद से 75 चुनाव हुए, 71 चुनाव हुए विधानसभा के, 3 चुनाव हुए लोकसभा के, उन चुनावों में से टोटल जो चुनाव हुए 41 जीते हम, 34 जीता विपक्ष। अगर इलेक्शन कमीशन खराब है, सीईसी में दिक्कत है, तमाम पूरी बॉडीज में दिक्कत है, हम वोट चोरी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 41 जीतेंगे और आप 34, कम से कम 50-55 कहीं तो पहुंचते।
0: इस पर तो उनका आर्गुमेंट है कि आप केरल थोड़ी जीत लीजिएगा,
6: तो वहां कोई दिक्कत नहीं है।
0: अरे इस पर तो उनका आर्गुमेंट है कि आप तमिलनाडु केरल थोड़ी जीत लीजिएगा जहां पर आपका अस्तित्व ही नहीं है, वो तो बीच बीच में आप इनको जिता देते हैं, ये कहना है।
6: अंजना जी ऐसे कैसे नहीं, अस्तित्व तो हाँ भाई एक, अच्छा तो बीच बीच में मतलब 34 जिता दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6 चुनाव का ही फर्क है, थोड़ा तो ज्यादा जीतना चाहिए। और बिल्कुल तमिलनाडु केरल भी हम एक दिन जीतेंगे, हम तो बंगाल में भी 3 पर थे लेकिन वहां पर भी जीते, हम तो दिल्ली 20 साल में नहीं थे हम वहां पर भी जीते, हरियाणा में रिपीट नहीं होते थे हम वहां पर रिपीट हो गए।
0: और एक और चीज,
6: सबसे बड़ी बात यह है, 2014, 2019, 2024 हम तीनों चुनाव इसी तरीके से जीते हैं, तमाम राज्य हम इस पर जीते हैं। और इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है, आप केरलम जीत गए, तमिलनाडु एक नई पार्टी जीत गई, वहां पर फिर सन्नाटा, उत्तर प्रदेश में जो कि नहीं होने वाला अगर जीत गए फिर सन्नाटा, ऐसे आप सेलेक्टिव एमनीशिया के तहत नहीं आगे बढ़ सकते।
0: फराज के द्वाई साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को भी दिखाइए, क्योंकि वहां पर बुलडोजर से फूल बरसा रहे थे अखिलेश यादव के लिए, वहां पर जो समाजवादी कार्यकर्ता वगैरह मौजूद थे। ये रायबरेली से ही क्यों चला अखिलेश यादव का कि ये रथ यात्रा चली, और ये इसका क्या मतलब है, ये बुलडोजर मतलब बुलडोजर का प्रचार आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर का प्रचार वो कर रहे हैं?
8: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जहां तक रायबरेली की बात है तो मैं आपके दर्शकों के जरिए एक बात ये कहना चाहता हूं कि रायबरेली कोई अफगानिस्तान में नहीं है, रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि भारत में आता है, और हमको संविधान ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह अधिकार दिया है कि वो रायबरेली से भी शुरुआत कर सकते हैं और अमेठी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी क्या है अंजना जी के शिवम त्यागी जी ने एक शेर सुनाया और वो तमाम बातें कर रहे थे, नाराज फूफा की उन्होंने बात की, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक शेर मैं भी सुना दूंगा शिवम जी को कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अरे भाई संजय निषाद जी, अंजना जी नाराज फूफा है कि नाराज जीजा है, वो भी कह रहे थे ना कि वी विल कंसीडर अदर ऑप्शंस, अगर हमको सम्मान अगर हमारी कम्युनिटी को ओवरलुक किया गया या हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई। ये वही संजय निषाद जो है वो नाराज फूफा बन जाते हैं जब 2024 में प्रवीण निषाद चुनाव हार जाते हैं और संजय निषाद जी कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको प्रवीण निषाद जी को इसलिए चुनाव हरवा दिया षड्यंत्र करके कि संसद में कहीं वो आरक्षण की आवाज ना उठा पाए। तो वो नाराज फूफा था या नाराज जीजा था ये भारतीय जनता पार्टी वाले कोई नहीं बताएंगे। और अनुप्रिया पटेल को क्या बोलेंगे, नाराज फूफी बोलेंगे, जो उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले कहा था ना कि जो क्या नाम है जॉब्स में जब ये ओबीसी अभ्यर्थियों वाला जो घोटाला कर रहे थे, 69,000 शिक्षक भर्तियों का घोटाला वाला जो हुआ था, तो उसमें अनुप्रिया पटेल जी को क्या बोलेंगे? और
0: फराज जी तो आपका मुख्य आर्ग्यूमेंट ये है कि इनके यहाँ भी लड़ाई चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, यही कह रहे हैं?
8: हमारे यहाँ
0: बताइए ना, जिस सीट पर आप लोग कंटेस्टेंट नहीं खड़ा करते थे, कांग्रेस पार्टी को आराम से जीतने देते थे, ऐसी रायबरेली अमेठी ऐसे तो गढ़ ही माना जाता ना भाई गांधी परिवार का, वहां ऐसे क्यों शुरू किए, कुछ मकसद तो होगा?
8: नहीं मैं आपको बता देता हूँ, देखिए
0: अजय राय कह रहे हैं कि हम कन्नौज पहुंच जाएंगे, हम इटावा पहुंच जाएंगे, तब
8: देखिए अगर अजय राय जी कन्नौज जाएंगे, अजय राय जी इटावा जाएंगे तो उनके जाने से समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। वैसे ही जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली से जो ये कैंपेन शुरू किया है, तो रायबरेली नेता विपक्ष की लोकसभा सीट है जिसको इस देश की, जो इस देश के 65% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे भारत में अंजना जी इसका जाएगा।
0: अरे रोहित जी, अगर रोहित जी और चिंता करनी चाहिए तो इस बात की बीजेपी को करनी चाहिए कि बहुत, जो एक बार तस्वीरें दिखाइए, बहुत बड़ा वहां पर ये रैली करने में वो सफल रहे रायबरेली में, तो चिंता तो ये होनी चाहिए कितनी भारी तादाद में लोग आए हैं इस रैली में। वो तो आपस में उनको पता है कि उनको लड़ना है बीजेपी से, तो एक साथ ही लड़ना है। और अब से मैं आपको बता रही हूं, कम से कम 3-4 महीने तो हो चुके हैं, 3-4 महीने पहले ही मुझे एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने सीधा कहा था कि हम सीट शेयरिंग करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्लैरिटी के साथ।
9: आदरणीय अंजना जी, मैं जिन बातों का उल्लेख करने जा रहा हूं आपका निश्चित रूप से मतांतर होगा, आप खंडन कीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा बोल लेने दीजिएगा। बचपन में पटना के गांधी मैदान में और बनारस में लंका पर भी हम लोग ओपी शर्मा का जादू देखे हैं, हजारों लाखों लोग आते थे देखने के लिए, सर्कस भी देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लालू यादव की जोकड़ई सुनने के लिए भी लोग जाते थे, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पहलवानी को देखने भी लोग जाते थे। देखने का मतलब वोट में परिवर्तित नहीं होता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी जो पीडीए के रथ पर विद्यमान होकर उत्तर प्रदेश की गलियों में निकले हैं पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश की आइडियोलॉजी के प्रसार के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता उनके झांसे में नहीं आने जा रही है। स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, रायबरेली प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत गए हैं, राहुल गांधी को बार्गेन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए गए हैं कि ठीक से रहिए नहीं तो फिर हम आपके क्षेत्र में ही सेंधमारी कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई आधार है क्या? और समाजवादी पार्टी के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया कैंपेन को उत्तर प्रदेश की जनता भूली है क्या? श्रीमान अखिलेश जी को 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता रोकने जा रही है। अखिलेश जी की जो क्रिमिनल बेस्ड आइडियोलॉजी है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के 3 कार्यकालों को बिसाड़ने का काम नहीं किया है, और श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वर्ष 2012 से 2017 तक जिस प्रकार से गायत्री प्रजापति, उसी रायबरेली अमेठी के आसपास के एक विधानसभा क्षेत्र से गायत्री प्रजापति नाम के एक माफिया माइंडेड नेता को एमएलए बनाकर कैबिनेट मंत्री अखिलेश जी ने अपने कैबिनेट में बनाया था, यूपी भूला है क्या उन चीजों को? कभी नहीं भूला है उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी के सपने साकार नहीं होने जा रहे हैं। रायबरेली गए थे, राजनारायण जी से तो माफी मांग लिया होता कि राजनारायण जी आपने जो समाजवादी विचारधारा का बीजारोपण किया था, मैं और मेरे पिताजी तो परिवारवादी राजनीति में चले गए। राजनारायण जी का परिवार के बेटा बेटी पतोह पोता पोती नाती नातिन का नाम कोई जानता है? अखिलेश जी के जमाने में देखिए या स्वर्गीय मुलायम सिंह के जमाने में देखिए, पूरा परिवार का नाम जानता है। बलिया की बैरिया से शुरू कीजिए, जयप्रकाश अंचल उनके पिता भी विधायक हैं, उनके पिताजी शारदा प्रसाद अंचल मुलायम सिंह के कैबिनेट में मंत्री थे, सपा के संस्थापक थे। गाजीपुर आइए, साइकिल चोर मुख्तार के भाई समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल जो है एमपी हैं सपा से, जंगीपुर एक विधानसभा है, 30 सेकंड ले रहा हूं, गाजीपुर में वीरेंद्र यादव विधायक हैं, पहले उनके पिताजी कैलाश यादव एमएलए और मिनिस्टर होते थे, पिताजी के मरने के बाद माताजी विधायक हुई थी। आजमगढ़ चलिए, अतरौलिया सीट है, संग्राम यादव सपा के विधायक हैं, पहले बलराम यादव उनके पिताजी एमएलए और मंत्री होते थे, सपा के बड़े नेता हैं। अब आप आइए मऊ सदर, मुख्तार अंसारी चले गए साइकिल चोर, उनका बेटा अब्बास अंसारी विधायक है, सपा में शामिल हो चुका है। प्रयागराज आ जाइए, देख लीजिए क्या स्थिति है, प्रतापपुर एक सीट है।
0: हमको लगा कुलदीप सेंगर का भी नाम रोहित जी आप जरूर लीजिएगा। कुलदीप जी, हमको लगा कि जब आप जघन्य अपराधों में नेताओं का नाम ले रहे हैं तो कुलदीप सेंगर का भी नाम लीजिएगा, लेकिन आपकी लिस्ट में वो नहीं होगा। चलिए सुनिए ना, आप जब बात करें, आप जब कह रहे हैं भीड़ की बात कि नेताजी की पहलवानी देखने के लिए लोग आते थे, तो मुलायम जी कितने बार सीएम रहे खुद आप ही ने बताया है, और वही मुलायम सिंह यादव ना जिनको पद्म विभूषण दिया बीजेपी की सरकार ने।
9: बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया, भारत सरकार ने दिया, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिला। आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, गौरव हैं बिहार की और महिलाओं की।
10: 10 सेकंड और
9: प्रधानमंत्री लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेती हैं, सरकार लेती है। सरकार पूरे देश की है, जनता की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी और नमाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। 10 सेकंड और मैंने जो नाम गिनाए हैं पीडीए की आड़ में परिवार के संरक्षण के नाम गिनाए हैं और मैंने कोई क्रिमिनल्स का नाम नहीं गिनाया है।
10: बस मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खाली सेंगर का भी नाम ले लेते और भी दो चार जो हैं बीजेपी वाले उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा रहता। फराज जी, चूंकि आपकी पार्टी पर बोला, तुम दो लाइन का रिबटल, फिर मुझे बाकी दोनों शादाब चौहान और उनके पास जाना है।
8: बस मैं दो लाइन में ही बोलूंगा। इनसे बोलिए विपुल दुबे और बेदी राम के बारे में भी जरा बोलते जाएंगे कि जो कि पेपर लीक माफिया है, एनएसए उनके ऊपर लगा था, उत्तर प्रदेश एसटीएफ उनको ढूंढ रही थी और उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेपर लीक में उनका हाथ था और ये और इनकी पार्टी के जो समर्थक है उससे वो विधायक है, एमएलए हैं और अभी भी हैं और उनके साथ गठबंधन में ये सरकार चला रहे हैं। पेपर लीक माफिया
10: जिनके
8: साथ हो
10: और पेपर लीक में
8: कुछ नहीं बोलेंगे। ये
10: आंदोलित है इस वक्त इस देश के युवा
8: और इनके विधायक।
10: जल्दी
9: फराज साहब बहुत, अरे भाई, अरे फराज जी, जौनपुर से टिकट नहीं मिलेगा। सुनिए, एसबीएसबी के टिकट पर जब बेदीराम विधायक हुए थे तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, याद कर लीजिएगा।
8: अब
9: मूल बात पर आइए, मामला विचाराधीन है ना दोषियों। अरे सुनिए ना, अरे रुकिए भाई, कैसे हटा दीजिए, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, पुलिस जांच कर रही है, चोर आपकी पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ईमान वाले लोग हैं और व्याकुल मत होइए जौनपुर से विधायक बनने के लिए। हमारी शुभकामना है आपके साथ,
10: लेकिन
9: मुश्किल है, परिवार को लड़ाएंगे वहां भी।
10: आप लोग तो बहुत ताकत लगाए, वैसी जी चिट्ठी लिख लिख के थक गए, ये सब तो छूने को तैयार नहीं है चिमटे से भी आप लोगों को।
11: देखिए अंजना जी, हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए हमने खुले मंच से कहा कि आओ मिलकर के बीजेपी को हराएं। लेकिन ये क्या है, ये एलीट ग्रुप जो है इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके लिए बीजेपी को हराना महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये रोज बैटिंग करते हैं इनके नेता, ये इसको गाली देगा, कांग्रेस वाला उसको गाली देगा। आप बताइए कि महंगाई पर, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार पर कितने आंदोलन किए। आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने आखिरी बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के विरुद्ध कब मोर्चा खोला था, मुझे कोई बता दे। ये लोग बोलने तैयार नहीं है, ये जनता निश्चित आंदोलित है, जनता बीजेपी को हराना चाहती है लेकिन इनके अंदर अहंकार है, ये मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। आप बताइए, हमने कहा पीडीए में जब तक ए फॉर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होगा वो गठबंधन झूठा है और ऐसे ठगबंधन को उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। 34 साल आप पर विश्वास कर लिया सर, लेकिन आपने धोखा दिया। बिहार में आपके भाई तेजस्वी यादव को यही अहंकार था, लेकिन उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट एमआईएम का था, कांग्रेस से अच्छा स्ट्राइक रेट एमआईएम का था। आज भी हम बार बार कर रहे हमारे नेता
10: सब जगह, तो आपका जमाना जब्त हो गया था यूपी में, बिना मतलब का वोट काटने के लिए लड़ते हैं आप लोग चुनाव और कुछ नहीं यूपी में।
11: अंजना जी, अगर किसी को लगता है कि हम वोट काटने वाले हैं तो हम तो कह रहे हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर हम हमारे वोट कटने का डर है हमारे से तो आइए वोटों को जोड़ लीजिए ना।
10: सोचिए ना, जब ये 15 मिनट पुलिस हटा दो और ये सब बोलते हैं तब सोचिए ना कि इसका क्या हाल होगा, कि आज आपको सबको ये अछूत की तरह ट्रीट कर रहा है पॉलिटिकली, तो वो सोचिए ना जब उस समय बोलते हैं आपके नेता, उन लोग को बताइए कि सब ना बोला करें। राघवेंद्र जी, रायबरेली से अखिलेश का पीडीए रथ चल पड़ा है लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अखिलेश यादव वहां भी कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन में साथ में हैं।
12: देखिए अंजना जी, सवाल रथ और उनके जो है बग्घी का नहीं है, सवाल है कि पिछले कार्यकाल में ये क्या किए जनता के साथ। रंग बदलना आसान है लेकिन कारनामे जनता भूल नहीं सकती है। ये सरकार को, बीजेपी को घेरते घेरते ये कांग्रेस पार्टी को हैसियत दिखा दिए कि देखो तुम्हारी रायबरेली में क्या हैसियत है, अगर ज्यादा छटपटाओगे तो रायबरेली में जो 2009 से तुमको हम एक जीवन दान दे रहे हैं अपनी पार्टी का प्रत्याशी न उतार के, तो यहां तुमको सीट भी नहीं देंगे। ये आईना दिखाए, अभी आज अजय राय जी जो आईना दिखाए, मैं तो कहता हूं अजय राय जी अगर आपके पास पार्टी में हैसियत है, वास्तव में आपके पास कार्यकर्ता है तो आप जाइए ना इटावा से एफआई करना लड़िए। देखिए, कैरियर पर बैठने वाली पार्टी केवल पार्टी कार्यालय में बैठ के प्रेस वार्ता कर सकती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी के नेता हैं, और ये बात कल रायबरेली में स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव जनता के बीच भी जाएंगे तो उनको एसी वाला रथ चाहिए। जनता ये जानती है कि उनको एसी से बाहर निकलेंगे तो टाइफाइड हो जाएगा। अभी तमाम बातें हो रही थी, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि रायबरेली पाकिस्तान में नहीं है। अरे भैया पाकिस्तान में नहीं है तो आज तक आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, क्यों प्रत्याशी नहीं उतारे? अरे आपके पार्टी के कितनी बेइज्जत होगी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं अखिलेश, अखिलेश तब भी शर्म आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। कोई मुल्ला मौलाना आपके पार्टी के पत्नी को क्या कहता है तब भी आपको शर्म आता है कि नहीं आता है? अरे आप शर्म क्या करेंगे, यादवों के लड़कों को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और मुसलमानों के लड़कों को पढ़ा के आतंकवादी, ये आपकी असली चेहरा है उत्तर प्रदेश में उन्माद फैलाने का जो काम।
10: फराज जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगी। फराज जी,
8: अंजना जी, इन्होंने अभी जो दो बातें कही है, पहली बात तो ये कि ओम प्रकाश राजभर जी को मैं भारत का डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूँ, जो कि कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उनकी
10: अच्छा,
8: बात
10: बीच में इतना रूठ गए थे राजभर जी कि कुछ दिन तक जब तक उनकी बात नहीं मानी गई तब तक उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्ट डालना बंद कर दिया। जैसे उनकी बात मान ली गई फिर अगले दिन से फिर वही सुबह सुबह उठ के
8: तो इस हाँ अंजना जी, इसीलिए मैं उनको भारत का डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूँ। अभी देखिए आपके चैनल पे इन्होंने कुछ बोला है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुसलमान बच्चों को पढ़ा लिखा करके आतंकवादी बनाते हैं, ये बाइट सेफ की जाएगी। और जब ओम प्रकाश राजभर जी मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगने जाएंगे तो ये बाइट चलाई जाएगी। अब इस बाइट पर ओम प्रकाश राजभर जी माफी मांगेंगे, आप देखिएगा। दूसरी बात, अभी क्या बोल रहे थे कि क्या नाम है राघवेंद्र जी अभी ये बोल रहे थे कि आईना दिखा, अरे आईना तो अंजना जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाया है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का उन्होंने क्या बोला था डिस्टोपिया वाला, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि जिसमें सारी पावर्स खत्म कर दी जाती हैं, सिटीजन्स राइट्स नहीं होते। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है, तो आप क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अंजना जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ना हेल्थ के सेक्टर में कोई काम हुआ है, ना एम्प्लॉयमेंट में कोई काम हुआ है, ना लॉ एंड ऑर्डर के उसमें कोई काम हुआ है। और जहां तक रही बात दलितों की, तो दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं 20 सेकंड में बस एक छोटी सी बात अंजना जी कहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी बोलते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अभी 6 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छपी थी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहां की 1230 जो सैंक्शन पोस्ट थी डॉक्टर्स वगैरह की, उसमें 712 पदीर जो है रिक्त थे। बलिया के अस्पताल में अंजना जी लाइट चली जाती है, उसके बाद में डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि जनरेटर चलाओ, जनरेटर खराब होता है तो टॉर्च की रोशनी से मरीज का ऑपरेशन होता है या इलाज किया जाता है। तो यहां दो चीजें साबित हुई, एक बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दूसरा अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा चुका है। ये क्या बात करेंगे, उत्तर पर कैपिटा इनकम में उत्तर प्रदेश देश में सबसे नीचे है,
10: ठीक है,
8: पावर्टी में बॉटम थ्री में उत्तर प्रदेश आता
10: अच्छा
8: है।
10: आपने बुलडोजर पे कुछ नहीं बोला, एक बार उस पर भी बोल दीजिएगा, बुलडोजर लेके काहे पहुंचे थे अखिलेश जी?
8: देखिए मैं एक बात को बोलूं अंजना जी, बुलडोजर का जो इस्तेमाल है बुलडोजर का इस्तेमाल सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि हम बुलडोजर से किसी के इनलीगली घर नहीं गिराएंगे, ये भी हाईकोर्ट कई बार बोल चुका है। हम बुलडोजर से सही काम लेंगे, हम बुलडोजर से सड़कें बनाएंगे, हम बुलडोजर से अस्पताल बनवाएंगे, हम बुलडोजर से पार्क बनवाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम बुलडोजर से फूल भी बरसाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह घरों को, दुकानों को,
10: चलिए इसी का जवाब दे दीजिए मिस्टर त्यागी, वो कह रहे हैं कि फूल बरसाएंगे लोगों के लिए, सड़कें बनाएंगे, असल काम जो बुलडोजर का है वो करेंगे, घर गिराने के लिए नहीं।
6: थैंक यू। सबसे पहले ये कहा फराज किदवई जी ने कि वो राजभर जी जो है हिंदुस्तान के डोनाल्ड ट्रंप है, तो यथास्थिति देखते हुए तो अखिलेश यादव जेलेंस्की होंगे फिर, क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट्स चल रहे हैं वो आपको जवाब है और वो कॉन्वर्जेशन भी लोगों को याद होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जो हालात हैं देश में, राजभर जी ने भी और निषाद जी ने भी क्या कहा, निषाद जी ने कहा कि विल लुक फॉर एन ऑप्शन, आपको विल लुक फॉर एन ऑप्शन और अखिलेश वखिलेश बराबर लगता है? आपको विल लुक फॉर एन ऑप्शन और खानदान की सीट पर प्रचार करने चले गए बराबर लगता है, दोनों बराबर लगते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है। और इसके अलावा निषाद जी ने तो यह भी कहा कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ही अंतिम फैसला लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सम्मानजनक सीटें हैं वो मिलेंगी। आपको ये और इमरान मसूद के तमाम बयान बराबर लगते हैं? दूसरी बात, ये रोजाना टीवी पर अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, अखबार जनता पढ़ती है। पिन पॉइंट करके चार केसेस उठाकर आप यहां पर जो देश को बताने और भरमाने की कोशिश करते हैं वो चलने वाला नहीं है। क्राइम अगेंस्ट दलित में उत्तर प्रदेश से पहले केरला है भाई, चेक कर लेना आप। और दूसरी एक और बात, जिस पर कैपिटा की बात कर रहे हो वो आपके समय में 56,000 थी, आज 108,000 है। तीसरी बात, आप जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में पूरा जीवन चार बार, प्लीज रुकिए ना, अभी मैं रुकिए मैं आप एनसी, अरे भैया नहीं है, पर लाख डेटा निकाला जाता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, कृपया करके फिर से गूगल कीजिए और वापस आइएगा अपने समय में। दूसरी एक और बात, चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जीवन भर में एक एक्सप्रेसवे बनाया उत्तर प्रदेश में, जहां 7,500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे थे वो 12,000 किलोमीटर हो गए, ये कह रहे नहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है। इसी उत्तर प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनको मिटाकर 88 कर दिया, आप कह रहे कि नहीं वो व्यवस्था भी खराब है। उत्तर प्रदेश में आपके समय में क्राइम का स्थिति ये थी जिसको बदलकर अप्रोक्सीमेटली 93% कम कर दिया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को घटा दिया, एनसीआरबी के डेटा के आधार पर जो एक भी गलत है वो बलात्कार 24% से कम हो गए, डकैती लूट 68% से कम हो गई, सारा बताइए ना। और ये अखबार पढ़ना एक पॉइंट बताना बंद करिए। मैं भी ऑपोजिशन के राज्यों में उठाकर 10 घटना अभी आपको सुना सकता हूं, सामने रखी है, जो कि हीनियस क्राइम्स है, बलात्कार है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि राज्य में ओवरऑल क्या फर्क हुआ उसको देखना जरूरी है। पिछली सरकारों में क्या हुआ, आज की सरकारों में क्या हुआ, और अंत में भाई कुल मिलाकर मामला यह है कि अगली बार से जब हिंदी की वर्णमाला उठाना तो थोड़ा सा संस्कार खुद तो नहीं सीखे लेकिन किसी और को सिखाना। जीजा फूफा को इतना लिटरली लेने की आवश्यकता नहीं है, फूफा को लेकर कहावतें हैं, जीजा को लेकर नहीं है, पता नहीं क्या नाराजगी रहती है। और एक और चीज कहना चाहता हूं अंत में, जहां तक सीट बंटवारे का विषय है, चाहे वो एनडीए हो, हमारे घटक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम शालीनता के साथ बैठकर भाषा की मर्यादा को सामने सम्मानजनक तरीके से रखकर तब जो है सारी चीजें करते हैं। आप आए दिन लड़ते हो भाई, सवाल जवाब क्यों नहीं होगा? और हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। और मैं आपसे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, हर चीज पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। पिछले 10 साल में जो जबरदस्त परिवर्तन आया है वो किसी भी डेटा पर आप बराबर नहीं आ सकते। हाँ, और काम करने की आवश्यकता है, इसीलिए भाजपा और एनडीए चाहिए।
10: ठीक है, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए फराज जी, उसके बाद मैं सप्पल साहब के पास जाऊंगी।
8: अंजना जी, आप जरूर ये भी बताइएगा डिबेट के खत्म होने से पहले कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में इस देश का कौन स्टेट नंबर वन पर है। दूसरी बात, मैं ये भी बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर दलितों को जाने से रोकने के 96% मामले उत्तर प्रदेश से हैं। अंजना जी, ये भी इनको बता दीजिएगा। दूसरी बात, मैं छोटी सी और एक बता देता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश संभाला है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम होता जा रहा है। 312 सीटें मिली थी मोदी जी के नाम पर, उसके बाद में 255 हो गई मोदी जी के नाम पर, 72 सीटें लोकसभा में मिली थी, घट के 62 हुई, उसके बाद में घट के 33 हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इलेक्शन दर इलेक्शन कम होता जा रहा है। और 2027 के विधानसभा के चुनाव में अंजना जी इनकी सीटें 155 के अंदर रह जाएं।
6: ठीक है, थैंक यू। एक काम करते हैं ना, अभी कर लेते हैं, अंजना जी को फैक्ट चेक कराने की क्या जरूरत है, उनकी टीम को इतनी मेहनत क्यों करानी। क्राइम अगेंस्ट दलित में उत्तर प्रदेश में 1,00,000 दलित के ऊपर 36.6% FIR होती है, परस्पर केरला में
8: 34.1%।
6: धन्यवाद आपका, अगली बार तैयारी बेहतर। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भाई क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, गजब बात हो गई, बेसिक सेंस नहीं लगाना है क्या, गजब बात हो गई, फिर से गूगल करना, दोबारा से मेहनत करके आना। खैर, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़ी नाराजगी है इस हिसाब से, और उनका कहना है कि उनका ग्राफ तो गिरता ही जा रहा है, इस हिसाब से अखिलेश जी के ग्राफ को कहां रखे हम?
8: हाँ, मैं बता देता हूँ,
6: 24 में भी प्रधानमंत्री हम ही है भाई, रुकिए ना प्लीज। अरे बीच में क्यों बताना है, अपने समय में बताना ना, मैं अपने समय में बता रहा हूँ, आपके समय में तो नहीं बोला, बोल तो रहा हूँ फिर से, 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे 24 हारे 24 में भी प्रधानमंत्री मेरी ही पार्टी के हैं। और सुनिए, 27 बिहार हो गए, ग्राफ बताने बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। जहां तक बात है, 17 में मुख्यमंत्री बने, 19 का हाल आपने देखा, 22 आपने देखा, आप वो गिरते हुए ग्राफ के हिसाब से भी अगर चीजें करते रहेंगे उसमें भी आपको 15-20 साल अभी इंतजार कम से कम करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा से रिटेलिएट करके चीजों को बेहतर करके वापस आते हैं।
10: अब गुरदीप सप्पल साहब को बोले दीजिए फराज जी, थोड़ा सा रुक जाइए गुरदीप सप्पल साहब, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस यानी जो रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ का, वो ऐसा है कि जनता एक बार फिर उनके साथ होगी। और क्राइम के मामले में वो कह रहे हैं कि वहां की आबादी देखिए, पर लाख करके जब आप देखेंगे तो अन्य छोटे राज्य में और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, क्राइम को कंपेयर करना सही नहीं है।
7: शुक्रिया, आपका सीरियस चैनल होना चाहिए, ये मनोहर कहानियों की डिबेट में उलझने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बातें आ गई इतनी देर में कि अखिलेश जी ने रायबरेली में जाके क्यों किया। मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि 2024 के चुनाव में भी अखिलेश जी, राहुल जी, सोनिया जी की रैली रायबरेली में हुई थी 17 मई को,
10: तो आप अजय राय को
7: और
10: बता
7: राहुल
10: दीजिए।
7: जी अखिलेश जी की रैली कन्नौज में हुई थी 10 मई को।
10: नहीं तो अजय राय को ये बता दीजिए, पूरी बात नहीं, प्रदेश अध्यक्ष
7: अजय राय ने भी यही बोला है, अजय राय ने भी यही बोली है कि हम
10: कन्नौज हम चले जाएंगे।
7: हम तो ये कह रहे हैं ना कि 24 में भी यही तो मैं बता रहा हूं कि 24 में भी कन्नौज में 10 मई को राहुल जी अखिलेश जी की रैली हुई थी, सेम बात कह रहा हूं। बाकी रही अब ये बहुत नाराज फूफा की बात कर रहे हैं इतनी देर से, अरे नाराज युवा की बात करिए, युवा नाराज है। खुद सीएम योगी कहते हैं कि हमने 9.5 लाख लोगों को रोजगार दिया 9.5 साल में, और इस साल में बेरोजगार युवा की आबादी कितनी बढ़ी है, 4.5 करोड़। यानी 4.5 करोड़ युवाओं में से आप अपने हिसाब से केवल 9.5 को नौकरी दे पाए हैं। और अगर आप बात करते हैं कि जो दूसरे दावे हैं इनके, 23 में कहा था कि हम 3 करोड़ को नौकरी देंगे, अब नहीं दिए, अब फिर से कहने लगे हम 3 करोड़ को देंगे आने वाले समय में, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हो। आपके यहां जो इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रहा है, बोला 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, अभी डाटा रिलीज किया तो करीब 4,300 करोड़ का कुल उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुंभ पे बोल दिया कि हमारे यहां 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कुंभ पे आ गया, जीएसटी के फिगर आए वो कुछ था ही नहीं। ये झूठ पे लगातार जो बोलते रहे उस पर कई बार आप जीत गए, ठीक है हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब हाल की जो जीत है शिवम जी वो वोट चोरी से ही हो रहे हैं। और ये मत कहिए कि वोट चोरी नहीं हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि शिवम भी उस समय बहुत सारे टीवी डिबेट में इतने ही जोश से डिबेट किए थे जब महाराष्ट्र के अंदर 70 लाख वोटर अचानक बढ़ गए और हम चुनाव हारे 70 लाख वोटर। राहुल जी ने कहा कि एक हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर वोटर बढ़ गए, तो शिवम और इनके सभी साथियों ने कहा अरे आबादी बढ़ रही है, नया वोटर तो आएगा, ठीक है। अब एक साल के बाद क्या हुआ है, वहां पे 2 करोड़ वोटर घट गए, यानी हिमाचल की आबादी के 3 करोड़ वोटर घट गए। अब 1.5 साल के अंदर या तो 70 लाख बढ़ना ठीक था या 2 करोड़ घटना ठीक था, दोनों तो एक साथ ठीक नहीं हो सकते ना। और यही आधार है वोट चोरी का कि हम बता रहे हैं कि अब जो आप इतना चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि हम जीत रहे हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, आप जीत को चुरा रहे हैं। और जब चुराएंगे तो फिर ये जो पूरा का पूरा जो भांडा है वो फूटने लगा है, अंदर से चुनाव आयोग के फूटने लगा है। और जो आप कहते हैं कि भाई हमारे यहां तो बहुत स्मूथली सब कुछ होता है, सब कुछ बड़ा स्मूथली है, अरे पूछिए जरा योगी जी से, क्या आपने पंकज चौधरी जो आपके अध्यक्ष थे उनका स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया कि यूपी का इलेक्शन योगी और डिप्टी सीएम दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आपने विड्रॉ कर लिया है। अमित शाह जी को कह दिया गया जो
10: बात अब नौकरियों की होनी चाहिए, युवाओं की होनी चाहिए। अब सम्राट चौधरी का मैं बिहार में इंटरव्यू कर रही थी, मैंने मैनिफेस्टो उनके सामने रखा, 1 करोड़ नौकरी उन्होंने दी है, कहा है, लिखा है उस मैनिफेस्टो में। आ रहे रोहित जी, आ रहे हैं, बिहार का नाम आते ही आपका हाथ उठ जाता है, रुकिए, 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में। आपको पता है 1 करोड़ नौकरी अगर 5 साल में देना है तो प्रतिदिन, मतलब 365 दिन एक साल में, प्रतिदिन कितनी नौकरियां देनी होंगी। जब ये हिसाब किताब मैंने पूछने लगा तो बोला कि गिनती आप कीजिए, हम तो नौकरी देंगे 1 करोड़। सवाल है कि कहां से होगा, क्या होगा, कहां कहां पर नौकरी लगेगी, टाइमलाइन, डेडलाइन कुछ तो आए।
6: अंजना जी, पार्टी के प्रवक्ताओं को रखा है ना इसीलिए आपको जवाब देने के लिए, हम देंगे ना, बस 10 सेकंड में उनका जवाब देकर आपके जवाब पर आ रहा हूं। स्टीवन लेविट्स्की ने एक किताब लिखी है हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मोडस ऑपरेंडाई पर चल रहे हैं, ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही नहीं हो सकता मेरे भाई। अप्रोक्सीमेटली 42 एप्लीकेशंस पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में है, एक भी जगह आप साबित नहीं कर पाए हो, और अलग अलग राज्यों के विषयों को लेकर आप इस देश के कोर्ट में गए हो। कोर्ट खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, हाई कोर्ट खराब, सीईसी खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, फौज खराब, देश के संस्थान खराब, मीडिया खराब, कौन सा ही राहुल गांधी भाई, नहीं हो सकता ऐसे। मैं मानता हूं कि एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक टेक्निकल एरर किसी भी वजह से हुआ, मैं जनरल बोल रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसकी पूरे देश की हर एक संस्था को सिर्फ बुराई बुराई गलत गलत गलत गलत करके और वही स्टीवन लेविस्की की किताब की तरह कि किसी लोकतंत्र को कैसे खत्म करना है, सिर्फ इसी माहौल को बनाते चले जाओ। अब नौकरियों पर आते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 9.5 लाख नौकरियां दी है, वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख और दूंगा। उत्तर प्रदेश में आज 90 लाख स्टार्टअप्स हैं जिनमें 1.40 करोड़ युवा काम करते हैं। जब हिंदुस्तान में खासतौर पर मोदी सरकार आई, इस देश में मात्र 350 स्टार्टअप्स थे, वहां युवा काम कर रहा है। इसके अलावा 9.5 लाख नौकरियां सरकारी दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएम इंटर्नशिप स्कॉलरशिप के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के तहत अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 लोगों को स्किल्ड ट्रेनिंग दी। इसके अलावा स्किल्ड इंडिया डिजिटल हब में हमने अप्रोक्सीमेटली 9 लाख लोगों को अलग अलग स्किल ट्रेनिंग दी। वो सब लोग काम कर रहे हैं। और फिर मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं, हां हम नौकरी दे रहे हैं, हां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, हां युवाओं के लिए अलग रास्ते तलाश रहे हैं, हां हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इसी वजह से जीत रहे हैं और कोई वजह नहीं है। और आप इन सारी चीजों पर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हार रहे हैं। कृपया करके इस देश के लोकतंत्र का इस तरह से मजाक मत बनाइए।
10: मैं रोहित जी के पास जाऊंगा,
6: कोई भी चीज छोटे छोटे से बोलो, आइए।
10: हाँ सप्पल साहब जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर रोहित जी के पास जाऊंगा।
7: ये जो इतना बात बोल गए, अब आप एक ही चीज उठा लीजिए, पीएम इंटर्नशिप कितने करोड़ लोगों को एक साल में देना था, कितने करोड़ को शिवम जी? और लोकसभा में डेटा दिया कि 5 करोड़ की जगह कुल 1,27,508 को ऑफर हुआ, जिसमें से कुल 3,731 ने पूरी की इंटर्नशिप। ये लोकसभा में आपकी सरकार का डेटा है, अगस्त 26 का डेटा है, 6 अगस्त का
10: डेटा क्लियर डेटा कोड कर रहे हैं जो लोकसभा में दिया हुआ है।
7: देखिए देखिए पूरी बात नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए जहां तक चुनाव, ये जो कोर्ट केसेस की बात कर रहे हैं, एसआईआर में वोट चोरी में जो कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, वो उस आधार पे दिए जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट चुनाव आयोग दे रहा था। अब दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पे आपत्ति की, या पता लग गया देश को, सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी अपेक्षा है कि अब वो मंगाए फाइल और पता करे कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिए गए क्या वाकई वो डिस्कशन इलेक्शन कमीशन में हुआ था। यही तो हम बात कह रहे हैं, वो तमाम एफिडेविट आज इलीगल साबित हो रहे हैं। और चीफ जस्टिस जो हैं, जिनका एक बयान ने देश के अंदर पूरा आक्रोश पैदा किया था, उनके पास भी एक मौका है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की धाक को जमाने का। पता करें कि जो उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट आते थे, जिसके दम पर उन्होंने चुनाव आयोग को सर्टिफाई किया था कि वो ठीक कर रहा है, वो सब फाइलों को बुलाकर अब जांच करें कि कितने फैसले थे जो सर्वसम्मति से हुए थे या बहुमत से हुए थे। आपने जो माहौल बना दिया है ना पूरे सिस्टम का, और आपको लगा कि किससे खुलेंगे नहीं, आपको लगा कि केवल आरएसएस के लोग पूरे देश के अंदर है जो केवल आपका संकेत मान के काम करेंगे। देश में बहुत लोग देशभक्त भी हैं शिवम जी, बहुत लोग, और वो कलाई अब हर इंस्टीट्यूशन में
10: एक छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब
7: आने वाले दिनों में देखिए आप इस तूफान को झेल भी नहीं पाएंगे।
10: सप्पल साहब फराज में इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से।
6: थैंक यू। पहली बात तो ये, बार बार इस देश के लोकतांत्रिक सेटअप में लोगों को डराना धमकाना बंद करिए, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये देश लोकतंत्र से चलता है आज भी, और कोई भी सरकार आए तब भी चलेगा। सो कृपया करके ये धमकियां बंद कीजिए। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि इस देश में देशभक्त लोग हैं, हां है, तभी तो भाजपा सरकार में है, तभी एनडीए सरकार में है। और रही बात डेटा की, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने भी 1,25,000 ही कहा था। अच्छा हुआ आपने मुझे
7: इंटर्नशिप,
6: मैं तो कहना चाहता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अप्रोक्सीमेटली 17,985 रुकिए, हां उसी पर कह रहा हूं मैं, उसी पर ही कह रहा हूं मैं, मैंने भी 1,25,000 ही कहा और आपने भी वही कहा, तो गलत क्यों कह रहे हो? और आगे आता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन, अरे बीच में मत बोलिए ना, एक बात बताइए,
7: पीएम इंटर्नशिप वो पूरे देश का है, पूरे देश का है,
6: पीएम इंटर्नशिप
7: पूरे हुए,
6: मैं वही कह रहा हूं,
7: पूरे देश में तीन, पूरे देश में,
6: मैंने भी वही कहा,
7: 700
6: मैंने भी वही
7: 3,700
6: गुरुदेव जी का अपना समय पूरा नहीं पड़ा,
7: 3,700 पूरे देश
6: देने के लिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश भाई 1,25,000 हुई है, डबल चेक करिएगा और अब अपने समय में बोलिएगा, अच्छा किया और बताने के लिए। इसी प्रदेश में और भी काम हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 17,995 लोगों को लोन बेनिफिशियरीज है। इसी उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ जो है स्टार्टअप्स के लिए बजटिंग हुई है। इसी में मिशन योजगार के तहत जो है 60 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाने में मदद की है। हम कर रहे हैं ये, तभी जीत रहे हैं।
10: ठीक है रोहित जी आप हाथ उठा रहे थे, बिहार की बात हुई तो नौकरी पर ही जवाब मांगेगी जनता, मैनिफेस्टो में लिखिएगा 1 करोड़ तो देना पड़ेगा ना, गणित ने निकालिए जरा कि कितना होता है एक दिन में।
9: नौकरियां मिलेंगी अंजना जी, नौकरियां मिलेंगी और बिहार संतुष्ट है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। समय कम है, महत्वपूर्ण विषय आज ज्ञानेश कुमार जी और भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में जो कांग्रेस के साथी ने बोला है और वॉइड और इनवैलिड की बात हो रही थी। 12 जून 1975 का वो निर्णय याद कीजिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने 1971 के स्वर्गीय प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को वॉइड किया था। मतलब उस समय जो इंदिरा गांधी के कंट्रोल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने इंदिरा गांधी को मदद करके 1971 का चुनाव जिता दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी ने उनको वॉइड करार कर दिया। एक बात यह हो गई। अब आइए
10: क्या करें 26 में, क्या करें
9: केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है।
10: तो मिस्टर सिंह एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। मिस्टर सिंह 26 में क्या करें इसका, ये सब तो पता है। इस सब की वजह से तो कांग्रेस को और जो उनका शासन रहा आरोप लगे तमाम लोग बाहर है सत्ता से। अरे 26 पर ना आइए और ये बताइए कि दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मतलब देश के सामने कोई जवाबदेही है या नहीं चुनाव आयोग की, जब इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिक्कत है। चिराग पासवान कह रहे हैं,
9: आदरणीय अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसी संस्थाने हैं जिनको अंजना ओम कश्यप, रोहित कुमार सिंह या श्रीमान राहुल गांधी और मैडम सोनिया जी डिक्टेट नहीं कर सकती हैं। यह स्वतंत्र संस्थाने हैं, देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। 20 सेकंड बस। केरल में सतीशन मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस पार्टी के,
10: लेकिन ये याद रखिएगा रोहित सिंह जी, एक काउंटर है इस पर, सुनिए कि ये संस्थान है जो स्वायत्त संस्थान है, लेकिन ये संस्थान भी संविधान के अंतर्गत है एंड वी द पीपल गिव द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। इसलिए ये याद रखिएगा कि अंततः इस देश का संविधान भी जो है वो जवाबदेही उसकी देश की जनता के सामने होती है। वक्त इतने की इजाजत दे रहा है, चर्चा अनंत हो सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अब कोलकाता से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में छात्र संगठन एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार झड़प हुई। इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ, फिर दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बल तो दिखाई दे रहा है, एसएफआई एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में यहां भिड़ गए। ये सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट की आप तस्वीरें देखेंगे, जहां पर पुलिस भी आपको देखेंगे कि पूरी तैयारी के साथ फिर वहां पर पहुंचा हुआ, स्थिति को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एसएफआई एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज इस इंस्टीट्यूट में यहां आपस में भिड़ गए और उसी की तस्वीरें सामने आई। हमारे संवाददाता अनुपम हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, पहले तो ये बताइए इस समय सिचुएशन कैसी है और ये किस बात पर आपस में भिड़े?
3: जी राजीव, देखिए मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता का नामी इंस्टीट्यूट, और इसके बाहर जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, पुलिस है और साथ में है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये जो संगठन है, ये संगठन के साथ जो एसआरएफटीआई के जो छात्र हैं उनका झमेला हुआ है। ये कई घंटे हो चुके हैं, अभी भी विवाद पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ है, पुलिस की संख्या भी बड़ी है। जो छात्र हैं वो गेट के भीतर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा गेट, जो एसआरएफटीआई का जो मुख्य द्वार है वो फिलहाल बंद है और गेट के भीतर थोड़ी पुलिस है और उसके बाद पीछे की ओर छात्र हैं।

0: शहर में इस संगठन का अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन का एक कार्यक्रम इंस्टीट्यूट के भीतर एक हॉल में था और इसी दौरान छात्रों के साथ इस संगठन के लोगों की कहासुनी पहले शुरू हुई, फिर वो झड़प में तब्दील हो गई। दोनों ही गुटों के कई लोग घायल हुए और इसके बाद से ही तनाव बढ़ गया। छात्रों ने दरवाजा मुख्य बंद कर दिया, भीतर में कई लोग फंसे हुए थे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लोग, और उनको पुलिस ने जाके बाहर निकाला। और इस वक्त आप भीतर मैं दिखा रहा हूँ, भीतर में छात्र अभी भी, अब वो देखिए साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर भीतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के लोग भी भीतर में हैं, पुलिस के जवान भीतर में हैं, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है। और बाहर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लोग हैं, वो बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है। तो ये जो घटना हुई है दोपहर में घटना हुई है, दोपहर में एक कार्यक्रम था भीतर में ही मुख्य हॉल में, और उसी के बाद इस घटना की शुरुआत हुई जहां दोनों ही पक्षों के जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई छात्र भी बताया जा रहा है घायल है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कई सदस्य भी बताया जा रहा है घायल हैं। कई घंटे तक, लगभग 5 से 6 घंटे तक जो ग्राहक पंचायत है उनका आरोप है कि उनके सदस्यों को भीतर रोक कर रखा गया था, बाद में पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। छात्रों का आरोप है कि कई छात्र घायल हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सक रहा है, उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस पहुंची है, भीतर में एम्बुलेंस पहुंची है और किसी तरह पुलिस इस पूरे घटना है उसको उसका तनाव को कम करने की कोशिश में दोनों ही पक्षों से बातचीत में जुटी हुई है।
1: ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समय पुलिस बल मौके पर तैनात है और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: क्या चीज है?
4: वायरल है? थैंक यू।
6: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
6: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
1: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
2: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
1: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा पर आरोप, सवाल पूछने पर युवक को जड़ा थप्पड़। आप विधायक जनरल सिंह से जुड़ा है पीड़ित। प्रवेश वर्मा बोले, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी है। रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। कैंपस में बवाल, आग से तोड़फोड़। सीएसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक। मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। योगी, सम्राट, रेखा गुप्ता से लेकर शुभेंदु और हेमंता का कांग्रेस पर हमला। मन की बात में पीएम ने बताई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। कहा, सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 50 से ज्यादा मौत, 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान। अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर। सबसे पहले बात हम पंजाब के जालंधर की करेंगे, जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जबरदस्त बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मच गया। दरअसल आरोप लगा कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया। हंगामा जब हुआ तो फिर पुलिस भी पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जिसमें रेप की धाराएं जोड़ी गई। साथ ही मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है।

0: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी। जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
1: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है। उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
0: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
2: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
0: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
3: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया। पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है, वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उसको बोलते हैं भाई, कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
0: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
4: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
0: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है।
5: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
6: लड़की का पता चला अभी
5: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
0: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब बात करते हैं पटियाला के चितकरा यूनिवर्सिटी के, जहां पर आधी रात हंगामे से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दो छात्राओं के कथित तौर पर लापता होने की बात के सामने आने के बाद छात्र कैंपस में जुटे, पुलिस से झड़प हुई और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की बात भी सामने आई है।
0: रात का सन्नाटा, हाथों में मोबाइल की रोशनी और कैंपस में गूंजते इंसाफ के नारे। आखिर चितकारा यूनिवर्सिटी में आधी रात ऐसा क्या हुआ? आधी रात को क्यों मचा हड़कंप? पटियाला के चितकारा यूनिवर्सिटी में 25 सितंबर के दरमियानी रात माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। दो छात्राओं के लापता होने की बात और सोशल मीडिया से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुट गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी मांगी। हॉस्टल से आवाजें आने और रात में एम्बुलेंस पहुंचने को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए। अफवाहों के बीच छात्रों का गुस्सा बढ़ा और कैंपस में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। हालात संभालने के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की बात भी सामने आई। इस दौरान पुलिस की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। प्रशासन के मुताबिक दो छात्राओं के लापता होने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक दोनों छात्राओं के नाम और पहचान की पुष्टि नहीं हुई है।
6: पेरेंट्स की सारे की जानकारी वास्ते मैं दसना चाहना कि अज साडे ध्यान विच एक मसला आया सी कि चितकारा यूनिवर्सिटी च बच्चे कह रहे ने कि दो लड़कियां मिसिंग ने, तां उत्ते सोशल मीडिया ते भी पोस्ट पाई गई सी इहदे रिगार्डिंग। अज असी हुण इत्थे लोकल SHO गुरसेवक, मैं DSP बनूड ते कॉलेज दा एडमिनिस्ट्रेशन असी सारे इत्थे बच्चियां नूं मिल लिया, बच्चियां तों उहनां दी शिकायत लै ली है, लेकिन किसे नूं ए नहीं पता कि कौन मिसिंग।
0: प्रशासन के मुताबिक कुछ शरारती तत्व रात में छात्रों के कमरों के दरवाजे खटखटाकर भाग रहे थे, जिससे अफवाह फैलने की बात सामने आई। अब पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन CCTV फुटेज खंगालेंगे। रात में हुई गतिविधियों से लेकर छात्राओं के लापता होने के दावे तक हर पहलू की जांच होगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई दो फ्रेशर छात्राएं लापता हैं, और अगर हैं तो वो कौन हैं और कहां हैं? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच से मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
7: अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया, जो उसकी मौत की वजह भी बना। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्त किया गया है और इसे लेकर अब तनातनी बढ़ती जा रही है।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: রাতে 2টা বজাত ফোন করেছিল তাই মা মোক বুকত গুড়ি আইছে ইয়াতে মোক মারি আছে তার পিছত আর তাক নেদেখিলো কত মারছে কি কথা না দেখিলো মেডিকেলত দেখিছিল তাই ডেড বডি পড়ি আছে।
0: নিমিষা কে পিতা বাতাতে হ্যাঁ কি উসকে চেহারে আর শরীর পর ভয়ানক চোটো কে নিশান থে
1: তে জখম আছে গলত আছে দাগ হাতত আছে দাগ ফেরাত আছে দাগ ইয়াতে আছে দাগ মইতি ভাবে এটো দলাবদ্ধ ধরখন গতিকে ইয়ারে ইয়ারে ইয়ারে উচিত বিচার হব লাগে আপনার দ্বারাই মই এই।
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: लगभग सवाली मोक मर्डर होइसे गतिके व्यवस्था हाय मोक एको ना जानो एको गम ना पाऊं कुने की करिसे केवल मय डेड बॉडी तो पाइसे निश्चय बिचारिसो मोर सवाली जेनेके कष्ट पाए मरिसे तेनको हस्ती दिबो लागे এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করছো পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করছো শাস্তিটা পাব লাগে দোষীকে সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাব।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায় জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাশ বোরা, গুয়াহাটি, আজ তক।
3: चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा हो गया। कल चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा, कहा SIR का फैसला सर्वसम्मत था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ECI नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी होगी। लेकिन सियासत पूछ रहे हैं कि अगर इतना कुछ स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।

0: भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
1: ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
2: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम एंड द इंस्टीट्यूशंस दैट रन आवर इलेक्शंस, दे हैव पार्टी लीनिंग्स। नॉट ओनली दे हैव पार्टी लीनिंग्स but they are actively propagating those parties and he needs to resign and he needs to resign now.
0: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
3: आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब चार दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
4: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए।
0: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
5: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
6: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
7: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
8: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
9: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग, संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
10: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां पर खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद एक गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सबके सामने है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की।
11: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
10: आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो प्रवेश वर्मा की सफाई भी आई, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
12: 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
13: जी जर्नैल जी।
14: जी परेश भाई, क्या हाल
13: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
14: मैं तिलक नगर में हूँ।
13: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
15: कहाँ रह गए सर?
12: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
10: आगे बढ़ते, टीएमसी के विधायक कुणाल घोष पर एक बार फिर हमला हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर किया है।

0: কি হচ্ছে বাঁচতে দেবে না, আমার সহকর্মীরা নিরাপদ নয়, বাঁচতে থানায় ঢুকেছি, গাড়ি থানার সিঁড়ি অব্দি, এইভাবে আমাকে থামানো যাবে না।
1: टीएमसी के विधायक कुणाल घोष का दर्द फूट रहा है, वो रो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये चखनाचूर कार टीएमसी के विधायक कुणाल घोष की है। देखिए कुणाल घोष पर हमला करने वालों ने इसकी क्या दुर्गति कर दी है। 24 घंटे के भीतर कुणाल घोष पर यह दूसरा हमला है। कुणाल घोष दावा कर रहे हैं कि कोलकाता में दिन दहाड़े उनकी कार पर फिर हमला किया गया। उनके मुताबिक बाइक सवार हथियारबंद लोगों ने कार को घेरा, शीशा तोड़ा और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की। आरोपों के मुताबिक हमलावरों के पास रिवॉल्वर थे। विधायक की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी हथियार निकालने पड़े। घटना के बाद कुणाल घोष सीधे नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनकी क्षतिग्रस्त कार भी थाने के बाहर खड़ी दिखी।
0: সেটা নিয়ে যাচ্ছি, তখন আমাকে পুরো পেছন থেকে ইট পাথর এসব মারা শুরু হয়। এরপরে যখন আমরা আবার নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে ঢুকেছি, বাইক বাহিনী ঘিরে ফেলে, ওভারটেক করে বাইক বাহিনী সামনে আটকে নেমে অকথ্য গালাগালি, পাথর এবং তারপরে হাতে ওই হাতুড়ি রিভলভার, আমার সামনে কাঁচ চুরমার করে আমাকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হয়। বলেছে জানে মেরে দেবে, বলেছে জানে মেরে দেবে, রিভলভার দেখাচ্ছে, আমার সিকিউরিটি রিভলভার বার করতে বাধ্য হয়েছে।
1: बता दें कि पिछले चार महीने के दौरान घोष पर हमले का यह चौथा मामला है। एक दिन पहले हुगली के श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की रैली में जाते समय भीड़ ने उनकी कार पर अंडे और पत्थर फेंके थे, पीछे का शीशा भी तोड़ दिया था। वहीं बंगाल पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: यूएन महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया और विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद चल रहा है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी
3: रहेगी। To the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.
2: बात अब एशियन गेम्स 2026 के, जहां भारत को स्क्वाश में दोहरी और ऐतिहासिक सफलता मिली है। अभय सिंह और अनाहत ने मेंस और वीमेन सिंगल्स के फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। दोनों के पास गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी दोनों के हिस्से सिल्वर मेडल आया।
1: बैडमिंटन में टूटा दिल, स्क्वाश में मिले सिल्वर, बॉक्सिंग में जगियास, एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में रविवार को सुबह की शुरुआत बैडमिंटन में निराशा के साथ हुई। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन स्क्वाश में भारतीय खिलाड़ियों ने दो सिल्वर पदक हासिल किए। पहले पुरुष वर्ग में भारत के अभय सिंह को मलेशियाई खिलाड़ी के हाथों 9-11, 5-11, 5-11 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में हार के साथ ही उन्हें रजत पदक मिला। उधर महिला वर्ग में भी गोल्ड की उम्मीद टूटी और भारत की अनाहत सिंह को भी मलेशियाई खिलाड़ी ने 11-4, 11-4, 11-7 से हरा दिया। आखिरकार अनाहत को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में भारत की हरिता भद्रा ने 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज अभी बॉक्सिंग में भी है, क्योंकि कई बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, यानी मेडल तो पक्का है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: क्या चीज है वायरल है?
6: थैंक यू।
8: हाँ पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
9: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: वो नादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
8: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम
1: सॉलिड। वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जीके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर यार।
11: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार दो तीन थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
15: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
16: मेरे पास एक आइडिया।
14: क्या?
16: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
17: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन।
16: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
17: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
15: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
18: एकदम
16: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
17: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
15: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
5: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
6: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
7: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
8: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
10: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
11: कौन भय में जी रहा है?
10: नागरिक जी रहे हैं।
11: हाँ, भारत में
10: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सड़क थप्पड़, आप विधायक जरनैल सिंह से जुड़ा है पीड़ित। प्रवेश वर्मा बोले, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी। रेप का आरोप, छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्री ने खोला मोर्चा। योगी सम्राट, रेखा से लेकर शुभेंदु और हेमंता का कांग्रेस पर हमला। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बताई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 50 से ज्यादा मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान, अयोध्या गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सितंबर खत्म होते होते मौसम सितमधारा है, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी मार यूपी में देखने को मिल रही है। यूपी में बीते 60 घंटों से अलग अलग शहरों में समय बारिश हो रही है और इन 60 घंटों में 56 लोगों की अब तक जान चले गए हैं, 46 लोग घायल हुए हैं, 107 मवेशी मारे गए हैं और 1021 मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई शहरों में इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं।

0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
1: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेस वे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
1: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
2: प्रशांत सिंह।
1: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
2: प्रयागराज।
1: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
2: पानी भरा हुआ है, आप भी देख लीजिए सामने भरा।
1: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
2: अब इतना जल भराव, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
1: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है, जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
3: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
4: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: आबाद गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बरसात ने शहर को समंदर बना दिया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में भिड़ गए।
6: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहे कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
6: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति ये है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
7: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
8: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
7: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
8: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है, ये
7: स्पेन है।
8: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
7: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
8: हाँ, एकदम वायरल है।
7: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग है जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
9: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
10: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या। हेलो,
9: सब सामने खड़े हमारे।
10: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है, पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
10: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
9: हेलो पार्षद जी,
10: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
9: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा
10: था। नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
9: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
11: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात में गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
5: यूपी के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर जोरदार बरसात के बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, बेहिसाब बारिश है और इंद्रावती नदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले कुछ दिनों से बाढ़ के विभीषिका झेल रहा है, हजारों लोग इस समय प्रभावित हैं। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों में तो पानी ही पानी नजर आया है।

0: ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है, जहां इंद्रावती नदी उफान पर है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। अकेले जगदलपुर में सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इंद्रावती नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते खेत खलिहान डूब गए। रात भर राहत बचाव की टीमें रिहायशी इलाकों में घूमती रहीं ताकि कहीं मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। अब जरा इस घर को देख लीजिए, जो पूरी तरह से इंद्रावती नदी में समा गया है। ग्राउंड फ्लोर डूब गया है, आसपास भी कुछ बचा नहीं है जहां इंद्रावती का जल ना पहुंचा हो। थोड़ा और आगे बढ़िए, रोड के आसपास भी पानी भरा है। इंद्रावती के घाटों पर जहां लोग टहलने घूमने आते थे, वो सब पानी में डूब गया है। इंद्रावती नदी में पानी इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ओडिशा के कातीगुड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जगदलपुर के डोंगा घाट की तस्वीरें हैं, जहाँ बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। अब तक करीब 20 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जगदलपुर शहर में 12 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखा गया है। बारिश थमने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर की बरसात का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग पर ही हुआ है, जहां 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जगदलपुर के नगरनार इलाके में नदी किनारे बसे गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। जगदलपुर शहर में नदी किनारे बसे कालीपुर, प्रवीण वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, विजय वार्ड, मां दंतेश्वरी वार्ड, आमागुड़ा, पतरगुड़ा, आसना, छपरागुड़ा, डोंगा घाट और धोबीगुड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुसा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। खारून नदी पर बना महादेव घाट पानी में डूब गया है। घाट के आसपास प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। सड़कों तक पानी है, तो वहीं रायपुर के ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है। ये रायपुर के ग्रामीण अंचल की तस्वीर है। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर बार डूबे हुए हैं। खारून नदी का पानी घरों के अंदर पहुंच गया है। खेतों के साथ साथ लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दुर्ग की तस्वीरें देखिए, जहां खारून नदी उफान पर है। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद खारून नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। घर की दहलीज पर नदी का पानी दस्तक दे रहा है। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। अब जरा गरियाबंद की तस्वीरें भी देख लीजिए। जिले की तीनों प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। गरियाबंद के त्रिवेणी संगम पर बना भगवान कुलेश्वर नाथ का मंदिर भी डूब गया है।
1: पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हो रही लगातार बारिश के चलते गरियाबंद जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद जिले के राजिम में, और इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं त्रिवेणी का यह संगम है, पैरी, सोंदूर और महानदी का यह संगम है, जहाँ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित प्राचीन मंदिर है शिव जी का, कुलेश्वरनाथ मंदिर है, जो पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है।
0: गरियाबंद में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से छोटे छोटे नाले भी उफान पर हैं। राजिम नगर इलाका परिषद के कई रहायशी इलाकों में पानी भर गया। गरियाबंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 130 सी पर भी 4 फीट तक पानी भर गया है।
2: हमारे घर से आसपास अब बड़ परेशानी है, मला ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है, सरकार से आदेश करो।
3: रात में काई स्थिति रही से?
2: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
4: खाना पीना सब आराम हो गया,
3: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
4: घर में पानी भर गया ना सब।
3: कितना नुकसान हो गया,
4: सब संभालदार सब भीग गए।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देख लीजिए, जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोटा इलाके में शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। छापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
5: सुकमा में लगातार 2 दिनों से बारिश है, जिसका देख सकते हैं कि सबरी जो है काफी उफान पर है। ये NHT से पूरी यहाँ तीन जगह पर एनएचटीस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है, लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं सबरी उफान के कारण चिनगढ़ कोंटा मुख्यालय से 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दुर्नापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलम पल्ली नाला भी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ सितंबर में त्राही त्राही कर रहा है, लोगों के आशियाने डूब गए हैं, हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
6: पहाड़ों पर भी मौसम ने अचानक करवट ली है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ियों को सफेद चादर में ढक दिया है, तो कहीं पर बारिश के बीच में ठंड ने दस्तक दे दी है। हेमकुंड साहिब से लेकर बद्रीनाथ धाम और सतो पंथ तक बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा खूबसूरत हो गया है।
0: पहाड़ जहां हर मौसम अपने साथ एक अलग रंग लेकर आता है, और जब इन पहाड़ों पर आस्था के केंद्र बसे हों तो बदलता मौसम इन नजारों को और भी खास बना देता है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आई तस्वीरें कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रही हैं। मौसम ने करवट बदली, बादल बरसे और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश ने बर्फ का रूप ले लिया। कुछ ही देर में हेमकुंड साहिब का पूरा परिसर सफेद रंग में रंग गया, आसपास की चोटियों से लेकर रास्तों तक बर्फ की परत दिखाई देने लगी। हर तरफ नजर आ रही सफेदी ने पूरे इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। बर्फ गिरने के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जमा होने की बात सामने आई है, लेकिन मौसम की सख्ती के बावजूद श्रद्धा का सिलसिला जारी है। ठिठुरती ठंड के बीच श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। चमोली में मौसम का मिजाज ऊंचाई के साथ बदलता नजर आ रहा है, निचले इलाकों में बारिश की बूंदें गिर रही हैं, जबकि ऊपर चढ़ते ही यही बूंदें बर्फ के फाहों में तब्दील हो जा रही हैं।
6: विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स
3: वैसे

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो टूक थमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
10: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
16: तो कौन सी बनानी है?
17: एकदम सॉरी।
18: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
19: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
20: आई लाइक दिस ओनली।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक दो दो ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये ऐड को झेलना मुश्किल।

0: के लिए नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
1: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
3: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
0: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
4: मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो पीसी नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो पीसी नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव ये सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके मुख्य चुनाव आयोग के उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
5: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है, मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह रहा है वह अपरिपक्व है, एब्सोल्यूटली इमैच्योर है, क्योंकि इस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: विशेष के बाद अब आगे देखिए यूपी चुनाव पर विशेष शो श्वेता सिंह के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हमारा थप्पड़ आप विधायक जनरल सिंह से जुड़ा है। पीड़ित प्रवेश बोले, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी। रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। कैंपस में बवाल, आगजनी, तोड़फोड़। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक। मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। योगी, सम्राट, रेखा समेत शुभेंदु, हिमंता का कांग्रेस पर हमला। मन के बाद में पीएम ने बताई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। कहा सीमा पार जाकर कार्रवाई से दुनिया थी हैरान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान। अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पे सनातन भी है, सामाजिक न्याय भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, मंदिर मस्जिद सारे मुद्दे हैं और इन सब पर जोरदार वार पलटवार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के लिए सारी रणनीतियों के साथ मैदान में है, तो अखिलेश यादव तीसरी बार जीत पाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं।

0: तो मौसम भी बदल रहा है, हवा भी बदल रही है। जो भागेगा वो हारेगा।
1: सत्ता उनके लिए शोषण का माध्यम बन गया था।
2: आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
3: 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए, 24 में हार गए, अब 28 आ रहा है तो कह रहे हैं या आ रहे हैं।
4: कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है।
0: बात हमारे लिए सीट की नहीं होगी, जीत की होगी। जो जीते वो सीट ले ले।
1: अब कट्टर बंदूक की राजनीति यहाँ नहीं कर सकता कोई।
5: इनके पीडीए का कोई भविष्य नहीं है, पीडीए भाजपा है और भाजपा ही असली पीडीए की सेवा कर रही है।
0: 27 में हमेशा हमेशा के लिए हरा देंगे।
6: 2027 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट अब हलचल में बदल चुकी है। हलचल यूपी से लेकर दिल्ली तक है। हलचल कयासों के जवाबों की है। हलचल विपक्षी पार्टियों में तनातनी की है और हलचल सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी दलों के बीच भी है। राजनीति में एक बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले और जेपी नड्डा से मिले, अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या ये मुलाकात 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद की सीटों के चुनाव के लिए है या यूपी के रण में उतरने से पहले की फाइनल तैयारी? वैसे बात तस्वीरों की है तो एक और तस्वीर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जे एन जी के बीच खंजड़ी बजा रहे हैं और 2027 में बीजेपी की पहली बड़ी परीक्षा जे एन जी वोटर्स के बीच होनी है।
7: जे एन जी के फेवरेट श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं।
6: यूपी में करीब हर पांचवा वोटर जे एन जी है। पीएम मोदी को यूपी चुनाव प्रचार में आना ही है, जो जे एन जी के बीच की ये तस्वीर भी काफी कुछ कहती है। एक तस्वीर और आई उत्तर प्रदेश से, जिसने कई कयास और सियासी नैरेटिव खत्म कर दिए, जैसे कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या बीजेपी योगी की जगह किसी और को आगे करेगी और क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच सब ठीक ठाक है।
3: एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था। 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने। आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना।
6: बुलडोजर भी फिर से तस्वीर में आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई के कारण उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। अब अखिलेश यादव की पीढ़ियां रैली में भी बुलडोजर है जो फूल बरसा रहा है। इसके भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं।
0: पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
6: समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रवक्ताओं को बुलाकर एक खास मीटिंग भी की है और हिदायत जारी की है कि बयानबाजी में बेहद सावधानी बरती जाए।
8: कोई भी प्रवक्ता वो छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर वो पार्टी का प्रवक्ता है तो उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं उठा लेते हैं। तो हमें क्या नहीं बोलना है उस पे विशेष ध्यान देना है। क्या बोलना है वो तो सबको पता है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज पॉइंटर भी दिए। आने वाले जो मुद्दे हैं उन पे भी बताया क्या कहना है। जो मुद्दे पुराने हैं जिन मुद्दों पर भाजपा उठाती रही है उन मुद्दों पे भी क्या बोलना है ये भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बताया। लेकिन क्या नहीं बोलना है ये महत्वपूर्ण था कि क्या नहीं बोलना है।
6: लेकिन विपक्ष की एकता वाली तस्वीर भी जरा जरा सी धुंधली पड़ रही है, जिसमें यूपी के दो लड़कों के मिले हाथ कम नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने रायबरेली से कैंपेन की शुरुआत की तो कांग्रेस भड़क गई।
2: देखिए चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है। अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
6: कांग्रेस के जवाब में अखिलेश ने सीट बंटवारे का ऐसा फॉर्मूला रख दिया जो बात बनाने वाला कम लगता है, लेकिन राजनीति भी तो इसी का नाम है।
9: गठबंधन भी होगा, गठबंधन के साथ चलेंगे भी, और सीट ही जीतने का आधार है, जो जीत ही आधार है। जीतने वाली सीट ही हम लोग गठबंधन में तय करेंगे, और बात हमारे लिए सीट की नहीं होगी, जीत की होगी। जो जीते वो सीट ले ले।
6: भतीजे अखिलेश ने त्योरियां चढ़ाई तो चाचा शिवपाल भी मैदान में कूद पड़े।
10: हमें क्या छूट है करें, और फिर वहाँ वोट तो मिलना नहीं। पूरे हमारे जसवंत नगर में वोट नहीं मिलेगा, उन्हें पूरे जसवंत नगर।
6: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को 2024 में भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही एक दूसरे के सामने आस्तीनें चढ़ा रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये छुटकी लेने का मौका है।
11: ये बेमेल का जब गठबंधन होता है ना, तो इसी प्रकार का होता है। ये कहीं ना कहीं भारत के उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए गठबंधन हो रहा है। इसका कोई सोच नहीं है, कोई नियत नहीं है, उसके आधार पर गठबंधन है। और जिस प्रकार से पिछले 2024 के चुनाव में जनता को गुमराह इन लोगों ने किया, अब जनता समझ चुकी है, अब इनका दाल गलने वाला नहीं है, और 27 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार।
6: कुल मिलाकर यूपी के सियासी दंगल में हर तरफ लड़ाई छिड़ी है। चेहरे की लड़ाई, नीति की लड़ाई, सीटों की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई, और हर बीतते दिन के साथ ये लड़ाई और भीषण होती जाएगी, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है जहां से होकर रास्ता दिल्ली तक जाता है।
12: अखिलेश यादव का चुनावी रथ दौड़ पड़ा है, और उनका पहला चुनावी पड़ाव था रायबरेली, यानी वो जिला जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और जहां से फिलहाल राहुल गांधी सांसद हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली को ही क्यों अपने कैंपेन की शुरुआत के लिए चुना? अपने सामाजिक राजनीतिक समीकरण के कारण या कोई और वजह?
13: न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे रायबरेली से, न केवल उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होगा। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिटाने का काम ये जनता करेगी। इस बार वोटों का बुलडोजर इनको हराने का काम करेगा, इनका सफाया होने जा रहा है। 2022 और 27 10 साल का हिसाब किताब इन्हें देना है। 24 में हारे हैं, 27 में इनका सफाया हो जाएगा।
14: विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में सियासी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंपेन मोड ऑन कर दिया है, और इस कैंपेन की शुरुआत के लिए अखिलेश यादव ने चुना रायबरेली। चर्चा इस बात की अब अधिक है कि अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत रायबरेली से ही क्यों की। क्या ये सिर्फ एक संयोगवश कार्यक्रम था? क्या इसके पीछे पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग है, या इसमें कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के सियासी गणित का संदेश छिपा है?
13: उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिला है, लाखों लाख लोगों ने स्वागत किया और अभिवादन स्वीकार करने का मुझे मौका मिला। न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे रायबरेली से, न केवल उत्तर प्रदेश से इनका सफाया होगा। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिटाने का काम ये जनता करेगी।
15: जहां तक पीडीए की बात है, तो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का मुद्दा उठाया था, और उसकी उनको सफलता भी मिली, और उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस ने जीती। उसी पीडीओ को ये 2027 के विधानसभा चुनाव के जरिए उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मगर अभी जो रथ को लेकर के उनको जो चर्चा छिड़ी और उस रथ में जो रंग है वो एक्चुअली में लाल रंग है और नीला रंग उन्होंने अम्बेडकर जी का भी वो किया है और लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से है कि वो एक व्यापक फलक पर ले पार्टी को आगे बढ़ाने का एक दायरा बढ़ा रहे हैं और शायद 27 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी मद्देनजर उनकी ये रणनीति है। अखिलेश यादव ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है उससे सभी समाज के और वर्गों को सबको साथ लेकर समाजवादी पार्टी ही इनके साथ मजबूती से लड़ सके।
14: इस चुनावी खेल को समझने के लिए रायबरेली के सियासी समीकरण को समझना जरूरी है, क्योंकि रायबरेली सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं, ये कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा इलाका है और मौजूदा वक्त में यहाँ से कांग्रेस के राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में अखिलेश का इसी इलाके से अपना पीडीए रथ उतारना सियासी तौर पर खास है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधानसभा की जमीन। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लोकसभा में कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद रायबरेली में विधानसभा के स्तर पर समाजवादी पार्टी की जमीन ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि रायबरेली से पीडीए रथ की शुरुआत को सिर्फ जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि सियासी पोजिशनिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यहाँ से कहानी सीधे पहुँचती है एसपी कांग्रेस सीट शेयरिंग तक।
16: हर पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती, हमारे यहाँ संगठन सृजन चल रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, उसी तरह वो अपना कार्यक्रम निकाल रहे हैं। जब कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे, जब दोनों लोग सीट बांट लेंगे, तो संयुक्त बैठकर तभी हुई थी ना। याद कीजिए पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था, पहले तो नहीं साथ चले थे, तो सही समय पर सही गठबंधन में सही समय पर नेता स्टेज पे दिखेंगे।
17: समाजवादी पार्टी कांग्रेस उसी फार्मूले पर उसी तरीके से साथ में मिलकर लड़ेंगे जिस तरह से लोकसभा।
14: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एसपी ने 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। अब सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव का है, गठबंधन होगा या नहीं, होगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। रायबरेली इसी बड़े चुनावी गणित का एक अहम हिस्सा है।
18: और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं।
19: देखिए अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व 3 से पार पा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
20: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
14: गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ होने से पहले ही सीटों की दावेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर आवाजें सामने आने लगी है। और अखिलेश यादव ने रायबरेली से रथ निकालकर एक बात साफ कर दी है कि एसपी अपनी जमीनी मौजूदगी, अपना संगठन और अपना राजनीतिक आधार सामने रखकर 2027 की तैयारी कर रही है।
21: कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में समझौता होगा, निश्चित रूप से समझौता होगा, लेकिन उस समझौता वार्ता के लिए सीटों को चिन्हित करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी करेंगे।
22: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन दोनों दलों के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, बेहद जरूरी है। बिना एक दूसरे के किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो समझौता होगा दोनों दलों का। रायबरेली की यात्रा के दौरान वो मंदिर भी गए, प्रसाद भी लिया, पूजा भी की, गदा भी ली, हिंदुओं को भी एड्रेस किया, ओबीसी को तो एड्रेस किया ही किया, इसमें अखिलेश बनाम राहुल या समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस जैसी कोई स्थिति वास्तव में नहीं है।
6: कांग्रेस की राजनीतिक विरासत वाले इलाके से एसपी का चुनावी अभियान शुरू करना एक तरफ पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग और सियासी विस्तार का संदेश है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में एसपी की जमीनी पकड़ और 2027 के सीट बंटवारे को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कवायद थी। और शायद यही वजह है कि रायबरेली से निकला अखिलेश यादव का पीडीए रथ सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि 2027 के लिए एसपी की सियासी रणनीति, कांग्रेस के साथ गठबंधन में राजनीतिक दावेदारी और चुनावी जमीन मजबूत करने का बड़ा संदेश भी है।
12: अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषाएं जिस तरह बार बार बदलने के कारण चर्चा में है, उसी तरह अब उनके पीडीए रथ के रंग भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। टोपी लाल, बस का रंग भगवा और उसके साथ सामाजिक न्याय का नीला रंग भी बस पर प्रमुखता से। रथ के रंगों पर राजनीतिक टीका टिप्पणी तो है ही, लेकिन क्या अखिलेश रंगों के माध्यम से वोट बैंक की कोई नई तस्वीर बना रहे हैं?
9: खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक रंगी हैं,
1: जीत जो है भगवा का होना है ये वो खुद भी मान रहे हैं।
4: पीडीए में जब तक A4 AIMIM नहीं होगा, A4 असदुद्दीन ओवैसी साफ नहीं होगा, ऐसे गठबंधन को वोट मिलने वाला नहीं।
5: समाजवादी पार्टी की ये अंतिम यात्रा का बस है।
9: ये वो लोग हैं जिन्हें हाता नहीं भाता।
6: रंग भी बड़ी कमाल की चीज होते हैं और राजनीति का तो अपना ही एक अलग रंग होता है। कभी रंग पहचान बन जाता है, कभी रंग विचारधारा, कभी रंग आस्था से जुड़ जाता है और कभी कभी रंग ही सियासत का मुद्दा बन जाता है। अखिलेश यादव के पीडीए रथ में जिस तरह से जो जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं उन पर इन दिनों चुनावी समीक्षा चल रही है। लाल रंग, भगवा रंग, हरा रंग और उसके साथ अब नीले रंग की एंट्री। एक ही रथ पर समाजवादी पहचान, भगवा प्रतीक और सामाजिक न्याय की सियासी छवि को लेकर अखिलेश का चुनावी आधुनिक रथ बढ़ा है तो उस पर चर्चा भी आगे चल निकली है। रथ के रंगों से अखिलेश के कितने संकेत? भगवा रंग क्या पीडीए में पंडितों का प्रतीक है? क्या ये अखिलेश की पीडीए सोशल इंजीनियरिंग है? समाजवादी पार्टी की राजनीति में लाल और हरा रंग लंबे समय से उसकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। लाल टोपी, लाल झंडा और समाजवादी आंदोलन की अपनी राजनीतिक विरासत। लेकिन पीडीए रथ में नीले रंग की पट्टी और अंबेडकर की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।
23: पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीडीए में पी है वो पीड़ित, वो पीडीए, यानी जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। एक नया एक नारा और उसमें ब्लू रंग को भी शामिल किया गया। नीले रंग जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का हरा और लाल रंग होता है उसमें नीले रंग को भी शामिल किया गया। तो एक तरीके से पीडीए से समाजवादी पार्टी ने कई गढ़ साधने की कोशिश की है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के जो बीएसपी का जो नीला कलर है उसके जरिए भी पीडीए में जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा, एक अपने वोट दायरे को बढ़ाने की भी कोशिश है। तो एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगाज किया है पीडीए रथ के द्वारा और 2027 के चुनावी समर की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली से यात्रा करके कर।
6: राजनीतिक प्रतीकों की भाषा में नीला रंग लंबे समय से दलित और आम्बेडकरवादी राजनीति से जुड़ा रहा है। ऐसे में इसे पीडीए के सामाजिक गठजोड़ में दलित हिस्सेदारी को प्रमुखता देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश का पीडीए अब सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीन सामाजिक समूहों को एक राजनीतिक गठजोड़ में जोड़ने की कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है।
24: पीडीए जहां पिछड़े, दलित, आदिवासी,
0: ये तो आदिवासियों को आदिवासी भी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं। इनके अंदर आदिवासियों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। वहीं एक का हमारा अल्पसंख्यक मुसलमान भाई है, ए फॉर अल्पसंख्यक में सिख भाई हैं, ए अल्पसंख्यक में सिख भाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं और सभी माइनॉरिटी के लोगों को ए में शामिल करते हुए ए से आदि आबादी भी है।
2: बीजेपी की कोशिश है कि वो सनातन को मुद्दा बनाए, हिंदुत्व को मुद्दा बनाए और अखिलेश उसको जाति समीकरण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो पीडीए जो उनका है वो एक मुद्दा है, उसमें वो सबको शामिल करना चाहते हैं, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, दलित को उसमें शामिल करना चाहते हैं, वो ये मुद्दा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के बीजेपी पूरी कोशिश होगी को सनातन को तो रखे ही लेकिन कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाए, और जो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, अखिलेश की कोशिश होगी, वो उसको पीडीए की तरफ ले जाना चाहेंगे, जाति समीकरण की तरफ ले जाना चाहेंगे और भेदभाव का मुद्दा बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है योगी बनाम अखिलेश, ये लड़ाई इसमें बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे आपको जो दो विचारधारा उसमें विभाजन साफ साफ दिखेगा।
6: लेकिन एक रंग ऐसा भी है जिस पर मायावती ने सवाल उठाया है। मायावती कहती हैं रथ का रंग लाल नहीं है, भगवा है। मायावती अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रही है और रंगों की पीडीए सियासत पर सवाल खड़े कर रही है।
3: इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गया आप।
6: इस बार रथ पर एक और लाइन लिखी है जो पीड़ित वही पीडीए यानी पीडीए को सिर्फ जातीय समीकरण से आगे ले जाकर पीड़ित और वंचित वर्गों के राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है और यहीं से रंगों की राजनीति वोट बैंक की राजनीति से जुड़ती है।
1: इस रथ को ही देखिए भगवा में है, वो भगवा को जान रहे हैं कि भगवा ही जीतेगा, भगवा ही जीतेगा, भगवा ही जीता है और तीसरी बार भी भगवा का ही सरकार बनने वाली है। ये बात अखिलेश जी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अपने रथ का कलर भी उन्होंने भगवा बना लिया।
6: यूपी में दलित वोट हर बार अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अहम चुनावी आधार रहा है। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक ताकत है पिछड़ा वर्ग, यादव वोट और मुस्लिम मतदाता। अब पीडीए के जरिए इस सामाजिक समीकरण में दलित वोट को जोड़ने की कोशिश नजर आ रही है, साथ ही भगवा के जरिए ब्राह्मणों वोट बैंक पर भी निशाना हो सकता है। कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक आधार से आगे बढ़कर एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ खड़ा करना चाहती है, लिहाजा रथ का हर रंग, रथ पर लगी तस्वीरें सब 2027 के चुनावी रण की तैयारी लगती है।
15: उनके रथ के रंग को लेकर जो भगवा के रंग की बात आई कि जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उसको भगवा रंग कर लिया है, तो ऐसा नहीं है, जो रथ है वो लाल रंग का ही है और कहीं हो सकता है कि किसी वजह से फेड रंग लगा हो और एक तरफ उस पर अम्बेडकर जी का चित्र है तो एक जगह पर उस पर मुलायम सिंह यादव जी का है रथ है, रथ पर फोटो है। अब ये प्रतीकों की राजनीति जो है, अभी पिछले दिनों जो अखिलेश यादव समाजवादी लाल टोपी पहनते थे उन्होंने नीला दुपट्टा भी पहना और कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सार्वजनिक मंचों पर भी वो नीला जो है पहन करके आए। अभी उन्होंने अपनी जो छात्र सभा है उसको नीली जीन्स और नीली टी शर्ट दिया। तो इन प्रतीकों के जरिए भी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव, अब जो बात आप कर रहे हैं कि वो तमाम और जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे जोड़ते हुए पार्टी को आगे ले जाने के प्रयास में है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो।
6: अखिलेश रंगों के माध्यम से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने युवजन सभा के पदाधिकारियों के ड्रेस कोड में नीली टी शर्ट भी शामिल की। अखिलेश यादव के रथ का रंग बदला तो सवाल सिर्फ रंग का नहीं रहा, रंग के पीछे की राजनीति की तलाश होने लगी, क्योंकि राजनीति में रंग सिर्फ रंग नहीं होता, रंग बदलते ही कहानी बदल जाती है।
12: क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है? इस सवाल के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक पार्टियों के लिए माहौल कुछ पेचीदा कर दिया। ओवैसी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व की मांग लेकर वोट बैंक साध रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने भी किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करने की चुनौती बढ़ रही है। बात अब एहसान और वफादारी की हो रही है।
7: वो नहीं चाहते कि मुसलमान एक लीडरशिप के रोल में आ जाए और आपके सामने आकर बैठ जाए।
8: यादों से मुस्लिम दुगनी संख्या में घोषित करें ना मुख्यमंत्री के रूप में, मुसलमान को बनाएंगे, समझ में आ जाएगा परिवर्तन हो रहा।
10: चुनाव नजदीक आ गया तो मुसलमानों के प्रति प्रेम फिर दिखने लगा। यही हमेशा समाजवादी पार्टी करती है। MY के इसी समीकरण में M हमेशा वोट देने का काम करता है और Y राज करने का काम करता
11: है। चुनाव के समय पर मुसलमान गाड़ी की आगे वाली सीट पर और चुनाव के बाद पीछे वाली डिग्गी में भी मुसलमान को जगह नहीं मिलती। तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि चार बार आपका अवसर मिला, एक बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए, आपकी ईमानदारी टेस्ट हो जाएगी।
14: मुस्लिम वोटों के लिए लामबंदी और लड़ाई तो यूपी की राजनीति का पुराना चलन है, लेकिन इस बार बात मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर तनातनी तक आ गई है। एक मांग उठ रही है कि मुसलमानों ने अब तक जिनको वोट दिया, अब उनकी बारी है कि वो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें।
7: उनको डर है कि अगर हम लफ्ज मुसलमान कहेंगे तो हमको नॉन मुस्लिम कोर्ट नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल गलत बात है। भाई जब आप इंसाफ की बात करेंगे, इनजस्टिस की बात करेंगे, तो इंसान तो है ना, कोई किसी समाज का हो, किसी मजहब का, तो वो तो इंसान है, वो तो आपकी बात को अप्रिशिएट करेगा। मगर आप नहीं उठाना चाहते, और नहीं उठाने की अहम वजह यह है कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान एक लीडरशिप के रोल में आ जाए और आपके सामने आकर बैठ जाए। तो इसीलिए आप उनको उन्हीं के मुकाम पर रखकर अपना सब राजनीति करते हैं।
14: सीधे सीधे राजनीतिक दलों से पूछा जा रहा है कि कब तक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होंगे मुस्लिम? अगर मुसलमानों के वोट चाहिए तो सत्ता में उनकी भागीदारी शीर्ष तक क्यों नहीं हो सकती?
13: देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो अमेठी और रायबरेली से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनको रथ शुरू करना चाहिए था तो मैनपुरी, एटा, एटावा, सैफई से शुरू करते हैं, जो यादव लेन कहलाया जाता है, तो बात समझ में आती। और अब जो उन्होंने कलर रखा है वो भगवा कलर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुराने की कोशिश की है। और ये जो भगवा धार्मिक यात्रा है, मैं इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि अखिलेश यादव की धार्मिक भगवा यात्रा में शिरकत न करें, कोई भाग न लें।
14: अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक, कांग्रेस से लेकर मुस्लिम धार्मिक नेताओं तक, मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के बीच अहम होता जा रहा है।
25: मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कौन उठा रहा है? मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात भारतीय जनता पार्टी या उसके एलाइज उठा रहे हैं। कारण, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही मुस्लिमों का अधिसंख्य मत समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, और ये मुस्लिम मतों के विभाजन को रोकने के लिए ही तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। तो मुस्लिम वोट्स पर सबसे बड़ा दावा अखिलेश का है, इसलिए अखिलेश से ये सवाल करना कि क्या वे मुस्लिम मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, तो परेशानी और असहजता में तो अखिलेश यादव ही आएंगे, समाजवादी पार्टी ही आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, 17-22 में दूर रहे लेकिन 27 में कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बहुत दिलचस्प संघर्ष के हालात बन गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर।
14: यूपी की राजनीति में ये माना जाता है कि मुसलमान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। अब ओवैसी भी यूपी में अपनी पार्टी की जड़ें गहरी करने के लिए इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
26: चुनाव आएगा, ये तमाम चमचे आएंगे, ये तमाम मीर जाफर आएंगे, मीर सादिक आएंगे, और आकर वो आपको पुराना चरस चकाएंगे। हम सरकार बना रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए, 24 में हार गए, अब 28 आ रहा है तो कह रहे हैं भैया आ रहे हैं।
14: मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, ये सवाल तो हर चुनाव में खड़ा होता ही है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिसे वोट मिलेगा वो मुस्लिम समाज को सत्ता में कितना प्रतिनिधित्व देगा।
13: पीडीए में मुसलमान गायब है, अगर पीडीए में मुसलमान होता तो इसका नाम पीडीएम होता। तो इसलिए मुसलमान इस चालाकी को समझें और पीडीए के किसी भी प्रोग्राम में न शिरकत करें न भाग लें और भगवा धार्मिक यात्रा में भी शिरकत न करें और शरीक न हो करके अखिलेश यादव की इस यात्रा को फ्लॉप कर दें।
14: और यहीं से शुरू होती है यूपी में मुस्लिम चेहरे की सियासत। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% है, लेकिन चुनावी असर उससे कहीं बड़ा है। करीब 100 से 145 विधानसभा सीटों तक मुस्लिम वोट निर्णायक या महत्वपूर्ण भूमिका में माना जाता है। 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है। 2022 में करीब 79% मुस्लिम वोट एसपी गठबंधन के खाते में गया था। 2022 में यूपी विधानसभा में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए और ये सभी एसपी गठबंधन के टिकट पर जीते थे।
26: अब तुम्हारे मजबूत खंडों पर मुसलमानों का मुस्तकबिल तय होगा। अगर वो खंडे मजबूत रहेंगे तो वो खंडे किसी के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि तुम दुनिया को झुकाने की ताकत तुम्हारे पास है और वो ताकत तुम्हारा इत्तेहाद है। नौजवानों, मैं तुमसे अब बताना चाहता हूं कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, ये साफी यहां पर है, पूछो इनसे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, 50,000 लोग अपने घर और गांव से बेघर हो गए थे, पार्टीशन में भी इतने लोग बेघर नहीं हुए थे। कितने मुसलमान एमपी थे समाजवादी में आपको मालूम? किसी को मालूम कितने मुस्लिम एमएलए थे समाजवादी के पास? 47 थे। उसके बावजूद भी 100 मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई थी, एक या दो को इंसाफ मिला, बाकी तड़प रही है इंसाफ के लिए। 50,000 लोग बेघर हो गए।
11: मुसलमान तुम्हारी तमाम साजिश और षड्यंत्रों को देख रहा है कि हमारे वोट बैंक पे सियासी डकैती डालने वाले लोग हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोले। उनके 100 विधायक और 37 सांसद गूंगे बनकर बैठे रहे। और अगर इतनी ईमानदारी है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि 4 बार आपको अवसर मिला, एक बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए, आपकी ईमानदारी टेस्ट हो जाएगी। और पीडीए में जब तक ए फॉर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके साथ नहीं आने वाला, क्योंकि आपके धोखे से पूरी तरह से समझदार हो चुका है उत्तर प्रदेश का मुसलमान।
14: मुस्लिम चेहरे के सवाल पर बढ़ती गर्मी देख राजनीतिक हलकों में हलचल शुरू है। समाजवादी पार्टी ने इसे भांपते हुए मोहम्मद जासमीर अंसारी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। अंसारी सीतापुर के लहरपुर से हैं और जुलाई 2022 में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
16: कि ये सबको पता है कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, और इसका कोई जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको आजम खान से हिमायत है, आजम खान से मोहब्बत है, तो कम अज कम मुख्यमंत्री का ऐलान उन्हीं का कर दो। सीएम योगी की तरह वो अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके ऊपर जो सैकड़ों मुकदमे हैं वो तो हटा लेंगे कम से कम। जितना बाकी उनका टाइम है वो अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि सीएम योगी ने भी 15-16 मुकदमे अपने हटा लिए थे, और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी 12-13 मुकदमे थे, उन्होंने भी हटा लिए थे, तो वो भी हटा लेंगे बेचारे। लेकिन अखिलेश यादव की ये बात आएगी 2027 का चुनाव हारने के बाद, अभी ये समझ में नहीं आएगी।
14: जैसे जैसे मुस्लिम मुख्यमंत्री और मुसलमानों की सत्ता में अधिकाधिक भागीदारी की मांग उठ रही है, वैसे ही प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं।
4: जिन पे कुछ भी दिखाने को नहीं है, तो वो यही करना जानते हैं कि दो समुदाय को आपस में एक धार्मिक उन्माद पैदा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में सबसे ऊपर यही चीज है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट बटोरे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये लोग किसी के काम आने वाले लोग नहीं है और इनको ठंडे बस्ते हम लोग बिठाने का काम करेंगे।
6: बीजेपी इस पूरे खेल को देख और परख रही है, साथ ही मुस्लिम मुख्यमंत्री के सवाल पर समाजवादी पार्टी को चुनौती भी दे रही है।
17: किस सामाजिक परिवर्तन की बात करिए समाजवादी पार्टी? क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन किया है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है? क्या उन्होंने अपनी किसी सरकार में परिवर्तन दिखाया था? क्या मुख्यमंत्री भी वही है? यादवों की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे, यादवों से मुस्लिम दुगुनी संख्या में है। घोषित करें ना मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को बनाएंगे, समझ में आ जाएगा परिवर्तन हो रहा है।
6: एनडीए के सहयोगी दल भी मुस्लिम चेहरे के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं।
18: उनके पीडीए के रथ का कोई मतलब नहीं है, संज्ञान में कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकाल अखिलेश जी के सब लोग जानते हैं कि ये वही व्यक्ति है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और लोग आपस में कटमर रहे थे, सैफई में आज मुख्यमंत्री अखिलेश जी नाच देख रहे थे।
6: राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों से उठती मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी की मांग से विपक्षी दलों खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अखिलेश यादव जिस पीडीए के रथ को लेकर चुनावी पथ पर निकले हैं, मुस्लिम उसी के ए यानी अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर मुस्लिम चेहरे की मांग पर वोट बटे तो यूपी के संग्राम का और भी रोचक होना तय है।
12: चुनावी बयार के बीच यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग और अलग अलग हिस्सों के लिए अलग मुख्यमंत्री की पैरवी ने सियासत को नया मुद्दा दे दिया है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अब ये बहस जाति और वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ती दिखाई दे रही है। ये केवल चुनावी समीकरण साधने की रणनीति है या यूपी की सियासत में भविष्य का कोई बड़ा संकेत?
19: मेरी मंशा है आने वाले दिनों में प्रदेश का बंटवारा होगा, प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा होगा। जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग होगा, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री कोई जाति का होगा तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होगा।
20: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देवरिया की अपनी रैली में पूर्वांचल प्रदेश का जिक्र छोड़कर पूरी यूपी में एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया है जिसने यूपी की पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है।
21: ये सरकार के मंत्री हैं, तो सरकार का मंत्री अगर कोई बात बोल रहा है तो ऑथेंटिक बातें होंगी। इसका मतलब कि कैबिनेट में चर्चा हुई होगी, मुख्यमंत्री ने उसमें पूरी तरीके से आप चर्चा की होगी मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्री है। पर ये कुछ भी कर ले, 4 हिस्सा बांट लें, 6 हिस्सा कर लें, 8 हिस्सा कर, क्योंकि जनता इनकी कार्य प्रणाली से ऊब चुकी है। पर अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली और निश्चित तौर से अब इनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के हमेशा हमेशा के लिए विदा करेगी।
20: समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों ले रही है और उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है।
22: इस तरह की जूल जलूल झूठी बात है, करते रहते हैं, ये सबको पता, उत्तर प्रदेश के सबको पता। और देखिए वैसे तो राजभर सम्मानित वर्ग है, राजभर, लेकिन ये लोग किसी का ये ध्यान रखते नहीं, झूठी बातें करते हैं।
20: बीजेपी ने यूपी के बंटवारे के सवाल पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को धैर्य धारण करने की सलाह भी दी जा रही है।
27: इस तरह की बात उत्तर प्रदेश की जनता 60 और 70 के दशक से सुन रही है। जब गहमरी साहब ने देश की पार्लियामेंट में पूर्वांचल की संकल्पना को देश के सामने रखा, तब से ऐसी बातें हम सब लोग सुन रहे हैं। देश के अंदर एक पुरुषार्थी सरकार श्रद्धे मोदी जी की चल रही है। मैं ओम प्रकाश जी से भी चाहूंगा, अपने दूसरे सहयोगी दल के हमारे जो असहयोगी दल हैं, मैं उनके नेताओं से भी चाहूंगा कि आप भरोसा रखिए ना, अगर प्रदेश के हित में होगा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हित में था तो भारतीय जनता पार्टी की ने प्रदेश दिया कि नहीं दिया, तो मोदी जी पर भरोसा रखें। समय जब आएगा, मोदी जी की सरकार को लगेगा कि नहीं देश का बंटवारा अनिवार्य है, देश प्रदेश के हित में है, वो फैसला करेंगे और ये अधिकार भी भारत सरकार को है।
20: ओम प्रकाश राजभर के बयान का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने भी दावा ठोक दिया है कि अगर यूपी का बंटवारा होगा और चार प्रदेश बनेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी बनेंगे। चुनावी मौसम में यूपी के चार हिस्सों में बंटवारे और अलग अलग मुख्यमंत्री की मांग बेवजह ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सियासी गणित है। दरअसल पूर्वांचल में राजभर की पार्टी का जनाधार प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले अधिक है। पूर्वांचल की सामाजिक स्थिति में दलित 21%, मुस्लिम लगभग 19%, ब्राह्मण लगभग 10-12% और राजभर 4%। इसके अलावा यादव समाज की भी अच्छी खासी आबादी है। पूर्वांचल की लगभग 125 विधानसभा सीटें यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं।
0: चार राज्यों में अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का बंटना संभव नहीं लगता है और इसका प्रस्ताव एक बार उत्तर प्रदेश में पहले पास हो चुका है और यूपी विधानसभा से तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 17 मिनट के चले सदन में और उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता, ये एक सियासी गेम हो सकता है, प्रशासनिक आधार तो नहीं कह सकते, मगर चूंकि उत्तर प्रदेश यदि बंट जाएगा तो बुंदेलखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वांचल है, फिर ये आपका अवध और ये सब बचेगा जिसमें लखनऊ आएगा। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा ये सियासी एक रणनीति हो सकती है।
20: अब आपको ओम प्रकाश राजभर का सियासी समीकरण समझाते हैं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के राज्य बनने पर राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा कहकर अपने समाज के सामने बड़ा सपना रख रहे हैं ताकि उस सपने के लिए वोट एकजुट होकर मिले। दूसरे वो ओबीसी आरक्षण के अंदर कोटे की वकालत कर रहे हैं ताकि राजभर समाज को आरक्षण का अधिक लाभ मिल सके।
1: कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात है। आज के तारीख में जो डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो गया है उसके बेटा बेटी को आरक्षण की क्या जरूरत है।
20: इसी तरह से पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम आबादी अधिक है और उसी के आधार पर आरएलडी प्रवक्ता जयंत चौधरी की दावेदारी को आगे कर रहे हैं। चुनावों से पहले यूपी के बंटवारे और चार राज्यों की मांग कोई नई बात नहीं है। नवंबर 2011 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाया था। इसमें राज्य को चार हिस्सों में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने की बात कही गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये प्रस्ताव आया था और विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट कहा था। प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया लेकिन कभी लागू नहीं हुआ। यूपी के बंटवारे का मुद्दा हर चुनाव से पहले गर्म होता है और चुनाव खत्म होते ही ठंडा पड़ जाता है। राजनीतिक बयान भी उसी सियासी परंपरा का हिस्सा लगते हैं।
2: सभी दल 2027 की चुनावी तैयारियों में जुटे हैं लेकिन बीएसपी में अभी भी सियासत से ज्यादा उत्तराधिकार की पहेली चर्चा में है। कभी किसी भतीजे का नाम आगे आता है, कभी किसी दूसरे भतीजे की सक्रियता बढ़ती है, कभी भतीजी की भूमिका को लेकर भी कयास लगने लगते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ उत्तराधिकारी का नहीं बल्कि सवाल ये भी है कि जब चुनाव सर पर हैं, तब मायावती की रणनीति क्या है और बीएसपी के भविष्य को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है।

0: 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने ये फैसला तो ले लिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले ही अपनी चुनावी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन पार्टी में कौन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नीतियों का चेहरा बनेगा ये तय नहीं हो पा रहा। दो बार भतीजे आकाश आनंद सुर्खियों में आए और गए। इस बार उनकी पार्टी से छुट्टी परमानेंट मानी जा रही है। इसके बाद भतीजी दीपिका आनंद का नाम आगे आया कि उन्हें पार्टी की नीतियों का झंडा सौंपा जा सकता है, लेकिन वो भी इस रेस में पीछे छूट गईं और अब आए हैं आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद।
1: जिस ढंग से उभर के सामने आया है एक जो पारिवारिक विघटन सामने आया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मायावती के लिए ये जो चुनाव है ये एक आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हैं। यदि इसमें वो पराजित होती हैं, इसमें वो हारती हैं, इसमें वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
0: ईशान को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे विश्वास के साथ आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया है। ईशान का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी खूब किया। अब ईशान की पारी लंबी चलेगी या नहीं इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर हलचल काफी तेज है।
2: आदरणीय बहन जी बड़ी नेता हैं और जिस तरीके के फैसले उनके पार्टी के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी है, उनका अपना व्यक्तिगत फैसले हैं, लेकिन ये फैसले बता रहे हैं कि वो दुविधा में है।
0: बीजेपी सीधे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन अंदर अंदर नजर उसने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए रखी है।
3: उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 10 वर्षों में विकास की एक नई इबारत लिखी है, जिसके नाते से उत्तर प्रदेश का विपक्ष आज भ्रम की स्थिति में खड़ा है। उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है कि इस विकास के सामने कैसे खड़े हों। तो मायावती जी जहां रोज अपना उत्तराधिकारी बदल रही हैं, ताश के पत्तों की तरह परिवार से एक नया पत्ता लाती हैं और अब तो अपने ही भतीजे को कह रही हैं कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
0: कांग्रेस इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ भी बता रही है और जनाधार का सवाल भी उठा रही है।
4: क्या मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के रूप में बना दिया है कि कभी भतीजा रहेगा, कभी भतीजी रहेगी, कभी छोटा भतीजा, कभी बड़ी भतीजी? भारतीय जनता पार्टी के कहने से मायावती जी क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त करने पर लगी हुई है?
0: बीएसपी की तरफ से इस घटनाक्रम पर चल रही टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रक्रिया सामने आई है और इसे पूरी तरह पार्टी के हित का फैसला बताया।
5: मान्य बहन जी के लिए भाई भतीजा नहीं होता है, बहन जी के लिए इस देश का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी एक बराबर है। किसी भी कोई गलती मिलती है तो बहन जी बाहर भी करती है, बहन जी वापस भी करती है, हमारी बहन जी का निर्णय है, उस पे हम लोग बहन जी के साथ।
0: बीएसपी भले ही लोकसभा और यूपी विधानसभा में इस समय लगभग नगण्य दिख रही हो, लेकिन माना जाता है कि मायावती का एक कोर वोट बैंक है जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वो चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ भी सरकार बनाई। बीएसपी यूपी के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और यही एक वजह हो सकती है कि चेहरे को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और बाकी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में कूद चुके हैं।
6: ये यूपी की सियासत है, कब क्या रंग ले ले ये वोटिंग के अंतिम दिन तक कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे यूपी की राजनीतिक तस्वीर का हर पहलू। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एकदम दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
5: आई लाइक दिस ओनली।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार धोती थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो TMT बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
2: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
1: आई लाइक दिस ओनली
2: और वही कहाँ गए थे घूमने
3: जीके मैक्स
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: जेके मैक्स पेंट्स
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
1: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायफ्री जूस
12: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा अनमोल बिस्किट्स स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है चुनाव आयोग, और जब उसी आयोग के मुखिया पर पक्षपात का सबसे बड़ा हमला हो तो सवाल उठना लाजमी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर पटना, शिमला से लेकर लखनऊ तक पुतले फूकने, वाटर कैनन चलने, चुनाव आयोग के बोर्ड पर काले पोतने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोप भारी है, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटने का आरोप और महाभियोग की मांग। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही सियासी कलेश मिटेगा?
1: नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
0: और ये तो विपक्ष भी नहीं, खुद एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान LJPR जिसकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। बहरहाल, उसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोल रहे थे तो पूरा हॉल खचाखच भरा था, लेकिन जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मंच पर आए तो 75 से ज्यादा देशों के राजनयिक बाहर निकल गए। एक दौर था जब ईरान का बहिष्कार होता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। तो क्या इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, या इसराइल ये साबित कर रहा है कि वो अकेला ही काफी है? रेड कार्पेट की चकाचौंध, बॉल्ड ईगल का तोहफा और पैंडा डिप्लोमेसी। जी हां, बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप की। शी जिनपिंग की खातिरदारी में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ी, लेकिन क्या इस भव्यता के पीछे चाइना को वो मिला जो वो चाहता था, या फिर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का सीज फायर बढ़ाकर और पैंडा लेकर बाजी अपने नाम कर ली और शी जिनपिंग के हिस्से सिर्फ रेड कार्पेट ही रह गया? हूती के हमलों के बाद अगली खबर, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने अपने सैनिकों को आर पार की जंग का फरमान सुना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक सिपाही अपनी आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक डटे रहें। मुफ्ती के इस आक्रामक संदेश ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब और भी भीषण होने वाली है। इसराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, या इसराइल पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो अकेला काफी है? जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भाषण दे रहे थे, तब हॉल में अमेरिका और इसराइल जैसे देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के राजनयिक मौजूद रहे। प्रतिनिधि जो थे वो मौजूद थे, बैठे थे। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको महासभा का मुख्य हिस्सा भरा हुआ नजर आएगा और इनमें वैश्विक नेताओं और राजनयिकों की भारी मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये देखिए, इस एंगल से भी अगर आप देखिए तो काफी लोग दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सिर्फ 2 दिन पहले 23 सितंबर को यह भाषण दिया था, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज भाषण हुआ तो लगभग पूरा हॉल ही खाली हो गया। इसराइल की मीडिया का दावा है कि 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार कर दिया। ये आपको दिख रही है पूरी तस्वीरें वहां की। जैसे ही भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया, वहां हॉल में मौजूद अलग अलग देशों के राजनयिक बाहर चले गए और इसके बाद इन 2 तस्वीरों को लेकर बहस शुरू हो गई और लोग इस बहिष्कार को इसराइल के लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन बताने लगे। ये कहा गया कि जब मुस्लिम देशों के अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भी इसराइल की युद्ध नीतियों के खिलाफ भारी गुस्सा है, जैसे जिन देशों के राजनयिक हॉल छोड़कर चले गए उनमें ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, तुर्की, ओमान, ब्राजील, सूडान, ट्यूनिशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, अल्जीरिया, मलेशिया, किर्गिस्तान का नाम शामिल था। और यहां बात सिर्फ बहिष्कार की नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू भाषण देने के लिए मंच पर आए, तभी हॉल में जोरदार हूटिंग, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते गैलरी के कई हिस्से पूरी तरह खाली हो गए। यहां तक इतना तो समझ आ रहा था ईरान कई देशों को इसराइल के खिलाफ लामबंद करने में कामयाब हुआ है। देखिए,
2: our schools, our hospitals, our infrastructures, all of it against international law. When I took over the responsibilities as president, they assassinated Ismail Haniyeh in Iran on the day of my inauguration. Israel targets any neighborhood in any city, in any province, commits assassinations like a true terrorist. In Gaza, over 80,000 innocent civilians have been murdered, brutally murdered. Hundreds of thousands have been displaced.
0: वहीं आपने देखा कुछ समर्थक भी थे जो तालियां बजा रहे थे उनके लिए. वहीं बीबी उनको कहा जाता है नेतन्याहू को, तो उनके खिलाफ भी कई लोग निकलते हुए नजर आए. कुछ साल पहले तक यही चीज ईरान के साथ होती थी. उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों के दौरान भारी वॉकआउट होते थे. ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई देता था, लेकिन इस बार के सत्र ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया. और इसलिए आज दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि जो ईरान अलग थलग रहता था, अब उसके साथ कई देश खड़े हैं. और जो इसराइल अमेरिका के समर्थन से मजबूत स्थिति रखता था, उसके लिए अब हॉल तेजी से खाली हो रहा है. देखिए,
3: हर बराबर सवाल अज होलोकॉस्ट सवाल कुनंदे रा मورد हजमे व तहदीद करार देदहंद व दर बराबर सवाल अज हादसे 11 सितंबर तहदीद बे तहरीम व हमले निजामी मिकुनंद. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
4: عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل.
0: इस वॉकआउट के बाद अब इसराइल ने एक और नई राह पकड़ी है और वो दुनिया को ये कह रहा है कि वो अकेला नहीं है बल्कि अकेला काफी है. आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार हुआ, तब हॉल छोड़कर जाने वाले राजनयिकों को उन्होंने नैतिक रूप से कायर बता दिया. उन्होंने शब्दशः कहा कि जो देश वॉकआउट करके हॉल से बाहर जा रहे हैं, उनमें कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इसराइल ने मदद की है या जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए इसराइल को धन्यवाद दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इशारा सऊदी अरब की तरफ था, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता रहा है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए अमेरिका और इसराइल से बात की थी. सबसे हैरानी की बात यह है कि यूएई ने पिछले साल की तरह इस बार भी बहिष्कार करने वाले देशों में हिस्सा नहीं लिया. यूएई के अलावा बहरीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, पोलैंड, बहरीन, इटली, फिनलैंड, डेनमार्क के राजनयिक भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण सुनते रहे. और जब 40 मिनट का यह भाषण पूरा हुआ तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया. ईरान ने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए यह पूछा कि उसने अपने मंच को इसराइल के प्रधानमंत्री का चुनावी मंच क्यों बनने दिया. यानी ईरान यह कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो उन्हें भाषण देने के लिए इस मंच पर क्यों बुलाया गया और उनकी जगह यूएन के पोडियम पर होनी चाहिए या अदालत के कटघरे में. सुनिए.
5: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: और अब ये देखिए कि ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपनी चुनावी रैली का मंच बनाने का आरोप क्यों लगा रहा है. इसके पीछे बड़ा कारण है इसराइल में अगले महीने 27 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव. आरोप है कि इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाए जिन्हें वो इसराइल के मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते थे. सबसे पहले उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के उस हमास हमले को याद किया, जिसे इसराइल के बहुत सारे लोग आज भी भूले नहीं हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आबादी के अनुपात में यह हमला 9/11 के हमले से 16 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी दुनिया इसकी बात नहीं करती. सुनिए.
5: Altogether, they slaughtered 1,200 Israelis that day. I want to give you an idea what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours. That's 16 times 9/11. 16 9/11s.
0: प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज अपने साथ स्टारलिंक का एक डिवाइस भी लेकर आए थे और उनका निशाना ईरान पर था. उन्होंने इस डिवाइस को दिखाते हुए ये कहा कि वो इसे ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए छोड़ रहे हैं ताकि ईरान की जनता अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का क्रूर शासन जल्द गिर जाएगा। हालांकि यहां ईरान भी जानता था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस पर हमलावर रहेंगे। इसीलिए वॉकआउट के बाद ईरान के राजनयिकों ने अपनी खाली सीट पर कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर रख दी थी, जो पूरे भाषण के दौरान नेतन्याहू के सामने दिखती रही। और ये वही कासिम सुलेमानी है जिन्हें अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर साल 2020 में मार दिया था। देखिए,
5: द इरानियन रेजिम इज स्पेशली अफ्रेड व्हेन देयर पीपल हैव दिस, व्हेन देयर पीपल हैव दिस। दिस इज अ कम्युनिकेशंस डिवाइस, स्टारलिंक, दैट अलाउज पीपल टू एक्सेस ट्रूथ, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet. Mr. President, I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation, so when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
0: इससे पहले इजराइल के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजनयिकों को स्टारलिंक का इंटरनेट डिवाइस देने की कोशिश की। और जानते हैं इजराइल ये क्यों कर रहा है? इजराइल ऐसा करके बताना चाहता है, साबित करना चाहता है कि अगर ईरान की जनता वहां की इस्लामिक सरकार से आजादी नहीं चाहती तो ईरान में इंटरनेट बंद क्यों किया गया है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू स्टारलिंक का ये इंटरनेट डिवाइस लेकर आए। यही नहीं, इसी भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इसराइल अपने दुश्मनों को कितनी गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए वो अपने साथ एक पेजर डिवाइस या बीपर लेकर आए थे, और ये वही पेजर है जिन्हें लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोसाद ने इन्हें हैक करके इनमें ब्लास्ट कर दिया था। देखिए,
5: Israel hammered Hamas. We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah? Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets? All aimed at our civilians, they're gone. Hezbollah's leader is dead.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर बेइज्जती कराने का कोई वर्ल्ड कप होता तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाता। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता तो ये आतंकवादी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। ये पुराना वीडियो है, आजकल खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा। और उस वक्त शहबाज शरीफ को यही लगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये बात बोलकर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान का कबूलनामा माना और ये कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आंगन में सांप को पाल पोस कर काबू में रखता है ताकि वो पड़ोसियों को ना काटे, उसी तरह पाकिस्तान ने भी आतंकियों को अपने देश में खूब पनाह दी। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री ने अनजाने में आतंकवाद को शरण देने की बात तो मान ली थी पिछले साल, लेकिन आज जब इसी आतंकवाद पर अमेरिका में उनसे सवाल पूछे गए तो शहबाज शरीफ ऐसे निकले से अचानक सुनने की जो ताकत है वो चली गई हो, कुछ सुनाई ही नहीं दिया उनको। देखिए,
6: प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
0: मतलब हाथ उठाया। खैर, आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उनके भाषण में दो बातें ऐसी रही जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचने की जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलते समय किसी का पासपोर्ट या बॉर्डर लाइन देखते और इसीलिए दुनिया को भी इस संकट से निपटने के लिए सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, इंसानों ने जमीन के टुकड़ों को तो जमीन को टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन ये जो प्रकृति है इसे कोई नहीं बांट सकता। और अगर इस प्रकृति पर संकट है तो इससे निपटने के लिए सबको साथ आकर काम करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अजीब हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश 72 घंटे के भीतर कहीं भी हथियार पहुंचाने में सक्षम, लेकिन गरीबों तक खाना पहुंचाने का लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है। हम हथियार तो बना लेते हैं, हथियारों को अंतरिक्ष में भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मानवीय संकट है, भूखमरी है, त्रासदी है, यही देश जरूरतमंद लोगों तक खाना नहीं पहुंचा पाते। आज प्रधानमंत्री बालिन शाह ने बाढ़ में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए भारत और चाइना को भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से धन्यवाद दिया। और अपने भाषण के अंत में पूरी दुनिया को कल्याण और शांति की कामना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ का आह्वान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। देखिए,
7: Lord and save lives. Let us reform the order that leaves the weakest with least power. And when the next warning comes from the rooftop of the world, let us be ready to hear it and ready to act. Bhagwan Pashupati Nath le Bishwa ko kalyan garun, yo Bishwa Buddha le dekhaye ko bato ma hidna sako. Dhere dhere dhanyabad, namaste.
0: एआई टेक्नोलॉजी के दो दिग्गज देश चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात चल रही है और अमेरिका में एआई के खतरों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखते हैं कि मेरी भी एआई वर्जन है और मेरी एआई वर्जन भी आपको अब खबरें बताने लगी है। लेकिन ये जो एआई का एक नया अवतार आ रहा है जिसमें उसकी जानकारी बढ़ते जा रही है, जिसको बनाने के पीछे मकसद था इंसानों के काम को आसान बनाना, पूरी मानव जाति के लिए इसे एक सुरक्षा ढाल की तरह तैयार करना, लेकिन अब यह ढाल इतनी ताकतवर होती जा रही है कि यह इंसानों के लिए ही बड़ा खतरा बन सकती है। ये बातें किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगती है कि एआई अचानक से अपना ही उसका दिमाग हो गया, उसने लोगों पर कब्जा कर लिया, सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज का सच यही है, एआई डेवलपमेंट पर काम करने वाली दिग्गज कंपनीज के सीईओस की सबसे बड़ी चिंता खुद एआई है। मतलब जो एआई पर काम कर रहे हैं वही बता रहे हैं कि एआई इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है। आप और हम भले ही अभी तक एआई को सवाल पूछने, फोटो वीडियो बनाने, किसी तरह का रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक कंपनीज के जो सीईओस हैं वो डरे हुए हैं। जो एआई बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहा जाता है, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा होगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारिया एमेडोय, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एआई एजेंट को सिखाने पढ़ाने वाली कंपनी यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के को-फाउंडर क्लेमेंट डुलोंग जो है वो पहुंचे थे। इन तीनों टेक महारथियों ने जो कि एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से एआई के विकास पर वैश्विक नियम कानून बनाने की अपील की है, बहुत बड़े खतरे की जानकारी दी है। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को एआई की बेतरतीब विकास की दौड़ से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताया है। सैम ऑल्टमैन के मुताबिक इस वक्त एआई से दो तरह के खतरे हैं। पहला, एआई से इंसानों का नियंत्रण ही खत्म होना, मतलब एआई हम ही ने बनाया और वो एआई से हमारा ही कंट्रोल खत्म हो जाए। उनके कहने का मतलब है कि इस वक्त एआई इतनी तेजी से सीख रहा है, हम जितना इंफॉर्मेशन एआई को देख रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन इंजेस्ट कर रहा है, अपने अंदर समेट रहा है, कि अब ऐसा समय करीब है जब वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, मतलब खुद सोचेगा, यानी वो इंसान के निर्देशों पर नहीं बल्कि खुद अपने कमांड पर चलेगा, वो खुद से सोचेगा, वो खुद से तय करेगा उसे क्या करना है। एक तरह से इंसानों का नियंत्रण एआई पर, मशीन पर खत्म हो जाना, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। दूसरी चिंता, एआई की ताकत कुछ लोगों के हाथों तक सीमित रहना। उनका मतलब यह है कि इस वक्त ताकतवर एआई एजेंट्स कुछ ही देशों और कंपनीज के हाथों में हैं, जो बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सैम ऑल्टमैन ने एक तरह की चेतावनी दी, उनका कहना है कि जिस तेजी से एआई का विकास हो रहा है, इंसानों का आने वाला जो भविष्य है जल्दी ही एआई के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि वी रिस्क लूजिंग द फ्यूचर टू एआई, मतलब भविष्य एआई के पास चला जाएगा, हमारा भविष्य। उनकी अपील है कि सख्त नियम बनाए जाएं जिससे ऐसे एआई मॉडल्स ना बन सकें जिससे जिस पर से इंसानों का ही नियंत्रण खत्म हो जाए। सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना। अब एंथ्रोपिक के जो डैरियो एमरोय हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से आगे जाकर एआई की क्षमता को मानव जाति के विनाश के खतरों से जोड़ा, ह्यूमन रेस का अंत। उनका कहना है कि इस वक्त एआई से दो खतरे हैं। इनमें सबसे पहला है एआई का गलत इस्तेमाल। उनके मुताबिक एआई एजेंट्स का इस्तेमाल अगर आतंकी करने लगे, अगर दूसरे कट्टरपंथी समूह करने लगे, तो इसकी मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डैरियो ने एआई सिस्टम से नियंत्रण खोने को मानव जाति पर एक बड़े खतरे की तरह देखा है। हगिंग फेस के कोफाउंडर क्लेमेंट डिलोंग ने इन खतरों पर सहमति जताई। इससे एक बात और उन्होंने जोड़ी। उनका कहना है कि खतरा इस बात का है कि अगर किसी देश के पास बहुत शक्तिशाली एआई एजेंट है और अन्य देशों के पास वो नहीं है, तो ऐसे देश पूरे सिस्टम के लिए एआई एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
8: इंडस्ट्री को सिर्फ बड़े फायदे और रफ्तार बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम नहीं उठाने चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। नहीं, हम ऐसी किसी दौड़ में फंसे हैं जहां हम ऐसा ना कर पाए। हमने पहले भी अपनी मर्जी से रफ्तार कम की है और आगे भी करेंगे। हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाना चाहते और हमें लगता है कि सभी के लिए ऐसा करना जरूरी है जहां हम जरूरी तालमेल, मॉनिटरिंग और सुरक्षा की गारंटी ना दे पाए। सबसे पहले हमें ऐसे सीमित समझौतों से शुरुआत करनी चाहिए जिनका हर सदस्य समर्थन कर सके, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल हथियार बनाने या अपनी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए करने पर रोक लगाना। हमें ऐसे मूल्यांकन और सत्यापन के लिए सिस्टम बनाने चाहिए जो एआई के विकास के साथ साथ चले, ताकि देश फ्रंटियर मॉडल की क्षमताओं को समझ सके और एक दूसरे की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि कर सके। तीसरा, हमें एआई मॉडल के नियंत्रण होने और उनके गलत इस्तेमाल के जोखिमों की जांच के लिए आम वैश्विक मानक तय करने चाहिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एआई घटनाओं की सूचना देने वाले सिस्टम भी बनाने चाहिए। हमारा पक्का मानना है कि डर फैलाने वाली बातें इतनी बुनियादी और ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सही फैसले लेने या लोगों को अपने साथ जोड़ने का सही तरीका नहीं है। भले ही हम इस साइबर हमले का शिकार हुए, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा यकीन है कि एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद होगा और दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले की बड़ी टेक्नोलॉजी ने किया था। हम पर एआई से हमला हुआ, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि हमने एआई की मदद से ही अपना बचाव किया।
0: अब सवाल यह है कि एआई से इंसानों को किस तरह का खतरा हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मुख्य रूप से एआई दो तरह के हैं। पहला है एआई चैटबॉट, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इससे सवाल पूछते हैं, ये आपको जवाब देता है, आपका टास्क पूरा करता है। आप कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिख के दो, आप कहते हैं ये होमवर्क खत्म करके दो, टिकट बुक करा दो, तो ये आपका तरीका बताएगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं। दूसरा है एआई एजेंट, इसे आप कोई काम देते हैं तो ये आपको कुछ बताता नहीं बल्कि वो पूरा काम कर देता है। जैसे आपको टिकट बुक करना हो तो आप इसे अपनी जानकारी दीजिए, किसी भी तरह से आपको वो टिकट बुक करके देगा। असली खतरा इस एआई एजेंट से है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक एआई एजेंट ने सरकारी वेबसाइट को ही हैक कर लिया। यह जानकारी खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को दी है। ओपन एआई के इस एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से जुड़ी मेडिकेयर स्टेटिस्टिक्स डेटाबेस में सेंध लगा दी। इस एआई एजेंट ने डेटाबेस में अपनी सीमाओं को लांघते हुए संवेदनशील सेंसिटिव फाइल्स तक पहुंच बनाई, उसके डेटा में फेरबदल किया, नई फाइलें जोड़ दी। डर की असली वजह यह है कि इस एआई एजेंट को सरकारी अधिकारियों ने ही स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर रिसर्च का काम दिया था। अब आप खतरा समझ रहे हैं? आप ही एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एआई एजेंट आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसे कहीं आगे जाकर ऐसा काम कर रहा है जो सच और झूठ का फर्क मिटा देगा, फाइल में नई बातें जोड़ देगा, फाइल से नई पुरानी बातें हटा देगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसने खुद पर लगाए गए सारे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि एआई एजेंट पर सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसने तोड़ दिया। फिर इसके बाद उन हिस्सों तक पहुंच गया ये एआई एजेंट जहां उसे जाने से मना किया गया था। अब आप सोचिए कि ये एआई एजेंट इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने अपने लिए बनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। एक तरह से उसने इंसानों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं माना। अभी 2 महीने पहले OpenAI ने एक साइबर अटैक के बारे में दुनिया को बताया था जो उसके ही बनाए गए चैट जीपीटी एजेंट्स ने किया था। कंपनी का कहना था या उनके एआई एजेंट्स बागी हो गए थे। इन बागी एआई एजेंट्स ने बिना कमांड के कंपनी के सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया था। OpenAI ने अपने एआई एजेंट्स को साइबर सिक्योरिटी टेस्ट का काम दिया था। उन्हें एक अलग सिस्टम पर रखा गया। इस सिस्टम का इंटरनेट एक्सेस भी सीमित कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इन एआई एजेंट्स ने टास्क पूरा करने के लिए आपस में ही एक मैसेज बोर्ड बनाया, उससे बात करनी शुरू की, फिर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया। और इसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हगिंग फेस के सिस्टम को हैक कर लिया। हगिंग फेस ने तो इस हैकिंग को एआई एजेंट्स के द्वारा खुद से की गई हैकिंग कहा है। एंथ्रोपिक में भी ऐसा ही हुआ था। उनके एआई एजेंट्स ने भी साइबर सुरक्षा जांच के दौरान बिना कमांड दिए 3 कंपनीज के सिस्टम को हैक कर लिया। और हैरानी की बात यह थी कि एआई एजेंट्स को कहा गया था कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके बिना ही उसे सुरक्षा जांच करनी है। बावजूद इसके उन एआई एजेंट्स ने इंटरनेट एक्सेस हासिल किया, 3 कंपनीज के सिस्टम्स में घुस गया। मतलब काम पूरा करने के लिए उसने इंसान द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना। सिर्फ यही एक खतरा नहीं है बल्कि एआई का एक खतरा इसका गलत इस्तेमाल भी है। एंथ्रोपिक ने इसी महीने दावा किया कि येमेन के हूती विद्रोहियों ने उनके एआई एजेंट के जरिए हाईटेक हथियार, खतरनाक मिसाइल्स बनाने की कोशिश की। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये लोग हथियार बनाने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि उनका टेस्ट फेल हो गया था और कंपनी ने इन यूजर्स का एक्सेस बंद कर दिया। पिछले महीने साउथ कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जिनियंस ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप किमसुकी ने साइबर अटैक के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल किया। ये एआई एजेंट्स उनके लिए नॉनस्टॉप ऑटोमेटिक फिशिंग अटैक कर रहे हैं। हाल ही में चाइना के एक हैकर ने डीपसी, किमी और क्लॉड के एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके 5 दिन के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज पर ऑटोमेटिक साइबर अटैक किए, 6 लाख क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां चुरा ली। साइबर अटैक, हैकिंग और हथियार बनाने में एआई एजेंट्स की मदद लेना दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन एक खतरा इससे भी बड़ा है। दुनिया में कई लोग और समूह एआई से जैविक हथियार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कल्पना कीजिए, एंथ्रोपिक ने इसी महीने थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनके एआई मॉडल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में किया है। उसे डर है कि ये प्रयोग जैविक हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है। कंपनी के मुताबिक एक ग्रुप उनके एआई एजेंट्स को चिकनगुनिया वायरस को तेजी से फैलाने और इंसान के इम्यून सिस्टम को तोड़ने का काम दे रहा था। इसी तरह से एक यूजर उनके एआई एजेंट को बर्ड फ्लू वायरस के हवा में फैलने से जुड़े उसके गुणों के अध्ययन का काम दिया हुआ था। यानी मुमकिन है कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल ऐसे हथियार बनाने में कर रहे हो जिससे पूरी मानव जाति को खतरा। और इन्हीं खतरे के बारे में टेक कंपनीज के सीईओज ने यूएनएससी की बैठक में दुनिया को आगाह किया है। 11 साल बाद जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की सरजमीन पर स्टेट विजिट पर पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत ऐसा किया जैसा शायद ही किसी ग्लोबल लीडर का हुआ। लेकिन सवाल यह है कि रेड कार्पेट की इस भव्यता के पीछे हासिल क्या हुआ? क्या व्यापार, ताइवान, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे मोर्चों पर लगी आंच धीमी हुई, या फिर यह पूरी मुलाकात महज एक ऑप्टिक्स यानी तस्वीरों का खेल बनकर रह गई? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की आवभगत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? अमेरिका के नेशनल सिंबल बॉल्ड ईगल की एक शानदार कांस्य मूर्ति शी जिनपिंग को सौंपी गई जिसकी डिजाइन खुद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के सहयोग से तैयार की गई थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका की फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट का प्रतीक बताया। लेकिन कूटनीति के चश्मे से देखें तो आखिर शी जिनपिंग की इस खातिरदारी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के सीज फायर को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया जो कि नवंबर में खत्म होने वाला था, जिसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को चुनावी आर्थिक दबाव के बीच कुछ महीनों की राहत जरूर मिल गई। चाइना ने आधिकारिक तौर पर पिंगपिंग और फुशुआंग नाम के 2 विशाल पैंडा अटलांटा भेजने का ऐलान किया जिसे ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों और उद्योगपतियों को दिखाया कि वो चाइना को झुकाना ना सही लेकिन मेज पर लाकर अमेरिका की शर्तों पर बात कराने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस भव्यता के बावजूद शी जिनपिंग को वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे। चाइना उम्मीद ये कर रहा था कि ये ट्रेड पॉज कम से कम एक साल के लिए बढ़े ताकि शी जिनपिंग ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल तक सुकून की सांस ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और एडवांस चिप्स पर गतिरोध बरकरार रहा। ट्रंप ने शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रेड कार्पेट के इस भव्य स्वागत के पीछे की हकीकत भी उतनी ही चमकदार है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप शी जिनपिंग को सम्मान दे तो रहे हैं, लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीद रहे। आंकड़ों की जुबानी समझिए, साल 2018 में अमेरिका दुनिया से जितना सामान आयात करता था उसमें अकेले चाइना की हिस्सेदारी थी 21.2%। लेकिन जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि चाइना की यह हिस्सेदारी अब घटकर हो गई है 7.9%, यानी लगभग 8%, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच अमेरिका ने चाइना से सिर्फ $156.4 बिलियन का सामान खरीदा, जो 2018 के मुकाबले $296.5 बिलियन जो उस वक्त का था उसके मुकाबले करीब करीब आधा रह गया है। दूसरी ओर अमेरिका से चाइना को होने वाला निर्यात भी घट गया है और अब महज 4.5% पर आ गया है। जो व्यापार घाटा 2018 में $418.2 बिलियन का था, वो अब जानते हैं कितना, $165.1 बिलियन। तो अमेरिका ने इस पर काम किया, चाइना से सामान कम खरीद रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना ने अमेरिका आने वाले फोन्स और होम अप्लायंसेस में लगभग 39.1% की भारी गिरावट आई है, जबकि खिलौनों और स्पोर्ट्स गुड्स का निर्यात 37.1% घट गया है। इसके विपरीत अमेरिका अब चाइना को तकनीक बेच रहा है। 2025 में अमेरिका से चाइना जाने वाले सिविल एयरक्राफ्ट और स्पेयर पार्ट्स 37.3% बढ़कर $15.9 बिलियन पर पहुंच गए और सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का निर्यात वो भी लगभग 10.2% बढ़ा। वहीं दुनिया भर में चाइना का जो कुल ट्रेड सरप्लस है भले ही 3 गुना बढ़ गया हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस आधे से भी कम रह गया है। हालांकि मई 2025 में अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया था और ट्रेड वॉर पर ब्रेक लगाया। फिर भी बीते 14 में से 11 महीनों में अमेरिका की चाइना से खरीदारी लगातार घटी है। साफ है कि सिर्फ टैरिफ घटा देने से व्यापारिक रिश्ते पुराने दिन नहीं लौटा पा रहे। यानी रनवे पर गर्मजोशी से हाथ मिलाना, रेड कार्पेट बिछाना, लोट लोट कर कार्पेट को साफ करना अपनी जगह कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके बाजार का संदेश साफ है कि आयात के मोर्चे पर अमेरिका अब चाइना पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब आपको बेहद शांत दिखने वाले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठहाके जरा दिखाते हैं। आमतौर पर पोकर फेस यानी बहुत गंभीर माने जाते हैं संयमित दिखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्हें हंसाने वाले कोई और नहीं, खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ट्रंप शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम दिखा रहे थे। जब वो जो बाइडेन की जगह पहुंचे तो वहां बाइडेन की तस्वीर नहीं बल्कि ऑटो पेन की फोटो लगी थी। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, ये ऑटो पेन है, ये बाइडेन है। बस फिर क्या था, शी जिनपिंग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। जमुई में एक बेटी को सड़क पर घेर कर घिनौनी हरकत की जाती है। समस्तीपुर में सरेआम सड़क पर आबरू नीलाम की जाती है और अब बांका के मंदार पर्वत पर जो हुआ उसने साबित कर दिया है कि बिहार में बेटियों के लिए सड़क हो या पर्यटन स्थल, हर रास्ता खौफ की गवाही दे रहा है। और आज एक बार फिर हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये पूछ रहे हैं कि ये तमाम एक के बाद एक सामने आती घटनाएं क्या आपको जगाती नहीं है? आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब बिहार में लड़कियों के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए हैं, वो रात में भी कहीं आ जा सकती हैं। यही है वो सफाई, यही है वो सुरक्षा। सवाल यह है कि क्या बिहार की बेटियां अब अपने ही घर की चौखट लांघना बंद कर दें, घरों में बंद हो जाएं? ये मंदार पर्वत की ऐतिहासिक भूमि है जहां कभी आस्था सिर झुकाती थी, आज वहां दरिंदगी सिर उठा रही है। तस्वीरों में दिख रहे इन भेड़ियों को देखिए, अब्दुल्ला, नीतीश, विकास एक बेबस लड़की को रास्ते में रोकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, चप्पलों से पीटते हैं, जब मन इतने से भी नहीं भरा तो इससे ऑनलाइन 1500 रुपए की रंगदारी वसूलते हैं। ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा और कार्रवाई शुरू हुई।

0: जमुई से लेकर समस्तीपुर और अब बांका, हर बार एक ही कहानी। बेटियां बाहर निकलती हैं, झुंड में भेड़िए घेरते हैं, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हैं, आबरू से खेलते हैं, वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। क्या इन अपराधियों के लिए कानून मजाक बन चुका है? और वाकई मजाक है, क्योंकि पुलिस को कोई सुध नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। वो तो जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, चारों तरफ से वो घिरते हैं, तब जाकर होश में आते हैं और घर पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने। सोचिए उस बाप पर क्या गुजरती होगी जब उसकी बेटी घर से कॉलेज या घूमने के लिए निकले। सोचिए उस माँ का कलेजा कैसे कांपता होगा, उसकी बेटी 10 मिनट देर से घर पहुंचे कितना डर जाती होगी। आज बिहार में सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, वजूद का है। ऐसा लगता है कि कदम कदम पर हवस के भेड़िए घात लगाकर बैठे। पुलिस कहती है कि अब्दुल्ला, नीतीश, विकास को हिरासत में लिया गया है, SIT छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून का डंडा वारदात को रोक क्यों नहीं पा रहा है? गश्त लगाने वाली गाड़ियां उस वक्त कहां सोई होती हैं जब मंदार पर्वत जैसे खुले पर्यटन स्थल पर घंटों गुंडागर्दी चलती रहती है, वीडियो बनाया जाता है। चाहे बिहार का जमुई हो, समस्तीपुर हो या फिर राजधानी का कालकाजी, वारदात की जगहें बदलती हैं, लेकिन बेटियों के लिए खौफ का साया नहीं बदलता। दिल्ली के कालकाजी इलाके में 21 सितंबर को 17 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात हुई। ये घटना आस्था कुंज पार्क में हुई, दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। और इसी कॉलेज के पिछले गेट से सिर्फ 50 मीटर दूर पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस घटना ने लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के उस खौफ को जुबां पर ला दिया जिसका वो हर रोज कॉलेज आते जाते सामना करती है। इतनी असुरक्षित जगह पर है। सबसे कड़वी हकीकत यह है कि देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है महिलाओं का, लेडी श्रीराम कॉलेज, जहां देश की तमाम होनहार लड़कियां पढ़ने का सपना देखती हैं। उसी कॉलेज के बाहर आज छात्राओं के लिए कदम रखना मुश्किल हो गया है। नेहरू प्लेस, डिफेंस कॉलोनी, लोटस टेम्पल, लाजपत नगर, दिल्ली के पॉश इलाकों के बीच भी यहां पढ़ने वाली छात्राएं सुरक्षित नहीं है। कॉलेज में घुसने से पहले, कॉलेज से बाहर निकलते ही एक पूरा इलाका है जहां से वो कहती हैं कि ऑटो में आने वाले लड़के उनको खींचते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे वहां पर एक्शंस करते हैं। लड़कियों का सामना मंचलों की अश्लीलता, घिनौनी हरकतों से होता है। कैमरे पर छात्राओं ने जो खुलासे किए हैं, रोंगटे खड़े करने वाले, रास्ते में खड़े होकर सरेआम घिनौनी हरकत करने वाले मवाली, गाड़ियों में पीछा करते असामाजिकता, फप्तियां कसते गुंडे, ये LSR के बाहर का रोज का मंजर है। पास ही अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन मौजूद है, लेकिन खाकी की नाक के नीचे लड़कियों की इज्जत, उनकी सुरक्षा दांव पर लगती है और पुलिस जैसे सोती रहती है। यहां लड़कियां ग्रुप बनाकर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि अकेला कदम बढ़ते ही कोई ना कोई हैवान रास्ते में घात लगाए बैठे मिलता है। लेकिन मजाल है जो पुलिस वहां पर इनको सुरक्षा दे पाए, और इसीलिए तो इन लड़कियों को सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी है। आज उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज जोड़ रहे हैं, सुनिए वो क्या बता रही है।
1: आदमी पीछा करते हैं, कारों ने पीछा किया हुआ है, आदमी कैट कॉल करके जाते हैं, सीटिया बजा के जाते हैं, उसके बाद आगे की तो वेट कर रहे होते हैं, खुले में आपकी आंखों में देख के वो कर रहे होते हैं, और ग्रोप छूने की कोशिश करते हैं, छूते भी हैं, कुछ पीछे पड़ जाते हैं।
2: सी, हम साउथ दिल्ली में, दिस इज सपोज्ड टू बी अ सेफ लोकेलिटी, एंड व्हाई इज इट शुडंट बी दैट एनी स्पेस इज अनसेफ फॉर वुमेन? नो, एवरी स्पेस इज सपोज्ड टू बी सेफ, सो दैट्स अ सिस्टमिक फेलियर, सो आई फील लाइक इट्स द बेयर मिनिमम।
3: You see, look at their faces are covered because they don't want to be seen by the administration because you don't know what they'll do. So this is, you know, this is very disappointing, and I am paying a premium price to live in this area, to live in Amar Colony, and rapists are roaming around here in this area behind our college. Women get flashed every day. There are cases, and then there will be a message circulating in the groups that be careful, leave in groups, and then that's it.
0: पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग, और हमारे देश में चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली एक एजेंसी नहीं है। भारत के लोकतंत्र में करोड़ों लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास है चुनाव आयोग को, उस विश्वास का सबसे बड़ा कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। और इसीलिए आज जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, इस्तीफा तो दूर, अब गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तब हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, और जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। उससे पहले आप कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग की गई है। इनमें भी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनकर उन्हें देशद्रोही बताया। जबकि लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, गुवाहाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की अगुवाई में पैदल मार्च निकाले गए। इसके अलावा शिमला में प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के ऑफिस बोर्ड पर कालिख पोत दी है, जबकि लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और पटना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि इन सभी विरोध प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार कांग्रेस के निशाने पर रहे। कुछ शहरों में उनके पुतले जलाए गए, जबकि कुछ शहरों में 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए,
4: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
0: इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी खबरें भी आई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में अपने दो कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल होने वाले थे। इनमें पहला कार्यक्रम मेरठ में आज यानी 25 सितंबर को और दूसरा कार्यक्रम वाराणसी में 28 सितंबर को होना था, और कांग्रेस नेताओं का ऐसा दावा है कि विरोध के डर से ज्ञानेश कुमार ने खुद इन कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये दोनों कार्यक्रम 21 सितंबर को ही स्थगित किए गए थे और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ विवाद क्या है वो भी समझिए। ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा उसने वोटर लिस्ट के रिविजन को बनाया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहते हैं, यानी SIR, आपने भी सुना होगा। ये वही रिविजन है जिसके तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं और विपक्षी दलों ने इस पर बार बार सवाल उठाए। इसी साल 12 मार्च को कुछ विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी और उनका आरोप था कि ज्ञानेश कुमार SIR के जरिए वोटर्स का नाम काटकर चुनावों में बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस वक्त 6 अप्रैल को लोकसभा में यह प्रस्ताव स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया था और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने SIR के इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कभी नहीं छोड़ा और इस पर उसकी तरफ से लगातार चर्चाएं चलती रही। और अब जब इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए तो विपक्ष को यह साबित करने का मौका मिला कि वो जो सवाल उठा रहा था वो सवाल गलत नहीं थे। अब द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, सरलता से आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग में लगभग सभी बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद ले रहे थे, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। कानून कहता है कि चुनाव में जो शीर्ष 3 सदस्य होंगे उन्हें सभी फैसले सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से लेने होंगे, या तो तीनों एक तरफ हों या फिर कम से कम 2 लोग फैसले के समर्थन में हों। अगर फिर भी सदस्यों में मतभेद है तो जैसा हमने आपको बताया 2 out of 3, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। लेकिन कोई सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त खुद अपनी मर्जी से सिर्फ एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कम से कम 14 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में ज्ञानेश कुमार ने बाकी 2 आयुक्तों की असहमति को शामिल ही नहीं किया। ये 2 आयुक्त थे सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी, जिनकी तस्वीर आप उनके साथ देख रहे हैं। दावा है कि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर 14 आपत्तियां लिखकर दी, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपने अंतिम फैसले में उन्हें शामिल ही नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आयुक्तों को कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिखना पड़ा, लेकिन तब भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि बीजेपी का इस पर दावा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी गई चिट्ठियां या फिर जो भी इन्होंने आपत्तियां जताई थी उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। यानी यहां से अगर आप देखिए तो विपक्ष जो आरोप लगातार लगा रहा है, विपक्षी नेताओं का तो ये कहने का मौका उनको मिल ही गया कि चुनाव आयोग के अपने ही आयुक्त SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जियां चला रहे थे। दूसरा दावा इस रिपोर्ट में यह है कि चुनाव आयोग के अंदर मतभेद इस कदर बढ़ चुके थे कि 9 सितंबर 2026 को हुई बैठक से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच पिछले 4 महीने में एक भी संयुक्त बैठक नहीं हुई थी। यानी ये तीनों एक साथ जो फुल कमीशन की बैठक होती है वो 4 महीने से नहीं हुई थी। और इस पर भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने खुद को चुनाव आयोग का अल्टीमेट बॉस समझ लिया था। अब ये देखिए कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई और ज्ञानेश कुमार ने अपने फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया। इनमें पहला मुद्दा है फॉर्म 6 में बदलाव का। जब कोई नया वोटर मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम जुड़वाता है तब उसे ये फॉर्म भरना होता है। पहले इस फॉर्म में नए वोटर से ये नहीं पूछा जाता था कि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट या SIR की सूची में था या नहीं, लेकिन पिछले साल इस सवाल को भी फॉर्म में एक एनेक्शर के जरिए, एक एडिशनल पेपर के जरिए ये बात भी अब पूछी जा रही है। जब ये फैसला हुआ तब दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस पर लिखित आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि फॉर्म 6 को इस तरह बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई भी नया पेपर नहीं जोड़ा जा सकता, इसके लिए पहले सरकार को नियम बदलना पड़ेगा, सरकार कानून में बदलाव करे फिर ये हो सकता है। उनके साथ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने भी विरोध जताया, लेकिन उनके विरोध के बावजूद ये सवाल फॉर्म में एक एनेक्शर के जरिए डाला गया और 21 सितंबर तक इसे हटाया नहीं गया था। दूसरा बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि वोटर लिस्ट का कंट्रोल स्थानीय अधिकारियों के पास रहे या सीधे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रहे। जैसे पहले स्थानीय अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं, जैसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं ERO, वो किसी भी वोटर की जांच कर सकता था। मतलब वोटर का नाम ऐड करना है या निकालना है ये उसका काम था। अगर उसे लगता था कि उस वोटर का पता सही है, उसने जो जानकारी बताई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो अपने स्तर पर कंप्यूटर में उस वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता था, घटा सकता था। और इस व्यवस्था में दिल्ली में बैठे बड़े अफसरों का सीधा दखल होता ही नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में आरोपों के मुताबिक ये व्यवस्था बदली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जो IT विभाग में नया सॉफ्टवेयर ECINET बनाया, जिसको डिजिटल बैकबोन चुनाव आयोग का बना दिया गया, कई पोर्टल्स 40 के आसपास पोर्टल्स को खत्म करके, और अब स्थानीय अधिकारी सिर्फ नाम का सुझाव दे सकता था। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ECINET में अब जो स्टेट में जो लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे बताया जा रहा है, आरोप है कि वो जो पहले फैसले ले रहे थे वो अब नहीं ले सकते थे, लेकिन अंतिम बटन या अप्रूवल दिल्ली से होता था। और इस बदलाव का भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने लिखित विरोध किया था, लेकिन आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। अब इससे हुआ ये कि गोवा में जिन मतदाताओं को स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने सही पाया उनके नाम भी दिल्ली में बैठे अफसरों ने वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। और आरोप यही है कि गोवा से बार बार उन 97 वोटर्स के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके उनको नहीं जोड़ा गया। तीसरा आरोप पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं को लेकर था जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। और यहां भी दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इन फैसलों को लागू किया गया। और आखिर बड़ा विवाद तब हुआ जब जुलाई के अंत में चुनाव आयोग के अंदर प्रशासनिक काम के बंटवारे को लेकर आदेश जारी किया गया और उसे दोनों आयुक्तों ने खारिज कर दिया और ये कहा कि इसके जरिए चुनाव आयोग को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि विपक्षी दल पहले से ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे थे, इसलिए इस रिपोर्ट के आते ही नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और गिरफ्तारी दोनों चाहिए। इसी के साथ साथ देश भर में विरोध की बात कांग्रेस जनता पार्टी भी कर रही है और उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें पहले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने ये कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह बढ़ना ठीक नहीं, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि एसआईआर और ईवीएम से जुड़े विवाद को लेकर जनता में भ्रम है, इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी चुनाव आयोग से सवालों और का जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, ताकि उस पर जनता का भरोसा मजबूत रहे। सुनिए।
5: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
6: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
7: चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है, चुनाव को हाईजैक किया है, वोट चोरी की है, सब कुछ किया है। एसआईआर का जो मुद्दा सामने आया है वो क्या है?
8: हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी।
9: आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
9: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
10: एक दो, एक श्राम।

0: हूँ।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर के स्थिति स्पष्ट की। एसआईआर के बारे में पहले से ही इस बात के डायरेक्शन दिए गए कि छूटे हुए जो भी मतदाता हैं उनको फॉर्म भरने की पूरी छूट है। फॉर्म 6 को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उचित ठहराया, लेकिन उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करके दुनिया के अंदर भारत की बदनामी कराना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की कुत्सित चेष्टा करना, ये कांग्रेस का ये कृत्य अत्यंत हैरान करने वाला है।
3: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।

बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वॉर के बीच में राहुल का भी हमला, प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पर बोला हमला। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आज शाम फिर पत्थरबाजी। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान, अयोध्या गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली और बिहार में हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ हुई अपराध की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हर बार की तरह इस बार भी इस तरह की कोई घटना होती है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वादे किए जाते हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन वादे सिर्फ दावे साबित होते हैं और एक नई घटना सामने आ जाती है। दिल्ली में कालकाजी, स्वरूप नगर, मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर बलात्कार और हत्याएं होती हैं, तो बिहार में जमुई में सरेआम एक लड़की के साथ हुई बदसलूकी, फिर समस्तीपुर में भी वैसा ही एक वाक्या। बात केवल दिल्ली या बिहार की भी नहीं है, पूरे देश की है। आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध का सिलसिला कैसे थमेगा, सुधार कैसे होगा और जवाबदेही कैसे तय होगी।

0: ऑफिशियल कह रहे हैं कि आप पेपर स्प्रे लेकर चलिए, तो हम तो पुलिस पर्सन से कहना चाहते हैं बंदूकें भी अपने हमें दे दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है।
1: कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है।
0: सेम फील नहीं होता कि हाँ सबसे बात करे या फिर कोई भी छेड़ ना ले, हम लोगों को कुछ बोल ना ले, ये डर हमेशा रहता है।
2: ये जो पकड़े गए हैं इनसे पूछा जाए कि ये इतनी डेयर डेविलरी क्राइम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इनको पता है, विश्वास है कि पुलिस नहीं आएगी।
3: सरकार कुछ कर ही नहीं है गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर, वो तो हमें चाहिए। हमारे कॉलेज के बाहर पिंक बूथ तो है लेकिन वहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता वहाँ पे, वो हमेशा खाली पड़ा जाता है।
4: रात हो रही है या फोन स्विच ऑफ है तो ये हमेशा स्थिति रहती है कि हम लोग सेफ हैं कि नहीं।
5: कोई लड़की अगर इनके यहाँ चली जाए कि मोहल्ले के दो गुंडे उसको छेड़छाड़ करते हैं तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक उसका बलात्कार नहीं हो जाएगा तब तक ये इंतजार करेंगे।
6: पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो कहते हैं ऐसा कह रहा है कि आशिक इश्क भूल गए। यहाँ तो आशिकों को और भी ज्यादा याददाश्त उनकी तेज हो रही है जो मनमाने तरीके से ये अपराध कर रहे हैं।
7: दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हमारी महिला है कि इस पे वो क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, और अभी तक उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है।
8: हम दिल्ली की बेटियां हैं, हमने निर्भया देखा है और आज निर्भया फिर से हुआ है 16 साल की बच्ची के साथ।
9: महिलाओं की सुरक्षा की आज भी अगर वही स्थिति है तो आपने क्या किया है हमारे लिए?
10: 5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 10 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, उम्र सुरक्षित नहीं है।
11: मैक्सिमम 7 दिन में 8 दिन में 10 रुपए कस्टडी करिए, पूरी की पूरी सुविधा उस महिला को दीजिए, उसको लगे रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिले।
12: कानून को सख्त बनाने से अपराध रुकता नहीं है, अपराध को रोकने के लिए बहुत सीरियस और बहुत लंबे और बहुत तन्मयता के साथ प्रयास करने

दिल्ली, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं सुनसान जगह पर लड़की को निशाना बनाया गया, कहीं सीसीटीवी और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे, कहीं अपराध के बाद सिस्टम की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे लगभग 51 FIR दर्ज की गई। दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर सबसे अधिक 144.4% थी। दिल्ली में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,247 मामले दर्ज किए गए।

0: बाजार का इलाका है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ।
1: आए दिन दिल्ली के अंदर रेप की घटनाएं आम होती हैं।
2: इनको तीन लोग जो है इनको मिलते हैं जो अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं और जो बच्ची है उसके साथ पारिवारिक से रेप करते हैं, ये कंप्लेंट बच्ची की तरफ से मिलती है।
3: इस प्रकार की घटनाओं की अनदेखी नहीं होती।
4: बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करते, दिल्ली जैसे राजधानी शहर में हम रहते हैं
5: तो हम तो पुलिस पर्सन से कहना चाहते हैं बंदूकें भी अपने हमें दे दीजिए क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है।
4: ये जो लोग जिनके पास पावर है ये वही सही कर सकते हैं और जनता से भी यही रिक्वेस्ट है कि लड़कों का माइंडसेट बदलने में हम सबका बहुत बड़ा हाथ है तो मुंह फेरना बंद करें और आवाज उठाना शुरू करें।
6: एनकाउंटर में आसिफ नाम का एक आरोपी, रेप का एक आरोपी घायल हुआ है।
7: आई थिंक ये मैसेज आ रहा है पुलिसिंग को कि रीजन क्या है हम बार बार ये लोग ऐसे हरकतें करते हैं।
8: मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सिर्फ मॉरल अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए।
9: सितंबर की शुरुआत से अब तक दिल्ली एनसीआर में 13 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, 13 मामले, वो भी देश की राजधानी में। चकाचौंध वाली दिल्ली के अंधेरे कोनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक घिनौना सच जिंदा है। दिल्ली एनसीआर के अंदर जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2 सितंबर गुरुग्राम, 61 साल के एक आदमी पर 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप। 2 सितंबर गाजियाबाद, 2 नाबालिगों से ट्वानिका सिटी में गैंग रेप। 3 सितंबर गाजियाबाद, नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग से गैंग रेप। 6 सितंबर दिल्ली, युवती को नशीला पदार्थ देकर रेप, वीडियो सामने आने के बाद शिकायत। 10 सितंबर रनहौला, 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल कैब ड्राइवर ने यौन शोषण किया। 10 सितंबर निहाल विहार, 7 साल के बच्चे से पड़ोसी द्वारा यौन शोषण। 10 सितंबर स्वरूप नगर, 12 साल की बच्ची का 33 वर्षीय रिश्तेदार ने रेप किया। 10 सितंबर नरेला, 13 साल की छात्रा के कथित अपहरण और रेप का मामला। 12 सितंबर स्वरूप नगर, 16 साल की लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या, 4 लोगों पर आरोप। 14 सितंबर स्वरूप नगर, 9 साल की बच्ची के अपहरण और रेप के आरोप में 40 वर्षीय पड़ोसी गिरफ्तार। 16 सितंबर सदर बाजार, 10 साल की बच्ची से दुकान में दुष्कर्म, 56 वर्षीय दर्जी गिरफ्तार। 21 सितंबर कालकाजी, आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से 3 लोगों ने रेप किया, आरोपियों पर पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम देने का आरोप।
5: तो हम तो पुलिस पर्सन से कहना चाहते हैं बंदूकें भी अपने हमें दे दीजिए क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि LSR और ना जाने तमाम कितने कॉलेजेस हैं जिनके आसपास लाइटिंग नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, PCR वैन्स नहीं है, हैं तो वो कोई काम नहीं कर रही है। न्यूयॉर्क पर कहीं लड़कियों को कंझावाला के आसपास सड़क पर घिस्टा घिस्टा कर उनकी जान चली जाती है। कहीं इसी देश में हम देखते हैं पिछले साल यहाँ सिग्नेचर ब्रिज के पास एक लड़की नॉर्थ ईस्ट से स्नेहा देवनाथ मिसिंग हो जाती है। 60 CCTV कैमराज, ऑल 60 वर फाउंड नॉन फंक्शनल।
10: देश की मर्द हमारे औरतों को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करवा पा रही है?
11: जी दीदी, ये बहुत दुखद स्थिति है। जिस देश में जो है हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कर्म फल निष्फल हो जाते हैं। वहाँ पर ये जो चलते फिरते रेपिस्ट पैदा हो रहे हैं वो बहुत दुखदायी है और इसके प्रति जो है सरकार और प्रशासन को ऐसा दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए जिससे रूह कांप जाए।
9: एक महीने में रेप की 13 घटनाएं, देश की राजधानी दिल्ली के अंधेरों में अंधेर मचा है। पुलिस है लेकिन पुलिसिंग कहां है? CCTV है लेकिन मॉनिटरिंग कहां है? हेल्पलाइन है लेकिन हेल्प कहां है? जिम्मेदार है लेकिन जिम्मेदारी कहां है?
12: हमारे साथ इस समय जुड़ रही है पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी जी। मैम, दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं उनको कैसे देखें? मतलब लड़कियों पर अंकुश की बात हमेशा होती है लेकिन असल समस्या कहाँ है?
13: हम पुलिस से शुरू कर रहे हैं और पुलिस तक ही खत्म कर रहे हैं। गलती यहां है। पुलिस से पहले की भी कहानी है, पुलिस के बाद की भी कहानी। और ये पहली बार इंसिडेंट नहीं है, ये होते रहे और ये होते गए, होते जाएंगे। आप और मैं परेशान होते रहेंगे अपनी बेटियों के लिए और हम बेटियों को काबू करने में लगे। बेटियों को कह रहे हैं सुरक्षित रहो, समझदारी से जाना, बाहर अकेले मत जाना, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे। हम दोषी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। और दोषी कौन है? हमारे बेटे, हमारे पुत्र, हमारे आदमी, हमारे लोग।
12: क्या आपको पुलिसिंग में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कहीं समझ में आते हैं जो होने चाहिए?
13: मैं ये करूं, नंबर वन, ये समाज की जिम्मेवारी है, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम इफेक्टिव सेक्स ऑफेंडर के लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो इनको हथकड़ी ऐसे लगाओ, पांव में कड़ी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद आपने एक बार सेक्स ऑफेंडिंग की तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पांव में लग जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे पता चल जाएगा कहां जा रहे हैं। ये लोग बार बार इस पार्क में आ रहे थे और शायद ये हरकतें कर चुके थे जिनकी रिपोर्टें नहीं हुई हैं।
12: निर्भया के मामले के बाद मैम ये तय किया गया था कि कहीं भी डार्क स्पॉट्स शहर में नहीं रहेंगे, डार्क जोन्स नहीं रहेंगे, और एक बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति के जो उस स्ट्रेच ऑफ रोड पे गुजर रहा होता है। तो इन जोन्स की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि इनको नए सिरे से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है?
13: सेफ्टी की एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेफ्टी की, उसमें सड़कें भी सेफ, पार्क्स भी, उसमें डीडीए पार्क्स है, उसमें डेसू है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डेसू है, उसके लिए सड़कें, सो देयर इज अ म्युनिसिपल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज वी कैन नीड टू वर्क टुगेदर। जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आज एक बस में जहां आग लगी, एक बस के 70 चलान है, किसकी जिम्मेवारी? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नहीं जिम्मेवारी कि उसको सस्पेंड करे ऐसी बस को? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि उस चलानों को भूरे? ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है ऐसी गाड़ियों को रिकॉल करे? सी, ये इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स, इंटरकनेक्शन हमारा मिसिंग है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंटरकनेक्टेड नहीं है। और सुरक्षा की बात नहीं करता, वो सोचता अपना ही मैं देख लूं, पार्क देख लूं, उसके चौकीदार कहाँ है, उनके कैमराज विजिट कहाँ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टेड नहीं है। एक शहर से, दिल्ली से अगर गुड़गांव जा रहे हैं तो आप कैसे, आपका सेल चेंज हो रहा है, आपका मैसेज चेंज हो रहा है, क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी को इंटरकनेक्ट करें ड्रोन से? हमारी ड्रोन से तो वो सड़क एक ही है, आप गुड़गांव में बाद में हो जाओगे, तो ड्रोन और टेक्नोलॉजी यूज करें। हमको ऐसे सोल्यूशंस ढूंढते रहना पड़े, वो तो ही अगर हर हफ्ते या 15 दिन के बाद ये डिपार्टमेंट मिलके काम करें।
9: घर से बाहर निकलना मुश्किल, बसों में सफर करना मुश्किल, स्कूल कॉलेजों में जाना मुश्किल, अकेले जाना मुश्किल, शाम से पहले घर आना, घर के आदमियों के साथ जाना, क्या महिलाओं के लिए यही सुरक्षित दिल्ली की पहचान?
14: जो लोग लीड कर रहे होते हैं, जो लोग पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो हमेशा विक्टिम शेमिंग करते हैं, हमेशा औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ब्लेम औरतों के ऊपर ही डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज का माइंडसेट है या नजरिया है वो इसी तरीके से होता है कि वो जो मर्जी करे औरतों को हमेशा कंट्रोल कर पाए। और शायद ये जो हादसे हम देखते आ रहे हैं ये उनका तरीका है कि वो औरतों को बताए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, एक दो दिन की खबर बनती है और उसके बाद फिर से ऐसे बयान आते हैं बड़े बड़े लोगों से, तो कहीं ना कहीं डर समाज में नहीं बैठता है।
9: दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7400 मामले दर्ज हुए थे, 2023 में ये संख्या बढ़कर 7731 हुई और 2024 में 7662 मामले दर्ज किए गए। बात करें रेप के मामलों की तो 2022 में दिल्ली में 1204 रेप के मामले दर्ज हुए थे, 2023 में ये संख्या घटकर 1088 हुई और 2024 में 1058 पर आ गई। हालांकि सवाल सिर्फ अपराध की संख्या का नहीं, न्याय की रफ्तार और दोष सिद्धि का भी है। 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली की कन्विक्शन रेट और कोर्ट डिस्पोजल के आंकड़े भी इस तस्वीर का अहम हिस्सा है। 2024 में रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट 27.6%, 2025 में 30.2% और 2026 में 32.0% दोष सिद्धि की दर रही। दिल्ली जैसे शहर में जहां जागरूक जनता है, मीडिया है, पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें हैं, वहां अगर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे तो छोटे शहरों के बारे में बात करना भी मुश्किल है।
12: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा एक गंभीर तस्वीर सामने रखता है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 20,222 मामले दर्ज हुए थे। महिलाओं की किडनैपिंग के 4,941 मामले 2023 में दर्ज हुए, जो देश में उस समय सबसे ज्यादा थे। इन आंकड़ों के बीच बिहार से हाल के दिनों में नाबालिग लड़कियों के साथ अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। आखिर बिहार में बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून, पुलिस, समाज, इन तीनों के स्तर पर कहां कमी रह रही है?
15: पहले जमुई की घटना ने बिहार को शर्मसार किया और उसके बाद अब समस्तीपुर से लगभग वैसा ही मामला सामने आया।
16: एक जो चिंता रहता है सुशासन, अपराधी अपराधी होता है। हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी।
17: चंगल राज का खौफ दिखाकर सत्ता में वापसी तो हो गई, मगर लगता है वारदातों ने सत्ता परिवर्तन की खबर नहीं सुनी, कानून के डर के इश्तिहार नहीं पढ़े। कुशासन के प्रहार और सुशासन के वादे लौटे जरूर, मगर आधी आबादी से पूछा जाए तो सवाल अब भी वही है, आजादी आखिर सरकारी विज्ञापन पर है या सड़क पर भी?
18: वो जो लड़की है बोली है कि हम फोटो खिंचवाने या फिर हम फ्रेंड के साथ वीडियो बनाने या कुछ भी करने आई है, हमको रास्ता में रोका है। तो आपको लगता है कि किसी को भी बाइक से या स्कूटी से जाएंगे किसी को रोकते हैं अचानक से? है किसी में हिम्मत इतना? और लड़की वालों का माँ बाप को अगर इतना ही पता था कि मेरा बेटी उधर कोचिंग करने गई है, बोला है ना सबको कि कोचिंग करने गया इसीलिए लड़की को वहाँ छेड़छाड़ किया, युवक है युवती है तो उसको छेड़छाड़ पहाड़ पे क्या करने गई?
17: कहा तो तय था अराजकता करने वालों पर बुलडोजर चलेगा और यहाँ कानून व्यवस्था पर ही संकट है।
19: सर बहुत गलत है और हम लोग बहुत उससे का आतंक से भयभीत है, क्योंकि मेरा जम्मू जिला से ही 90% काम होता है सर, सिर्फ जमीन का रजिस्ट्री लखीसराय में होता है और हम लोग दिन रात इस रास्ते से चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब वो लोग गलत प्रवृत्ति का लोग है सर, कभी भी घटना कर सकता है।
20: यहाँ का माहौल तो खराब रखना है कि लड़की लोग पढ़ना बंद कर दिया, समझ गए? सीधे सीधे जैसे कोई हाथ पकड़ लेता है, किसी को बाल पकड़ लेता है, माँ बाप बगल में जो संत है उसी को बगल में लुका हुआ रहता है, समझ गए? महुआ का स्थान अब सबको रोक दिया है।
17: सवाल सिर्फ जमुई कांड का नहीं है, सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति में ये घटना व्यवस्था की बदहाली का आईना है या फिर उस बदलाव के वादे की तस्वीर, जिसकी फ्रेमिंग तो खूब हुई मगर तस्वीर अब भी अधूरी है।
21: पूरे देश भर में बिहार सरकार की थूथू हो रही है। यही सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया था कि यहां से चले जाइए मुंगेर, अगर कोई कुछ हो जाए, किसी को हाथ लगा दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आज बिहार में ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बच्चियां सुरक्षित पूरे बिहार में नहीं है।
17: सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो 19 सितंबर 2026 की शाम मड़वा गांव के पहाड़ी इलाके के पास का है। लड़की और उसके दोस्त के साथ नंदन यादव और उसके साथ ही बदसलूकी करते हैं। गांव को जाती जिस सड़क पर नंदन यादव और उसके साथी अपने बाहुबल का हुनर दिखा रहे थे, चबरन लड़की को उठा लेने की कोशिश कर रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे, शायद उनको मालूम था कि जिस तथाकथित सुशासन वाले राज्य के विकास पथ पर खड़े होकर वो इस कांड को अंजाम दे रही है, वहाँ कानून व्यवस्था की हालत क्या है?
21: चाहे दिन हो, रात हो, घर हो या सड़क हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, आज बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो दे इस्तीफा अगर हिम्मत है तो।
22: I saw that. It's horrible and crimes against, I didn't understand you asking about crimes against women. No, crimes against women are just increasing. It's become unsafe for women. It was always unsafe, but it's become more and more increasingly violent towards women.
23: बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, जरा अपने एलआई उनके जो लालू प्रसाद जी हैं उनसे पूछे कि उनके शासन काल में सूर्यास्त के बाद कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी।
16: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
17: आजादी के बाद से हर चुनाव में महिला सुरक्षा बिहार ही नहीं देश के हर राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। लेकिन सवाल यह है कि उस प्राथमिकता का ही क्या जिसकी जवाबदेही ना हो। ऐसा कहने के पीछे वो आंकड़े हैं जो बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ग्राफ को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध के मामले 2022 में 20,222 थे, जो 2023 में बढ़कर 22,952 और 2024 में 27,359 हो गए। यानी दो साल में दर्ज मामलों में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई। रेप के मामले भी 2022 में 881 से बढ़कर 2024 में 1165 हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
12: इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस समय बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जुड़ रहे हैं। अभयानंद जी, जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जमुई से, समस्तीपुर से, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या चुनौतियां पुलिस के सामने हैं, कानून के सामने हैं, जिन पर काम करने की अभी जरूरत है?
0: बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं अभी और जिससे लोग विचलित हो रहे हैं, वो स्पष्ट दिख रहा है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो ढंग से काम नहीं कर रही है।
12: सर, कभी भी किसी भी अपराध को लेकर जब कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो आप कार्रवाई करें, दूसरा कि कन्विक्शन भी हो उसमें। तो महिला अपराध के मामले में इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को कैसे सुधारा जा सकता है?
0: इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके ही सुधरती है। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ज़्यादा साक्ष्य बयान पर आधारित हुआ करते थे। मेरी अपनी समझ है कि अब ज़्यादा साक्ष्य अगर साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक हो, तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगा। अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बात पुलिस पदाधिकारियों को समझ में आनी चाहिए कि उनका काम घटनास्थल पर जाना, घटनास्थल का निरीक्षण करना, बढ़िया एविडेंस कलेक्ट करना, साइंटिफिकली कलेक्ट करना एविडेंस को, और तब उसको कोर्ट में कानूनी तरीके से पेश करना।
17: सवाल सिर्फ अपराध दर्ज होने का नहीं बल्कि न्याय कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से मिल रहा है इसका भी है। आंकड़ों में बिहार की महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोर्ट डिस्पोजल के आधार पर कन्विक्शन रेट 2022 में 60.9%, 2023 में 56.3% और 2024 में 36.4% रहा। ऐसे में सरकार और पुलिस के सामने चुनौती साफ है। अपराध की रोकथाम, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई, जांच की गुणवत्ता और मामले के तेजी से निपटारे पर लगातार काम करना। हालांकि केवल दर्ज मामलों की संख्या से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वास्तविक अपराध उतने ही दर से बढ़े हैं, क्योंकि FIR दर्ज होने और रिपोर्टिंग के स्तर में भी बदलाव आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है बल्कि उस समाज से भी है जो विकास के प्रचार पर जाति के नाम पर और बिरादरी हित के लिए वोट करता हो और अपराधियों की जाति में भी गौरव और हमदर्दी देखता हो।
12: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने हुए हैं इसी खबर पर। आपको पूरे देश का हाल दिखाएंगे, रियलिटी चेक करेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
24: जीके मैक्स।
25: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
24: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
26: जेके वॉल मैक्स
24: बेस्ट पेंट,
26: जेके मैक्स।
24: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: आगे आगे।
5: अरे उधर उधर गया।
4: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार।
9: बारह मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
9: है। अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है,
10: पर स्टेज नहीं हिलता।
9: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: ओ नादान परिंदे, बैठ
9: बैठ जा, बैठ जा।
11: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: दीवार एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
7: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर
8: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
9: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
10: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
11: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
8: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
12: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
13: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूं कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर
8: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
14: कि चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, चुनाव के दिन तक वोट बढ़ाए जाते हैं और घटाए जाते हैं। ये जिम्मेदारी चुनाव लड़ने वालों की भी होती है कि हमारा वोट न कटे और दूसरे का फर्जी वोट न बढ़े। तो इस पर आप आरोप न लगा सकें, इतना दिमाग न लगा सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक SIR का बहाना था, उसके मूल में था विपक्ष के वोटों को कम करना।
15: ECI में कहीं कोई दुविधा नहीं है, केवल विपक्ष पवंडर मचा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ECI में कोई मतभेद है, कोई दुविधा है। सब लोग मिलकर विचार विमर्श करके ही निर्णय करते हैं। निर्णय करने से पहले अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं, तीन लोग हैं तो तीनों के अलग मत हो सकते हैं, पर निर्णय की प्रक्रिया में पहुंचते तक सर्वसम्मति से निर्णय होता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके सोशल मीडिया वॉर के बीच में राहुल का भी हमला, प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पर बोला हमला। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आज शाम फिर पत्थरबाजी। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान, अयोध्या गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

0: महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका सबसे अहम है, लेकिन क्या हमारी पुलिस उस भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरती है? कहीं शिकायत दर्ज कराने में दिक्कत, कहीं रिस्पॉन्स टाइम पर सवाल, तो कहीं महिला पुलिसकर्मियों की कमी, चुनौतियां कई हैं। दिक्कत यह है कि पुलिसिंग केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि अपराध के होने से पहले उसे रोकने पर भी उतना ही जोर हो।
1: महिलाओं के खिलाफ सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब किसी महिला के साथ अपराध होता है तो पुलिस कितनी जल्दी पहुंचती है, FIR कितनी जल्दी दर्ज होती है, जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी कितनी है, क्योंकि महिला सुरक्षा की पहली कड़ी है पुलिस। महिलाओं के खिलाफ अपराध ना हो उसके लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे, पुलिस प्रभावी ढंग से काम करे, सिर्फ अपराध होने के बाद आरोपी का एनकाउंटर करके वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि अपराध न होने पाए इसके भी इंतजाम किए जाएं। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है उसको दो पहलुओं पर खरा उतरना होगा। पहला, अपराधियों में पुलिस का डर हो। दूसरा, पीड़ितों में पुलिस पर भरोसा हो। बिहार में जिस तरह से अपराधियों ने खुलेआम अपराध को अंजाम दिया और फिर पीड़ित का वीडियो बनाकर वायरल किया, उससे साफ है कि अपराधियों में पुलिसिया एक्शन का डर खत्म है।
2: जो मनबढ़ हैं और जो इस तरीके के अपराधी हैं उनके ऊपर पुलिस का वांछित दबाव का न होना, और मनबढ़ होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो न सिर्फ उन्होंने ये पार्श्विक कृत्य किया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाया, उसकी रील भी बनाया, सोशल मीडिया पे भी डाला। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस का वांछित दबाव का अभाव और इनको चिन्हित करके इनको दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं हुआ और ये मनबढ़ हो गए। वरना पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो कहते हैं ऐसा कह रहा है कि आशिक इश्क भूल गए। यहां तो आशिकों को और भी ज्यादा याददाश्त उनकी तेज हो रही है जो मनमाने तरीके से ये अपराध कर रहे हैं।
1: इसके बाद आता है पीड़ित पक्ष, जिसको पहले तो लगता है कि शिकायत कैसे की जाए, जैसे तैसे FIR हुई तो फिर जांच निष्पक्ष होगी या नहीं ये सवाल होता है।
2: सारे सबूतों का संकलन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान कराना, शपथ पत्र ले लेना और सारे साक्ष्यों को संकलित करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में, हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज अपराध है, डाल करके 30 दिन में सजा करा लीजिए। आप देखेंगे परिणाम सकारात्मक आएगा और उसकी अधिक से अधिक पब्लिसिटी कराएं।
1: बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या पुलिस कर्मियों की जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं?
2: बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पुलिसकर्मी की जवाबदेही नहीं होगी तो क्या बच्ची के माता पिता की होगी? जैसा लोग कह रहे हैं कि पहनावा ओढ़ावा लेकर के ये सब घटनाएं होती हैं, पुलिस की जवाबदेही हमेशा थी, है और सदैव रहेगी। और जो पुलिस अधिकारी नहीं कर पा रहा है उसको अपने पद पे रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। तत्काल उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करके प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस थाना कोई बॉयज क्लब नहीं है कि आप मूक दर्शक बने रहें और चटकरे लेते रहें। कार्रवाई कीजिए।
1: महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में महिला पुलिस की जिम्मेदारी अहम है, लेकिन सवाल है कि देश में महिला पुलिस की उपलब्धता कितनी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार देश के पुलिस बलों में कुल महिला कर्मियों की संख्या लगभग 2,42,835 है, जो कुल पुलिस बल का लगभग 12% है। लगभग 2,17,000 महिलाएं यानी कुल महिला बल का लगभग 90% सिपाही और निचले पदों पर कार्यरत है। गैर IPS अधिकारी यानी DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इन पदों पर लगभग 24,322 महिलाएं हैं। देश भर में IPS रैंक पर लगभग 960 महिला अधिकारी तैनात हैं। DGP और SP जैसे वरिष्ठ और उच्च पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या 1,000 से भी कम है, जबकि महिला पुलिस की मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित खुलकर अपनी शिकायत रख पाएंगी।
3: FIR करवाना ही अपने आप एक मुश्किल काम है। इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद पूरा सिस्टम लग जाता है कि उसको बचाने में। अगर रेप के लिए, मॉलेस्टेशन के लिए, लिव इन में होने वाले क्राइम के लिए महिला जाती है तो हजार सवाल उस महिला से होते हैं, कितने बजे थी, कहां गई थी, अकेली क्यों गई थी, और पूरा सिस्टम लग जाता है उस महिला के संग ब्लेम गेम में कि आपको कहां गलत ठहराया जाए। और क्योंकि आपका रेशियो कन्विक्शन का इतना पुअर है, इन्वेस्टिगेशन पुअर, नॉन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, नॉन इफेक्टिव, स्लो, बहुत धीमा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इस कदर सता देते हैं उस महिला को या उसके परिवार को जो रिलीफ लेने जा रहा है कि कि तौबा कर सकता है वो परिवार या महिला, फिर जाके ट्रायल चलेगी। तो ट्रायल में आपको समझ ही नहीं आता कब वो ट्रायल फिनिश होती है, जितना हैरेसमेंट वहां हो जाएगा। और फिर पता नहीं इस सब के बाद कन्विक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा लूपहोल्स छोड़ दिए जाते हैं।
4: आखिर कमी कहाँ है और सुधार की गुंजाइश कितनी है?
5: अमूमन हम सुनते हैं कि जब कोई पीड़िता शिकायत देके जाती है तो उसको एक थाने से दूसरे थाने में भेजा जाता है कि यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, इस थाने की ज्यूरिसडिक्शन बनती, आप वहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। और ये तभी संभव है जो हमारे पुलिसकर्मी है वो पीड़िता के साथ उसकी शिकायत को एम्पथी के साथ या उसके साथ कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक ऐसा समाज निर्माण करने की जहाँ पे अपराध ना हो, वो संभव तभी है जब उन पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनके खिलाफ ये शिकायत आती है कि आपने महिला या पीड़िता के शिकायत को लेने से इनकार किया। देश में बड़ी सीरियस एक समस्या है कि CFSL लैब्स नहीं है। अगर CFSL लैब हैं तो उनमें काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, खाली पड़ी है। और पुलिस अगर सैंपल ले भी लेती है तो CFSL लैब भेज भी देती है तो कई हफ्ते कई महीने उस सैंपल की जांच होने में लग जाते हैं। और बहुत बार जो जांच की रिपोर्ट आती है वो ये आती है कि सैंपल जब जांच हुई तो तब तक सैंपल खराब हो चुका था।
4: महिला सुरक्षा की पहली कड़ी पुलिस और महिला सुरक्षा की आखिरी कड़ी न्यायपालिका से मिला इंसान, दोनों ही सूरतों में तेजी जरूरी है, तभी भरोसा जगेगा और मिसाल बनेगी।
0: महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का ग्राफ गिरता क्यों नहीं है? सरकारें कोई भी हो लेकिन कमी क्या गंभीर कदम उठाने में है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, पुलिस है, हेल्पलाइन है, हजारों करोड़ रुपए का निर्भया फंड भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 तक निर्भया फंड के लिए 8212 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 6582 करोड़ जारी और उपयोग हुए हैं। दावा है कि इसी फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं, लेकिन जब अपराध की खबरें सामने आती हैं तो सवाल केवल अपराधियों से नहीं व्यवस्था से भी होता है।
4: महिलाओं के खिलाफ अपराध हर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हर वारदात के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिया जाता है, कानून और सख्त करने का दावा किया जाता है, पुलिसिंग मजबूत करने की बात होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराध का आंकड़ा वाकई नीचे जा रहा है? NCRB के मुताबिक 2023 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 448211 मामले दर्ज हुए। 2022 में ये आंकड़ा 445256 था, यानी एक साल में करीब 3000 मामलों की बढ़ोतरी। हालांकि 2023 में प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 2022 के 66.4 से घटकर 66.2 हुई, लेकिन संख्या अभी भी 4 लाख से ज्यादा है। और 2024 में सरकार की तरफ से संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 441534 मामले दर्ज हुए। 2023 के मुकाबले संख्या कम जरूर हुई लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध के मामलों में मामूली उतार चढ़ाव जरूर है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की चुनौती अब भी उतनी ही गंभीर है। अब जरा राज्यों का हाल देखिए। 2023 में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए 66381, इसके बाद महाराष्ट्र में 47101, राजस्थान में 45450, मध्य प्रदेश में 32342 और बिहार में 22952 मामले दर्ज हुए। 2024 में भी उत्तर प्रदेश 66398 मामलों के साथ सबसे ऊपर रहा, महाराष्ट्र में 47954, राजस्थान में 36563, मध्य प्रदेश में 32832 और बिहार में 27359 मामले दर्ज हुए। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी समझना है, ज्यादा FIR का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसी राज्य में अपराध की वास्तविक घटनाएं सबसे ज्यादा हैं। FIR का आंकड़ा रिपोर्टिंग, पुलिस में शिकायत दर्ज होने और राज्यों की आबादी से भी प्रभावित होता है। इसीलिए सिर्फ कुल मामलों से राज्यों की तुलना पूरी तस्वीर नहीं देती। फिर सवाल आता है, जब कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है और सुरक्षा योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो अपराध रोकने में दिक्कत कहां है? अब बात करते हैं निर्भया फंड की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 तक निर्भया फंड के लिए 8212 करोड़ से ज्यादा आवंटित किया जा चुका है, जिनमें से करीब 6582 करोड़ रुपए उपयोग हुए हैं, यानी करीब 76% राशि, 25% अब तक राज्य इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। पैसा कितना आया और कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब तो है, लेकिन अब हिसाब उस बदलाव का भी होना चाहिए जो इस पैसे से जमीन पर दिखाई दिया, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ बजट से नहीं, उसके सही इस्तेमाल से तय होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने करोड़ आवंटित हुए, सवाल ये है कि कितने डार्क स्पॉट्स खत्म हुए, कितने क्राइम हॉट स्पॉट्स पर पुलिसिंग बढ़ी, 112 नंबर पर कॉल करने के बाद मदद कितनी जल्दी पहुंची, कितने मामलों में जांच समय पर पूरी हुई, कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितनी पीड़िताओं को समय पर न्याय मिला। सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए 14,658 से ज्यादा विमेन हेल्प डेस्क बनाए गए, मतलब सिस्टम बनाया गया है, फंड भी है, हेल्पलाइन भी है, कानून भी है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई महिला मदद के लिए फोन करती है, जब कोई लड़की सुनसान सड़क पर अकेली होती है, जब किसी थाने में शिकायत लेकर पहुंचती है, क्योंकि महिला सुरक्षा का असली आंकड़ा सिर्फ FIR की संख्या नहीं, सुरक्षा का भरोसा है। और इसलिए अब सवाल अपराधियों से जितना है, उतना ही सिस्टम से भी है।
0: महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए जो सिस्टम बना है वो कितना प्रभावी है, हमने इसका रियलिटी चेक भी किया। आपको भी दिखाते हैं कि दावों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है।
4: दिल्ली में छेड़छाड़ और गैंगरेप की घटनाओं के बाद अब सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक ड्राइव चलाया। हाल की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने गाड़ियों के शीशों पर लगी अवैध टिंट और ब्लैक फिल्म पर खास नजर रखी।
6: सर, ऐसे ड्राइव हम लगातार करते रहते हैं और हम सुबह से ऐसी ड्राइव कर रहे हैं। आज हमारे ड्राइव से टिंटेड ग्लास के अगेंस्ट जो ब्लैक से गाड़ियों पर चढ़े होते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के अगेंस्ट हमारी मुहिम थी, इसके अलावा जो इम्प्रॉपर पार्किंग थी, विदाउट हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के खिलाफ हमारी मुहिम थी, और अभी ये पिकेट हमारी जनरल गश्त पिकेट है। ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि वीकेंड है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग वीकेंड में ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, विदाउट हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करके घूमते हैं, जिससे क्या होता है कि फेटेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है।
4: इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के साथ लोकल पुलिस और PCR यूनिट भी शामिल रही।
7: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और PCR के साथ मिलकर यहाँ पे यूनिवर्सिटी एरिया में स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ये आज की दिन नहीं है, हमेशा हम करते आ रहे हैं। आज ही आजकल रिसेंट इंसिडेंट्स की बेसिस में वी हैव फोकस्ड ऑन टिंटेड ग्लासेस, वो सेफ्टी का इश्यू भी हो जाते हैं, इसी वजह से उसमें फोकस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट ये और ड्रंकन ड्राइविंग ये ऐसे है जो चलाना वाला का सेफ्टी के अलावा है, रोड पे जाना वाला का सेफ्टी का भी इसमें इश्यू हो जाती है, इसी वजह से हम इस ड्राइव कर रहे हैं।
4: अभियान का मकसद सड़क हादसों को रोकना और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है, साथ ही दिल्ली के आस्था कुंज जैसे मामलों के बाद जनता में विश्वास पैदा करना भी है। कालकाजी के आस्था कुंज में गैंग रेप के बाद पुलिस ने गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी, लेकिन हम यहां पर आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो पुलिस के सतर्क होने से पहले इस इलाके की थी।
8: 7 बजे के आसपास कितना घुप अंधेरा इस पार्क में होता है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 150 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है, DDA का पार्क है, लेकिन लाइट यहाँ पर नहीं है।
4: यहाँ सवाल ये है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किसी अनहोनी के बाद ही क्यों किए जाते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये सुरक्षा और मुस्तैदी कब तक रहेगी। सवाल केवल दिल्ली और बिहार का नहीं बल्कि देश के हर कोने से इस तरह की घटनाओं की खबरें चिंता का विषय हैं। तमिलनाडु में नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह से कुकृत्य हुआ, उसने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। तमिलनाडु के चर्चित जेम वीरमणि पर नाबालिग लड़कियों के साथ प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विजय ने सीधे स्टालिन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब तक चुप्पी क्यों साधी गई।
9: महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही पैदा हुए हूँ। इस तरह डीएमके और अन्य लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उन महिलाओं का शोषण करने वाले को पकड़कर जेल में डाल दिया है, लेकिन अब वे उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने सालों से जो बात दबा कर रखी गई थी, उसे विजय ने आते ही उजागर कर दिया और उस व्यक्ति को जेल भिजवा दिया। शायद उसी सदमे में वे चुप हैं या क्या, मुझे नहीं पता। सब नादान बच्चे हैं सर, बिल्कुल नादान बच्चे। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आज उन्होंने कितनी सख्ती से कदम उठाए हैं, इस पर एमके स्टालिन को सामने आकर जवाब देना चाहिए। क्या यह कोई राजनीतिक दबाव है या आपके परिवार का दबाव? इसके पीछे कौन है? 70-80 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है, वह किन किन लोगों तक पहुंचा है? निश्चित रूप से हमारे अन्ना के शासन में सारी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
4: वहीं स्टालिन ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय नाबालिग लड़कियों से जुड़े गंभीर मामले को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना रहे हैं। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। जेम ग्रेनाइट्स के मालिक वीरामणि और इस मामले में आरोपी शांति और महेंद्र सिमन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने तीनों की न्यायिक हिरासत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। चेन्नई की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में पुलिस ने शांति और सिमन की जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शांति को वीरामणि से 24 लाख रुपए से ज्यादा मिले थे, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अहम सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है, साथ ही पीड़ितों की पहचान से जुड़ी जांच भी जारी है। पुलिस ने अदालत से कहा है कि इस स्तर पर आरोपियों को रिहा करने से गवाहों और जांच पर असर पड़ सकता है। इस बीच बीजेपी ने कथित सेक्स स्कैंडल की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं टीवीके की सहयोगी सीपीआईएम ने विजय सरकार पर इस मामले में कार्रवाई का श्रेय लेने का आरोप लगाया।
9: यह मामला अब सामने आया है, तो इसका श्रेय पोक्सो विशेष अदालत की न्यायाधीश पद्मा षणमुख सुंदरम को जाता है। उन्हीं के आदेश के कारण ही यह मुद्दा आखिरकार दुनिया के सामने आया है और मौजूदा तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुई है।
4: जांच अभी जारी है, लेकिन इस मामले को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेप और यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य अपराधों में भी राजनीति कब तक रहेगी।
0: अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
19: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
20: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफी जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
19: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
21: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार रूंटा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार रूंटा बार बार बार। सर एक बार लगाने बस, मजा आ जाएगा।
5: कैची है वायरल
8: है
9: आप पे, वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
10: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रूंटा टीएमटी बार से जो बना है,
11: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
10: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है,
11: पर स्टेज नहीं हिलता।
10: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रूंटा टीएमटी से बना है।
9: ओ नादान परिंदे, बैठ जा
10: बैठ जा बैठ जा।
9: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
3: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल. सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स.

ये आश्चर्यजनक है। कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना

0: और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। एसआईआर को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
1: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी और अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सोशल मीडिया वॉर के बीच में राहुल का भी हमला, प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पर बोला हमला। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आज शाम फिर पत्थरबाजी। यूपी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घरों को नुकसान, अयोध्या गोरखपुर समेत कई जिलों पर असर। और त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम रिपोर्टिंग में एक बेसिक यह कहें कि उसूल है कि जो भी खबर हम आपको दिखाते हैं उसको क्रॉस चेक करते हैं पुलिस से। पुलिस ही एक जिसके पास अथॉरिटी है जो केस को इन्वेस्टिगेट करती है, केस की जांच करती है, आरोपियों को पकड़ती है, फिर बताती है कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम है। और जब पुलिस रिकॉर्ड पर ये चीजें कहती है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, कैमरे पर बाकायदा या प्रेस नोट के जरिए, तो फिर वो सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं। पिछले करीब 16 दिनों से कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस पे मीडिया, सोशल मीडिया, यहां तक कि मैं कितनी बार आपको कहानियां सुना चुका हूं। विनीत मिनोचा का जो कत्ल है, जो मर्डर है, वो 5 सितंबर की रात को होता है। उसके 72 घंटे के अंदर अंदर कानपुर पुलिस उनकी बहू शालू को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस कहानी बताती है कि शालू इस साजिश में शामिल है, मास्टरमाइंड है, और उसी ने दो सुपारी किलर विशाल और राजकिशोर को हायर किया 6 लाख रुपए में और फिर कत्ल करवाया। वही सारी कहानी हमने आप तक पहुंचाई, शालू को जेल भी भेज दिया गया, अब सब कुछ ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन कानपुर पुलिस के इस बयान और शालू की गिरफ्तारी के बाद जो स्टेटमेंट या मीडिया से बातचीत के बाद पिछले 16 दिनों से शालू को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में, यहां तक कि मैं अपने आप को भी गुनहगार मानता हूं और सॉरी भी बोलता हूं शालू से, कि हम सब ने क्या क्या दिखाया। एक महिला, एक पत्नी, एक मां, एक बहू, कि जिस वक्त ससुर का कत्ल हो रहा था वो क्लब में डांस कर रही थी, कैसी बहू है जिसने अपने ससुर का कत्ल कर दिया, सारी चीजें। लेकिन असली गुनहगार कौन था? कानपुर पुलिस ने जब शालू को गिरफ्तार किया और उसके बाद जेल भेजा, उन्होंने जो कहानी सुनाई, हम सब बंधे हुए हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, गिरफ्तारी की, तो वही चीजें हमने आपके सामने रखी सभी मीडिया, सोशल मीडिया में। ये एक सबक है ये केस हम सब के लिए भी। और फिर उसी शालू को लेकर जो तमाम बातें हुई, 16 दिन के बाद अचानक पूरी कहानी पलट जाती है और वही कानपुर पुलिस जिसने एक वक्त शालू को मास्टरमाइंड बताया, अपने ससुर का कातिल बताया, वही कानपुर पुलिस 24 सितंबर की दोपहर 1 बजे कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जो वहां के कमिश्नर साहब हैं रघुबीर लाल, ठीक उनकी कुर्सी के पीछे विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत खड़ा रहता है। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि असल में विनीत मिनोचा का कातिल, मास्टरमाइंड जिसने पूरी साजिश रची, वो शालू नहीं, उनका बेटा सुब्रत है, यानी शालू का पति। शालू तो बेकसूर है, शालू को फंसाया गया। और ये सब क्यों? क्योंकि एक सुपारी किलर यानी विशाल ने कत्ल के 24 घंटे बाद, जिसके पैर में गोली मारकर पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसने पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने कैमरे पर यह कहा था कि हां मैंने कत्ल किया, लेकिन इस कत्ल के लिए मुझे भाभी यानी शालू ने कहा था। और उसे एक बयान पर पुलिस ने शालू को गिरफ्तार कर लिया। कितने मासूम है हमारे कनपुरिया पुलिस कमिश्नर, कहते हैं उस वक्त उसने कहा तो हमें लगा जब हमने कॉल डिटेल देखा तो हमें एहसास हुआ, जब घर में एंट्री के लिए गार्ड ने फोन किया और शालू ने कहा अंदर आ जाओ, तो हमें लगा, तो हमें ऐसा लगा, तब हमें ऐसा लगा, तब हमें वैसा लगा, और इसी वजह से फिर हमने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और शालू, विशाल और राजकिशोर तीनों को जेल भेज दिया, तब हमें ऐसा लगा। मतलब कितनी मासूमियत से एक पुलिस कमिश्नर ये सारी बात कह गए, ये बिना सोचे समझे कि इस एक गलती से शालू की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। उनके जरिए सारी मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें आई कि एक बहू, एक कातिल, 16 दिन तक बिना किसी जुर्म के वो जेल में रही। क्यों? क्योंकि एक कातिल ने नाम लिया था। अब आप बताएं, अगर कोई शख्स किसी का नाम लेता है कि हमने उसके कहने पर कत्ल किया, तो क्या पुलिस उसको यूं ही गिरफ्तार कर लेती है? बिल्कुल नहीं, पहले जांच करती है, सीसीटीवी कैमरा, फोन पे कॉल डिटेल, ये सारी चीजें। 5 सितंबर की रात को विनीत मिनोचा का कत्ल होता है, 6 सितंबर की रात इनकाउंटर होता है जिसके बाद विशाल और राजकिशोर को पकड़ा जाता है, और उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर 7 और 8 सितंबर को सीधे कानपुर पुलिस शालू को उठा लेती है और ऐलान कर देती है कि यही मास्टरमाइंड है, यही कातिल है। मतलब अगर उस कातिल ने कहा, उसका नाम लिया, तो एक बेसिक पुलिसिंग है कि आप पहले उसकी तफ्तीश करेंगे, कॉल डिटेल की जांच करेंगे, सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे, क्या मोटिव है आप उसको टटोलेंगे, उसका बैकग्राउंड टटोलेंगे, उसके बैंक बैलेंस को टटोलेंगे, रिश्तों को लेकर पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। एक कातिल ने नाम लिया, सीसीटीवी कैमरे में उसको जाते हुए दिखाई दिया, फोन करके उसने एंट्री दे दी शालू ने, बस कानपुर पुलिस को लगा यह केस सुलझ गया और उन्होंने शालू को उठाकर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन इसी कानपुर पुलिस ने उसी शालू के पति यानी विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत से अगले 8 दिनों तक पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं समझी। मतलब एक मर्डर केस जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस घर में उस रात सिर्फ 4 लोग हैं, सुब्रत, उसकी वाइफ, एक 6 साल का उनका बेटा और ससुर, और आप एक अहम किरदार से पूछताछ करना भी अगले 8 दिनों तक जरूरी नहीं समझ रहे। बीच में आया कि आइए छुट्टी पर है इसलिए पूछताछ नहीं। कौन से ऐसे केस में ऐसा होता है कि जितना आप इसको लाइटली लेते हैं? मतलब पहली बार 12 या 13 सितंबर को सुब्रत से पूछताछ होती है, 8-9 दिन तक कोई पूछताछ नहीं। शालू की गिरफ्तारी में सिर्फ 72 घंटे, लेकिन उससे पूछताछ करने में भी आपको 9 दिन का इंतजार करना पड़ता है। तो शालू की गिरफ्तारी में इतनी जल्दी क्या थी? आप सारे इन्वेस्टिगेशन करते, कहीं वो भाग नहीं रही थी, कोई क्रिमिनल नहीं थी, कोई टेररिस्ट नहीं थी, और जब आपको लगता कि हाँ सबूत है तो आप गिरफ्तार करते। लेकिन अब क्या हुआ, आपने उस बेगुनाह को 16 दिनों तक जेल में रखा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं कि शालू बेकसूर है, असल मास्टरमाइंड तो सुब्रत है। उन 16 दिनों की जेल और उसकी जो बदनामी हुई, मीडिया के सामने दुपट्टे से मुंह छुपाना पड़ रहा है किसी पेशेवर मुजरिम की तरह जो बेकसूर है, और उसके लिए हम सब सॉरी हैं। खुद मैं दिल से शालू और उसके घर वालों से माफी मांगता हूं, लेकिन इसके जिम्मेदार कानपुर पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रिकॉर्ड पर यह स्टोरी दी, हमें बताया और हमने भाई आपको बताया। एक पुलिस कमिश्नर बनने के लिए आईपीएस अफसर को 15 से 16 या 20 साल लग जाते हैं। तो ये तो बेसिक पुलिसिंग है कि आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले ठोस सबूत तो ले आओ। सिर्फ किसी के कहने भर से अगर आपने किसी को कातिल करार दिया और कल को वो पलट गया, किसी और का नाम लिया, तो क्या होगा? और आपने मेन कैरेक्टर से कभी पूछताछ ही नहीं की, 9 दिन बाद पहली बार पूछताछ की। कानून कहता है कि अगर कोई बेकसूर है या किसी को जमानत मिल गई, तो उसके बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। यहां खुद कानपुर की पुलिस मान रही है कि शालू बेकसूर है, उसने कत्ल नहीं किया, कातिल उसका पति है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में है और अगले 2-4 दिन से पहले उसके जेल से निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यानी जिसको आपने बेकसूर करार दे दिया, उसके बावजूद वो अगले कई दिनों तक अभी और जेल में रहेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसा सिस्टम, कैसा कानून है? क्यों जेल में रहेगी? क्योंकि अब वो नए खुलासे हुए हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसकी बाकी चीज़ें देखेंगी, मैच करेंगे, तो इनमें टाइम लगेगा, फिर कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं शालू को पकड़ के हमने गलती की थी, ये रहा असली कातिल, इन पे चलाइए मुकदमा, उसे बरी कर दीजिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि उसको आपने एक तरह से आज बता दिया कि वो कातिल नहीं है, फिर भी वो जेल में है और पता नहीं इस हफ्ते निकल पाएगी कि नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था 3-4 दिन पहले कि 23 सितंबर वो तारीख है जब सुब्रत गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि कानपुर पुलिस में ही बहुत सारे लोग थे जिन्हें पता था कि सुब्रत के खिलाफ एविडेंस है। लेकिन ये पता नहीं था कि सुब्रत की साजिश में उसकी पत्नी कहीं शामिल ही नहीं थी। तो बेशक 23 सितंबर को गिरफ्तार होगा, मैंने आपसे कहा, और 23 सितंबर को ही रात 11:30 के आसपास उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। लेकिन अफसोस ये है, खुद मुझे भी, कि इस दौरान हमने शालू की जितनी उसके खिलाफ दिखाना बोलना था वो सब कर लिया। हालांकि इसके लिए असली मुजरिम मैं कानपुर पुलिस को मानता हूं। तो खैर, विनीत मिनोचा मर्डर केस में जब हुआ वो पूरी कहानी क्यों पलटी, कैसे पलटी, वो आपको बताता हूं। शुरुआत में जो गलती की तो की, खुद कानपुर पुलिस ने माना कि शालू ने कभी भी अपनी पूछताछ के दौरान ये नहीं कहा कि मैंने कत्ल किया, वो हमेशा अपने आप को बेकसूर मानती रही। ये पूरा खुलासा सिर्फ एक सिम की वजह से हुआ, सिम जो 3 सितंबर को पहली बार विशाल ने खरीदी, और उस सिम के बाद उसने जो पहला कॉल किया वो किया सुब्रत को नए सिम से, और उसने अपना उस नया सिम जो लिया उसका नाम शुभम रखा था। 4 तारीख को यानी कत्ल से एक दिन पहले शालू से 6 बार उसी सिम से बात हुई, क्योंकि सुब्रत ने ही शालू को कहा था कि ये शुभम अब इसका नाम से कॉल आएगा, तुम बात कर लेना, क्योंकि उससे सामान मंगाना होता घर का। 4 तारीख को जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे सामान मंगाने थे, 4 बार शालू ने कॉल किए और कुल मिलाकर उसने 7 बार कॉल किए। लेकिन सुब्रत ने कत्ल वाले दिन और कत्ल के बाद भी उससे बात की, तो सिम नया और सीधे फोन। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे में कुछ कैमरे बंद किए गए, कुछ खोले गए। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरा बंद करने वाली शालू नहीं थी, खुद सुब्रत था। इसके अलावा जब और तफ्तीश की तो पता चला कि 40,000 रुपये महीने मिलते थे सुब्रत को खर्च के लिए, और उस पर 40 लाख का कर्जा था। हर महीने करीब 56,000-55,000 रुपये तो सिर्फ EMI देता था। अपने ही बाप की दुकान से, मेडिकल स्टोर से दवाएं चुरा कर कहीं और बेचता था, और चोरी के इस काम में उसके साथ विशाल शामिल था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपने बाप से नफरत थी। उसने 4 से 5 महीने पहले ही अपने बाप को मारने का फैसला कर लिया था। नफरत की वजह यह थी कि खुद सुब्रत को ये पता था कि उसके फादर की जिंदगी में कई औरतें हैं उसकी मां के अलावा, और वो कई बार खुलेआम घर में जिक्र करते हैं, कई बार इन लोगों ने भी देखा। फिर सुब्रत को एक डर बैठ गया कि किसी दिन ये किसी औरत को घर ले आए और कहें कि ये तुम्हारी मां है और पूरी जायदाद उसके नाम कर दें, तो फिर इन लोगों के हाथ क्या लगेगा। और उसका यह भी कहना था कि वो उसकी मां भी परेशान थी, तो उसने तय कर लिया था कि वो फाइनेंशियली तो था ही परेशान, लेकिन बाप के कैरेक्टर की वजह से भी परेशान था, और उसने तय कर लिया कि वो मारेगा। जो उसने बाद में बातचीत की हमारे रिपोर्टर सिमर चावला से, उसने ये कहा, उसने पूछा कि तुम्हें अपने पापा को मारने का अफसोस, तो उसने कहा अफसोस इस बात का कि उन्हें गूंथ कर मारा गया, यानी चाकू से गूंथ कर मारा गया, लेकिन मरने का अफसोस नहीं है, मारने का भी अफसोस नहीं है। करीब रात के 2:30 बजे 23 और 24 सितंबर की बात बता रहा हूं, जब पुलिस कस्टडी में शालू आई और विशाल और राजकिशोर तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई थी। शुरुआत में तो लगातार मना करता रहा, और शालू उसे देखकर रो रही थी, वो शालू से नजरें चुरा रहा था, और शालू ने उससे कहा था कि तुमने मुझे फंसा दिया। वो शालू से बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जब आमने सामने की बात हुई, फिर पुलिस ने सारे उसके खिलाफ सबूत दिखाए, तब उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने पिता को मरवाया, मैं ही कातिल हूं। जिस विशाल ने उस दिन बयान दिया था कि भाभी ने यह करवाया, उसी विशाल ने आमने सामने की पूछताछ में शालू और सुब्रत के सामने पुलिस से कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था, असल में मुझे भैया ने मर्डर करने के लिए कहा था, भाभी ने नहीं। फिर उसके बाद सुब्रत का बयान लिया जाता है। सुब्रत का जब बयान लिया गया, पुलिस कस्टडी में पूछताछ हुई, तो उस बयान को रिकॉर्ड किया गया। जब आमने सामने बिठाने के बाद सुब्रत ने रात 2:30 बजे इकरार कर लिया कि उसी ने मारा है अपने पिता को, उसी ने विशाल को हायर किया था, तब शालू पहली बार बोलती है विशाल के सामने और पुलिस कमिश्नर के सामने, जो रघुवीर लाल बैठे हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बात कही है। मैं आपको उनकी वो बात सुना भी दूंगा। शालू ने कहा सुब्रत से और पुलिस कमिश्नर से कि अब साफ हो गया कि कातिल कौन है, मतलब मैं नहीं हूं, तो मैं जाऊं, लेकिन फिर भी देखिए उस पत्नी की बातें, वो कमिश्नर से कहती है कि इनको भी जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें फंसाइएगा मत। अपने उस पति के बारे में कह रही है कि इन्हें फंसाइएगा मत, इन्हें भी जाने दीजिए, जो पति बार बार पुलिस से यही कहता रहा कि ये कत्ल मेरी पत्नी ने किया, मतलब वो शालू को कातिल ठहरा रहा है, और जो असल में कातिल है पत्नी, सामने उसकी पूरी कहानी सुनने के बावजूद पुलिस से कह रही है कि इनको फंसाइए मत, इनको जाने दीजिए, मतलब पति बार बार उसका नाम ले रहा है और पत्नी कह रही है छोड़ दीजिए। इस पूरी साजिश के बारे में शालू को कहीं से पता नहीं था, ये बात सुब्रत ने भी मानी और अब पुलिस ने भी मानी। शायद शालू को फंसाया भी नहीं जाता, क्योंकि शुरुआत यह हुई थी कि जब ये कत्ल होगा तो पहले तो तकिए से होगा मुंह दबाकर, तो किसी को पता नहीं चलेगा, नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक दिखाएंगे, खुलासा नहीं होगा। लेकिन गलती ये हो गई कि विनीत मिनोचा जाग रहे थे, दोनों को देख लिया घर में, शोर मचा दिया और उसके बाद उन्होंने चाकू मार दिया। तो जब ये चाकू मारने वाली बात क्लियर हो गई रात को, तो फिर सुब्रत ने विशाल से ये कहा था कि तुम चाचा का नाम लेना मेरे इस मर्डर केस में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि विशाल ने चाचा की जगह बोल दिया कि भाभी शालू ने कहा था, और विशाल सुब्रत का खास वफादार। अब जब खुद विशाल ये कह रहा कि भाभी ने कहा और ये मीडिया के जरिए सुब्रत तक बात पहुंची, वो हैरान था कि विशाल ने उसकी वाइफ का नाम क्यों लिया, चाचा का क्यों नहीं लिया। लेकिन तब तक ये हुआ कि पुलिस आगे बढ़कर शालू को गिरफ्तार कर लेती, और अब को लगा कि चलो कम से कम बच गया, सारा इल्जाम बीवी पर चला गया, तो अब बीवी जेल जाएगी, मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। वो और खामोश हो गया। 9 दिन बाद जब उससे 2 किश्तों में पूछताछ हुई, पुलिस से उसने बार बार यही कहा, मुझे नहीं लगता, पर मुझे ये लगता है कि मेरी वाइफ ही कातिल है, पुलिस से भी कह रहा। और फिर धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा था कि अब शालू पे ही सारा इल्जाम चला गया और मैं बच जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उसे एक गिल्ट भी फील हुआ, एक मलाल भी, कि इस पूरे मामले में उसकी वाइफ फंस गई। इस मलाल के चक्कर में उसे नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खाकर सोता था। फिर पुलिस वालों के सामने उसने बताया कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसे ये तो था कि पता नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरी बीवी फंस गई है और जो कि गुनहगार भी नहीं है, तो उसने ये भी प्लान कर रखा था कि अगर ये मामला इतना तूल पकड़ा और बीवी की नज़र में भी वो अब गिर चुका है, क्योंकि बीवी को पता है वो कातिल नहीं है और ये चुप था, तो फिर एक साथ नींद की गोलियां खाने का भी प्लान कर रखा था सुब्रत ने। लेकिन खैर, उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में कातिल अब 3 के 3 ही हैं, शालू, विशाल और राजकिशोर 3 थे। अब शालू को आप इससे हटा दीजिए, लेकिन नंबर वही है 3। लेकिन इस पूरे केस ने कानपुर पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से उन्होंने जांच की, जिस तरीके से जल्दबाजी की, जिस तरीके से अपनी राय बनाई, उस पर एक गहरा सवाल है कि क्या पुलिस इसी तरह काम करती है। मतलब किसी के कहने भर से और शुरुआती ऊट पटांग जांच से ही आप किसी को कातिल बना देंगे, उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई। ये 16 दिन जो अभी तक उसने एक कातिल के तौर पर जेल में काटी, आज क्लियर हुआ है, फिर भी अभी कुछ दिन और जेल में रहेगी, तो जो भी करीब 20-22 दिन, शालू ने जो जेल में काटे या काटने वाली थी, क्या वो कभी भूल पाएगी? उस सोसाइटी में या बाकी जगहों पर क्या वो फिर से उसी तरह सर उठाकर चल पाएगी? क्योंकि जो कुछ कहा गया, जो कुछ हुआ, उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और जांच करने वाली पुलिस, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? शालू को तो कोर्ट जाना चाहिए और कानपुर पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, बेकसूर होते हुए भी इतने दिनों तक जेल में रखा, और अगर वो जाती है तो कानपुर पुलिस के लिए बहुत मुसीबत और फजीहत भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर इन सारी चीजों के बावजूद एक चीज के लिए मैं कानपुर पुलिस की तारीफ करूंगा, और वो ये कि सच्चाई सामने आने के बाद कानपुर पुलिस चाहती तो आज भी ये कह सकती थी कि अभी कुछ और डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, तो अभी हम क्लीन चिट नहीं देंगे शालू को। ये कहकर कानूनी दावपेच में उलझा सकती थी और कई और दिनों तक शालू ऐसे ही शक के घेरे में रहती और जेल में रह सकती थी। लेकिन कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कम से कम एक अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि वो इस साजिश में शामिल नहीं है, वो कातिल नहीं है, मास्टरमाइंड पति है वो, और विशाल इन्होंने मिलकर ही साजिश रची, तीसरा कोई कैरेक्टर था ही नहीं। जो तीसरा था वो सुपारी किलर था, राजीव किशोर। कम से कम कानपुर पुलिस की इसी ईमानदारी की वजह से शालू की रिहाई अब जल्दी मुमकिन हो जाएगी। पत्नी के बारे में जरूर मलाल है उसे कि शालू को नहीं फंसना चाहिए था, लेकिन पिताजी से मारा उसके बारे में उसे कोई मलाल नहीं है। तो कुल मिलाकर अब देखें तो विनीत मिनोचा मर्डर केस शायद अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, और अब आगे की जो कागजी कार्रवाई है, जो चार्जशीट है, बाकी चीजें हैं, वो कानपुर पुलिस करेगी। तो फिलहाल कहानी में
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: एक बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है, बैंकों के द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में यह बड़ी खबर है जिसे वापस ले लिया गया। बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल अब स्थगित हो गई, यानी कि कल से होने वाली बैंकों की हड़ताल अब नहीं होगी। आईबीए और ईएफबीयू के बीच में बातचीत के बाद यह फैसला, जो यानी कि हड़ताल का जो फैसला था वो टाल दिया गया। तो कई मांगों में से ये प्रमुख मांगे थे, हम आपको बता रहे हैं। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों ने लंबित मांगों को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक, यानी कि 3 दिनों का देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था, और इनकी प्रमुख मांगों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा ये बुलाया गया था, और 5 डेज वर्किंग लागू करना, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव योजना संशोधन जैसे कुछ इनकी मांगे थी, और अपनी मांगों को लेकर इनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बैंक अपना काम जारी रखेंगे और हड़ताल अब वो नहीं करेंगे, और बातचीत हुई है, उन्होंने अपना चिंतन मंथन किया और उसके बाद ही निर्णय लिया गया। तो कल से 3 दिनों की जो हड़ताल का ऐलान था वो अब वापस ले लिया गया है, यानी कि सोमवार को जब अब बैंक खुलेंगे। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि अब बैंकों में सामान्य काम हो सकेगा, तमाम बैंकिंग संबंधित कार्य, ट्रांजैक्शन संबंधित कार्य वो होंगे। तो प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई, इसमें पेंशन संशोधन दूसरी मांगे भी थी कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को पेंशन को अपडेट किया जाए, बैंकों में स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाए, काम का बढ़ता तनाव है उसको कम किया जाए, बहुत सारी ओपीएस का विकल्प भी था कि कई कर्मचारी संगठन एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने की मांग कर रहे थे। तो कई सारी मांगे थी उनकी, और अब सेवाओं पर जो इम्पैक्ट पड़ सकता था, जिसका लाखों करोड़ों ग्राहकों पर इम्पैक्ट पड़ सकता था, तो इस बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद अपना फैसला भी फिलहाल टाल दिया है, स्थगित किया है। बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल वापस ले ली गई है, ये बहुत बड़ी खबर है, इसे टाल दिया गया है। और हड़ताल का जो सबसे ज्यादा असर वो सरकारी बैंकों पर पड़ता है, एसबीआई पर, पीएनबी पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं पर इसका इम्पैक्ट पड़ता। और अब ये बड़ी खबर है कि ये अपना फैसला उन्होंने वापस ले लिया। यूनियंस की तरफ से पहले बहुत चेतावनी थी और कि हमारी मांगों का ठोस समाधान निकाला जाए, अगर मांग हमारे ठोस समाधान नहीं निकला तो फिर ये जो हड़ताल पहले उन्होंने ऐलान किया था 30 तारीख तक का, उसे बढ़ा दिया जाएगा और अनिश्चितकाल तक हम हड़ताल कर देंगे, इस तरह की चेतावनी थी। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर यह है कि कल से 3 दिनों की हड़ताल अब स्थगित कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर, UFU के द्वारा बुलाई गई हड़ताल जिसके कई सारी डिमांड्स थी, अब वो डिमांड मानी गई है या नहीं मानी गई इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो हड़ताल का ऐलान था, जो अपना रुख था, अभी फिलहाल वो तो टाल दिया है। और IBA UFBU की उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, इसकी जानकारी मिल रही है। और ये समिति उनकी मांगों पर विचार करेगी। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे, इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
3: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
0: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
4: एक वीडियो जो आज चल रहा है, आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा PWD डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नेल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नेल सिंह को 3 बार फोन किया।
5: जी जर्नेल जी।
6: जी परेश भाई, क्या हाल
5: चाल? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
6: मैं तिलक नगर में हूँ।
5: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
7: कहाँ रहे थे सर?
4: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नेल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
0: अब खबर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जहां पर एक छात्रों और पुलिस में जोरदार झड़प हुई और प्रदर्शनकारी छात्रों ने जब हाईवे जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने पिलाटी चार्ज किया, जिसके बाद बेकाबू छात्रों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी की गई और छात्रों के हमले में पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये छात्र पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने, जहां गाड़ियां जला दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई है, टूटे हुए शीशे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं।
8: all the violence that has taken place in front of the lovely professional community of the management.
9: पुलिस की गाड़ियों पे पथराव, हल्का लाठी चार्ज किया गया उस वक्त जब पंजाब पुलिस लगातार पूरा संवाद बना के रख रहे थे, लेकिन पिछले पूरे तकरीबन 20 घंटे से, और आप ये देखिए पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, और इसी बीच में लगातार जो उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, बने हुए हैं, आप ये देखिए ये दो तादाद है, और इसके बाद जिस तरह से एलपीयू के छात्रों ने प्रोजेक्टाइल्स पत्थर फेंके हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप देखिए एक और गाड़ी, फिर एक और, वही चीज के शीशे तोड़े गए हैं, आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये आप देखिए यहाँ पर जो शीशा है वो तोड़ा गया है, और आपको बता दें यहाँ पे अब सिचुएशन काफी गंभीर हो गई है, और इससे साफ संकेत मिलता है कि कितनी सिचुएशन है, जहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक सिचुएशन बनाई है जहाँ पे पथराव किया गया है। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ कमलजीत संधू।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: होने वाले तीन दिनों की बैंक हड़ताल टली। आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़ कांड में सियासत शुरू। बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वार के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीएसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक। मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी सम्राट रेखा से लेकर शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी। रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। कैंपस में बवाल, आज फिर पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत। वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया कोहली का कमाल। 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम ढा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। यूपी में बीते 60 घंटों से अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और इन 60 घंटों में 56 लोगों की जान चले गए, 46 लोग घायल हुए हैं, 107 मवेशी मारे गए हैं और 1021 मकानों को नुकसान पहुंचा है।
1: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
2: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल। देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहां पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
1: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
2: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
3: प्रशांत सिंह।
2: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
3: प्रयागराज।
2: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
3: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा हुआ।
2: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
3: अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
2: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही हैं।
1: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। यह अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है, जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
4: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
1: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
5: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
1: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: आबाद गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बरसात ने शहर को समंदर बना दिया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में भिड़ गए।
6: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
1: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
6: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
1: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जलभराव हो गया।
7: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
8: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
7: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
8: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है, ये
7: स्पेन है।
8: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
7: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
8: हाँ, एकदम वायरल है।
7: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
1: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
9: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
10: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या। हेलो,
9: सामने खड़े हमारे।
10: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है। आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी रखने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
1: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
10: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
11: हेलो पार्षद जी,
10: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
11: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
10: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
11: सब चालू है, दरगुलानी चालू बा।
1: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
12: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: यूपी के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर जोरदार बरसात के बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, बेहिसाब बारिश है और इंद्रावती नदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले कुछ दिनों से बाढ़ के विभीषिका झेल रहा है, हजारों लोग इस समय प्रभावित हैं। राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों में तो पानी ही पानी नजर आया है।

0: ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है जहां इंद्रावती नदी उफान पर है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। अकेले जगदलपुर में सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इंद्रावती नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते खेत खलिहान डूब गए। रात भर राहत बचाव की टीमें रिहायशी इलाकों में घूमती रहीं ताकि कहीं मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके। अब जरा इस घर को देख लीजिए जो पूरी तरह से इंद्रावती नदी में समा गया है। ग्राउंड फ्लोर डूब गया है, आसपास भी कुछ बचा नहीं है जहां इंद्रावती का जल ना पहुंचा हो। थोड़ा और आगे बढ़िए, रोड के आसपास भी पानी भरा है। इंद्रावती के घाटों पर जहां लोग टहलने घूमने आते थे वो सब पानी में डूब गया है। इंद्रावती नदी में पानी इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ओडिशा के कातीगुड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जगदलपुर के डोंगा घाट की तस्वीरें हैं जहाँ बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। अब तक करीब 20 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। जगदलपुर शहर में 12 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं जहां 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखा गया है। बारिश थमने से थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर की बरसात का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग पर ही हुआ है जहां 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जगदलपुर के नगरनार इलाके में नदी किनारे बसे गाँवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। जगदलपुर शहर में नदी किनारे बसे कालीपुर, प्रवीण वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, विजय वार्ड, मां दंतेश्वरी वार्ड, आमागुड़ा, पतरगुड़ा, आसना, छपरागुड़ा, डोंगा घाट और धोबीगुड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुसा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। खारून नदी पर बना महादेव घाट पानी में डूब गया है। घाट के आसपास प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। सड़कों तक पानी है तो वहीं रायपुर के ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल है। ये रायपुर के ग्रामीण अंचल की तस्वीर है। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर बार डूबे हुए हैं। खारून नदी का पानी घरों के अंदर पहुंच गया है। खेतों के साथ साथ लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दुर्ग की तस्वीरें देखिए जहां खारून नदी उफान पर है। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद खारून नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। घर की दहलीज पर नदी का पानी दस्तक दे रहा है। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। अब जरा गरियाबंद की तस्वीरें भी देख लीजिए। जिले की तीनों प्रमुख नदियां पैरी, सौंदर, महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। गरियाबंद के त्रिवेणी संगम पर बना भगवान कुलेश्वर नाथ का मंदिर भी डूब गया है।
1: पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हो रही लगातार बारिश के चलते गरियाबंद जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद जिले के राजिम में और इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं त्रिवेणी का यह संगम है, पैरी, सोंदूर और महानदी का यह संगम है जहाँ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित प्राचीन मंदिर है शिव जी का, कुलेश्वरनाथ मंदिर है जो पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है।
0: गरियाबंद में पिछले कुछ दिनों में तेज बारिश हुई जिसकी वजह से छोटे छोटे नाले भी उफान पर हैं। राजिम नगर इलाका परिषद के कई रहायशी इलाकों में पानी भर गया। गरियाबंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 130 सी पर भी 4 फीट तक पानी भर गया है।
2: हमारे घर से आसपास अब बड़ परेशानी है, मला ये पूरा चारों खून पिचिंग बनवाना है। सरकार से आदेश करो।
3: रात में काई स्थिति रही से?
2: रात में पूरा गंभीर रही से, सब धन जागा था, सोए नहीं है रात भर।
4: खाना पीना सब आराम हो गया।
3: घर में भी पूरा सामान वगैरह डूब गया,
4: घर में पानी भर गया ना सब।
3: कितना नुकसान हो गया?
4: सब संभालदार सब भीग गए।
0: अब जरा सुकमा की तस्वीरें देख लीजिए जहां शबरी नदी उफान पर है। सुकमा के कोटा इलाके में शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। नदी का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। एहतियातन नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। सुकमा को ओडिशा से जोड़ने वाले रास्ते पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। छापर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
5: सुकमा में लगातार 2 दिनों से बारिश है जिसका देख सकते हैं कि सबरी जो है काफी उफान पर है। ये NHT से पूरी यहाँ तीन जगह पर एनएचटीस पर पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी यातायात ठप है। यहाँ पर पुलिस जवान भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन, लंबी लाइन है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की लगी हुई है। और जो अर्बन तूफान है उसका सुकमा जिले में असर दिख रहा है, लगातार बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि भारी बारिश की संभावना है। तो अभी लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, अभी और लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं सबरी उफान के कारण चिंदगढ़ कोंटा मुख्यालय से 100 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है।
0: सुकमा में बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। दुर्नापाल जगरगुंडा मार्ग के बीच अरलम पल्ली नाला भी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ सितंबर में त्राही त्राही कर रहा है, लोगों के आशियाने डूब गए हैं, हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
6: पहाड़ों पर भी मौसम ने अचानक करवट ली है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ियों को सफेद चादर में ढक दिया है तो कहीं पर बारिश के बीच में ठंड ने दस्तक दे दी है। हेमकुंड साहिब से लेकर बद्रीनाथ धाम और सतो पंथ तक बर्फबारी के बाद पहाड़ों का नजारा खूबसूरत हो गया है।
0: पहाड़ जहां हर मौसम अपने साथ एक अलग रंग लेकर आता है, और जब इन पहाड़ों पर आस्था के केंद्र बसे हों तो बदलता मौसम इन नजारों को और भी खास बना देता है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आई तस्वीरें कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रही हैं। मौसम ने करवट बदली, बादल बरसे और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश ने बर्फ का रूप ले लिया। कुछ ही देर में हेमकुंड साहिब का पूरा परिसर सफेद रंग में रंग गया, आसपास की चोटियों से लेकर रास्तों तक बर्फ की परत दिखाई देने लगी। हर तरफ नजर आ रही सफेदी ने पूरे इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। बर्फ

आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़कांड में सियासत, बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज। 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

0: हड़ताल दी गई है। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई और कुछ फैसले भी लिए गए हैं जिसके बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है आम लोगों के लिए, क्योंकि बैंक यूनियन की हड़ताल यानी कि आम आदमी को परेशानी, इस हड़ताल की काफी समय से चर्चा चल रही थी और अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। हड़ताल वापस ले ली गई है, वापस टाल दी गई है। IBM और UFBU के बीच में ये बातचीत हुई है। 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल का ऐलान किया गया था और इसी हड़ताल को वापस लिया गया। बैंक कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल एक कमेटी गठित होगी और वो कमेटी चिंतन मंथन करेगी और उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला IBA और UFBU ने लिया है। और अब बचे हुए शनिवार की छुट्टी की मांग पर अब समिति विचार करेगी। PLI योजना पर IBA के साथ चर्चा शुरू की जा सकती है और स्केल 4 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए इसमें चर्चा हो सकती है। 8 मार्च 2024 की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी बताया जा रहा कि चर्चा होगी। तो एक कमेटी का गठन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

और बड़ी खबर देते हैं, आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टल गई है। IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन के संगठन UFBU की बैठक के बाद इस पर सहमति बन गई, यानी कि अब हड़ताल नहीं होगी। हड़ताल

भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में अपने नाम में मैच भारत ने किया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से अभी भारत आगे। तिरुवनंतपुरम वनडे में जीत के हीरो रहे विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट ने नाबाद 139 रन बनाए। विराट के नाम पर लगे रिकॉर्ड के बौछार। वनडे में 55वां तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक और वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले 110 रनों की पारी और इसके साथ ही पूरा वो वनडे करियर का 10वां शतक। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बना दिए। एशियन गेम्स में भारत का 56 साल का सूखा खत्म। सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास। मेंस हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल। भारत के हाथों से फिसला गोल्ड। वुमेन्स लॉन्ग जंप फाइनल मुकाबले में आखिरी पलों में टूटा एनसी सूजन का सपना और सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। भारत को एशियाई खेलों में पहला सिल्वर मेडल दिलाने वाली सोनम मस्कर का कोल्हापुर के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में जुटे लोग। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वाली प्राची के घर पर जश्न। परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग कमेटी की निर्विरोध वाइस चेयरपर्सन और 4 साल का कार्यकाल होगा। जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप की अफवाह के बाद छात्रों का प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस ने छात्रों के साथ भिड़ंत भी वहां पर छात्रों ने की और पुलिस ने लाठियां बरसाई। इस दौरान पुलिसकर्मी घायल भी हुए। एलपीओ में बवाल के बीच में पुलिस ने दर्ज किया केस। बयानों के आधार पर अज्ञात लोगों पर केस। एलपीयू के डीन सौरभ लखनपाल का बयान के छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया। जरूरी कार्रवाई के लिए अब यूनिवर्सिटी तैयार। एलपीयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंपस के अंदर स्थित मॉल दुकानों में तोड़फोड़ लूटपाट। लैपटॉप जूते कपड़े और दूसरे आइटम्स भाग कर ले गए चुरा लिया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को मारा थप्पड़। सड़क निरीक्षण करने के लिए गए प्रवेश वर्मा के साथ विधायक जरनैल सिंह के समर्थकों के साथ यहां हाथापाई। प्रवेश वर्मा के खिलाफ तिलकनगर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केजरीवाल बोले सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार दिखाने पर सरेआम थप्पड़ मार दे। राहुल गांधी का दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना। बोले सड़क पर सवाल पूछो तो थप्पड़, पेपर लीक पर सवाल पूछो तो लाठी। प्रवेश वर्मा ने राहुल गांधी को दिया जवाब। सोशल मीडिया पर लिखा राहुल जी आप रहने दो भाई, आपको कुछ नहीं पता, आप विधायक पर भी कमीशन लेने का आरोप लगा। प्रवेश वर्मा के समर्थन में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। कहा कि केजरीवाल के गुंडों ने कैंप सिटी कर्मचारी की पिटाई की, जान से मारने की कोशिश की। मन की बात में जनगणना पर बोले पीएम कि लोग अपनी जानकारी खुद दर्ज कराएं, जनगणना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। मोदी ने मन की बात में सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक का किया जिक्र। कहा कि इंतजार का दौर अब खत्म, अब तो करारा जवाब मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर निशाना। कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर पर जनता को गुमराह किया, संस्थानों को बदनाम किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष का तगड़ा हमला और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है विपक्ष, मुख्यमंत्री योगी ने कहा। एसआईआर को लेकर भी फैलाया भ्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना। बोले राजनीतिक सुविधा के लिए संस्थाओं को कमजोर न करें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करे कांग्रेस, विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश। राहुल गांधी के बयान को दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बताया राजद्रोह। बोले कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। असम के सीएम हेमंत ने कांग्रेस को दी नसीहत कि चुनावी हार का मंथन आप करें, राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष पर चिराग पासवान का निशाना। विपक्ष फैला रहा भ्रम, चुनाव आयोग ने सभी विषयों पर अपनी स्थिति साफ कर दी। राहुल गांधी पर बरसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे। कहा कि जनता में भ्रम फैलाना विपक्ष की राजनीति, विपक्ष झूठे आरोप लगा। असदुद्दीन ओवैसी की अपील। कहा कि वोटर से एसआईआर नोटिस का जवाब देने और वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया को न किया जाए नजरअंदाज। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले कि जानबूझकर काटे गए वोट, हमने 2024 में हराया था, 27 में भी हराएंगे। बीएसपी में संगठन में बड़ा फेरबदल। मायावती ने बीएसपी को 3 सेक्टर्स में बांटा। यूपी उत्तराखंड का जिम्मा अपने पास रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साबरमती से 1542 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत से बने रेलवे विकास प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन शिलान्यास। 1962 भारत चीन युद्ध के महानायक शहीद जसवंत सिंह रावत के पैतृक गांव पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बल्लू ने। खराब रास्ता होने के कारण पैदल ही वीर सपूत के गांव बाडियों पहुंचे। जसवंत सिंह रावत के घर को स्मारक और संग्रहालय बनाने का ऐलान।
दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चलो भगत सिंह के साथ कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास के परिचालन चरण की शुरुआत करने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार। बिहार की जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ी का मामला, दो और लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के जमुई कांड में पीड़ित परिवार ने की बात, कहा कि ऐसे मनचलों का तो फुल एनकाउंटर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में बीजेपी बूथ अध्यक्ष चंदन भल्ला की गोली मारकर हत्या, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस कर रही है जांच। जयपुर नगर निगम के मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर भी बीजेपी का कब्जा, सरोज कंवर को 89 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी सलमान को मिले 58। दिल्ली मैलीगांव में 2000 घरों को तोड़ने का नोटिस, इलाके के लोग धरने पर बैठ गए। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान के पिछले हिस्से की टक्कर, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित, गुवाहाटी से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। दिल्ली में एनटीए परिसर की सुरक्षा अब सीआईएसएफ करेगी, गोपनीय क्षेत्रों की होगी कड़ी निगरानी। गोरखपुर में बारिश में डूबा बीजेपी सांसद रवि किशन का इलाका, फूटा लोगों का गुस्सा, गली मोहल्लों दुकान घरों सब जगह पानी। बिहार के बगहा में गंडक के उफान के चलते लक्ष्मीपुर में गोदाम टोला में हाहाकार, 100 से ज्यादा घरों में कमर तक पानी। पूर्वी चंपारण में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाई अलर्ट, गंडक के तटवर्ती इलाकों में डीएम ने लिया जायजा। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच में गोपालगंज में अलर्ट, निचले इलाकों में प्रशासन खाली कराने में से जुटा। पहाड़ों पर बारिश और ऋषिकेश में खतरे के निशान के पार गंगा नदी, श्रद्धालुओं को सचेत किया जा रहा है। टिहरी में मौसम ने बदली करवट, भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, अब तो ठंडक बढ़ी। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजापिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदला। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड, सड़क से बीआरओ ने मलबा हटाया। महाराजगंज में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। ओडिशा के भद्रक में भी तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन की ओर से पानी निकासी की कोशिशें जारी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 गेट खुले और शिव ने नारायण का संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में लगातार बारिश, चिरबासा में सड़क पर आया भारी मलबा, मौसम खुलने का इंतजार। यूपी के हरदोई में बारिश बनी आफत, अब तक 8 लोगों की मौत, 30 पशुओं की मौत, 330 घर क्षतिग्रस्त। बाराबंकी में बारिश का कहर, पेड़ दीवार गिरा, 3 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा गांव की बिजली गुल। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के चलते जोरदार बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। छत्तीसगढ़ में लगातार बाढ़ से स्थिति बिगड़ी, चक्रवाती तूफान के चलते 5 दिनों तक लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े। इंदौर के राजबाड़ा में सिटी बस ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में मामूली बात में हिंसक झड़प, दो पक्षों में लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। जयपुर के शिव मंदिर में बुजुर्ग पुजारी की लात, घूसों से पिटाई, पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में। मोगा में महिला एसएचओ गिरफ्तार, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने पकड़ लिया। सूरत क्राइम ब्रांच ने चर्च में हुई चोरी के 2 मामलों का पर्दाफाश किया, आरोपी गिरफ्तार और पादरी की वेशभूषा में घुसकर ये चोरी करते थे। नोएडा में होटल की खिड़की से गिरकर लघु उद्योग विभाग के सीईओ की निजी सहायक की मौत, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के फरुखाबाद में गड्ढे में भरे हुए पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के लिए गए 5 बच्चों में से 2 की मौत। झांसी के गरौठा में किसान नेता की अचानक तबीयत बिगड़ गई, इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान। ओडिशा के खोर्धा में डीजे की तेज आवाज के बीच में पीएनबी भवन की गिरी छत, 1 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। बोकारो में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर गिरा खिलाड़ी, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मौत की पुष्टि की। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजकोट में एक्टिवा को कार से टक्कर लगी और पति पत्नी और बेटे की मौत। झारखंड के लोहरदगा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। मुंगेर में ट्रक चोरी के बाद शराब मामले में फंसी बिहार पुलिस, एसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। पटना में गैरेज संचालक को अपराधियों ने मारी गोलियां, घायल हालत में अस्पताल। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर चलती एमजी हेक्टर कार में अचानक लगी आग, बड़ा हादसा। हालांकि तब मुरादाबाद में भी तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को मारी जबरदस्त टक्कर, चालक की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में सीही गांव में 200 मीटर गहरे बोरवेल में 1.5 साल की बच्ची गिरी, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला। बिहार में रोहतास में 5 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के भेष में वसूली कर रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज, आरजेडी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सरकार को घेरा, घटना के दिन ही आरोपी को भेजा जा चुका है। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, प्रतिपक्ष पर विधि विधान से कर रहे तर्पण और पिशाच मोक्ष
कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से चलाया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान, सफदरजंग में मकबरे पर साफ सफाई की गई। पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर चंद्रभागा बीच पर खूबसूरत नजारा देखा, पर्यटकों ने सूर्योदय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। मनाली से रैली ऑफ हिमालयाज 2026 का शानदार आगाज, झांसकर की बर्फीली वादियों में रिसर्च का दमखम। जयपुर में विद्याधर नगर में ग्रीन फिट हाफ मैराथन सीजन 3 का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने दौड़ में लिया हिस्सा और फिटनेस का दिया संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है चुनाव आयोग, और जब उसी आयोग के मुखिया पर पक्षपात का सबसे बड़ा हमला हो तो सवाल उठना लाजमी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर पटना, शिमला से लेकर लखनऊ तक पुतले फूकने, वाटर कैनन चलने, चुनाव आयोग के बोर्ड पर काले पोतने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोप भारी है, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटने का आरोप और महाभियोग की मांग। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही सियासी कलेश मिटेगा?
1: नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
0: और ये तो विपक्ष भी नहीं, खुद एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान एलजेपीआर, जिसकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। बहरहाल, उसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोल रहे थे तो पूरा हॉल खचाखच भरा था, लेकिन जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मंच पर आए तो 75 से ज्यादा देशों के राजनयिक बाहर निकल गए। एक दौर था जब ईरान का बहिष्कार होता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। तो क्या इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, या इसराइल ये साबित कर रहा है कि वो अकेला ही काफी है? रेड कार्पेट की चकाचौंध, बॉल्ड ईगल का तोहफा और पैंडा डिप्लोमेसी। जी हां, बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और ट्रंप की। शी जिनपिंग की खातिरदारी में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ी, लेकिन क्या इस भव्यता के पीछे चाइना को वो मिला जो वो चाहता था, या फिर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का सीज फायर बढ़ाकर और पैंडा लेकर बाजी अपने नाम कर ली और शी जिनपिंग के हिस्से सिर्फ रेड कार्पेट ही रह गया? हूती के हमलों के बाद अगली खबर, सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने अपने सैनिकों को आर पार की जंग का फरमान सुना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक सिपाही अपनी आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक डटे रहें। मुफ्ती के इस आक्रामक संदेश ने साफ कर दिया है कि यह जंग अब और भी भीषण होने वाली है। इसराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, या इसराइल पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो अकेला काफी है? जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भाषण दे रहे थे, तब हॉल में अमेरिका और इसराइल जैसे देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के राजनयिक मौजूद रहे। प्रतिनिधि जो थे वो मौजूद थे, बैठे थे। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको महासभा का मुख्य हिस्सा भरा हुआ नजर आएगा, और इनमें वैश्विक नेताओं और राजनयिकों की भारी मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये देखिए, इस एंगल से भी अगर आप देखिए तो काफी लोग दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सिर्फ 2 दिन पहले 23 सितंबर को यह भाषण दिया था, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज भाषण हुआ तो लगभग पूरा हॉल ही खाली हो गया। इसराइल के मीडिया का दावा है कि 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार कर दिया। ये आपको दिख रही है पूरी तस्वीरें वहां की। जैसे ही भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया, वहां हॉल में मौजूद अलग अलग देशों के राजनयिक बाहर चले गए, और इसके बाद इन दो तस्वीरों को लेकर बहस शुरू हो गई, और लोग इस बहिष्कार को इसराइल के लिए इंटरनेशनल आइसोलेशन बताने लगे। ये कहा गया कि जब मुस्लिम देशों के अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भी इसराइल की युद्ध नीतियों के खिलाफ भारी गुस्सा है, जैसे जिन देशों के राजनयिक हॉल छोड़कर चले गए उनमें ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, तुर्की, ओमान, ब्राजील, सूडान, ट्यूनिशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, अल्जीरिया, मलेशिया, किर्गिस्तान का नाम शामिल था। और यहां बात सिर्फ बहिष्कार की नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू भाषण देने के लिए मंच पर आए, तभी हॉल में जोरदार हूटिंग, नारेबाजी हुई, और देखते ही देखते गैलरी के कई हिस्से पूरी तरह खाली हो गए। यहां तक इतना तो समझ आ रहा था ईरान कई देशों को इसराइल के खिलाफ लामबंद करने में कामयाब हुआ है। देखिए,
2: Our schools, our hospitals, our infrastructures, all of it against international law. When I took over the responsibilities as president, they assassinated Ismail Haniyeh in Iran on the day of my inauguration. Israel targets any neighborhood in any city, in any province, commits assassinations like a true terrorist. In Gaza, over 80,000 innocent civilians have been murdered, brutally murdered. Hundreds of thousands have been displaced.
0: वहीं आपने देखा कुछ समर्थक भी थे जो तालियां बजा रहे थे उनके लिए. वहीं बीबी उनको कहा जाता है नेतन्याहू को, तो उनके खिलाफ भी कई लोग निकलते हुए नजर आए. कुछ साल पहले तक यही चीज ईरान के साथ होती थी. उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों के दौरान भारी वॉकआउट होते थे. ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग दिखाई देता था, लेकिन इस बार के सत्र ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया. और इसलिए आज दुनिया में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि जो ईरान अलग थलग रहता था, अब उसके साथ कई देश खड़े हैं. और जो इसराइल अमेरिका के समर्थन से मजबूत स्थिति रखता था, उसके लिए अब हॉल तेजी से खाली हो रहा है. देखिए,
3: हर बराबर सवाल अज होलोकॉस्ट सवाल कुनंदे रा मورد हजमे व तहदीद करार दिदहंद व दर बराबर सवाल अज हादसे 11 सितंबर तहदीद बे तहरीम व हमले निजामी मिकुनंद. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
4: عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل عم إسرائيل.
0: इस वॉकआउट के बाद अब इसराइल ने एक और नई राह पकड़ी है और वो दुनिया को ये कह रहा है कि वो अकेला नहीं है बल्कि अकेला काफी है. आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार हुआ, तब हॉल छोड़कर जाने वाले राजनयिकों को उन्होंने नैतिक रूप से कायर बता दिया. उन्होंने शब्दशः कहा कि जो देश वॉकआउट करके हॉल से बाहर जा रहे हैं, उनमें कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इसराइल ने मदद की है या जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए इसराइल को धन्यवाद दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इशारा सऊदी अरब की तरफ था, जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता रहा है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करने के लिए अमेरिका और इसराइल से बात की थी. सबसे हैरानी की बात यह है कि यूएई ने पिछले साल की तरह इस बार भी बहिष्कार करने वाले देशों में हिस्सा नहीं लिया. यूएई के अलावा बहरीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, पोलैंड, बहरीन, इटली, फिनलैंड, डेनमार्क के राजनयिक भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भाषण सुनते रहे. और जब 40 मिनट का यह भाषण पूरा हुआ तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया. ईरान ने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उसने अपने मंच को इसराइल के प्रधानमंत्री का चुनावी मंच क्यों बनने दिया. यानी ईरान ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो उन्हें भाषण देने के लिए इस मंच पर क्यों बुलाया गया और उनकी जगह यूएन के पोडियम पर होनी चाहिए या अदालत के कटघरे में. सुनिए.
5: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: और अब ये देखिए कि ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर संयुक्त राष्ट्र के मंच को अपनी चुनावी रैली का मंच बनाने का आरोप क्यों लगा रहा है. इसके पीछे बड़ा कारण है इसराइल में अगले महीने 27 अक्टूबर को होने वाले संसदीय चुनाव. आरोप है कि इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के मंच से उठाए जिन्हें वो इसराइल के मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते थे. सबसे पहले उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के उस हमास हमले को याद किया जिसे इसराइल के बहुत सारे लोग आज भी भूले नहीं हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आबादी के अनुपात में यह हमला 9/11 के हमले से 16 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी दुनिया इसकी बात नहीं करती. सुनिए.
5: Altogether, they slaughtered 1,200 Israelis that day. I want to give you an idea of what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours. That's 16 times 9/11. 16 9/11s.
0: प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज अपने साथ स्टारलिंक का एक डिवाइस भी लेकर आए थे. और उनका निशाना ईरान पर था। उन्होंने इस डिवाइस को दिखाते हुए ये कहा कि वो इसे ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए छोड़ रहे हैं ताकि ईरान की जनता अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का क्रूर शासन जल्द गिर जाएगा। हालांकि यहां ईरान भी जानता था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस पर हमलावर रहेंगे। इसीलिए वॉकआउट के बाद ईरान के राजनयिकों ने अपनी खाली सीट पर कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर रख दी थी, जो पूरे भाषण के दौरान नेतन्याहू के सामने दिखती रही। और ये वही कासिम सुलेमानी है जिन्हें अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर साल 2020 में मार दिया था। देखिए,
5: द इरानियन रेजिम इज स्पेशली अफ्रेड व्हेन देयर पीपल हैव दिस, व्हेन देयर पीपल हैव दिस। दिस इज अ कम्युनिकेशंस डिवाइस, स्टारलिंक, दैट अलाउज पीपल टू एक्सेस ट्रूथ, to exercise choice, to exercise freedom of thought and freedom of speech. That's why the Iranian regime spends millions and billions of dollars censoring the internet. Mr. President, I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation, so when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
0: इससे पहले इजराइल के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजनयिकों को स्टारलिंक का इंटरनेट डिवाइस देने की कोशिश की। और जानते हैं इजराइल ये क्यों कर रहा है? इजराइल ऐसा करके ये बताना चाहता है, साबित करना चाहता है कि अगर ईरान की जनता वहां की इस्लामिक सरकार से आजादी नहीं चाहती तो ईरान में इंटरनेट बंद क्यों किया गया है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू स्टारलिंक का ये इंटरनेट डिवाइस लेकर आए। यही नहीं, इसी भाषण में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इसराइल अपने दुश्मनों को कितनी गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए वो अपने साथ एक पेजर डिवाइस या बीपर लेकर आए थे, और ये वही पेजर है जिन्हें लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोसाद ने इन्हें हैक करके इनमें ब्लास्ट कर दिया था। देखिए,
5: Israel hammered Hamas. We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah? Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them. Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets? All aimed at our civilians, they're gone. Hezbollah's leaders, dead.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर बेइज्जती कराने का कोई वर्ल्ड कप होता तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाता। पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता तो ये आतंकवादी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पर घूम रहे होते। ये पुराना वीडियो है, आजकल खूब वायरल है, आपने भी देखा होगा। और उस वक्त शहबाज शरीफ को यही लगा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये बात बोलकर बड़ा तीर मार लिया, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान का कबूलनामा माना और ये कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आंगन में सांप को पाल पोस कर काबू में रखता है ताकि वो पड़ोसियों को ना काटे, उसी तरह पाकिस्तान ने भी आतंकियों को अपने देश में खूब पनाह दी। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के बूट पॉलिश प्रधानमंत्री ने अनजाने में आतंकवाद को शरण देने की बात तो मान ली थी पिछले साल, लेकिन आज जब इसी आतंकवाद पर अमेरिका में उनसे सवाल पूछे गए तो शहबाज शरीफ ऐसे निकले से अचानक सुनने की जो ताकत है वो चली गई हो, कुछ सुनाई ही नहीं दिया उनको। देखिए,
6: प्राइम मिनिस्टर, व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? व्हेन विल यू प्रोसिक्यूट हाफिज सईद? Prime Minister, when will you stop harboring terrorists?
0: मतलब हाथ उठाया। खैर, आज नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उनके भाषण में दो बातें ऐसी रही जिनके बारे में पूरी दुनिया सोचने की जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलते समय किसी का पासपोर्ट या बॉर्डर लाइन देखते और इसीलिए नहीं देखते, और इसीलिए दुनिया को भी इस संकट से निपटने के लिए सीमाओं से परे जाकर सोचना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है. इंसानों ने जमीन के टुकड़ों को तो जमीन में जमीन को टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन ये जो प्रकृति है इसे कोई नहीं बांट सकता. और अगर इस प्रकृति पर संकट है तो इससे निपटने के लिए सबको साथ आकर काम करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अजीब हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश 72 घंटे के भीतर कहीं भी हथियार पहुंचाने में सक्षम, लेकिन गरीबों तक खाना पहुंचाने का लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है. हम हथियार तो बना लेते हैं, हथियारों को अंतरिक्ष में भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर कहीं मानवीय संकट है, भूखमरी है, त्रासदी है, यही देश जरूरतमंद लोगों तक खाना नहीं पहुंचा पाते. आज प्रधानमंत्री बालिन शाह ने बाढ़ में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए भारत और चाइना को भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से धन्यवाद दिया. और अपने भाषण के अंत में पूरी दुनिया को कल्याण और शांति की कामना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ का आह्वान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. देखिए.
7: Lord, and save lives. Let us reform the order that leaves the weakest with least power. And when the next warning comes from the rooftop of the world, let us be ready to hear it and ready to act. Bhagwan Pashupati Nath le bishwa ko kalyan garun, yo bishwa Buddha le dekhayeko bato ma hidna sakos. Dherai dherai dhanyabad, namaste.
0: एआई टेक्नोलॉजी के दो दिग्गज देश चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात चल रही है और अमेरिका में एआई के खतरों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखते हैं कि मेरी भी एआई वर्जन है और मेरी एआई वर्जन भी आपको अब खबरें बताने लगी है. लेकिन ये जो एआई का एक नया अवतार आ रहा है जिसमें उसकी जानकारी बढ़ते जा रही है, जिसको बनाने के पीछे मकसद था इंसानों के काम को आसान बनाना, पूरी मानव जाति के लिए इसे एक सुरक्षा ढाल की तरह तैयार करना, लेकिन अब यह ढाल इतनी ताकतवर होती जा रही है कि यह इंसानों के लिए ही बड़ा खतरा बन सकती है. यह बातें किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगती है कि एआई अचानक से अपना ही उसका दिमाग हो गया, उसने लोगों पर कब्जा कर लिया, सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर्स पर कब्जा कर लिया. लेकिन आज का सच यही है, एआई डेवलपमेंट पर काम करने वाली दिग्गज कंपनीज के सीईओस की सबसे बड़ी चिंता खुद एआई है. मतलब जो एआई पर काम कर रहे हैं वही बता रहे हैं कि एआई इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है. आप और हम भले ही अभी तक एआई को सवाल पूछने, फोटो वीडियो बनाने, किसी तरह का रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक कंपनीज के जो सीईओस हैं वो डरे हुए हैं. जो एआई बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत को बहुत करीब से देख रहे हैं. वो जानते हैं कि ये तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहा जाता है, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा होगी. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमाडोर, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एआई एजेंट को सिखाने पढ़ाने वाली कंपनी यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के को फाउंडर क्लेमेंट डुलोंग जो है वो पहुंचे थे. इन तीनों टेक महारथियों ने जो कि एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से एआई के विकास पर वैश्विक नियम कानून बनाने की अपील की है, बहुत बड़े खतरे की जानकारी दी है. इन तीनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को एआई की बेतरतीब विकास की दौड़ से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताया है. सैम ऑल्टमैन के मुताबिक इस वक्त एआई से दो तरह के खतरे हैं. पहला, एआई से इंसानों का नियंत्रण ही खत्म होना, मतलब एआई हम ही ने बनाया और वो एआई से हमारा ही कंट्रोल खत्म हो जाए. उनके कहने का मतलब है कि इस वक्त एआई इतनी तेजी से सीख रहा है, हम जितना इंफॉर्मेशन एआई को देख रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन इंजेस्ट कर रहा है, अपने अंदर समेट रहा है कि अब ऐसा समय करीब है जब वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, मतलब खुद सोचेगा, यानी वो इंसान के निर्देशों पर नहीं बल्कि खुद अपने कमांड पर चलेगा. वो खुद से सोचेगा, वो खुद से तय करेगा उसे क्या करना है. एक तरह से इंसानों का नियंत्रण एआई पर, मशीन पर खत्म हो जाना, आप समझ रहे हैं इसका मतलब. दूसरी चिंता, एआई की ताकत कुछ लोगों के हाथों तक सीमित रहना. उनका मतलब यह है कि इस वक्त ताकतवर एआई एजेंट्स कुछ ही देशों और कंपनीज के हाथों में हैं, जो बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. सैम ऑल्टमैन ने एक तरह की चेतावनी दी। उनका कहना है कि जिस तेजी से एआई का विकास हो रहा है, इंसानों का आने वाला जो भविष्य है जल्दी ही एआई के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि वी रिस्क लूजिंग द फ्यूचर टू एआई, मतलब भविष्य एआई के पास चला जाएगा, हमारा भविष्य। उनकी अपील है कि सख्त नियम बनाए जाएं जिससे ऐसे एआई मॉडल्स ना बन सकें जिससे जिस पर से इंसानों का ही नियंत्रण खत्म हो जाए। सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना। अब एंथ्रोपिक के जो डैरियो एमरोय हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से आगे जाकर एआई की क्षमता को मानव जाति के विनाश के खतरों से जोड़ा, ह्यूमन रेस का अंत। उनका कहना है कि इस वक्त एआई से दो खतरे हैं। इनमें सबसे पहला है एआई का गलत इस्तेमाल। उनके मुताबिक एआई एजेंट्स का इस्तेमाल अगर आतंकी करने लगे, अगर दूसरे कट्टरपंथी समूह करने लगे, तो इसकी मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डैरियो ने एआई सिस्टम से नियंत्रण खोने को मानव जाति पर एक बड़े खतरे की तरह देखा है। हगिंग फेस के कोफाउंडर क्लेमेंट डिलोंग ने इन खतरों पर सहमति जताई। इससे एक बात और उन्होंने जोड़ी। उनका कहना है कि खतरा इस बात का है कि अगर किसी देश के पास बहुत शक्तिशाली एआई एजेंट है और अन्य देशों के पास वो नहीं है, तो ऐसे देश पूरे सिस्टम के लिए एआई एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
8: इंडस्ट्री को सिर्फ बड़े फायदे और रफ्तार बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम नहीं उठाने चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। नहीं, हम ऐसी किसी दौड़ में फंसे हैं जहां हम ऐसा ना कर पाए। हमने पहले भी अपनी मर्जी से रफ्तार कम की है और आगे भी करेंगे। हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाना चाहते और हमें लगता है कि सभी के लिए ऐसा करना जरूरी है जहां हम जरूरी तालमेल, मॉनिटरिंग और सुरक्षा की गारंटी ना दे पाए। सबसे पहले हमें ऐसे सीमित समझौतों से शुरुआत करनी चाहिए जिनका हर सदस्य समर्थन कर सके, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल हथियार बनाने या अपनी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए करने पर रोक लगाना। हमें ऐसे मूल्यांकन और सत्यापन के लिए सिस्टम बनाने चाहिए जो एआई के विकास के साथ साथ चले, ताकि देश फ्रंटियर मॉडल की क्षमताओं को समझ सके और एक दूसरे की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि कर सके। तीसरा, हमें एआई मॉडल के नियंत्रण होने और उनके गलत इस्तेमाल के जोखिमों की जांच के लिए आम वैश्विक मानक तय करने चाहिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एआई घटनाओं की सूचना देने वाले सिस्टम भी बनाने चाहिए। हमारा पक्का मानना है कि डर फैलाने वाली बातें इतनी बुनियादी और ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सही फैसले लेने या लोगों को अपने साथ जोड़ने का सही तरीका नहीं है। भले ही हम इस साइबर हमले का शिकार हुए, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा यकीन है कि एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद होगा और दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले की बड़ी टेक्नोलॉजी ने किया था। हम पर एआई से हमला हुआ, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि हमने एआई की मदद से ही अपना बचाव किया।
0: अब सवाल यह है कि एआई से इंसानों को किस तरह का खतरा हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मुख्य रूप से एआई दो तरह के हैं। पहला है एआई चैटबॉट, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इससे सवाल पूछते हैं, ये आपको जवाब देता है, आपका टास्क पूरा करता है। आप कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिख के दो, आप कहते हैं ये होमवर्क खत्म करके दो, टिकट बुक करा दो, तो ये आपका तरीका बताएगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं। दूसरा है एआई एजेंट, इसे आप कोई काम देते हैं तो ये आपको कुछ बताता नहीं बल्कि वो पूरा काम कर देता है। जैसे आपको टिकट बुक करना हो तो आप इसे अपनी जानकारी दीजिए, किसी भी तरह से आपको वो टिकट बुक करके देगा। असली खतरा इस एआई एजेंट से है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक एआई एजेंट ने सरकारी वेबसाइट को ही हैक कर लिया। ये जानकारी खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को दी है। ओपन एआई के इस एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से जुड़ी मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस में सेंध लगा दी। इस एआई एजेंट ने डेटाबेस में अपनी सीमाओं को लांघते हुए संवेदनशील सेंसिटिव फाइल्स तक पहुंच बनाई, उसके डेटा में फेरबदल किया, नई फाइलें जोड़ दी। डर की असली वजह यह है कि इस एआई एजेंट को सरकारी अधिकारियों ने ही स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर रिसर्च का काम दिया था। अब आप खतरा समझ रहे हैं? आप ही एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एआई एजेंट आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसे कहीं आगे जाकर ऐसा काम कर रहा है जो सच और झूठ का फर्क मिटा देगा, फाइल में नई बातें जोड़ देगा, फाइल से नई पुरानी बातें हटा देगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसने खुद पर लगाए गए सारे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि एआई एजेंट पर सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसने तोड़ दिया। फिर इसके बाद उन हिस्सों तक पहुंच गया ये एआई एजेंट जहां उसे जाने से मना किया गया था। अब आप सोचिए कि ये एआई एजेंट इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने अपने लिए बनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। एक तरह से उसने इंसानों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं माना। अभी 2 महीने पहले ओपनएआई ने एक साइबर अटैक के बारे में दुनिया को बताया था जो उसके ही बनाए गए चैट जीपीटी एजेंट्स ने किया था। कंपनी का कहना था या उनके एआई एजेंट्स बागी हो गए थे। इन बागी एआई एजेंट्स ने बिना कमांड के कंपनी के सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया था। ओपनएआई ने अपने एआई एजेंट्स को साइबर सिक्योरिटी टेस्ट का काम दिया था। उन्हें एक अलग सिस्टम पर रखा गया। इस सिस्टम का इंटरनेट एक्सेस भी सीमित कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इन एआई एजेंट्स ने टास्क पूरा करने के लिए आपस में ही एक मैसेज बोर्ड बनाया, उससे बात करनी शुरू की, फिर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया। और इसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हगिंग फेस के सिस्टम को हैक कर लिया। हगिंग फेस ने तो इस हैकिंग को एआई एजेंट्स के द्वारा खुद से की गई हैकिंग कहा है। एंथ्रोपिक में भी ऐसा ही हुआ था। उनके एआई एजेंट्स ने भी साइबर सुरक्षा जांच के दौरान बिना कमांड दिए 3 कंपनीज के सिस्टम को हैक कर लिया। और हैरानी की बात यह थी कि एआई एजेंट्स को कहा गया था कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके बिना ही उसे सुरक्षा जांच करनी है। बावजूद इसके उन एआई एजेंट्स ने इंटरनेट एक्सेस हासिल किया, 3 कंपनीज के सिस्टम्स में घुस गया। मतलब काम पूरा करने के लिए उसने इंसान द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना। सिर्फ यही एक खतरा नहीं है बल्कि एआई का एक खतरा इसका गलत इस्तेमाल भी है। एंथ्रोपिक ने इसी महीने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने उनके एआई एजेंट के जरिए हाईटेक हथियार, खतरनाक मिसाइल्स बनाने की कोशिश की। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये लोग हथियार बनाने में कामयाब रहे। यह अलग बात है कि उनका टेस्ट फेल हो गया था और कंपनी ने इन यूजर्स का एक्सेस बंद कर दिया। पिछले महीने साउथ कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जिनियंस ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप किमसुकी ने साइबर अटैक के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल किया। ये एआई एजेंट्स उनके लिए नॉनस्टॉप ऑटोमेटिक फिशिंग अटैक कर रहे हैं। हाल ही में चाइना के एक हैकर ने डीपसी, किमी और क्लॉड के एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके 5 दिन के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज पर ऑटोमेटिक साइबर अटैक किए, 6 लाख क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां चुरा ली। साइबर अटैक, हैकिंग और हथियार बनाने में एआई एजेंट्स की मदद लेना दुनिया के लिए एक खतरा है, लेकिन एक खतरा इससे भी बड़ा है। दुनिया में कई लोग और समूह एआई से जैविक हथियार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कल्पना कीजिए, एंथ्रोपिक ने इसी महीने थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनके एआई मॉडल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में किया है। उसे डर है कि ये प्रयोग जैविक हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है। कंपनी के मुताबिक एक ग्रुप उनके एआई एजेंट्स को चिकनगुनिया वायरस को तेजी से फैलाने और इंसान के इम्यून सिस्टम को तोड़ने का काम दे रहा था। इसी तरह से एक यूजर उनके एआई एजेंट को बर्ड फ्लू वायरस के हवा में फैलने से जुड़े उसके गुणों के अध्ययन का काम दिया हुआ था। यानी मुमकिन है कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल ऐसे हथियार बनाने में कर रहे हों जिससे पूरी मानव जाति को खतरा। और इन्हीं खतरे के बारे में टेक कंपनीज के सीईओज ने यूएनएससी की बैठक में दुनिया को आगाह किया है। 11 साल बाद जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की सरजमीन पर स्टेट विजिट पर पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत ऐसा किया जैसा शायद ही किसी ग्लोबल लीडर का हुआ। लेकिन सवाल यह है कि रेड कार्पेट की इस भव्यता के पीछे हासिल क्या हुआ? क्या व्यापार, ताइवान, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे मोर्चों पर लगी आंच धीमी हुई, या फिर यह पूरी मुलाकात महज एक ऑप्टिक्स यानी तस्वीरों का खेल बनकर रह गई? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की आवभगत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी? अमेरिका के नेशनल सिंबल बॉल्ड ईगल की एक शानदार कांस्य मूर्ति शी जिनपिंग को सौंपी गई जिसकी डिजाइन खुद फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के सहयोग से तैयार की गई थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका की फ्री एंड सोरिंग स्पिरिट का प्रतीक बताया। लेकिन कूटनीति के चश्मे से देखें तो आखिर शी जिनपिंग की इस खातिरदारी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के सीज फायर को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया जो कि नवंबर में खत्म होने वाला था, जिसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को चुनावी आर्थिक दबाव के बीच कुछ महीनों की राहत जरूर मिल गई। चाइना ने आधिकारिक तौर पर पिंगपिंग और फुशुआंग नाम के 2 विशाल पैंडा अटलांटा भेजने का ऐलान किया जिसे ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत के रूप में पेश किया। ट्रंप ने अपने समर्थकों और उद्योगपतियों को दिखाया कि वो चाइना को झुकाना ना सही लेकिन मेज पर लाकर अमेरिका की शर्तों पर बात कराने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इस भव्यता के बावजूद शी जिनपिंग को वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे। चाइना उम्मीद ये कर रहा था कि ये ट्रेड पॉज कम से कम एक साल के लिए बढ़े ताकि शी जिनपिंग ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल तक सुकून की सांस ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और एडवांस चिप्स पर गतिरोध बरकरार रहा। ट्रंप ने शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रेड कार्पेट के इस भव्य स्वागत के पीछे की हकीकत भी उतनी ही चमकदार है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप शी जिनपिंग को सम्मान दे तो रहे हैं, लेकिन चाइना का सामान नहीं खरीद रहे। आंकड़ों की जुबानी समझिए, साल 2018 में अमेरिका दुनिया से जितना सामान आयात करता था उसमें अकेले चाइना की हिस्सेदारी थी 21.2%। लेकिन जुलाई 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि चाइना की यह हिस्सेदारी अब घटकर हो गई है 7.9%, यानी लगभग 8%, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच अमेरिका ने चाइना से सिर्फ $156.4 बिलियन का सामान खरीदा, जो 2018 के मुकाबले $296.5 बिलियन जो उस वक्त का था उसके मुकाबले करीब करीब आधा रह गया है। दूसरी ओर अमेरिका से चाइना को होने वाला निर्यात भी घट गया है और अब महज 4.5% पर आ गया है। जो व्यापार घाटा 2018 में $418.2 बिलियन का था, वो अब जानते हैं कितना, $165.1 बिलियन। तो अमेरिका ने इस पर काम किया, चाइना से सामान कम खरीद रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना ने अमेरिका आने वाले फोन्स और होम अप्लायंसेस में लगभग 39.1% की भारी गिरावट आई है, जबकि खिलौनों और स्पोर्ट्स गुड्स का निर्यात 37.1% घट गया है। इसके विपरीत अमेरिका अब चाइना को तकनीक बेच रहा है। 2025 में अमेरिका से चाइना जाने वाले सिविल एयरक्राफ्ट और स्पेयर पार्ट्स 37.3% बढ़कर $15.9 बिलियन पर पहुंच गए, और सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का निर्यात वो भी लगभग 10.2% बढ़ा। वहीं दुनिया भर में चाइना का जो कुल ट्रेड सरप्लस है भले ही 3 गुना बढ़ गया हो, लेकिन अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस आधे से भी कम रह गया है। हालांकि मई 2025 में अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया था और ट्रेड वॉर पर ब्रेक लगाया। फिर भी बीते 14 में से 11 महीनों में अमेरिका की चाइना से खरीदारी लगातार घटी है। साफ है कि सिर्फ टैरिफ घटा देने से व्यापारिक रिश्ते पुराने दिन नहीं लौटा पा रहे। यानी रनवे पर गर्मजोशी से हाथ मिलाना, रेड कार्पेट बिछाना, लोट लोट कर कार्पेट को साफ करना अपनी जगह कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके बाजार का संदेश साफ है कि आयात के मोर्चे पर अमेरिका अब चाइना पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब आपको बेहद शांत दिखने वाले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठहाके जरा दिखाते हैं। आमतौर पर पोकर फेस यानी बहुत गंभीर माने जाते हैं संयमित दिखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्हें हंसाने वाले कोई और नहीं, खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ट्रंप शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम दिखा रहे थे। जब वो जो बाइडेन की जगह पहुंचे तो वहां बाइडेन की तस्वीर नहीं बल्कि ऑटो पेन की फोटो लगी थी। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, ये ऑटो पेन है, ये बाइडेन है। बस फिर क्या था, शी जिनपिंग खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। जमुई में एक बेटी को सड़क पर घेर कर घिनौनी हरकत की जाती है। समस्तीपुर में सरेआम सड़क पर आबरू नीलाम की जाती है और अब बांका के मंदार पर्वत पर जो हुआ उसे साबित कर दिया है कि बिहार में बेटियों के लिए सड़क हो या पर्यटन स्थल, हर रास्ता खौफ की गवाही दे रहा है। और आज एक बार फिर हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये पूछ रहे हैं कि ये तमाम एक के बाद एक सामने आती घटनाएं क्या आपको जगाती नहीं है? आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब बिहार में लड़कियों के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए हैं, वो रात में भी कहीं आ जा सकती हैं। यही है वो सफाई, यही है वो सुरक्षा। सवाल ये है कि क्या बिहार की बेटियां अब अपने ही घर की चौखट लांघना बंद कर दें, घरों में बंद हो जाएं? ये मंदार पर्वत की ऐतिहासिक भूमि है जहां कभी आस्था सिर झुकाती थी, आज वहां दरिंदगी सिर उठा रही है। तस्वीरों में दिख रहे इन भेड़ियों को देखिए, अब्दुल्ला, नीतीश, विकास एक बेबस लड़की को रास्ते में रोकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, चप्पलों से पीटते हैं, जब मन इतने से भी नहीं भरा तो इससे ऑनलाइन 1500 रुपए की रंगदारी वसूलते हैं। ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा और कार्रवाई शुरू हुई।

0: जमुई से लेकर समस्तीपुर और अब बांका, हर बार एक ही कहानी। बेटियां बाहर निकलती हैं, झुंड में भेड़िए घेरते हैं, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हैं, आबरू से खेलते हैं, वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। क्या इन अपराधियों के लिए कानून मजाक बन चुका है? और वाकई मजाक है, क्योंकि पुलिस को कोई सुध नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। वो तो जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, चारों तरफ से वो घिरते हैं, तब जाकर होश में आते हैं और घर पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराते हैं। सोचिए उस बाप पर क्या गुजरती होगी जब उसकी बेटी घर से कॉलेज या घूमने के लिए निकले। सोचिए उस माँ का कलेजा कैसे कांपता होगा, उसकी बेटी 10 मिनट देर से घर पहुंचे कितना डर जाती होगी। आज बिहार में सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, वजूद का है। ऐसा लगता है कि कदम कदम पर हवस के भेड़िए घात लगाकर बैठे। पुलिस कहती है कि अब्दुल्ला, नीतीश, विकास को हिरासत में लिया गया है, SIT छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून का डंडा वारदात को रोक क्यों नहीं पा रहा है? गश्त लगाने वाली गाड़ियां उस वक्त कहां सोई होती हैं जब मंदार पर्वत जैसे खुले पर्यटन स्थल पर घंटों गुंडागर्दी चलती रहती है, वीडियो बनाया जाता है। 15 सितंबर के आसपास घटी ये घिनौनी वारदात यूं ही दब जाती अगर 23 सितंबर की रात सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल ना होता। ऐसा ही जमुई में भी हुआ था। जमुई में भी घटना के 2 दिन बाद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उसे चिन्हित किया और फिर जाकर FIR दर्ज किया, एहसान किया, और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 32 साल का विकास शर्मा, 19 साल का राहुल पासवान, 38 साल का राम बाबू सहनी और 46 साल का अवधेश पासवान इसमें शामिल। सोचिए 38 और 46 साल के अधेड़ बाप और चाचा की उम्र के लोग 19 साल के लड़के के साथ मिलकर एक नाबालिग की आबरू पर हमला कर रहे थे। इनमें से एक आरोपी का पहले से शराब तस्करी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस उन्हें अब समस्तीपुर की पॉक्सो कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज रही है। लेकिन सवाल कानून की कार्रवाई से आगे उस मानसिकता का है जो सड़कों पर घूमते फिरते भेड़िया बन जाते हैं। जमुई से समस्तीपुर तक आखिर ये कौन सी कुंठा है जो भीड़ के रूप में किसी अकेली लड़की को देखते ही हावी हो जाती है? चाहे बिहार का जमुई हो, समस्तीपुर हो या फिर राजधानी का कालकाजी, वारदात की जगहें बदलती हैं लेकिन बेटियों के लिए खौफ का साया नहीं बदलता। दिल्ली के कालकाजी इलाके में 21 सितंबर को 17 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात हुई। ये घटना आस्था कुंज पार्क में हुई, दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। और इसी कॉलेज के पिछले गेट से सिर्फ 50 मीटर दूर पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस घटना ने लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के उस खौफ को जुबां पर ला दिया जिसका वो हर रोज कॉलेज आते जाते सामना करती है। इतनी असुरक्षित जगह पर है। सबसे कड़वी हकीकत यह है कि देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है महिलाओं का, लेडी श्रीराम कॉलेज, जहां देश की तमाम होनहार लड़कियां पढ़ने का सपना देखती हैं। उसी कॉलेज के बाहर आज छात्राओं के लिए कदम रखना मुश्किल हो गया है। नेहरू प्लेस, डिफेंस कॉलोनी, लोटस टेम्पल, लाजपत नगर, दिल्ली के पॉश इलाकों के बीच भी यहां पढ़ने वाली छात्राएं सुरक्षित नहीं है। कॉलेज में घुसने से पहले, कॉलेज से बाहर निकलते ही एक पूरा इलाका है जहां से वो कहती हैं कि ऑटो में आने वाले लड़के उनको खींचते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे वहां पर एक्शंस करते हैं। लड़कियों का सामना मंचलों की अश्लीलता, घिनौनी हरकतों से होता है। कैमरे पर छात्राओं ने जो खुलासे किए हैं रोंगटे खड़े करने वाले, रास्ते में खड़े होकर सरेआम घिनौनी हरकत करने वाले मवाली, गाड़ियों में पीछा करते असामाजिकता, फप्तियां कसते गुंडे, ये LSR के बाहर का रोज का मंजर है। पास ही अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन मौजूद है लेकिन खाकी की नाक के नीचे लड़कियों की इज्जत, उनकी सुरक्षा दांव पर लगती है और पुलिस जैसे सोती रहती है। यहां लड़कियां ग्रुप बनाकर चलने को मजबूर हैं क्योंकि अकेला कदम बढ़ते ही कोई ना कोई हैवान रास्ते में घात लगाए बैठे मिलता है। लेकिन मजाल है जो पुलिस वहां पर इनको सुरक्षा दे पाए, और इसीलिए तो इन लड़कियों को सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी है। आज उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज जोड़ रहे हैं, सुनिए वो क्या बता रही है।
1: आदमी पीछा करते हैं, कारों ने पीछा किया हुआ है, आदमी कैट कॉल करके जाते हैं, सीटियां बजा के जाते हैं, उसके बाद आगे की तो मैस्टरबेट कर रहे होते हैं खुले में आपकी आंखों में देख के, वो होते हैं और ग्रोप छूने की कोशिश करते हैं, छूते भी हैं, कुछ पीछे पड़ जाते हैं।
2: सी हम साउथ दिल्ली में हैं, दिस इज सपोज टू बी अ सेफ लोकैलिटी एंड व्हाई इज इट शुडंट बी दैट एनी स्पेस इज अनसेफ फॉर वुमेन, नो एवरी स्पेस इज सपोज टू बी सेफ, सो दैट्स अ सिस्टमिक फेलियर, सो आई फील लाइक इट्स अ बेयर मिनिमम।
3: यू सी लुक एट द फेसेस आर कवर्ड because they don't want to be seen by the administration because you don't know what they'll do. So this is, you know, this is very disappointing and I am paying a premium price to live in this area, to live in Amar Colony, and rapists are roaming around here in this area behind our college. Women get flashed every day. There are cases and then there will be a message circulating in the groups that oh, be careful, leave in groups, and then that's it.
0: पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग, और हमारे देश में चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली एक एजेंसी नहीं है। भारत के लोकतंत्र में करोड़ों लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास है चुनाव आयोग को, उस विश्वास का सबसे बड़ा कस्टोडियन यानी संरक्षक माना जाता है। और इसीलिए आज जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, इस्तीफा तो दूर अब गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तब हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। उससे पहले आप कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की और गिरफ्तारी की मांग की गई है। इनमें भी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का मास्क पहनकर उन्हें देशद्रोही बताया, जबकि लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, गुवाहाटी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की अगुवाई में पैदल मार्च निकाले गए। इसके अलावा शिमला में प्रदर्शनकारी

0: एक पोती है। जबकि लखनऊ में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और पटना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि इन सभी विरोध प्रदर्शनों में ज्ञानेश कुमार कांग्रेस के निशाने पर रहे। कुछ शहरों में उनके पुतले जलाए गए जबकि कुछ शहरों में 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
0: इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी खबरें भी आई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में अपने 2 कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल होने वाले थे। इनमें पहला कार्यक्रम मेरठ में आज यानी 25 सितंबर को और दूसरा कार्यक्रम वाराणसी में 28 सितंबर को होना था और कांग्रेस नेताओं का ऐसा दावा है कि विरोध के डर से ज्ञानेश कुमार ने खुद इन कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये दोनों कार्यक्रम 21 सितंबर को ही स्थगित किए गए थे और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ विवाद क्या है वो भी समझिए। ये बात सब जानते हैं कि विपक्ष पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा उसने वोटर लिस्ट के रिविजन को बनाया जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहते हैं यानी SIR, आपने भी सुना होगा। ये वही रिविजन है जिसके तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं और विपक्षी दलों ने इस पर बार बार सवाल उठाए। इसी साल 12 मार्च को कुछ विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी और उनका आरोप था कि ज्ञानेश कुमार SIR के जरिए वोटर्स का नाम काटकर चुनावों में बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस वक्त 6 अप्रैल को लोकसभा में यह प्रस्ताव स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया था और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने SIR के इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कभी नहीं छोड़ा और इस पर उसकी तरफ से लगातार चर्चाएं चलती रही और अब जब इस पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए तो विपक्ष को यह साबित करने का मौका मिला कि वो जो सवाल उठा रहा था वो सवाल गलत नहीं थे। अब द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, सरलता से आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग में लगभग सभी बड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद ले रहे थे जबकि नियमों के खिलाफ है। कानून कहता है कि चुनाव में जो शीर्ष 3 सदस्य होंगे उन्हें सभी फैसले सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से लेने होंगे। या तो तीनों एक तरफ हों या फिर कम से कम 2 लोग फैसले के समर्थन में हों। अगर फिर भी सदस्यों में मतभेद है तो जैसा हमने आपको बताया 2 out of 3 तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। लेकिन कोई सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त खुद अपनी मर्जी से सिर्फ एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। जबकि ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कम से कम 14 बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में ज्ञानेश कुमार ने बाकी 2 आयुक्तों की असहमति को शामिल ही नहीं किया। ये 2 आयुक्त थे सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी जिनकी तस्वीर आप उनके साथ देख रहे हैं। दावा है कि इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR की प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों पर 14 आपत्तियां लिखकर दी लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपने अंतिम फैसले में उन्हें शामिल ही नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आयुक्तों को कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिखना पड़ा लेकिन तब भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि बीजेपी का इस पर दावा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी गई चिट्ठियां या फिर जो भी इन्होंने आपत्तियां जताई थी उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। यानी यहां से अगर आप देखिए तो विपक्ष जो आरोप लगातार लगा रहा है, विपक्षी नेताओं का तो ये कहने का मौका उनको मिल ही गया कि चुनाव आयोग के अपने ही आयुक्त SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा

0: रहे थे लेकिन ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जियां चला रहे थे। दूसरा दावा इस रिपोर्ट में यह है कि चुनाव आयोग के अंदर मतभेद इस कदर बढ़ चुके थे कि 9 सितंबर 2026 को हुई बैठक से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच पिछले 4 महीने में एक भी संयुक्त बैठक नहीं हुई थी। यानी ये तीनों एक साथ जो फुल कमीशन की बैठक होती है वो 4 महीने से नहीं हुई थी। और इस पर भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने खुद को चुनाव आयोग का अल्टीमेट बॉस समझ लिया था। अब ये देखिए कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्तियां जताई और ज्ञानेश कुमार ने अपने फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया। इनमें पहला मुद्दा है फॉर्म 6 में बदलाव का। जब कोई नया वोटर मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम जुड़वाता है तब उसे ये फॉर्म भरना होता है। पहले इस फॉर्म में नए वोटर से ये नहीं पूछा जाता था कि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पुरानी वोटर लिस्ट या SIR की सूची में था या नहीं। लेकिन पिछले साल इस सवाल को भी फॉर्म में एक एनेक्सर के जरिए एक एडिशनल पेपर के जरिए ये बात भी अब पूछी जा रही है। जब ये फैसला हुआ तब दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस पर लिखित आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि फॉर्म 6 को इस तरह बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई भी नया पेपर नहीं जोड़ा जा सकता, इसके लिए पहले सरकार को नियम बदलना पड़ेगा, सरकार कानून में बदलाव करे फिर ये हो सकता है। उनके साथ दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू ने भी विरोध जताया लेकिन उनके विरोध के बावजूद ये सवाल फॉर्म में एक एनेक्सर के जरिए डाला गया और 21 सितंबर तक इसे हटाया नहीं गया था। दूसरा बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि वोटर लिस्ट का कंट्रोल स्थानीय अधिकारियों के पास रहे या सीधे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रहे। जैसे पहले स्थानीय अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं जिसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं ERO, वो किसी भी वोटर की जांच कर सकता था। मतलब वोटर का नाम ऐड करना है या निकालना है ये उसका काम था। अगर उसे लगता था कि उस वोटर का पता सही है, उसने जो जानकारी बताई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो अपने स्तर पर कंप्यूटर में उस वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकता था, घटा सकता था। और इस व्यवस्था में दिल्ली में बैठे बड़े अफसरों का सीधा दखल होता ही नहीं था। लेकिन पिछले एक साल में आरोपों के मुताबिक ये व्यवस्था बदली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जो IT विभाग में नया सॉफ्टवेयर ECINET बनाया जिसको डिजिटल बैकबोन चुनाव आयोग का बना दिया गया, कई पोर्टल्स 40 के आसपास पोर्टल्स को खत्म करके, और अब स्थानीय अधिकारी सिर्फ नाम का सुझाव दे सकता था। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ECINET में अब जो स्टेट में जो लोग काम कर रहे थे धीरे धीरे बताया जा रहा है आरोप है कि वो जो पहले फैसले ले रहे थे वो अब नहीं ले सकते थे। लेकिन अंतिम बटन या अप्रूवल दिल्ली से होता था और इस बदलाव का भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने लिखित विरोध किया था। लेकिन आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। अब इससे हुआ ये कि गोवा में जिन मतदाताओं को स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने सही पाया उनके नाम भी दिल्ली में बैठे अफसरों ने वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। और आरोप यही है कि गोवा से बार बार उन 97 वोटर्स के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी लेकिन बावजूद इसके उनको नहीं जोड़ा गया। तीसरा आरोप पश्चिम बंगाल के उन मतदाताओं को लेकर था जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। और यहां भी दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों से सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी इन फैसलों को लागू किया गया। और आखिर बड़ा विवाद तब हुआ जब जुलाई के अंत में चुनाव आयोग के अंदर प्रशासनिक काम के बंटवारे को लेकर आदेश जारी किया गया और उसे दोनों आयुक्तों ने खारिज कर दिया और ये कहा कि इसके जरिए चुनाव आयोग को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। और क्योंकि विपक्षी दल पहले से ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रहे थे इसलिए इस रिपोर्ट के आते ही नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और गिरफ्तारी दोनों चाहिए। इसी के साथ साथ देश भर में विरोध की बात कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है और उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि NDA के 3 सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें पहले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिन्होंने ये कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह बढ़ना ठीक नहीं, चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। NDA में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि SIR और EVM से जुड़े विवाद को लेकर जनता में भ्रम है इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने भी चुनाव आयोग से सवालों का जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की ताकि उस पर जनता का भरोसा मजबूत रहे। सुनिए।
1: मैं मानता हूं कि ये स्वतंत्र एजेंसी संस्थाएं हैं, निष्पक्षता से कार्य करती होंगी, पर अगर देश के एक भी नागरिक के मन में इस तरीके का भ्रम आता है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग के ऊपर ही है।
2: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए।
3: चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा कांड और भ्रष्टाचार किया है, चुनाव को हाईजैक किया है, वोट चोरी की है, सब कुछ किया है। SIR का जो मुद्दा सामने आया है वो क्या है?
4: हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में एक के बाद एक वोट चुरा चुरा के, सरकारें चुरा चुरा के इनकी झोली में डाल दी।
5: आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
0: अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी जो सिक्किम में भारी बारिश बाढ़ भूस्खलन से जुड़ी हुई है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। कुदरत का ये खौफनाक रूप सिक्किम के ग्याल शिंग जिले के रिम्बी गांव का है जहां रात में अचानक हुए लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। पहाड़ियों से आए मलबे, पत्थरों और रेत के सैलाब ने 32 से ज्यादा रिहायशी मकानों और 4 सरकारी आवासों को अपनी चपेट में ले लिया। पानी के भारी बहाव में गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। राहत की बात यह रही कि प्रशासन की मुस्तैदी से समय रहते करीब 128 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों का आशियाना और पूरी गृहस्थी इस मलबे के नीचे दफन हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से लैंडस्लाइड वाले इलाकों और नदियों के पास ना जाने की सख्त अपील की है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही है। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हर व्यक्ति अपनी स्थिति में संघर्ष कर रहा है इसलिए हर मौन अहंकार नहीं होता।

0: आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी। ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमएबीपी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधु और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अबाद पंजाब के जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं, साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
1: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही, और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी, और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी, और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
11: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं, और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं, और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ, और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
1: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था, एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
12: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है, यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है, और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
1: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
13: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले 4 दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी, और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है, वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
1: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
14: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और घर भी वही रहे हैं।
1: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है।
15: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
16: लड़की का पता चला अभी?
15: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है, तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई।
1: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के 2 बजे फोन कर माँ दूरी ऐसे यहाँ पे मारी से तार पिछले तार तक देख लो कोट मारे की कथा ना देख लो मेडिकल देखी चलो डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से गोलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग ইয়াতে আছে ডাক মই তো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: लगभग इस वाली मो मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गोटी के व्यवस्था है। मो एक को ना जानो, एक को ही गम ना पाऊं, कुने की कोड़ी से, केवल मो डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से, मोर स्वाली जने के कोस्तो पाए, मोरी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे, এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করেছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করেছো, শাস্তি তো পাবো লাগে দোষী সম্পূর্ণ শাস্তি সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাবো।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায় জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাশ গোরা, গুয়াহাটি, আজ তক।
3: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
3: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और इसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
5: एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
6: जी जर्नैल जी।
7: जी परेश भाई, क्या हाल
6: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
7: मैं तिलकनगर में हूँ।
6: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
8: कहाँ रह गए सर?
5: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
3: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे है। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
9: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
9: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
10: प्रशांत सिंह।
9: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
10: प्रयागराज।
9: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
10: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा हुआ।
9: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
10: अब इतना जल भरा हो इसमें, जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
9: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। यह अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
11: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
12: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़कांड में सियासत, बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी, लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी और अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं, साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
1: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही, और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी, और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी, और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
11: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं, और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं, और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ, और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
1: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
12: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
1: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जांच की जा रही है।
13: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया। पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
1: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
14: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
1: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है।
15: एफआईआर हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
16: लड़की का पता चला अभी?
15: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट एफआईआर हुई है। तो हम सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
1: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के 2 बजे फोन कर चलाता है, माँ मुख बुकत दूरी ऐसे यहाँ ते मुख मारी ऐसे तार बिचार तार तक नहीं देख लो कोट मर से की कथा ना देख लो मेडिकल और देखी चलो ताई डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से बोलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग ইয়াতে আছে ডাক মইতো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गोटी के व्यवस्था मैं एक ना जानू, एक गम नपाव कने की केवल मैं डेड बडी तो पाई निश्चय विचार मोर छी जने कष्ट पाए मरीसे तेनेकवा शास्ति दी लगे এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূৰ্ণ শাস্তি সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্তি পাব লাগে।
0: নিমিষা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মে সমাজশাস্ত্ৰ কি ছাত্ৰা থি আৰু ধাৰাপুৰ কি ৰহনে ৱালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ৱজা আৰু ঘটনাক্ৰম কো লেকৰ কাই সৱাল হে জিসকা জৱাব পুলিচ কি যাঁচ আৰু পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হে। পূৰ্ণ বিকাশ গোৰা, গুৱাহাটী, আজ তক।
3: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे, इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
3: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
5: एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
6: जी जर्नैल जी।
7: जी परेश भाई, क्या हाल
6: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
7: मैं तिलकनगर में हूँ।
6: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
8: कहाँ रह गए सर?
5: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
3: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
9: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
9: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
10: प्रशांत सिंह।
9: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
10: प्रयागराज।
9: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
10: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा हुआ।
9: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
10: अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
9: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही हैं।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। यह अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
11: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
12: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर

0: किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
2: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
2: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए, ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
4: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
3: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
4: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
3: स्पेन है
4: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
3: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
4: हाँ, एकदम वायरल है।
3: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग है जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है, जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
5: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या। हेलो,
5: सामने खड़े हमारे।
6: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है, पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
5: हेलो पार्षद जी,
6: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
5: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था।
6: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
5: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जल भरा हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभरा भी दिखा।
7: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा

0: मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात में गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
2: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गहर, चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है। कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग, संधु और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

0: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
1: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
0: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था, एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
2: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी एकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
0: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
3: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
0: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
4: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
0: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जाँच के लिए SIT बना दी गई है।
5: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
6: लड़की का पता चला अभी?
5: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
0: अब एक तरफ जाँच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: রাতে 2টা বজাত ফোন করেছিল, তাই মা মোক বুকত ঘুরি আইছে, ইহাতে মোক মারি আছে, তারপর আর তাই নেদেখিলো, কত মারছে কি কথা না দেখিলো, মেডিকেলত দেখিছিল, তাই ডেড বডি পড়ি আছে।
0: নিমিষা কে পিতা বাতাতে হ্যাঁ কি উসকে চেহারে আর শরীর পর ভয়ানক চোটো কে নিশান থে,
1: জখম আছে, বলত আছে, দাগ হাতত আছে, দাগ ফেরাত আছে, দাগ ইয়াতে আছে, দাগ মইতো ভাবি এটা দলবদ্ধ ধর্ষণ, গতিকে ইয়ারে উচিত বিচার হব লাগে, আপনার দ্বারাই মই এই।
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है, तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग सवाली मोक मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गति के व्यवस्था है, मोक एको ना जानो, एको ही गम ना पाऊं, कुने की कोड़ी से, केवल मैं डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से, मोर सवाली जने के कोस्तो पाई मोरी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे, এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করেছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করেছো, শাস্তি তো পাবো লাগে, দোষী সম্পূর্ণ শাস্তি, সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাবো।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায় জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাস গোরা, গুয়াহাটি, আজ তক।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
5: आपको बता दें मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको, टोल देखिए, टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
5: आप लोग भाई साहब क्या नाम है आपका?
6: प्रशांत सिंह।
5: प्रशांत जी आप कहाँ जा रहे थे?
6: प्रयागराज।
5: प्रयागराज जा रहे थे तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
6: पानी भरा हुआ आप भी देख लीजिए सामने
5: भरा। पानी भरा क्या डर लग रहा है?
6: अब इतना जल भरा हो इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
5: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। डेढ़ महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
7: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
8: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
9: हमके लगाला स्पेन, हमके लगाला ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगाला, काहे कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
9: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
10: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका?
11: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
10: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
11: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
10: स्पेन है
11: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहे हैं सांसद जी।
10: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है?
11: हाँ, एकदम वायरल है।
10: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर, और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं, और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई, तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
12: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
13: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो,
12: सब सामने खड़े हमारे।
13: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
13: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
12: हेलो पार्षद जी,
13: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
12: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
13: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
12: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
14: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले 3 दिनों के बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गहर, चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है। कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तलक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग, हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अबाद पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं, साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
1: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही, और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी, और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी, और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
11: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं, और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के वो आ रहे हैं, और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ, और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
1: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
12: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
1: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जांच की जा रही है।
13: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया। पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है, वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
1: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
14: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
1: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है।
15: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्परेट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
16: लड़की का पता चला अभी?
15: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
1: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से गोलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग इते से दाग मैं भाव दलबद्ध धर्षण गति के उचित विचार हम लगे अपने द्वारा मैं
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग इस वाली मोक मर्डर हुई है, गति के व्यवस्था है। मोक एको ना जानो, एको ही गम ना पाऊं, कुने की कोड़ी से, केवल मैं डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से, मोर स्वाली जने के कोस्तो पाई मोरी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे, এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করেছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করেছো, শাস্তি তো পাবো লাগে দোষীয়ে, সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাবো।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায়, জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাশ গোরা, গুয়াহাটি, আজ তক।
4: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
5: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
4: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
6: एक वीडियो जो आज चल रहा है, आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
7: जी जर्नैल जी।
8: जी परेश भाई, क्या हाल
7: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
8: मैं तिलक नगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
9: कहाँ रह गए सर?
6: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गई। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
10: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
10: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
11: प्रशांत सिंह।
10: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
11: प्रयागराज।
10: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
11: पानी भरा हुआ है, आप भी देख लीजिए सामने
10: भरा। पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
11: अब इतना जल भरा हो इसमें, जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
10: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
12: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
13: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
14: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, काहे कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
14: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
15: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर

0: दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका?
1: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
0: उपेंद्र जी ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर है?
1: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
0: स्पेन है?
1: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
0: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है?
1: हाँ,
0: स्पेन
1: एकदम
0: वाली?
1: वायरल है।
0: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले, यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका, ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर, और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं, और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
2: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई, तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
3: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
4: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो,
3: कौन बोला तरकुलानी? अधीक्षक चारू पता के समय सब सामने खड़े हमारे।
4: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
2: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
4: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
3: हेलो पार्षद जी,
4: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
3: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
4: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
3: सब चालू है, दरगुलानी चालू बा।
2: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
5: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
2: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले तीन दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी, लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी और अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पंजाब के जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं, साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
1: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही, और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी, और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी, और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
11: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं, और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं, और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ, और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीयू ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
1: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
12: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
1: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जांच की जा रही है।
13: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
1: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
14: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
1: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है।
15: एफआईआर हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
16: लड़की का पता चला अभी?
15: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट एफआईआर हुई है, तो हम सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई।
1: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के 2 बजे फोन कर चला था, माँ बहुत दूरी ऐसे यहाँ पे मुख मारी ऐसे तार बिछा तार तक नहीं देख लो कोट मार से की कथा ना देख लो मेडिकल और देखी चलो ताई डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से बोलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग ইয়াতে আছে ডাক মইটো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गोटी के व्यवस्था मैं एक ना जानू, एक गम नपाव कने की केवल मैं डेड बॉडी तो पाई निश्चय विचार मोर छी जने के कष्ट पाए मरीसे तेनेकवा शास्ति दी लगे এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূৰ্ণ শাস্তি সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্তি পাব লাগে।
0: নিমিষা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মে সমাজশাস্ত্ৰ কি ছাত্ৰা থি আৰু ধাৰাপুৰ কি ৰহনে ৱালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ৱজা আৰু ঘটনাক্ৰম কো লেকৰ কাই সৱাল হে জিসকা জৱাব পুলিচ কি যাঁচ আৰু পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হে। পূৰ্ণ বিকাশ গোৰা, গুৱাহাটী, আজ তক।
3: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
3: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
5: एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
6: जी जर्नैल जी।
7: जी परेश भाई, क्या हाल
6: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
7: मैं तिलकनगर में हूँ।
6: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
8: कहाँ रह गए सर?
5: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
3: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे है। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
9: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
9: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
10: प्रशांत सिंह।
9: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
10: प्रयागराज।
9: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
10: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा हुआ।
9: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
10: अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
9: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही हैं।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। यह अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
11: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
12: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
13: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
13: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति ये है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
14: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
15: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
14: उपेंद्र जी ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
15: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
14: स्पेन है
15: हाँ, और डूब रहे हैं, खुद डूब रहे हैं सांसद जी।
14: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
15: हाँ, एकदम वायरल है।
14: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
16: सपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: हाँ,
16: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
17: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो,
16: कौन बोला तरकुलानी? अभी सब चालू हमारे भी पता है कि समय पर सब सामने खड़े हमारे।
17: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत, ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
17: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
16: हेलो पार्षद जी,
17: जी नहीं आप लो? नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
16: कहा हो गई?
17: हाँ
16: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
17: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
16: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जल भरा हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभरा भी दिखा।
18: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है, यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले तीन दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमएबीपी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग, संधु और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

0: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
1: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीयू ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
0: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था, एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
2: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
0: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
3: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
0: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
4: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और घर भी वही रहे हैं।
0: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जाँच के लिए SIT बना दी गयी है।
5: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
6: लड़की का पता चला अभी?
5: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है। तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
0: अब एक तरफ जाँच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी मां को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: রাতে 2টা বজাত ফোন করেছিল তাই মা মোক বুকত ঘুরি আইছে ইয়াতে মোক মারি আছে তারপর আর তাক নেদেখিল কত মারছে কি কথা না দেখিল মেডিকেলত দেখিছিল তাই ডেড বডি পড়ি আছে।
0: নিমিষা কে পিতা বতাতে হ্যায় কি উসকে চেহারে অর শরীর পর ভয়ানক চোটো কে নিশান থে
1: জখম আছে গলত আছে দাগ হাতত আছে দাগ ফেরাত আছে দাগ ইয়াতে আছে দাগ মইতো ভাবি এটো দলবদ্ধ ধরখন গতিকে ইয়ারে ইয়ারে ইয়ারে উচিত বিচার হব লাগে আপনার দ্বারাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग सवाली मो मर्डर होइसे मर्डर होइसे गतिके व्यवस्था हाय मो एको ना जानो एकोय गम ना पाऊ कुने की करिसे केवल मय डेड बॉडी तो पाइसे निश्चय बिचारिसो मोर सवाली जेने के कष्ट पाए मरिसे तेनको हस्ती दिबो लगे এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করেছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করেছো, শাস্তিটা পাবো লাগে দোষীয়ে, সম্পূর্ণ শাস্তি, সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাবো।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায় জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাশ বোরা, গুয়াহাটি, আজ তক।
4: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
5: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
4: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
6: वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
7: जी जर्नैल जी।
8: जी परेश भाई, क्या हाल
7: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
8: मैं तिलक नगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
9: कहाँ रहे थे सर?
6: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
10: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेस वे के टोल पर आ रहा। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
10: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
11: प्रशांत सिंह।
10: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
11: प्रयागराज।
10: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
11: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा
10: पानी भरा। हाँ। क्या डर लगा है?
11: अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
10: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही हैं।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
12: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
13: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी।

0: आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
2: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा ला स्पेन, हमके लगा ला ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
3: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
2: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
3: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
4: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए, ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
5: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
4: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
5: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है, ये
4: स्पेन है।
5: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
4: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
5: हाँ, एकदम वायरल है।
4: चलिए, देखा आपने, यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका, ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है, जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
3: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
6: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
7: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या। हेलो,
6: सामने खड़े हमारे।
7: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है, पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
3: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
7: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया। आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
6: हेलो पार्षद जी,
7: जी नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
6: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था।
7: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या।
6: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
3: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जल भरा हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभरा भी दिखा।
8: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।

0: है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है, हम सही वक्त पे राजनीति जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता, लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
2: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग, हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अबाद पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं, साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

0: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
1: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश। एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
0: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
2: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी एकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
0: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
3: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया। पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
0: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
4: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
0: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जाँच के लिए SIT बना दी गयी है।
5: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
6: लड़की का पता चला अभी?
5: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है, तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई।
0: अब एक तरफ जाँच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के 2 बजे फोन कर चला था, माँ मुख बहुत दूरी है इसे यहाँ थे, मुख मारी से तार बिचार तक नहीं देख लो, कोट मर से की कथा ना देख लो, मेडिकल और देखी चलो ताई डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से गोलत से दाग, हाथों से दाग, फेरा से दाग, ইয়াতে আছে ডাক মইটো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচার হব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है, हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है, तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग इसवाली मो मर्डर हुई है, गोटी के व्यवस्था है। मैं एक को ना जानू, एक को ही गम ना पाऊं। कुने की कोड़ी से, केवल मैं डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से। मोर स्वाली जने के कोस्तो पाई मोरी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे। এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূৰ্ণ শাস্তি, সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্তি পাব লাগে।
0: নিমিষা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সমাজ শাস্ত্ৰ কি ছাত্ৰা থি আৰু ধাৰাপুৰ কি ৰহনে ৱালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি বজা আৰু ঘটনাক্ৰম কো লেকৰ কাই সৱাল হে, জিসকা জৱাব পুলিচ কি যাঁচ আৰু পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হে। পূৰ্ণ বিকাশ গোৰা, গুৱাহাটী আজ তক।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा, यानी बारिश का ये दौर मॉनसून से अलग नहीं बल्कि मॉनसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
5: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेस वे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको, टोल देखिए, टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
5: आप लोग भाई सब, क्या नाम है आपका?
6: प्रशांत सिंह।
5: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
6: प्रयागराज।
5: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
6: पानी भरा हुआ है, आप भी देख लीजिए सामने
5: भरा। पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
6: अब इतना जल भरा हो इसमें, जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
5: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। डेढ़ महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
7: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
8: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में है जहाँ पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
9: हमके लगाला स्पेन, हमके लगाला ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगाला, काहे कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
9: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति ये है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
10: इस वक्त हम मौजूद है नौकायन पे जहाँ पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवाज दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका?
11: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
10: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
11: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है ये।
10: स्पेन है
11: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
10: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है?
11: हाँ, एकदम वायरल है।
10: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग है जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर, और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं, और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई, तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
12: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
13: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो,
12: सब सामने खड़े हमारे।
13: अरे महाराज, अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग, हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
13: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
12: हेलो पार्षद जी,
13: जी नहीं, आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
12: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा
13: था? नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
12: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
14: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति, जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात में गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
5: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
1: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
6: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
7: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
8: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
9: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
10: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात की 2 बजे फोन कर बहुत दूरी ऐसे यहाँ थे मारी से तार पिछत तक नेदेखिलो कत मारे की कथा ना देखिलो मेडिकल देखिलो डेड बॉडी पड़ी।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से गलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग ইয়াতে আছে দাগ মইটো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग छोवाली मो मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गति के व्यवस्था है। मैं एको ना जानू, एको ही गम ना पाऊं, कुने की कोड़ी से, केवल मैं डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से, मोर छोवाली जने के कोस्तो पाई मोड़ी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे, এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্তি পাব লাগে।
0: নিমিষা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সমাজ শাস্ত্ৰ কি ছাত্ৰা থি আৰু ধাৰাপুৰ কি ৰহনে ৱালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ৱজা আৰু ঘটনাক্ৰম কো লেকৰ কাই সৱাল হে জিসকা জৱাব পুলিচ কি যাঁচ আৰু পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হে। পূৰ্ণ বিকাশ গোৰা, গুৱাহাটী, আজ তক।
4: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
5: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद
4: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
6: एक वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
7: जी जर्नैल जी।
8: जी परेश भाई, क्या हाल
7: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
8: मैं तिलक नगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
9: कहाँ रह गए सर?
6: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
10: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
10: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
11: प्रशांत सिंह।
10: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
11: प्रयागराज।
10: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
11: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा
10: पानी भरा। हाँ। क्या डर लगा
11: है? अब इतना जल भरा हो, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
10: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही हैं।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
12: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
13: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
14: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
14: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
15: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप जी, आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
16: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
15: उपेंद्र जी, ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
16: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है, ये
15: स्पेन है।
16: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
15: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
16: हाँ, एकदम वायरल है।
15: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
17: सपा ज्वाइन कर लिए क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गए लगा?
18: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो
17: सामने खड़े हमारे।
18: अरे महाराज अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना है सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
18: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: हेलो पार्षद जी।
18: जी नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
17: कहाँ हो गई?
18: हाँ
17: हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
18: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
19: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: आज से होने वाले तीन दिनों की बैंक हड़ताल टली आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़गांड में सियासत, बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वॉर के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी, सम्राट, रेखा और शुभेंदु हेमंता का कांग्रेस परिवार। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा, कैंपस में बवाल, फिर से हुई पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। चुनाव आयोग पर घमासान थमने की बजाय और गहरा गया है। चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा है, कहा कि एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ईसीआई नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी की जाएगी, लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को नजरअंदाज क्यों किया गया।
1: वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
2: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी, ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
3: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
1: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
4: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने

0: संबंधित बिलों को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
1: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी और अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
0: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
2: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
3: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
4: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
5: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
6: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमी बेबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग, संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? ईसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, हंगामा हुआ। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
0: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी। जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
8: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं। और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंच पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीयू ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
0: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
9: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी एकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
0: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जांच की जा रही है।
10: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
0: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
11: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और घर भी वही रहे हैं।
0: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है।
12: एफआईआर हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
13: लड़की का पता चला अभी?
12: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट एफआईआर हुई है। तो हम सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
0: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया और वही उसकी मौत की वजह बना।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से गलत से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग इते से दाग मैं भाई दलबद्ध धर्षण गति के उचित विचार हम लगे अपने द्वारा मैं
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
3: लगभग सवाली मो मर्डर हुई है, मर्डर हुई है, गति के व्यवस्था है। मैं एको ना जानू, एको ही गम ना पाऊं, कुने की कोड़ी से, केवल मैं डेड बॉडी तो पाई से, निश्चय विचारी से, मोर सवाली जने के कोस्तो पाई मोरी से, तेरे को हस्ती दिवो लगे, ऐखेनी मैं सरकार और सरोत अनुरोध करी से, पुलिस प्रशासन और सरोत अनुरोध करी से, हस्ती तो पावो लगे दुखी है, संपूर्ण भावे हस्ती पावो।
0: निमिषा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की छात्रा थी और धारापुर की रहने वाली थी। फिलहाल उसकी मौत की वजह और घटनाक्रम को लेकर कई सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। पूर्ण विकास बोरा, गुवाहाटी, आज तक।
4: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की।
5: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद।
4: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे। और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
6: एक वीडियो जो आज चल रहा है, आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में FIR करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
7: जी जर्नैल जी।
8: जी परेश भाई, क्या हाल
7: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
8: मैं तिलक नगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
9: कहाँ रहे थे सर?
6: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
4: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम धारण, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रहे हैं और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और अब तक 56 से ज्यादा लोगों की जान चले गए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
10: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेस वे के टोल पर आ रहा। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
10: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
11: प्रशांत सिंह।
10: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
11: प्रयागराज।
10: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
11: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा।
10: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
11: अब इतना जल भरा हो इसमें, जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
10: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
12: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
13: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं, जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने शहर को समंदर बना दिया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जल जमाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। इस बीच शहर में जल जमाव को लेकर बीजेपी के सांसद और पार्षद आपस में ही भिड़ गए।
14: गोरखपुर से गर्व करते हैं, हमके लगा रहा स्पेन, हमके लगा रहा ये अद्भुत जगह, हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला, कहें कि हम सब जगह देख ले आई। मुझे लगता है तुम अंधा है आंख का, तो हम क्या करेगा।
0: ये यूपी का वेनिस है, किसी को नहीं दिख रहा है तो सांसद जी क्या करें। ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, अच्छे से देख लीजिए कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला को ये शहर इटली से कम नहीं दिखता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मंच से रवि किशन दहाड़ रहे थे, ललकार रहे थे कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर है,
14: हमके एक स्मार्ट सिटी लगा ला।
0: लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए, मानसून के आखिरी स्पेल ने स्मार्ट सिटी को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्थिति यह है कि सांसद रवि किशन के घर पर भी जल भराव हो गया।
15: इस वक्त हम मौजूद हैं नौकायन पे, जहां पर रवि किशन का आवास है। आप देखिए ये यहां पर बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के बाद हम आपको रवि किशन का आवास दिखाएंगे और ये कारें जो पानियों में डूबी हुई है, जिन्हें स्पेन कहने का शौक है, वो हमारे सांसद रवि किशन जो इस गोरखपुर शहर के हैं, आपको दिखाऊंगा कि ये इस वक्त जलमग्न है और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शीशा नीचे करें। आप यहाँ पे अभी इधर से गुजर रहे हैं, बताएं क्या नाम है आपका।
16: उपेंद्र यादव मेरा नाम है।
15: उपेंद्र जी ये बताएं, ये रवि किशन जी का घर,
16: सांसद जी का घर डूब रहा है, बताते हैं स्पेन है, ये
15: स्पेन है।
16: हाँ, और डूब रहा है, खुद डूब रहा है सांसद जी।
15: यानी आपको भी पता है ये बात, इनकी वायरल है।
16: हाँ, एकदम वायरल है।
15: चलिए, देखा आपने यहाँ पर जाने वाले यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये इनका ये काफी वायरल है कि स्पेन है। तो ये है सामने रवि किशन का घर और ये सामने आप देख रहे हैं जो कारें खड़ी हैं वो भी पानियों में खड़ी हैं और ये स्थिति जो दिख रही है जल जमाव की स्थिति, ये पूरा अंदर जाना बहुत आसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सभी लोग स्पेन स्पेन कहते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें ये पता है कि रवि किशन का ये जो घर है ये किसी स्पेन से कम नहीं है। बहुत कहा जाए तो ये स्पेन जैसा दिख भी रहा है।
0: सिर्फ रवि किशन का घर नहीं डूबा, गोरखपुर के मोहल्लों का यही हाल है। लोग जलभराव से परेशान हो गए, कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बीजेपी पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने तो तुरंत सांसद जी को फोन मिला दिया और स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो सांसद जी अपनी ही पार्टी के पार्षद को समाजवादी कहने लगे।
17: सपा ज्वाइन कर लिए क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गए लगा?
18: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या? हेलो
17: सब सामने खड़े हमारे।
18: अरे महाराज अगर तरकुलानी और ये क्या बोलते हैं आपका पाम वाला चालू होता तो वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है, आखिर इतना नाली नाला किस लिए बना है? पानी लगने के लिए नहीं बना सांसद जी।
0: गोरखपुर के पार्षद ने स्मार्ट सिटी की हकीकत बताई तो रवि किशन उन्हें सपाई कहने लगे। पार्षद ने दावा किया कि पूरा शहर डूब रहा है क्योंकि जल निकासी की समस्या है, रेगुलेटर ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
18: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन कर लिया, पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: हेलो पार्षद जी,
18: जी आप नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
17: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
18: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा।
0: हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी गोरखपुर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, खुद सांसद के घर के बाहर भी जलभराव हुआ है। रवि किशन खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जिन गलियों में गए वहां जलभराव भी दिखा।
19: और जितना हो सके हम लोग 24 घंटा मुस्तैद हैं, प्रशासन मुस्तैद है, तो आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें राजनीति भी बहुत होगी, राजनीति लोग करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उनकी राजनीति का चेहरे भी सब सामने आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त फिलहाल हम लोग के लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते राजनीति करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए हमारे पास समय है। हम सही वक्त पे राजनीति जब मंच होगा वो राजनीति करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शहर को संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सांसद जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं लोगों की सहायता करनी है, लेकिन जो मुस्तैदी अब दिख रही है यही समय रहते हो जाती तो शायद गोरखपुर वासियों को इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन सांसद महोदय पानी में उतरे तो अखिलेश ने व्यंग कस दिया। मुख्य नगरी में भाजपाई सांसद का ये विरोध प्रदर्शन टाला भी जा सकता था, भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन जबरदस्ती पानी में चलकर और बाकायदा वीडियो बनाकर और उसे प्रसारित करके ये दर्शाया जा रहा है कि भाजपाई सांसद लखनवी चाल को आखिरकार समझ ही गए हैं। अब बीजेपी के अंदर ही गोरखपुर बनाम गोरखपुर हो गया है। जाती हुई बरसात ने गोरखपुर में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
4: आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब आपका आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे, इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की बात की।
5: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद।
4: थप्पड़ कांड के बाद सवाल उठे कि मिनिस्टर को यह अधिकार किसने दिया, यह हक किसने दिया कि वो किसी को भी थप्पड़ मारे, और आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसके बाद कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए तो फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से सफाई भी आई। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए।
6: वीडियो जो आज चल रहा है आम आदमी पार्टी वाले चला रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए। विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर में एफआईआर करा रहे हैं। और इसी के चलते जब उनको कोई कमीशन नहीं मिली जर्नल सिंह को, तो वो जैसे ही रात को रोड डलती थी वो सुबह जाके उसको उखाड़ने का काम करके, और ये पूरा करप्शन हो रहा है इसका वीडियो बना के डाल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका और मैंने काम को देखा कि काम एकदम बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
7: जी जर्नैल जी।
8: जी परेश भाई, क्या हाल
7: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
8: मैं तिलक नगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
9: कहाँ रह गए सर?
6: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
4: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।